0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम जो मैं आपके लिए संडे की शाम को लेकर आती हूँ। और अच्छी बात यह है कि हर संडे की शाम को और भी सुहानी बनाते हैं मानवता की बात करते हुए। हम सबको पता है कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस मानवता को भूलते जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि मैं उन सभी लोगों से आपको मिलवाती हूं जो इस तरीके के काम करते हैं, जो ह्यूमैनिटी के काम करते हैं, मानवता के काम करते हैं। आज इस कड़ी में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के बारे में शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और अगर पूरे शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में नहीं पता है, तो इनका भवन कहां पर है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार के काम ये करते हैं, आज हम बहुत सारी बातें इनसे जानने वाले हैं। स्टूडियो में मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के, राकेश सोनी जी हैं जो कि ट्रेजरर हैं, और महेश गटानी जी हैं जो कि सेक्रेटरी तो हैं ही इस साल के, लेकिन वैसे हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर के ऑल ओवर के प्रेसिडेंट रहे हैं और एक बहुत ही सीनियर मेंबर है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के। आप सभी का स्वागत है रेडियो वन ऑफ रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल राम कुमार जी आपसे करना चाहूंगी, अगर मैं पूछूं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट तो इसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है?
2: माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट की शुरुआत सन 1985 में समाज सेवा और जन सेवाओं के कार्य करने हेतु शुरू किया गया था। इस ट्रस्ट के तहत हम समाज सेवा के कार्यक्रमों में माहेश्वरी समाज के सभी जरूरतमंद परिवारों को मेडिकल सहायता, शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप, विधवा पेंशन और शादी में सहयोग करते हैं। जन सेवा के कार्यक्रमों में नेत्र चिकित्सा शिविर, पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैंप, दिव्यांग कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, आयुर्वेदिक चेकअप कैंप, निःशुल्क एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का भी माहेश्वरी भवन में संचालन, समय समय पर हार्ट चेकअप, कैंसर, डायबिटिक एवं अन्य बीमारियों के संबंधित अवेयरनेस कैंपों का भी आयोजन हम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय प्रशासन का सहयोग, कोरोना के समय प्रशासन को फुल सपोर्ट, साथ ही साथ रेड क्रॉस के सहयोग से फूड पैकेट्स, सूखा राशन तथा जरूरतमंद परिवारों को वितरण किया गया।
0: सो भाई, बड़े सारे काम है जो माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट करती है, लेकिन अगर हम देखें एक लंबे समय से माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का जब गठन हुआ, तो इसका गठन इसलिए नहीं हुआ कि चलिए अपने समुदाय के लोगों की मदद की जाए, इसलिए हुआ कि इस पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और खास तौर पर अगर हम अपने शहर की बात करें तो हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश में हम अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं वो लोग जिनके पास पर्याप्त नहीं है, जिनके जीवन के लिए उनके पास पर्याप्त नहीं है। अब क्या पर्याप्त नहीं है? कई बार उनके पास सेवाएं पर्याप्त नहीं है, अगर वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। सो ये जो सलाह है ये उन्हें कहाँ से मिलेगी? और ऐसे नेकी के काम माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट एक लंबे समय से करती आ रही है। अब ये किस प्रकार के काम कर रहे हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं, किस प्रकार के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, समय समय पर किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं, टीम कैसी है, बहुत सारी बातें हैं जो इनसे पूछनी है, लेकिन उतने ही गाने भी तो हैं जो आपको सुनाने हैं। सो फिलहाल कहीं मत जाइए, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो वनवृष्णा 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो वनवृष्णा 107.8 एफएम पर हर चल रहे हैं मानवता की राह पर, और हम मानवता की राह पर चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सदन जो है या भवन जो है वो आपको मिलेगा 7 सेक्टर में। कहाँ पूछूंगी, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले राकेश जी, हम बात कर रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में, सो मुझे बताइए कि किस प्रकार के अलग अलग काम हैं जो किए जाते हैं।
1: जय महेश, ये माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट जो विभिन्न समय पे अंतराल में अपना कैंप लगाता है फरीदाबाद में, और इसका जो लाभार्थी है वो आसपास के 150 से 200 गांव इसके लाभार्थी होते हैं। जैसे हम पोलियो कैंप लगाते हैं या नेत्र चिकित्सा कैंप लगाते हैं। नेत्र चिकित्सा कैंप तो अब क्या है कि गवर्नमेंट की उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो गया जी। बाकी वो लगाते हैं, तो हम एक महीने पहले से हम इन गांवों में, जो मेवात के गांव हो गए, नूह हो गए, उसके आसपास हमारी टीम जाती है और वहाँ पे प्रचार करती है। वहाँ के सरपंच हो गया या प्रधान हो गया, उनसे वो बात करती है, उनको पेम्पलेट देती है, फिर ये बताती है कि माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट जो कि सेक्टर 7A में स्थित है, वहाँ पे पोलियो कैंप चलता है, उसमें आप आए। और जो भी लोग वहाँ आते हैं, अपने आते तो वैसे वो लेके आते हैं डंडा जैसा की, लेकिन जाते अपने पैरों से हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमारे समाज के जो व्यक्ति है, जो हमारे समाज के जो भी सदस्य है, उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं और ये सेवा कार्य हम करते रहे हैं।
0: राकेश जी, एक चीज जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी, और वो ये है कि जो आप लोगों का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है दिव्यांग के लिए कैंप, उसमें बहुत सारे दिव्यांग आते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो कि दूर दूर से कहीं से आते हैं, जिनके पास शायद कोई सहारा नहीं होता है, उनके लिए किस प्रकार की सुविधा और किसके एसोसिएशन के साथ मिलकर किस तरीके से आप ये दिव्यांग कैंप लगाते हैं?
1: मैं आपको यही बता रहा था कि इसके लिए हम एक महीने पहले से गांव-गांव जाके भ्रमण करके उनको अपने जैसे एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, उनके सरपंच हो, प्रधान हो, उनको हम अपने पेम्पलेट देते हैं। अगर उनको बोलते हैं कि आपके पास अगर आने की सुविधा नहीं हो तो हमारे को इन्फॉर्म कर दो, हम वहाँ से गाड़ी भेज देते हैं, उनको बुलाते हैं। उसके बाद वहाँ पे हमारी पूरी टीम है समाज की, वो निस्वार्थ 24 घंटे वहाँ पे तैनात रहती है, और उनके जो भी डॉक्टर्स, जो महावीर, भगवान महावीर कैंप है जयपुर का, उसके साथ में मिलके हम उनका ये इलाज करवाते हैं और उनको पैरों से वापस भेजते हैं। उसके बाद उनको ट्राई साइकिल जो भी उनको दे दी होती है वो भी हम समय समय पर देते हैं।
0: दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे दिव्यांग ऐसे होते हैं जो शायद कम पैसे होने के कारण या फिर कोई और परेशानी के कारण विकलांग तो हो गए, लेकिन उनके पास इतनी सुविधा नहीं होती है कि वो अपने अंग लगवा सकें। आजकल तो आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट होता है, कृत्रिम अंग जो है वो लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये लगाना भी तो अपने आप में एक कॉस्ट है। मिनिमम 5 से लेकर 15-20-25 हजार तक का एक खर्चा आता है, और कई बार परिवारों में इतना पैसा ही नहीं होता है कि उस विकलांग इंसान के लिए वो एक कृत्रिम कोई भी अंग है वो लगाया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट निशुल्क आपके लिए ये काम करती है, और खूबसूरत बात यह है कि आप किसी भी गांव के हो सकते हैं, आप इस शहर में कहीं भी रह सकते हैं, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप एक विकलांग हैं, दिव्यांग हैं और आपको आना है और आपको चाहिए कि आपका अंग लग जाए और उसके बाद आप अपना जीवन आसानी से बिता सकें, सो ये सब काम करती है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मैं जो इनसे जानना चाहती हूँ। आज माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से रामकुमार राठी जी, राकेश सोनी जी और महेश जी मेरे साथ बैठे हैं। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, यानी मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक बेहतरीन सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से मेरे साथ रामकुमार राठी जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं, राकेश सोनी जी हैं जो ट्रेजरर हैं, और महेश जी हैं जो कि मुझे कहना चाहिए सर्वे सर्वा एक लंबे समय से माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। और इतने लंबे समय से मैं इन्हें काम करते हुए देख रही हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि भाई इनका जो नेकी का काम है ना वो जन जन तक पहुंचे। महेश जी, अब अगला सवाल आपके साथ। किसी भी काम को करने के लिए अकेला इंसान नहीं कर सकता, तो एक टीम की जरूरत होती है। मुझे बताइए आपकी टीम किस प्रकार काम करती है।
1: महेश कट्टानी, महामंत्री माहेश्वरी मंडल, अध्यक्ष हरियाणा पंजाब प्रादेशिक माहेश्वरी ट्रस्ट। माहेश्वरी समाज बिजनेस और सेवा कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा है। जहाँ तक सेवा कार्यों को संपन्न करने का सवाल है, हम लोगों के हम साल में कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं, हमेशा सेवा के कार्य चलते रहते हैं। सेवा के कार्य में जब भी हमारा कोई प्रकल्प सामने आता है, सबसे पहले हम कार्यकारिणी से अप्रूव करते हैं, उसके बाद में उस कार्य को एग्जीक्यूशन के लिए हम अलग अलग टीमें बनाते हैं। अपने प्रचार प्रसार की टीम बनती है, प्रिंटिंग का काम देखने की होती है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन का काम होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और 4-5 दिनों का अगर प्रोजेक्ट होता है तो शाम को उसका रिव्यू भी होता है। तो सब मिला के समाज में हमारे युवा साथियों की, सीनियर लोगों की फंड रेजिंग, तो सब मिलके उस काम को सफल बनाने के लिए हम दिन रात उसमें लगे रहते हैं जब तक पूरा, और उसी की बदौलत हमारे हर कैंप सफल होते हैं।
0: वाओ, तो आपने खुद ही देखा भाई माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के कितने सारे काम हैं, लेकिन इसके लिए एक अच्छी और स्ट्रांग टीम की जरूरत है। अब आइडियली अगर आप किसी भी ट्रस्ट या फाउंडेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर तो आपने सुना ही है और वो फोरफ्रंट पर हमेशा होते हैं, लेकिन उनके पीछे होती है वॉलंटियर्स की और मेंबर्स की एक बहुत बड़ी टीम। और माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उन सभी को मैं सलाम करना चाहूंगी। जिस ढंग से वो लोग हर काम को एग्जीक्यूट करते हैं और जितने सेवा भाव से लगे रहते हैं, मुझे कहना चाहिए एक बहुत ही नेक संस्था है जो ढेर सारे काम कर रही है। भाई आने वाले समय में अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में आपके आसपास कहीं कोई ऐसा शख्स है जिसको किसी भी प्रकार की जरूरत है और उसकी जरूरत आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, सो एक ऐसी जगह है जहां आप दरवाजा खटखटा सकते हैं और वो है माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट। अब आप इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, आप इनके कामों में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, और आज माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से मेरे साथ राम कुमार राठी जी हैं, राकेश सोनी जी हैं और महेश जी हैं। राम कुमार जी, आपके पास वापस आऊंगी। जब कभी भी हम ट्रस्ट की बात करते हैं, फाउंडेशंस की बात करते हैं या एनजीओस की बात करते हैं, सो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये सारे काम करना ना बड़ा आसान होता है। आप अपनी नौकरी पर जाइए, आप अपने बिजनेस में जाइए, फिर थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करके आप एक टीम बना लीजिए और इन सारे कामों को कर दीजिए। लेकिन इन कामों को एग्जीक्यूट करने में ढेर सारे चैलेंजेस हैं जो आते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, तो क्या कहेंगे आप?
1: इन चुनौतियां तो इसमें काफी आती है
0: जी,
1: लेकिन फिर भी हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे ट्रस्टी हैं
0: जी,
1: उनके अंदर काफी सेवा भाव है।
0: वाओ।
1: और हम लगभग आपस में मिल करके इन चुनौतियों को पूरा कर लेते हैं। कोई भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है
0: जी,
1: लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही सेवा भावी है।
0: वाओ।
1: उसके लिए मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। 1985 से ये संस्था आज लगभग 42-43 साल हो रहे हैं।
0: वाओ।
1: 42-43 साल से चल रही है, जुड़े।
0: और अगर मैं मेंबर्स की या वॉलंटियर्स की या इसके लोगों की बात करूं, तो कितने लोग होंगे जो इस पूरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं?
1: ये मेंबर हमारा लगभग मेंबर्स है 1100 मेंबर के आसपास हमारे इस ट्रस्ट के हैं लोग।
0: इतना बड़ा वॉलंटियर ग्रुप, सोच सकते हैं आप, 1100 लोग अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं, सो क्या नहीं किया जा सकता है। और सोचिए, हर इंसान अपनी फील्ड में महारत हासिल किया हुआ, यानी ये सब एक बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हैं, जो अपने अपने काम तो करते ही हैं, लेकिन सेवा भाव इतना है कि कोई भी इनके पास आए तो वो खाली हाथ ना जाए, उसकी झोली भर कर जाए। अब परेशानी कैसी भी हो सकती है, मान लीजिए कि कोई आए और कहे जी मेरे घर में खाने के लिए राशन ही नहीं है, तो ये इस चीज को भी इंश्योर करते हैं कि आपको वो भी मुहैया कराया जाए। और कई बार, जैसे मैंने कहा, कुछ बड़े बड़े काम है जो करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स अक्सर ये लगाते हैं। गर्मी के समय में आपने देखा होगा एक सबसे बड़ा चैलेंज है थैलेसेमिक बच्चे हो या नॉर्मल लोग हो, हॉस्पिटल्स में इसकी काफी ज्यादा किल्लत हो जाती है। सो किस प्रकार से होने वाला है ये सब करेंगे बात, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में आपने जाना 1985, कैन यू बिलीव आई वॉज जस्ट बॉर्न एट दैट टाइम। तब से आज तक ये पूरा का पूरा ट्रस्ट चलता आ रहा है, इतने सारे लोग इसके मेंबर्स हैं और उस टाइम से लेकर आज तक इतना सारा काम किया जा रहा है, मतलब हैट्स ऑफ। लेकिन ये एक ऐसी ट्रस्ट है जो निरंतर आने वाली पीढ़ी को भी सेवा सिखाती आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही जनरेशन काम करती है, जनरेशन से जनरेशन ये काम सीखते जाते हैं, टीम बनती जाती है और ये सारे के सारे काम आप तक पहुंचते हैं। बेनिफिशियरीज की हमने बात की कि भाई किस तरीके के लोग हैं, गांव से लेकर शहर तक जिसकी भी जरूरत है ये वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब एक बड़ी जरूरी चीज है जो अक्सर मुझे लगता है कि हर फाउंडेशन हर ट्रस्ट अपनी तरफ से कोशिश तो करता है, लेकिन उन सभी के लिए बड़ा चैलेंज भी होता है ऐसी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, और वो है ब्लड डोनेशन कैंप। भाई मैं खुद जब ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती हूँ तो मुझे स्ट्रेस रहता है, क्या पता लोग डोनेट करने आएंगे या नहीं। एक बड़ा ही खास डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। महेश जी, मैं चाहूंगी आप इसके बारे में जरूर बताएं।
1: जैसे कि आपने बताया है कि गर्मियों के अंदर ब्लड की बहुत ज्यादा कमी रहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हर साल हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते रहते हैं। और अभी आने वाले रविवार 24 मई 2026 को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो रोटरी ब्लड सेंटर एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर कर रहे हैं। और हमारा टारगेट मिनिमम से मिनिमम 101 यूनिट का है और हमारी कोशिश रहेगी 150 क्रॉस करें। और इसके लिए, इसको सफल बनाने के लिए हमने पिछले संडे मीटिंग करी थी। मीटिंग करके हमने अपने कार्यकर्ता की टीम बना के पूरे समाज में जो रेगुलर ब्लड डोनर्स है उनको 1-to-1 कॉन्टेक्ट करके फाइनली कि कौन लोग कंसेंट दे रहे हैं जो ठीक है उनकी हम लिस्ट तैयार करेंगे। और ब्लड डोनेशन कैंप से 2 दिन पहले फिर रिमाइंड करके और फिर फाइनली जो ब्लड डोनर डे के दिन उनकी एक एक लिस्ट को हम लोग टिक करके रहेंगे भी कौन बंदा नहीं आया कौन नहीं आया। तो ये ऐसा कैंप है जिसमें हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं जो ब्लड डोनेट कर सके और हमारे कैंप के साथ जुड़े। धन्यवाद।
0: ब्लड डोनेशन के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई बहुत जरूरी है ब्लड को डोनेट करना। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, एक एक यूनिट ब्लड का इंतजार कर रहे होते हैं। और आपने व्हाट्सएप पर तो देखा ही होगा, फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, हाथ जोड़े हुए इमोजी होती है, मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे भाई या फिर मेरे ससुर बीमार हैं हॉस्पिटल में हैं, आप लोग प्लीज आकर ब्लड डोनेट करिए। बट हम सब हमेशा यही सोचते हैं ना कि ये कौन लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं और उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो उनके लिए वाकई एंजल का काम करते हैं। सो हम और आप ही वो लोग हैं जो किसी के एंजल बन सकते हैं। अगर आप ये बनना चाहते हैं सो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा मौका है। इस बार 24 मई 2026 को रोटरी ब्लड सेंटर के साथ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का ये बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव है। अगर इनकी ये मानना है कि 150 यूनिट होना चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसे 200 यूनिट बनाएं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद पिछले 3 महीनों में ब्लड डोनेट ही नहीं किया, आप बिल्कुल हेल्दी हैं और ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सो चलिए भाई इस बार का टारगेट बना लीजिए, आज ही से अपने कैलेंडर को ब्लॉक कर लीजिए, 24 मई को पहुंचिए माहेश्वरी सेवा सदन 7A सेक्टर 7A फरीदाबाद और मेरे साथ मिलकर चलिए भाई इस ब्लड डोनेशन कैंप को सक्सेसफुल बनाते हैं। सो आप सभी से यही अपील है कि आप सभी इस कैंप में आइए और किसी के लिए एंजल बन जाइए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, और ये सारी बातें सुनकर आई एम श्योर आपके अंदर की मानवता जाग उठी है। अब आपको लग रहा है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अब चलिए भाई, आप मेंबर नहीं है, वॉलंटियर नहीं है, तो बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, कौन आपसे एसोसिएट हो सकता है, कौन आपके साथ जुड़ सकता है, कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, किस तरीके से आप एसोसिएट करते हैं, जानूंगी अब हमारे ट्रेजरर राकेश सोनी जी से।
1: हमारे यहाँ माहेश्वरी, जैसे माहेश्वरी मंडल का गठन हुआ था 1982 में
0: जी।
1: उसके 3 साल बाद हमने ये सोचा कि समाज की सेवा कैसे हो सकती है, इसलिए इसका गठन किया गया माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट का 1985 में
0: जी।
1: उसके नीचे भी हमारे माहेश्वरी मंडल में 2 संस्था और काम करती है, एक युवा संगठन और एक महिला संगठन। तो हम सब मिलके ये समाज सेवार्थ कार्य जैसे समय समय पर अंतराल में हम करते रहते हैं। हर 3 महीने में हम अपनी मीटिंग बुलाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि इंटरमीडिएट क्या हमारे को समाज की सेवा का काम करना चाहिए। कभी हम आई कैंप लगाते हैं, कभी पोलियो कैंप लगाते हैं, कभी आयुर्वेदिक कैंप भी लगवाते हैं, कभी ब्लड हार्ट चेकअप कैंप लगवाते हैं। ऐसे हम अंतराल में कुछ न कुछ करते रहते हैं, और इसमें सभी हमारे माहेश्वरी समाज के वॉलंटियर है जो अपनी स्वेच्छा से वहाँ आते हैं और अपना जैसे समय का जो भी है जो देते हैं। और हमारे समाज में भामा साहब की कोई कमी नहीं है, उसका हमारे पास कोई भी कभी कमी का महसूस नहीं होता है, और इसीलिए हम अपना समाज की सेवा के काम करते रहते हैं।
0: मैं देखिए, मैं ना हमेशा कहती हूँ 3 तरीके के दान होते हैं। आप श्रमदान दीजिए अगर आपके पास श्रम है तो, भाई आपकी क्षमता है और आप जाकर श्रम कर सकते हैं, यानी आप जाकर वॉलंटियर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाई आपके पास टाइम ही नहीं है, आप मेरे जैसे इंसान हैं जो अक्सर अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। सो आपके पास एक चीज़ है, धन। सो आप धन का दान दे सकते हैं, उस धन से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। सो कई बार आपने देखा होगा कि श्रम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास श्रम से होने वाला जो दान है उसके लिए धन चाहिए होता है, वो नहीं होता है। और तीसरा सबसे जरूरी दान, समय का दान। आज के जमाने में मोबाइल फोन में हम घंटों खत्म कर देते हैं, अगर आप अपने 2 घंटे भी निकालते हैं और अपना समय आप जाकर किसी को मोटिवेट या इनकरेज करने के लिए देते हैं ना, तो इससे अच्छा और इससे बड़ा दान हो नहीं सकता है। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट न सिर्फ ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से अपने जितने भी कहना चाहिए माहेश्वरी ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं और जितना भी इनका समाज है वो तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन क्या हम इसमें अपना हाथ नहीं निभा सकते हैं या हम इनका साथ नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हैं, दिव्यांग कैंप्स हैं, या फिर इनके अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, इसमें आप भी जुड़ सकते हैं। बेनिफिशरीज लाने के तरीके से, कॉन्ट्रीब्यूशन के तरीके से, वॉलंटियर के तरीके से आप जरूर ये कर सकते हैं, और चलिए मिलकर इस दुनिया को और भी खूबसूरत जगह बनाते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ। हमारे साथ माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट से रामकुमार राठी जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, राकेश सोनी जी हैं, जो ट्रेजरर हैं, और महेश घटानी जी हैं, जिनको मैं एक लंबे समय से जानती हूं और मैंने इनके ढेर सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे कामों को खुद विटनेस भी किया है। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप तीनों आए। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप लेकर जाना चाहेंगे? रामकुमार राठी जी, आपसे शुरुआत करेंगे।
1: सभी के लिए संदेश, मानव मात्र की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और हमारे समाज का मोटो भी सेवा ही संकल्प है।
2: मैं तो यही कहूंगा कि समाज के लिए हर किसी व्यक्ति को अपना समय जरूर देना चाहिए। समय दोगे, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आप काम हाथ में लेंगे तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं आएगी। बस आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए, सेवार्थ भाव होना चाहिए, तो समाज की सेवा करते रहना चाहिए। यही हमारा समाज का सेवा ही संकल्प, यही हमारा समाज का ध्येय है।
3: माहेश्वरी समाज का मेन मोटो ही सेवा ही संकल्प है, क्योंकि पूरा समाज, चाहे कहीं से पूरे भारतवर्ष में देखें, संख्या में बहुत कम है, लेकिन समाज बिजनेस में सबसे अग्रणी है और सेवा में भी अग्रणी है। राजस्थान में आप एक एक गांव में देखेंगे तो धर्मशाला से लेके हॉस्पिटल से लेके पशु पक्षियों तक का ध्यान रखा जाता है। उसका मेन मोटो हम लोगों का यही है, सेवा ही संकल्प। जब भगवान ने अगर हमारे को जीवन दिया है तो उस जीवन की सार्थकता उसी में है कि हम मानव मात्र की कुछ सेवा कर सकें। जय महेश।
0: न सिर्फ समाज का जो संकल्प या कहना चाहिए मोटो है वो बहुत ही खूबसूरत है कि सेवा ही संकल्प है, लेकिन साथ के साथ आप खुद ही देखिए कि अगर आपको भगवान ने समर्थ बनाया है, हमेशा हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमें समर्थ बनाया है, सो जब आप समर्थ हैं सो कोशिश करिए कि आप समाज को और भी समर्थ बनाएं, ना कि हम खुद तो खूब अमीर हो जाएं लेकिन आसपास का हमारा समाज जो है ना वो हमेशा आपको लगे कि उस तरीके से नहीं बढ़ पाया है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इस समाज का ही एक हिस्सा हैं। सो आज हम चले माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ, जहाँ पर हमारे साथ रामकुमार राठी जी, राकेश सोनी जी और महेश घटानी जी थे, और आज की इस मानवता की राह पर हमने माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के बारे में ढेर सारी जानकारी ली। वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आपसे इजाजत लेते हुए बस एक ही वादा, अगले हफ्ते मैं आऊंगी आप ही के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दिन.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

लग जा गले दुनिया चले छम छम छम छम छम छम एक गढ़ हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की आज इस कड़ी में मैं जिनके साथ बैठी हूँ वो उतनी ही खूबसूरत है, दिल से ही नहीं चेहरे से भी। और इनका नाम है शशिकला कनकानी। शशिकला कनकानी जी दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स की, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट है राजस्थान एसोसिएशन लेडीज विंग। और अगर देखा जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एनजीओ है जिसके साथ एक लंबे टाइम से एसोसिएटेड है, और वो है मदर टेरेसा क्लब। सो बहुत सारे सोशल वर्क के काम ये करती हैं और मैं इन्हें सही मायने में दिल से सोशल एक्टिविस्ट कह सकती हूँ। लेकिन आज हम इनका स्वागत करेंगे क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में हम इनके विचार, इनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। शशिकला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में।
1: नमस्कार भावना जी और धन्यवाद आपका, मुझे भी उतनी ही खुशी है आपसे मिलके।
0: शशिकला जी पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस कार्यक्रम का स्टैंडर्ड सवाल है और हर महिला से मैंने ये सवाल पूछा है। मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण दरअसल एक बहुत ही पर्सनल चीज है। सशक्तिकरण के मायने हर महिला के लिए अलग है। किसी के लिए मात्र पैसा कमाना सशक्तिकरण हो सकता है, सो किसी के लिए एक डिसीजन लेना सशक्तिकरण हो सकता है, किसी के लिए फ्रीडम सशक्तिकरण हो सकता है, तो किसी के लिए एक डेजिग्नेशन सशक्तिकरण हो सकता है। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके नजरिए में आपके लिए महिला सशक्तिकरण क्या है?
1: मेरे नजरिए में भावना जी महिला सशक्तिकरण होगा महिला को ना केवल उसका अधिकार देना बट उसके प्रति उसको जागरूक करना, और उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, चाहे वो छोटे से छोटी घर का काम हो या बड़े से बड़ा एमएनसी में कोई पोस्ट संभालना हो, और समाज में सम्मान पूर्वक अपनी पहचान बना सके। मेरे हिसाब से वो महिला सशक्तिकरण है।
0: वाकई देखिए भाई, मैं हमेशा महिलाओं के लिए एक ही बात कहती हूँ कि महिला जब तक खुश है और वो अपने डिसीजंस खुद ले पा रही है तब तक वो सशक्त है। अब जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत हो या किसी बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पर बैठे होने की जरूरत है। सशक्तिकरण तब भी आ सकता है जब आप अपना जीवन अपने तरीके से बहुत कम पैसों में जी रहे हैं, और सशक्तिकरण तब भी आ सकता है जब आप पैसे बिल्कुल भी नहीं कमा रही हैं लेकिन अपने जीवन में जो आप चाहती हैं वो आप कर पाती हैं, क्योंकि सशक्तिकरण आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। एक वक्त है प्यारे से खूबसूरत से गाने का, जुड़े रहेगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। इस गाने के बाद वापस लौट कर आएंगे। शशि कनकानी जी से बहुत सारी बातें हैं जो करनी है, सो आप कहीं नहीं जाएंगे। फील गुड फील लव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भाव, और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। अब जब मैं वी कहती हूँ ना, तो मेरा मतलब दरअसल होता है महिलाएं एक साथ आ जाए तो दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। पर परेशानी सदियों से यही आती है कि पुरुष महिलाओं को ना कहीं अलग रखने की कोशिश करते हैं, और कुछ महिलाओं के अंदर इनबिल्ट एक चिप होती है जिसमें कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने आप में सर्वे सर्वा हैं और उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। सो ये जो एक व्यवहार है महिलाओं का, इसके कारण भी सशक्तिकरण इतना डिलेड हम महसूस कर रहे हैं। शशि कंकानी जी हमारे साथ हैं, और शशि कंकानी जी दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स एनजीओ की, एक खास एनजीओ जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है खास तौर पर कैंसर पेशेंट्स के लिए। इसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट है राजस्थान एसोसिएशन की लेडीज विंग की और मदर टेरेसा क्लब के साथ ये लंबे समय से एसोसिएटेड भी हैं। अब अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो वर्तमान समय की महिलाओं के बारे में है। शशि जी, हम ना एक लंबा सफर तय करके आ गए हैं। एक जमाना था बच्चियों को पैदा होने का मौका नहीं मिलता था, कन्या भ्रूण हत्या बहुत कॉमन रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़े, कन्या भ्रूण हत्या बंद हुई, फिर बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अब बच्चियां पढ़ पा रही हैं, यहाँ तक कि फ्री एजुकेशन भी उन्हें मिल पा रही है। फिर बच्चियों को एक और परेशानी आती थी कि वो थोड़ी सी जवान होती थी तो उनकी शादियां हो जाती थी, चाइल्डहुड मैरिज जिसकी मैं बात करती हूँ, बाल विवाह। सो वो भी खत्म हुआ, अब वो एक ऐसी पड़ाव पर हैं जहाँ वो अपनी शादी को शायद 18 साल की उम्र के बाद देख पाती हैं, और फिर एक पड़ाव आया जहाँ वो शादी के लिए कंपेल्ड नहीं होती हैं, वो अपना जीवन साथी खुद चुन पाती हैं, अपने लिए वो रोजगार ढूंढ सकती हैं। हम इस यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की कमी है। सो अगर मैं आज के चैलेंज की बात करूँ, सो क्या लगता है किस प्रकार का चैलेंज है आजकल की महिलाओं के साथ?
1: महिलाओं के लिए मेरे हिसाब से ना, उन्हें आज भी अपनी क्षमता साबित करनी पड़ती है, और कई बार उन्हें ना परिवार, समाज और अपने आसपास के लोगों के हिसाब के साथ में समान अवसर नहीं मिलते।
0: वाकई
1: काम करने का समान अवसर नहीं दिया जाता है। एंड इसके साथ भी ना एक और है कि लोग क्या कहेंगे, वो आज भी एक कहीं ना औरतों के मन में, लेडीज के मन में, खासकर उनके मन में ये जरूर आता है। जैसे बहुत सारी लेडीज होती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, उनके आइडियाज हैं, बट क्योंकि लोग क्या कहेंगे वो उन्हें कहीं ना कहीं रोक देता है, और फिर हम ना वो उस धर्रे पे चलने लग जाते हैं कि ठीक है, पीछे से जो चीज होते आ रही है वो आगे भी हम करते जा रहे हैं।
0: वाकई
1: वो है एक चीज।
0: देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इसके शिकार महिलाएं तो बहुत ज्यादा हुई हैं। अरे, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात की जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अक्सर महिलाओं को बहुत सारी चीजों पर रोक टोक लगाई जाती है। मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की है, लेकिन वो घर पर बैठकर सिर्फ होममेकर के टैग के साथ जीती हैं, अपनी आकांक्षाओं का गला घोटकर जीती हैं। सो ये आज भी हमारी महिलाओं के लिए वर्तमान समय में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक महिलाओं का रोल डिफाइन किया गया है ना घर की चार दीवारी, तब तक शायद बहुत सारी परेशानियां महिलाओं के साथ रहेंगी। क्या किया जा सकता है? अगर आपके पास है सजेशन तो भेज दीजिए मेरे पास 8010781078 पर। आप जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, सुना रही हूँ आपको प्यारा सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना। फील गुड फील लाइव।
2: हमसे रोशन है चांद और

0: गया।
1: फिर कोई बावर मुहब्बत की अपनी

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम और उतना ही बेहतरीन सा एपिसोड। शशिकला जी एक ऐसी महिला है जो बहुत सशक्त है, बचपन से ही बहुत सारी कुरीतियों को देखने के बाद भी ये हमेशा से एम्पावर्ड रही, और शायद इन्होंने एम्पावरमेंट आने वाले समय में अपनी जनरेशन्स के साथ साथ आने वाली जनरेशन्स को भी दी, और इसीलिए इनके न सिर्फ स्वभाव में लेकिन आप देखेंगे कि इनके हाव भाव में भी सशक्तिकरण नजर आता है। जिस तरीके से इन्होंने सोशल वर्क को अपनाया है और जिस तरीके से अपने समय का और अपनी कला का सदुपयोग करने की कोशिश कर रही हैं, ये एक सबसे बड़ी कला है शशिकला जी में। शशिकला जी, अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, सशक्तिकरण की आपकी यात्रा, सो अगर देखा जाए तो आपकी एक लंबी जर्नी रही है इन खूबसूरत 55 सालों की। हाँ। इसमें कई ना कई जिंदगी में आपने कोई एक ऐसा निर्णय लिया होगा जिसको लेने के बाद आपको ये महसूस हुआ होगा कि मैंने बड़ा एम्पावरिंग डिसीजन लिया है, ये बड़ा सशक्तिकरण भरा डिसीजन है, और उसके बाद ये मैं कह सकती हूँ कि आपको कोई रिग्रेट नहीं था या आपको लगा कि यस ये मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है।
1: भावना, मैं राजस्थान से हूँ
0: जी,
1: और मैं राजस्थान में क्लास 4 से लेके क्लास 9 तक पढ़ी हूँ
0: जी,
1: जहाँ मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, और मैं बात कर रही हूँ वे बैक 1984
0: जी।
1: सो उस टाइम में राजस्थान में 9th स्टैंडर्ड में हम कोर्स ले लिया करते थे अपना, जो अभी 11th में लेते हैं हम 9th में ले लिया करते थे
0: जी।
1: और मैं क्योंकि ऑल गर्ल्स स्कूल में थी, गर्ल्स स्कूल में सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स अलाउड था
0: जी।
1: सो मैंने अपने दादी जी से कहा, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी आर्ट्स, मैं कॉमर्स करूंगी
0: जी,
1: मुझे कॉमर्स करना है और मुझे सीए कंप्लीट करनी है।
0: वाओ।
1: सो वो आप समझ सकते हो कि वो कितना अपोजिंग डिसीजन रहा
0: है मेरा। वाकई।
1: और मैंने फिर अपने प्रिंसिपल सर से बात करी, जो बॉय स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा कि शशि अगर तुमको करना है तो तुम 5 फ्रेंड्स को ले आओ
0: जी।
1: मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपनी 5 फ्रेंड से बात करी, उसमें एक मेरे प्रिंसिपल सर की बेटी भी थी
0: जी।
1: तो मैंने उससे कहा कृष्णा से कि कृष्णा हम कॉमर्स करते हैं, एंड वी वेंट 5 लड़कियां, हम मैंने बनाया ग्रुप और मैं गई और हमने लिया
0: जी।
1: और बिलीव मी मैंने स्कूल टॉप किया।
0: वाओ।
1: क्लास 9th में, एंड वी वर हम सिर्फ 5 लड़कियां थी पूरे बॉय स्कूल में, 6 स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक का क्लास था
0: जी,
1: उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 5 लड़कियां थी। डेफिनेटली मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला लोगों से, मेरे दादी जी ने मेरा साथ दिया, मेरे फादर ने मेरा साथ दिया, मेरे फादर ने मुझे कहा तुम जो ले रही हो आई एम विथ यू,
0: वेरी नाइस,
1: सी टू इट कि भाई कोई इस तरह का कोई भी चीज नहीं हो, बस और कोई बात नहीं है, आई एम विथ यू। एंड आई वेंट ऑन, आई डिड माई 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम देयर, देन आई शिफ्टेड टू कोयम्बटूर। सो आई थिंक वो हमारे मेरा पहला सशक्तिकरण आप बोल सकते हो,
0: मतलब इमेजिन एट द एज ऑफ 13 आप इतना एम्पावरिंग डिसीजन लें कि भाई मुझे कॉमर्स करनी है, ऑल बॉय स्कूल में जाकर मात्र 5 लड़कियां वर्सेस प्रोबेबली 250 स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा डिसीजन है। लेकिन यही हम कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण, यानी क्या आप अपनी चॉइसेस को रख पा रही हैं। आज भी आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं कॉम्प्रोमाइज्ड प्रोफेशंस में हैं, क्यों, क्योंकि टीचिंग लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए सेफ होता है, आप सुबह सुबह जाएंगी दोपहर तक घर आ जाएंगी, बच्चों का भी ख्याल रहेगा और आप भी नॉर्मल काम कर सकती हैं, ये कहकर बहुत सारी महिलाओं को सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन में पुश किया जाता है, चाहे फिर वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहती हों, कहीं और कॉर्पोरेट्स में जॉब करना चाहती हों, लेकिन कंपेल किया जाता है क्योंकि वो उनके लिए सेफ है। और यही कुछ ऐसे प्रलोभन है या कहना चाहिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे पुश कर करके महिलाओं को हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या आप उन महिलाओं में से हैं जो सशक्त है, जो अपने लिए डिसीशंस ले सकती हैं और अपने डिसीशंस लेने के बाद विदाउट अ रिग्रेट उन पर आप अडिग रह सकती हैं, तो आप एक सशक्त महिला हैं। एक बार अंदर झांक कर देखिए अपने दिल से, और अगर आपने अभी तक ऐसा कोई डिसीशन नहीं लिया है तो इट इज टाइम कि आप एक डिसीशन जरूर लें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में आज मैं बैठी हूँ शशिकला कंकानी जी के साथ। शशिकला जी वैसे तो दिल्ली सिटी चैप्टर की लीडर हैं फ्रेंड्स ऑफ मैक्स एनजीओ के साथ, प्रेसिडेंट हैं राजस्थान एसोसिएशन की लेडीज विंग, और उसी के साथ साथ मदर टेरेसा क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं, माहेश्वरी मंडल के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं। लेकिन इन सब सोशल वर्क के कामों में ये महिलाओं को सशक्तिकरण देने का भी एक बहुत खूबसूरत सा काम कर रही हैं। सो कहीं जीवन दान देने की कोशिश करती हैं, कहीं अपनी केयर देने की कोशिश करती हैं, लेकिन साथ के साथ महिलाओं को एक नई सोच भी देने की कोशिश कर रही हैं। शशि जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमने बड़ी प्रगति की है, सो हमने बहुत सारा अगर देखें तो हमने जहाँ तक अपनी डेवलपमेंट हो सकती है महिलाओं ने की है। कुछ महिलाओं ने रिबेल करके, कुछ महिलाओं ने परिवार को मना के, जैसे कि अगर हम आपके केस में देखें सो आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने शायद पेरेंट्स नहीं माने तो भी उन्होंने रिबेल किया, लेकिन वो आगे बढ़ी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, मतलब बहुत सारी ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हमारे समाज में वो इक्वालिटी नहीं है। आज भी शायद एक महिला अगर काम करके घर वापस आती है और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मुझे एक कप चाय मिल जाए, और कि अगर वो उसका पति ही है तो वो उसको ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे रोल्स को डिफाइन कर दिया है, महिलाओं पर कुछ जिम्मेदारी ऐसी डाल दी है कि हमें ऐसा लगता है कि आप इन जिम्मेदारियों के लिए ही बने हैं। और बहुत सारी चीज़ों की इक्वालिटी, एक घर में एक पुरुष है जो उतने पैसे नहीं ला सकता क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं है या उतना पोटेंशियल या प्रतिभा नहीं है, लेकिन उसी घर में एक महिला है जो उतना प्रतिभा भी रखती है लेकिन उसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि समाज क्या कहेगा कि पुरुष घर पर बैठा है और महिला कमाने के लिए जा रही है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आज भी हम देखते हैं समानता नहीं है। क्या कुछ किया जा सकता है इस समानता को लाने के लिए?
1: इस समानता को लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा हमें
0: जी,
1: हमारा जो थॉट प्रोसेस है, एंड आई थिंक लेडीज का एक बहुत अहम रोल रहेगा इस थॉट प्रोसेस को बदलने में
0: जी।
1: अगर घर की लेडी, सपोज मैं घर की लेडी हूँ और अगर मैं ये चीज कह दूँ या इस चीज पे अपने बच्चों को ये दूँ, मेरा बेटा है बेटी है दोनों को इक्वल राइट्स है और कोई हार्म नहीं है, और अगर मेरी बहू भी आती है घर में तो मुझे ये, मतलब जो आपने बोला कि एक कप चाय नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, मेरे हिसाब से मुझे ये चीज फॉरवर्ड आके करना चाहिए। सो मुझे अगर घर की लेडी की सोच बदली हुई है तो आई थिंक वी कैन, हम वो चीज बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे।
0: देखिए शशि जी ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि इसमें भी महिलाओं का हाथ है, और मैं तो ये कहती हूँ परवरिश में हाथ है।
1: यस,
0: क्योंकि परवरिश महिला का
1: रोल है, महिला का।
0: अगर हम जब एक लड़के की परवरिश कर रहे हैं और उसे उतनी ही जिम्मेदारियों के साथ उसे कहें कि वो उसका बचपन,
1: छोटा सा वाकया याद आ रहा है अपनी लाइफ का
0: जी।
1: तो मैं अपने दादाजी दादी जी के पास पढ़ी थी फ्रॉम क्लास 4 to 9
0: जी।
1: तो जब मैं क्लास 8 में थी, 13-14 ईयर्स की रही हूँ, तो उन दिनों में मेरे जैसे जितने भी राजस्थान में मेरी जितनी भी क्लासमेट्स थी उनकी बाई 87, 86, 87, 88 शादी हो गई
0: जी।
1: तो मेरे लिए भी किसी ने प्रपोजल भेज दिया
0: जी।
1: तो मेरे दादाजी बोले अच्छा हम कंसिडर कर सकते हैं, और इमीडिएटली मेरी दादी जी बोली अभी ये पढ़ रही है और ये पढ़ेगी आगे। सो मेरा दैट्स व्हाट आई वांट टू से इज कि ये चीज ना घर लेडीज के हाथ में ही है एंड
0: yes.
1: और हमें ये चीज रियलाइज करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ना गॉड ऑलमाइटी का भी एक पावर दिया हुआ है जिसे हमें रियलाइज करना है और उसे अप्लाई करना है। सृजन हमारे हाथ में है। मदर्स डे पे मैंने एक कोट पढ़ा कि 50% ऑफ द वर्ल्ड आर वुमेन, द अदर 50% आर हर चिल्ड्रन।
0: यस,
1: सो बेसिकली हमें ही वो चीज करना है, और जैसे आप कहते हो वी, तो वी का मतलब है हम।
0: यस,
1: तो वुमेन एम्पावरमेंट हम अगर करेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप ही आ जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट का ना कहीं भी ये मतलब नहीं है कि वी हैव टू अर्न, मैं अर्न कर रही हूँ तो मैं एम्पावर्ड हूँ। नो, अगर मैं घर भी अच्छे से संभाल रही हूँ, मेरी मर्जी से बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, जहाँ मैं ये नहीं फील करती हूँ कि मेरे पे ये थोपा गया है, तो इफ आई चूज लाइक आई हैव चोजन,
0: यस
1: आई एम इक्वली, मैं अपने हस्बैंड के साथ में 92 से बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, प्रॉपरली टेक केयर करती हूँ
0: जी.
1: व्हेन ही इज एब्सेंट फॉर सपोज से वन मंथ वन एंड हाफ मंथ आई हैंडल द बिजनेस ऑल बाय माई सेल्फ
0: जी
1: टेकिंग ऑल द डिसीजंस
0: यस
1: सो आई थिंक दैट इज एम्पावरमेंट
0: एक्चुअली
1: And at the same time, I'm happy handling my house.
0: Yes. देखो यही सही सशक्तिकरण है और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सशक्तिकरण का जो डेफिनेशन है ना वो हर महिला के लिए जुदा हो सकती है. सिर्फ पैसा कमाना या सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे हिसाब से सशक्तिकरण नहीं है. ये उसका एक स्टेप हो सकता है लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के डिसीजन खुशी से अपने लिए ले सकते हैं विदाउट अ प्रेशर आप जी सकते हैं. भाई मान लीजिए कि आप बहुत टैलेंटेड है लेकिन आपको एक सबैटिकल लेना है. आपको लगता है जी बहुत काम कर लिया मुझे 10 साल का ब्रेक लेना है मुझे आराम करना है तो आप अपने डिसीजन ले रहे हैं. अब ऐसे में कोई आकर कहे ये तो तुम्हारे करियर का पीक है तुम कैसे इस डिसीजन को ले सकते हो अभी तो तुम्हें कमाना चाहिए. सो यहाँ पर आपका सशक्तिकरण खत्म होता है जहाँ आप किसी और के डिसीजन से जिंदगी जी रहे हैं लेकिन वहीं पर आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप काम करना चाहती हैं और आपको ये कहकर घर पर रख दिया जाए कि आप इस घर की बहू हैं इस घर में बहुत पैसा है हमें तुम्हारे पैसे की या तुम्हारी सैलरी की जरूरत नहीं है इस घर को चलाने के लिए सो वी डोंट वॉन्ट यू टू गो आउट एंड अर्न. ये कहते हैं सशक्तिकरण ना होना या आप पर थोपा जा रहा है. लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी मर्जी से चाहे आप होम मेकर बनना चाहती हैं आप एक क्रिएटिव डिजाइनर बनना चाहती हैं घर बैठकर काम करना चाहती हैं ये इसमें कोई अर्ज नहीं है आप उतनी सशक्त महिला हैं. बट परेशानी ये है कि हम सशक्तिकरण की सही डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं या नहीं और क्या समाज हमें ये सही डेफिनेशन दे पा रहा है यानी क्या हमें वो ये अधिकार दे पा रहा है. सो कहीं ना कहीं अधिकार नहीं है इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम है. जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड फील लाइफ.

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। देखिए शशिकला जी की बड़ी खूबसूरत सी कहानी जो आपने सुनी है, आई एम श्योर हम बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर्ड होंगे। मैं तो इस बात से इंस्पायर्ड हूँ कि अगर आप एक ऐसी महिला है जिनके पास पूरे घर की अथॉरिटी है, सो प्लीज अपने डाउन दी जनरेशंस को वो लिबरेशन दे दीजिए, वो एम्पावरमेंट दे दीजिए जिसकी उन्हें जरूरत है, और फिर धीरे धीरे ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी। डाउन द लाइन हर सास, हर माँ, हर बड़ी बहन, हर भाभी, हर जेठानी शायद लोगों को, आने वाली पीढ़ी को लिबरेशन देगी, सपोर्ट देगी, सपोर्ट देगी देन कि हम ये सोचें कि वो उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। शशि जी, आप ना बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है सोशल सर्विस में, ढेर सारे काम, मतलब मैं अगर देखूं तो आप फ्रेंड्स ऑफ मैक से तो करीबन 2000 से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं मदर टेरेसा क्लब की, मैं राजस्थान एसोसिएशन की, माहेश्वरी मंडल की बात करूं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एक लंबे समय से और बहुत ही समय से आप सोशल वर्क के काम कर रहे हैं। सो इस सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई और ये आपके अंदर कैसे आया?
1: इसके लिए मैं श्रेय दूंगी मेरे फादर को
0: जी,
1: बिकॉज मैंने ना उनको बचपन से देखा है एज अ गिवर
0: जी,
1: तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज इनहेरिट हो गई। और मेरी दादी जी, मेरी मदर, एंड देन इट वाज सपोर्टेड, मतलब वो चीज मेरे हस्बैंड में भी है, सो इट जस्ट कंटिन्यूड लाइक दैट। और मेरा जो मैंने किया गिविंग, जैसे छोटी छोटी चीजें तो हम करते ही थे
0: जी,
1: कुछ भी, जैसे शेयरिंग इज केयरिंग,
0: यस।
1: तो मैंने ना शुरू से ही क्लासरूम में भी, तो आई हैड सो मेनी, जिसको भी कोई जरूरत होती कभी भी, वो पूरे क्लास में सबसे पहले मेरे पास आता,
0: वेरी गुड
1: शशि, डू यू हैव दिस,
0: यस
1: आई नीड दिस। सो और आज भी वही होता है
0: जी,
1: जैसे हमारा मदर टेरेसा ग्रुप है, 50 लेडीज का ग्रुप है
0: जी,
1: बट अगर उसमें, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उसमें अगर किसी को भी कोई तरह की हेल्प चाहिए, उनके दिमाग में सबसे पहले नाम जो आता है वो शशि कंकानी का,
0: यस।
1: सो दैट इज द थिंग। और जैसे मैं क्लास 11th में थी
0: जी,
1: तो मेरी एक क्लासमेट थी, शी वाज फाइनेंशियली वीक,
0: यस।
1: तो हम एक्सकर्शन ट्रिप पे जा रहे थे एंड शी कुडंट गो
0: जी,
1: तो मैं जब मुझे, आई ओवरहर्ड, शी वाज जस्ट माय क्लासमेट, मुझे मतलब मैं उससे, उसके बाद में कभी मेरी उससे बात भी नहीं हुई है, जैसे मैं बाकियों से कनेक्टेड हो गई, बट उससे मैं अभी भी नहीं कनेक्टेड हूँ। तो उस, वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोल रही थी कि यार तुझे पता है मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं आना चाहती हूँ बट मैं नहीं आ पाऊंगी
0: जी।
1: तो आई जस्ट ओवरहर्ड इट एंड देन आई वेंट टू माई क्लास टीचर
0: जी,
1: आई सेड मैम मैं ना इसका पैसा मैं भर देती हूँ, दिस इज वे बैक इन 84,
0: जस्ट इमेजिन
1: 500 रुपीज वाज अ बिग अमाउंट एट दैट टाइम,
0: हां या एक्चुअली।
1: तो मैंने वो दिया अपने पॉकेट मनी से निकाल के, एंड आई डिडंट टेल माई पेरेंट्स ऑल्सो, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस,
0: वाओ,
1: nobody knows about it. So and the happiness on her face, she was so happy and she kept asking my class teacher
0: ki kisne diya,
1: ki ma'am kisne diya mera paisa, please aap mujhe bata do, so I want to thank her,
0: yes,
1: and I said nahi aap batana mat ma'am, so till date she also doesn't know, you are the first person to,
0: wow,
1: do it.
0: Wow, to bhai dekhiye agar wo radio manav rashta 107.8 fm sun rahi hai to ab aapko pata hai ki aapki class mein shashi gankani ji ne wo 500 rupaye diye the aapko excursion par le jane ke liye, but yes यहीं से शायद बीज शुरू होता है। सो क्या आपने डाउन योर जनरेशन अपने बच्चों में भी इसे डाला है?
1: यस, माय चिल्ड्रन आल्सो हैव, जैसे मेरा बेटा है, उसने अपनी फर्स्ट सैलरी पूरी की पूरी बॉम्बे में था, एक्सेंचर में, सो ही यूज्ड टू गो नियर बाय, देयर वाज एन एनजीओ फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन
0: जी,
1: सो ही वुड गो देयर, वहां जाके उनको बुक्स देना, फूड देना और किताब, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो मेरे दोनों बच्चे करते हैं, इवन व्हेन दे वर हियर स्कूल में थे तब भी वो जैसे झुग्गियों पे जाके और कुछ कुछ बांट के आना करते थे।
0: तो देखिए भाई, ये ना कुछ चीजें हैं जो आप सिखा सकते हो। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, एक जीवन मिलता है, मान लीजिए कि आपका जीवन 80 साल का है, सो आप इस 80 सालों में बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ लेंगे, किसी से प्यार लेंगे, किसी से रिश्ता लेंगे, कहीं से आप पैसा लेंगे, और उसी के साथ साथ इस समाज से आप बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको रिकग्नाइज करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, आपको जानेंगे, लेकिन इन सबको वापस देने का भी तो समय होता है, और वो समय होता है उन लोगों को रिकग्नाइज करने का, उन लोगों को भी रियलाइज करवाने का जिनके पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और शायद इस डगर पर शशिकला कंकानी जी बहुत ही खूबसूरती से चल रही हैं, और इसीलिए सही मायने में मैं इन्हें सशक्त महिला कहती हूँ। तहे दिल से धन्यवाद शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। ना सिर्फ आपने अपने जीवन के कुछ पन्ने पलटे, कुछ कहानी हमें सुनाई, बहुत सारी महिलाओं को आपने मोटिवेट किया, लेकिन जाने से पहले क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी उन सभी को?
1: मैं कहना चाहूंगी एक महिला को सशक्तिकरण के लिए किसी भी स्टैंप की जरूरत नहीं है। वो गॉड गिफ्टेड ऑलमाइटी ने उसे ऑलरेडी सशक्त करके भेजा है
0: जी,
1: क्योंकि सृजन की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ लेडीज में है।
0: एग्जैक्टली
1: तो हमें, हम दुनिया रचा सकते हैं, बना सकते हैं, तो हमें उसे बनाए रखने के लिए भी हमें किसी के स्टैम्प की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर की जो शक्ति है उसे हमें पहचानना है और उसी को ग्रो करना है। आप भी ग्रो करिए, आने जैसे मदर्स हैं तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बराबर वो समझाइए कि ये दोनों काम बराबर, सब काम सब कर सकते हैं
0: जी।
1: और बहू है तो उसे भी अपनी स्पेस दीजिए, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे देरानी जिठानी हो, सबको अपनी अपनी स्पेस दीजिए। और अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, नॉट वो हमेशा ना बाई मॉनिटरी टर्म्स में आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है।
0: yes.
1: अगर किसी ने आपको मान सम्मान दिया, आप उसे ये याद रखिए और उसे भी वापस लौटाइए
0: जी।
1: और जो भी डिसीजन आप अपने लिए लेते हो उस पे खुश होके लीजिए और उस पे खुशी खुशी स्टैंड करिए। आई थिंक दैट इज वॉट इज एम्पावरमेंट अबाउट
0: एक्चुअली। सो भाई मैं तो यही कहूंगी कि इस सशक्तिकरण की राह पर ना हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमें जीवन की सीख दे जाते हैं, कुछ लोग नसीहत दे जाते हैं, कुछ लोग हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाते हैं। बट सशक्तिकरण तब तक ही बहुत खूबसूरती से बनी रह सकती है जब तक आप हर इंसान को उसका फ्रीडम जरूर देते हैं, फिर चाहे वो रिश्ते में हो, फिर चाहे वो आपके आसपास के लोगों में हो, उन्हें उनका फ्रीडम भी दीजिए, उन्हें उनका स्पेस दीजिए। और ध्यान रखिए कि भाई हर इंसान वैल्यूएबल है और हर इंसान बिल्कुल अलग है। सो कभी भी कंपेयर मत करिए किसी को भी, ना इन टर्म्स ऑफ रिश्ते, ना इन टर्म्स ऑफ आपकी अपनी नॉलेज या किसी भी तरीके से। सो जब तक आप ये सब नहीं करेंगे ना, ये लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बिल्कुल इस प्रोग्राम की तरह। आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तहे दिल से धन्यवाद शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
1: धन्यवाद भावना।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अगले हफ्ते मेरी आपसे होगी मुलाकात। टिल देन फील गुड, फील लाइफ।

0: हार गोरी,
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर आता है रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। और जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारी आपकी हम सबकी जिंदगी से, और विशेष तौर पर हमारा प्रयास रहता है कि हम उन मुद्दों पर चर्चा करें इस प्रकार से कि वो एक नई सोच के साथ हमें दिखा सके नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाती हैं एक बेहतर भविष्य की ओर। और विशेष तौर पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मुद्दे हम इस प्रोग्राम के जरिए आपके सामने लाते हैं, जिन पर हम चर्चा करते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं हमारे आसपास हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी अनदेखी कर जाते हैं, यानी जानबूझकर भी हम अनजान बने रहते हैं उन मुद्दों पर। और वो मुद्दे हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानबूझकर अनजान बन जाते हैं उन मुद्दों से, जबकि वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा ही एक विषय, ऐसा ही एक मुद्दा लेकर के हम आ जाएं आपके साथ। और वो मुद्दा अगर हम बात करें कि एक आपदा में, जैसे अवसर कोई एक प्रक्रिया होती है आमतौर पर हम कहते हुए सुनते हैं, तो ऐसी ही एक आपदा हमारे ऊपर, सभी के ऊपर, पूरे विश्व स्तर पर आई थी, वो थी कोरोना की महामारी। लेकिन उसी महामारी के दौरान एक हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, और वो परिवर्तन आया था हमारे ऑफिस की जिंदगी को लेकर के, जहां पर आमतौर पर एक परिभाषा रहती है कि जब कभी हम बात करते हैं किसी भी वर्क की, तो हमें हमेशा दिखाई देता है ऑफिस एक कार्यालय और जिसमें सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना ने हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां दे दी थी कि हमने उस ऑफिस के पूरे सेटअप को कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिया अपने घर पर ही, और वो

कल्चर डेवलप हुआ जिसे हम सब ने नाम दिया वर्क फ्रॉम होम का। तो आज हम बात करेंगे उसी वर्क कल्चर की जिसने ऑफिस की परिभाषा ही बदल दी, यानी वर्क फ्रॉम होम, जिसने वर्क में होम को ऐड कर दिया। अदरवाइज जब कभी भी हम काम की बात करते थे तो केवल और केवल ऑफिस की बात होती थी। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या ये सच में बेहतर है या ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी में नई नई समस्याएं ला रहा है। आइए अब कुछ डेटा और अनुभव दोनों के साथ समझते हैं आखिर वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की जो एक प्रक्रिया है वो वास्तव में कितनी सुविधा है, क्या इसके पीछे का सच है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इन सभी को जानने की एक कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे तलाशने की एक नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमारे जीवन में आए हुए इस परिवर्तन को एक अच्छे प्रकार से हमें एक अच्छा प्रभाव दे करके हमारे साथ जाए। दोस्तों अगर हम डेटा की बात करें तो आज के समय में हमारे देश में पर्टिकुलरली हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो तकरीबन 12.7 यानी 12.7 जो परसेंट लोग हैं वो पूरी तरह घर से काम करते हैं यानी वो करते हैं वर्क फ्रॉम होम। लेकिन साथ ही साथ 28.2% लोग हैं जो हाइब्रिड मॉडल अपनाते हैं यानी घर भी और ऑफिस भी, कभी कभी घर कभी कभी ऑफिस, जो एक प्रक्रिया है कि वर्क फ्रॉम होम भी है लेकिन कभी कभी ऑफिस भी जाना पड़ता है। और एक जो प्रिडिक्शन लगाई जा रही है आज के हालात को देख करके तो आने वाले समय में तकरीबन 9 से 10 करोड़ भारतीय यानी इंडियंस जो हैं पब्लिक है वो रिमोटली काम करेगी, यानी टोटल जो संख्या कामगारों की है जो वर्क करने वाले लोगों की है उसमें से तकरीबन 9 से 10 करोड़ लोग रिमोट काम करेंगे यानी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और यदि वर्ल्ड लेवल पे हम ग्लोबली बात करें तो ये वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, ये वैश्विक स्तर पर सभी ने इसको अपनाया, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉरपोरेट कंपनीज ने अपनाया। और उसमें एक इजाफा जो था कि यदि कोरोना में 2020 में वो संख्या 20% थी तो आने वाले वर्षों में आते आते वो 28-30-35% तक पहुंच गई। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया हमारे वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में पूरे विश्व स्तर पर, यानी कोई एक नया जो एक अनुभव था उसको एक तरह से एक्सेप्ट किया गया काम करने वाले लोगों द्वारा और साथ ही साथ कंपनियों के द्वारा भी। तो आमतौर पर हम जब चर्चा करते हैं वर्क फ्रॉम होम की तो अगर किसी से पूछा जाता है कि आपका ऑफिस कहाँ पर है तो एक सीधा सा जवाब अक्सर होता है कि जहाँ भी वाईफाई है वहीं पर ऑफिस है, यानी केवल और केवल इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए और आप अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं अपने ऑफिस का काम करने के लिए। तो दोस्तों इसी चर्चा को और डिटेल में आपके साथ करेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट जो कोरोना के बाद हमारे वर्क कल्चर में आया, जिसे हमने नाम दिया वर्क फ्रॉम होम का। दोस्तों, जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया कि ये कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली थी क्योंकि कोरोना का कहर एक तरह से पूरे विश्व में फैला हुआ था। तो उससे बचकर के या उसको उसके पैरेलली चलते हुए हमें क्योंकि अपनी सारी व्यवस्थाएं बनाकर रखनी थी, तो एक ऑप्शन के रूप में इसको तलाशा गया और वो ऑप्शन निकल गया ही वर्क फ्रॉम होम के तरीके से, कि जिसमें कोई भी व्यक्ति केवल एक इंटरनेट की सुविधा के जरिए अपने जो ऑफिस के सर्वर हैं, ऑफिस के जो काम है, जो ऑफिस की जो एप्लीकेशन है, उनका यूज करके अपनी पूरी वर्किंग कर सकता था। क्योंकि हम जानते हैं जब से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है या एक आधुनिक जो युग आरंभ हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो गए हैं तकनीक को लेकर के, और इंटरनेट के माध्यम से अक्सर हमारे सारे काम होते हैं। यानी कनेक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो बहुत आसानी से हो जाती है वाईफाई के द्वारा, इंटरनेट के जरिए। तो उसी के द्वारा किया जाने लगा वर्क फ्रॉम होम। और धीरे धीरे जिस प्रकार से एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया इस सुविधा ने कि आपको काम भी करना है और साथ ही साथ आपको घर पर भी रहना है, तो वो एक तरह का बोनस या एक तरह की एडवांटेज उनको दिखती थी। और दूसरी तरफ यदि हम कंपनियों की बात करें, तो कंपनियों को ये लगता था कि क्योंकि यदि कर्मचारी उनके जो ऑफिस के लोग हैं यदि आते हैं, तो उनके लिए एक ऑफिशियल स्पेस भी अरेंज करना पड़ता है, ऑफिस की जो सुविधाएं होती हैं, चाहे वो एयर कंडीशनिंग की है या उनको किसी तरह की जो फैसिलिटी है स्नैकिंग की एंड ऑल, जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, प्रॉपर बैठने का स्पेस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो हर प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट थी या जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, उसमें भी कंपनीज को किसी तरह का एक बेनिफिट नजर आने लगा। तो उन्होंने भी खुले दिल से इसका स्वागत किया और इस वर्क कल्चर को, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को अपनाया। लेकिन अब इसमें बदलाव वाली क्या बात है कि जो हम बात करते हैं, 77% जो लोग हैं वो मानते हैं कि वो घर से बेहतर काम करते हैं। यानी उनको लगता है कि ऑफिस में काम करने की अपेक्षा यदि वो घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर अपनी प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपने मुख्य काम पर जो ध्यान देते हैं, वो 9% ज़्यादा समय देते हैं। यानी अगर हम बात करें जो वर्क फ्रॉम होम में आप अपने काम को जो समय देते हैं, वो आपके ऑफिशियल आवर्स के मुकाबले 9-10% एक्स्ट्रा होता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है, जो इसकी एक सुविधा है, वो कंपनीज को इनडायरेक्टली मिलती है। तो वो अगर हम कंपनीज के पार्ट पे देखें तो एक बड़ी विन विन सिचुएशन होती है कि आपको खर्चा भी कम करना पड़ रहा है एम्प्लॉयज़ के लिए, और साथ ही साथ आपको उनसे प्रोडक्टिविटी भी बेहतर मिल रही है। लेकिन यदि हम एम्प्लॉयज़ की बात करें कि उनके पीछे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी के पीछे का जो एक कारण था, एक मानसिकता ये थी कि आपको काम करते समय भी आप घर पर हैं तो एक फील रहती है कि यू आर एट होम, तो आपके ऊपर जो एक मानसिक दबाव रहता है ऑफिस के माहौल का, वो नहीं रहता है। और साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ा आराम है, अक्सर हमने देखा है कि जितने भी लोग ऑफिस में काम करते हैं, तकरीबन ज़्यादातर लोगों का जो घर है वो उनके ऑफिस स्पेस से लगभग 1-2 घंटे की दूरी पर होता है। तो डेली के 2-3 घंटे उनके जो कम्यूटिंग का जो टाइम है वो बचता है। और साथ ही साथ यदि हम इसको कैलकुलेट करें, तो अगर हम एक एवरेज 200 से 250 दिन की भी बात करें और डेली आपने 2 घंटे बचाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि पूरे साल में आप 500 घंटे का एक एक्स्ट्रा लाइफ आपकी हो जाती है, जो आप केवल व्यर्थ कर देते हैं ऑफिस आने और जाने में। साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक का इशू नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, और अगर जो एक आम धारणा रहती है ऑफिस में कि बॉस का प्रेशर रहेगा, तो उससे भी बहुत हद तक जो मानसिक दबाव है वो कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ी हंसी वाली बात है कि आपका पहनावा भी मैटर नहीं करता। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में वीडियो कॉल पे बात होती है, तब भी आप केवल और केवल आसानी से शर्ट और लोअर में भी बैठ सकते हैं। तो एक अलग तरह का माहौल, एक तरह का रिलैक्सिंग वाला जो फील है वो आ जाता है। और कहीं ना कहीं यही कारण बनता है जो हमने भी आपसे बात की कि अपना जो मुख्य काम का जो समय रहता है ऑफिस का, उसके मुकाबले तकरीबन 10% एक्स्ट्रा समय हमारे जो लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, वो दे पाते हैं जब वो वर्क फ्रॉम होम की कंडीशन में होते हैं। साथ ही साथ एक जो डेटा है कि तकरीबन जो रिमोट वर्कर्स हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी का रेशियो है वो तकरीबन ऑफिस में काम करने वाले लोगों की अपेक्षा तकरीबन 13-15% एक्स्ट्रा होता है। तो बहुत सारी एक पॉजिटिव साइड भी इस बात की है कि यदि इस तरह की कोई परिस्थिति आती है कि वर्क फ्रॉम होम कराना पड़ रहा है किसी कंपनी को, तो वो दोनों ही पार्ट पे एक बड़ी सुविधाजनक सी स्थिति दिखाई देती है। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और
उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे वर्क फ्रॉम होम के कल्चर पर, कि ये सुविधा में सच कितना है और इसकी सीमाएं कितनी हैं। तो सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल, और अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस सुविधा में आखिर सच कितना है और इसकी सीमाएं कितनी हैं, यानी ये हमारे लिए कितना सुविधाजनक है और साथ ही साथ इसके नुकसान भी हमें क्या हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि प्रोडक्टिविटी 13-15% एक्स्ट्रा होती है, और साथ ही साथ जब वर्क फ्रॉम होम वाला एनवायरनमेंट होता है तो आमतौर पर ऐसा माना गया कि तकरीबन 10% समय ज्यादा दिया जाता है जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। लेकिन दूसरे पार्ट पे अगर हमने एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो उनका जो डेली के 2 घंटे आने जाने के बचते हैं, तो अगर हम वर्ष भर की बात करें तो लगभग 500 घंटे अतिरिक्त उनको मिलते हैं अपना जीवन जीने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन साथ ही साथ हम वर्क फ्रॉम होम की अगर हम बात करते हैं तो केवल ये काम ही नहीं बदलता, आपकी लाइफ को भी बदल देता है। जितनी बातें हमने आपको बताई वो हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, और जिन पर हम ध्यान देते हैं और हमें समझ आता है कि वास्तव में वर्क फ्रॉम होम से किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आते हैं। साथ ही साथ जब हम रिमोट काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार की खुशी भी देता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया अभी कि जब आप घर में बैठ करके काम करते हैं तो एक मानसिक तौर पर आप जो आपकी प्रेजेंस है वो घर में होने के कारण एक तरह का रिलैक्स वाला फील आपके मन में आता है। कार्यालय में जिस प्रकार का जो काम का दबाव होता है, चाहे आपके सीनियर्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, वो सब आप किसी तरह से नहीं महसूस करते हैं जब आप घर में काम होते हैं, घर से काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको खुशी और संतुष्टि भी ज़्यादा देता है। साथ ही साथ जब फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, आमतौर पर आपने देखा होगा जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर होता है तो वो शिफ्ट के हिसाब से भी कंपनी उसको एडजस्ट कर देती है, तो एक तरह से जो आपकी वर्क लाइफ है वो बड़ी बैलेंस हो जाती है। जब आपका एक वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है उसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से शेड्यूल ऑप्ट कर लेते हैं, तो यदि आपको घर पे या आपके जीवन में और भी जो विभिन्न कार्य रहते हैं यदि उनके लिए आपको शेड्यूलिंग करनी होती है तो वर्क फ्रॉम होम में ये सुविधा कंपैरेटिवली बेहतर होती है। क्योंकि जब कभी भी यदि हम ऑफिस की बात करते हैं तो वहां पर जो वर्किंग आवर्स हैं वो निश्चित तौर पे आपको बिल्कुल फिक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर एक ही स्थान पर बहुत सारे लोग काम करने आते हैं, तो वहां पर कोई भी नीति नियम जो बनेंगे वो सभी पर अप्लाई होंगे। लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम की बात आती है तो इंडिविजुअली आप अपनी सुविधा के हिसाब से एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस कल्चर ने, जो वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, हमने सुविधाएं देखी हैं, पर सबसे बड़ी जो कमी है, एक सर्वे के अनुसार यदि हम उसका रिजल्ट आपसे शेयर करें तो करीबन 25% लोगों ने अपनी एक समस्या जाहिर की है कि उनके अंदर सोशल स्किल्स, जो एक समाज के साथ जुड़ कर के रहना या उनके जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं लोगों से मिलने जुलने में, उसकी उन्होंने कमी महसूस की। और साथ ही साथ बहुत से लोगों ने आइसोलेशन और अकेलेपन का भी एक जो बदलाव है वो अपने जीवन में महसूस किया है, तो वो कहीं ना कहीं अकेलेपन के शिकार भी हो जाते हैं। तो यानी एक तरह से यदि हम बात करें कि जो हम पीस की बात करते हैं, जो एक मेंटल पीस, एक रिलैक्स वाला जो माहौल मिलता है घर में, लेकिन वही शांति कभी कभी एक तरह के सन्नाटे का रूप ले लेती है। तो आप अंतर समझ के देखिए कि जब हम शांति की बात करते हैं तो एक पीसफुल फील आती है, शांति वाली, रिलैक्स वाली, लेकिन साथ ही साथ जब वो शब्द सन्नाटे में बदल जाता है तो एक सूनापन और एक खामोशी आपके जीवन में आ जाती है, जो किसी भी रूप से आपकी मानसिक और शारीरिक परिस्थितियों के लिए एक बेहतर स्थिति नहीं होती है, ना ही आपका पारिवारिक माहौल उससे बेहतर होता है। और साथ ही साथ जब कभी हम कुलीग्स की बात करते हैं, जब आप किसी भी कार्यालय में काम करते हैं तो आमतौर पर हमने देखा है कि जिस प्रकार से कॉलेजेज में, स्कूल्स में आप अपने सहपाठियों के साथ हंसी मजाक करते हैं, ऐसा ही एक वातावरण आपके ऑफिस में भी होता है जो आपके कुलीग्स के साथ होता है। लेकिन जब आप वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर में चले जाते हैं तो वहाँ उन्हीं की कमी भी आपको सताती है, एक तरह का जो ये जीवन का बदलाव है वो आपको परेशान भी करता है। और साथ ही साथ पूरा पूरा दिन कई बार ऐसा होता है कि जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि आपके आजू बाजू आसपास कोई है नहीं, तो आप बिना किसी से बात किए हुए केवल और केवल एक मशीन की भांति केवल अपने काम पर लगे रहते हैं। तो जिस प्रकार का एक वातावरण मिलता है कार्यालय में आपके आसपास के लोगों का, काम करने का ढंग देख करके भी हम कई बार मोटिवेशन फील करते हैं अपने अंदर, तो उन सब जो गुणों का जो विकास होना होता है हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो एवरी टाइम खाली हम इस बात को देखें कि हमने साल में 500 घंटे बचा लिए, पॉल्यूशन से बच गए, लेकिन उसकी कीमत कहीं ना कहीं हम चुकाते हैं, जैसे हमने कहा कि सोशल स्किल्स की कमी हो जाती है या लोगों से जो मिलना जुलना, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो सब पाने से आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं।
तो दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल, और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीवन के एक ऐसे बदलाव की जो वो हमारे जीवन में आया कोरोना की महामारी के बाद से, यानी पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आया हमारी ऑफिशियल वर्किंग पे, और जिसे हमने नाम दिया वर्क फ्रॉम होम का। जैसा कि हमने अभी कार्यक्रम के पिछले भाग में आपसे चर्चा की कि इसमें किसी तरह की जो बेनिफिट्स हैं, अगर हम एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम्यूटिंग जो आवर्स हैं वो बच जाते हैं, आपको एक वातावरण अच्छा मिल जाता है, ऑफिस का कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ उसकी कहीं ना कहीं हम एक कीमत चुकाते हैं, जो सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, एक अकेलापन आपको महसूस होने लगता है, और दूसरी तरफ जो एक तरह का मोटिवेशन आपको अपने कुलीग के साथ बैठ करके काम करने का जो वातावरण है वो मिलता है, या कई बार आप अपने मन के दुख सुख आप शेयर कर लेते हैं, तो उन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग हट जाते हैं और एक मशीन के रूप में काम करने लगते हैं। साथ ही साथ एक जो बड़ी समस्या वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर में डेवलप हुई वो ये कि काम और जिंदगी के बीच की एक तरह की रेखा जो बाउंड्रीज है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आप घर में रह रहे हैं और घर में रहकर भी काम कर रहे हैं तो वो ना आप घर में रह पाते हैं ना आप ऑफिस वाला वातावरण महसूस कर पाते हैं, तो एक तरह की सारी चीजों की ना मर्जिंग हो जाती है। तो वो एक सबसे बड़ी चुनौती है कि काम और जिंदगी के बीच की जो रेखा मिट जाती है, जो बाउंड्रीज खत्म हो जाती है, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करने लगती है एक समय के बाद। शुरू में बहुत निश्चित रूप से सभी को बहुत प्रसन्नता हुई थी, बड़े खुशी का वातावरण हो गया था, पेरेंट्स को और बच्चों को लगता था कि चलो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ही हैं, और लेकिन वो साथ रहकर भी साथ नहीं थे क्योंकि उनको अपनी वर्किंग कंप्लीट करनी होती थी, तो वो ना ये महसूस कर पाते थे कि हम घर पर हैं और ना ही पूरी तरह से ध्यान दे पाते थे कि हम ऑफिस में हैं। साथ ही साथ जब हम वर्क वाले माहौल में होते हैं, आमतौर पर आपने देखा होगा कि यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ एक निश्चित आवर्स होते हैं, तो आपको पता होता है कि इतने बजे छुट्टी हो जाती है, इतने बजे ऑफिस का काम बंद हो जाता है, तो आप अपना सब कुछ वाइंड अप करके घर के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं तो वो इस प्रकार का जो एक थॉट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है, तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमें कितने आवर्स के लिए काम करना है, और वो जो एक्स्ट्रा आवर्स वाला हमने एक अनुपात आपके सामने बताया कि 10% एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से निकल जाता है। और साथ ही जब आप ऑफिस में होते हैं तो केवल एक ऑफिस के समय तक आपकी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन यदि आप घर पर हैं तो ऑफिस आवर्स या वर्किंग आवर्स के बाद भी आपके पास हमेशा उपलब्ध रहने का या ऑलवेज अवेलेबिलिटी का जो एक प्रेशर है वो बढ़ता है। और एक जो रिसर्च है एक इन चीज़ों पर, जब क्योंकि ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा बदलाव था, तो उसमें प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है लेकिन कम्युनिकेशन और टीम बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है, क्योंकि आप मिलते नहीं हैं, आप एक दूसरे से अपने थॉट्स नहीं एक्सचेंज करते, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आता है हमारे लोगों के जीवन में कि जिसमें प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, आपके वर्किंग आवर्स बढ़ गए, आपने टाइम ज़्यादा दे दिया, आप काम भी ज़्यादा करते हो, जैसा हमने बताया कि 15% एक्स्ट्रा जो प्रोडक्टिविटी है वो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन और टीम बॉन्डिंग है जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी टीम के ग्रोथ में, उसके मोटिवेशन में, या किसी कंपनी की ग्रोथ में जो टीम बॉन्डिंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। साथ ही साथ एक तरह का जो एक माहौल डेवलप हो गया कि पहले यदि हम ऑफिस में होता था कि ऑफिस में दिखना जरूरी हो जाता, लेकिन क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है और सब कुछ ऑनलाइन है तो आपका ऑनलाइन दिखना जरूरी है, तो एक अलग तरह का जो वातावरण है वो तैयार हो गया जिसकी आदत हमें नहीं थी, और उसमें ढलने में भी हमें समय लगा। तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज इस चीज में आया कि आपका घर और आपका ऑफिस, उसमें जो अंतर कर पाना था वो बिल्कुल असंभव सा हो गया, क्योंकि दोनों चीजें मिक्सअप इतनी ज्यादा हो गई कि आप दोनों को सेपरेट कर ही नहीं पाते हैं। तो एक तरह का बहुत बड़ा आपके पारिवारिक जीवन में भी बदलाव आता है। आमतौर पर यदि हम ऑफिस के माहौल की बात करें, वातावरण की बात करें, तो वो इतना इफेक्ट नहीं डालता था आपके पारिवारिक जीवन पे, लेकिन जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हुआ है शुरू, उसके बाद से आपके पारिवारिक जीवन पर भी इसका पूरा असर दिखाई देने लगा है। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। ये प्रोग्राम हम लेकर के आते हैं आपके लिए हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को लेकर के, जो हमारे जीवन में अपनी एक बहुत बड़ी जगह बना चुका है कोरोना की महामारी के बाद से। तो हमने आपसे चर्चा की कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, यदि हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो भी, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी। लेकिन आखिर यदि हम दोनों में किसी तरह की सीमाएं, जो कि हमारे कार्यक्रम का आज एक टॉपिक भी है कि जो वर्क फ्रॉम होम है, जो सुविधा है, इसकी सच्चाई और इसकी बाउंड्रीज क्या है, मतलब इसकी लिमिटेशंस क्या है। लेकिन लिमिटेशंस की यदि बात करते हैं तो बाउंड्रीज आखिर हम तय करें कैसे, जो इसकी एक हमारे लिए किस तरह से हम जीवन में इसको यूजफुल बनाएं, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों सबसे पहला जरूरी बात है कि यदि आपको वर्क फ्रॉम होम को सर्वाइव करना है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जो वर्किंग के आवर्स हैं, टाइमिंग्स हैं, चाहे आपको ऑफिस जाना है या नहीं है, लेकिन टाइमिंग्स को आपको लिमिटाइज करना जरूरी है। उसको एक सीमित समय के लिए करें, यानी 9 से 6 का यदि आपने कोई समय निश्चित कर लिया है तो सुबह 9 बजे आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए बैठना है और शाम को 6 बजे हर सूरत में वो काम आपको ख़त्म कर लेना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा आवश्यक बात है कि यदि आप अपने आप को फिक्स रखेंगे तो एक्चुअली आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अपने वर्क को और अपनी फैमिली लाइफ को। साथ ही साथ जितना हो सके, यदि आपके पास स्पेस है तो आप अपना एक जगह, एक अपना स्थान निश्चित करें घर में, जहां पर आप केवल अपना वर्क फ्रॉम होम वाला समय बिताएंगे, ना कि ड्राइंग रूम में आप कभी लैपटॉप लेकर के बैठ गए या बेडरूम में बैठ गए या किसी भी स्थान पर। तो वो एक तरह का जो डिस्टर्बेंस है, जो आपको हमने भी बात की कि घर में रह करके भी आप एक ऑफिशियल जो वातावरण है उसको कहीं ना कहीं आप पूरे घर में फैला देते हैं, तो एक प्रकार का जो माहौल है घर का वो बिल्कुल बदल जाता है। क्योंकि यदि आप कहीं भी बैठे हैं तो आपके घर के किसी भी और सदस्य का बात करना या आपको डिस्टर्ब करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बेहतर तरीका है कि आप अपने घर में जो वर्क फ्रॉम होम का स्पेस है उसको सेपरेट बनाएं। साथ ही साथ आपको एक तय करनी पड़ेगी सीमा कि आपका नो वर्क जोन का एक टाइम होना चाहिए, कि यदि आपने कोई टाइम निश्चित कर दिया कि 8 बजे के बाद मैंने रात को कोई ईमेल नहीं करनी, कोई कॉल ना करनी है ना लेनी है, जब तक कि ऐसा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो। क्योंकि कई बार किसी मल्टीनेशनल कंपनीज का जो अदर कंट्रीज के साथ वर्किंग रहती है तो उसमें टाइम जोन के डिफरेंस की वजह से ये असुविधा हो सकती है। लेकिन जहां तक संभव हो सके आपको कहीं ना कहीं नो वर्क जोन भी आपको रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब कभी भी आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो कई बार हम इस कल्चर में भी बिल्कुल जेलअप हो जाते हैं कि आप एक जगह अगर बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उठते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं वहाँ से। वो भी आपको त्यागना पड़ेगा, यानी हर 2 घंटे में 3 घंटे में एक छोटा सा ब्रेक लें, घूमें फिरें, चलें, ताकि आपको जो असुविधा हो रही है एक जगह बैठे बैठे काम करने की, तो एक मशीनी वाला जो फील है वो आपका समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ कोई ना कोई एक समय पूरे वीक में आप रखें, चाहे डेली बेसिस पर रखें, कोई एक पर्टिकुलर आवर्स को आप बिल्कुल डिजिटल डिटॉक्स के रूप में इस्तेमाल करें, यानी डू नॉट डिस्टर्ब का एक मोड यूज कीजिए कि जिस समय पे आप किसी भी प्रकार की जो डिजिटल वर्किंग है वो नहीं करेंगे, चाहे उसमें कंप्यूटर्स हैं, चाहे आपका मोबाइल है या टेलीविजन है, इन सब से बिल्कुल आप दूर रहेंगे। चाहे वो आप उसको किसी एक पर्टिकुलर डे को डिसाइड कर लें या पूरे सप्ताह में 2 या 3 या 4 घंटे का कोई ऐसा समय बिता लें जिसको आप डिजिटल डिटॉक्स का नाम भी दे सकते हैं। यानी हम एक रिसर्च की भी अगर हम बात करें कि यदि आपने अपने वर्किंग का स्ट्रक्चर प्रॉपर रखा तो निश्चित रूप से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो एक टाइम के बाद हम कहते हैं कि डिक्लाइन शुरू हो जाता है, वो नहीं होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी स्टेबल रहेगी। तो ये बहुत समझने वाली बात है। और दोस्तों जिस प्रकार से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है उसके बारे में आपको एक बहुत ज़रूरी बात जो याद रखनी चाहिए, यदि आपने वर्क फ्रॉम होम के सिस्टम में अपनी लिमिटेशंस नहीं बनाई, सीमाएं नहीं बनाई, तो ये काम आपकी पूरी जिंदगी को घेर लेगा। यानी हमें समझने की आवश्यकता है कि यदि हमने अभी से बाउंड्री सेट नहीं की वर्क फ्रॉम होम में, तो कहीं ना कहीं आपका जो पारिवारिक जीवन है, आपका जो पर्सनल लाइफ है, ये वर्क फ्रॉम होम पूरी लाइफ को आपकी कैप्चर कर लेगा और आप एक ऐसी असुविधाजनक स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जहां आप अपने आप को कभी भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। तो दोस्तों अभी इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना की महामारी के बाद हमारे जीवन में आए हुए एक बहुत बड़े बदलाव यानी वर्क फ्रॉम होम को लेकर के। हम चर्चा कर रहे हैं कि सुविधा में कितनी सच्चाई और इसकी आखिर बाउंड्रीज हैं क्या, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और कैसे हम इसको अपने जीवन में बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारी जो पारिवारिक जिंदगी है, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, वो और वर्क लाइफ को बैलेंस किया जा सके। उसमें हमने बताया कि आपको वर्किंग आवर्स आप लिमिट करने पड़ेंगे, आपको स्पेस सेपरेट रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक डिजिटल डिटॉक्स भी आपको अपनाना चाहिए, और साथ ही एक डू नॉट डिस्टर्ब का एक टाइम जोन, नो वर्क जोन जो है उसका एक टाइम डिसाइड करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट दे सकती हैं। साथ ही साथ हम जो अब आज की बात करें कि आखिर आने वाला भविष्य है क्या, अब कंपनियां पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस नहीं बल्कि हाइब्रिड मॉडल पे चली गई हैं, यानी जिसमें 91% कर्मचारी जो हैं वो या तो रिमोट को पसंद करते हैं या हाइब्रिड को पसंद करते हैं। लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर इनकी परफॉर्मेंस का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं था। तो एक समझने वाली बात है कि जब आप किसी भी चीज की सुविधा, जो भी आपने मॉडल अपनाया, यदि उसका इम्पैक्ट बेहतर आ रहा है तो निश्चित रूप से कंपनियां उसको अडॉप्ट करती हैं। तो हमने ये पिछले जो कुछ समय में देखा कि जब ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ तो उस समय हाइब्रिड पे जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कोरोना का एक आपातकाल परेशानी चल रही थी कि उसमें उस एमरजेंसी में हम इस प्रकार से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे परिस्थितियां बेहतर हुई तब कंपनीज ने इसको भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनाया कि हाइब्रिड मॉडल। लेकिन अब उसमें निकल के आती है ये बात कि जब कभी भी हमने बदलावों को चुना या वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लिया या हाइब्रिड मॉडल को हमने अपनाया, तो उसमें एक सबसे बड़ा बदलाव जो आया था कि जो एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी थी, जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कंपनीज में, वो तकरीबन जो कंपनियां छोड़कर अक्सर लोग चले जाते हैं, स्विच कर लेते हैं, तो उसमें 33% की गिरावट भी आई थी इस वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वाले कल्चर के बाद से। तो यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आने वाला समय है, जो भविष्य का जो ऑफिस है, वो एक तरह से कभी घर और कभी बाहर, लेकिन बड़े बैलेंस के साथ होगा। दोस्तों, हमें बड़े गहराई से इस बात को समझना पड़ेगा कि जो वर्क फ्रॉम होम है वो एक सुविधा तो है लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये आपको आजादी तो देता है लेकिन उसी आजादी में आपसे उम्मीद करता है डिसिप्लिन की, यानी अनुशासित रहने की। यदि आप सही संतुलन बना लेते हैं तो ये काम नहीं बल्कि आपके लिए एक बेहतरीन लाइफस्टाइल बन सकता है, एक अच्छी जीवन शैली बन सकता है। याद रखने की जरूरत है कि काम आपके लिए है, आप काम के लिए नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतर होता है इन दोनों बातों में और उसको हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखिए, इस परिस्थिति को और बेहतर बनाइए और इसकी सुविधा पूरी तरह से लाभपूर्ण रखिए। वो कर सकते हैं केवल और केवल जब आप इसकी बाउंड्री सेट करें। जो टिप्स हमने आपको दी उनको यदि आप अपनाएं तो आपको एक जीवन में एक बेहतर पारिवारिक और जो हमने ऑफिशियल एनवायरनमेंट की बात की वो मिलेगा और आप एक बेहतर तरीके से जीवन को जी सकेंगे। तो दोस्तों, इस बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और मिलकर तलाशेंगे नई सोच के साथ नई दिशाएं। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के पास में. मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आप सभी का स्वागत है, जहाँ मैं होती हूँ आपके पास 1 बजे से 3 बजे तक, जहाँ गाने आपको सुनाती हूँ और होती है ढेर सारी बातें. और आज बातों के साथ साथ मैं सिर्फ अकेले ही आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि एक ऐसी शख्सियत मेरे शो में आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ होने वाली है, स्टूडियो में होने वाली है, जिनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने जानने सुनने को मिलेगा. ये कौन है इनके बारे में मैं जरूर बताऊंगी. चलिए पहले नाम बता देती हूँ आपको. इनका नाम है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. लेकिन इनकी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है. और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले ही जैसे हम शुरुआत करते हैं तो एक गाना सुनाते हैं, और वो गाना होता है मेरी पसंद का. तो आज भी मेरी पसंद के गाने से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं. और साथ के साथ आप अपनी पसंद सुनना चाहते हैं, या कोई आप मैसेज शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, या कोई गाना किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई दूर बैठा है उसको आप गाना सुनाना चाहते हैं, अपने दिल की बातें उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए एंजॉय करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना. मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर.

0: ये गाना आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ ब्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज स्टूडियो में हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता और ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं. साथ के साथ इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD की है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में ये यूथ को मोटिवेट कर चुकी हैं और समाज और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही हैं. और इनका बहुत बहुत स्वागत है. और ये तो सिर्फ चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अभी तो बहुत कुछ इनसे जानना बाकी है. इनसे हम जानेंगे ढेर सारी बातें, हम इनकी लाइफ से जुड़े जो यू नो ऐसे कुछ ऐसे मुश्किल भरे पल रहे हम सब की जिंदगी में होते हैं, लेकिन ये कैसे उनको पार करके आज इस मुकाम पर पहुंची है हम इनसे जानेंगे. सबसे पहले मैम स्वागत करते हैं आपका इस प्रोग्राम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका. सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं जी बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया आने का और श्रोताओं से बात करने का मौका दिया. उन सबसे मैंने बहुत सीखा है और आगे भी सीखती रहूंगी. यही मेरा एक एम है समाज के लिए कुछ कर दिखाने का.
0: जी, समाज में जब कुछ कर दिखाने की बात आती है बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस पे डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर के कुछ काम करने की चीज वो बात आती है ना, तब बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये सोचकर बैठ जाते हैं कि कौन ही हमारा साथ देगा या इससे क्या ही बदलाव होने वाला है या इतने सारे लोग हैं हम क्या ही कर पाएंगे. ये सोच ही कई बार ना हमें जो हम अच्छा कर सकते हैं उसको हमें पीछे कर देती है. लेकिन ये चीज शेफाली जी ने नहीं सोची, आज इसीलिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ में हैं. शेफाली जी, अब तक का सफर आपका कैसा रहा यह तो मैं जरूर जानूंगी, लेकिन यहां तक आप पहुंची इसके लिए एक सोच जरूरी होती है. वो सोच डेवलप जो होती है ना वो बचपन से होती है. आई गेस आपके केस में भी ऐसे ही हुआ होगा. तो अपने बारे में बताइए, अपनी जो आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, कैसे आपने कैसे अपना मुकाम शुरू किया, बताइए इसके बारे में.
1: मैं एक ही चीज में बिलीव करती हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है, बस जीने की जरूरत है.
0: करेक्ट.
1: इसी के सहारे मैं आगे बताना चाहूंगी कि मैं एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, शिक्षा विशेषज्ञ, स्टूडेंट काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, और इसके साथ साथ मैं एक ईयर टू ईयर NGO जिसके साथ मैं 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ, जो मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं. और मैं ब्यूटी पेजेंट ग्रूमर, मीडिया पर्सनैलिटी, एक क्षितिज इंडियन आइकोनिक पोएट की संस्था है उसमें मैं जुड़ी रही हूँ फॉर लास्ट 7 ईयर्स एंड RM टॉक्स के जुड़ी रही हूँ. ईयर टू ईयर में आपको बताया रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, AVM में टीचर्स ट्रेनर क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ पहले, TIO में कंटेंट राइटर हूँ. मैं अपने आज के समाज को प्रेरित करने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ. ULB में स्टूडेंट काउंसलर हूँ जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं. इसके साथ साथ मैं ग्लोबल पब्लिक स्पीकर हूँ. मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन लिए हैं, दुबई, कैलगरी, कनाडा और बहुत सारी अलग अलग तरह की जगह से यूनिवर्सिटीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं. सो आजकल के दौर में नए जमाने के स्टूडेंट या आप कह सकते हैं जैन जी के साथ जुड़े मुझे बहुत पसंद है. वो मुझे एक सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनसे बात करके नई चीजें सीखने मिलती हैं और एक तरह से उनको मार्गदर्शन देने का काम मैं हमेशा करती आई हूँ. इसके साथ साथ क्योंकि मैंने PhD किया है पॉलिटिकल साइंस में, मेरा टॉपिक मीडिया से रिलेटेड था, इसीलिए मीडिया मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, मेरा पैशन है. सो मैंने रेडियो द्वारिका में काम किया है, NewsX में थोड़े दिन काम किया है, वेयर आई वाज करेक्टिंग द कंटेंट्स एंड ऑल. सो इस तरह मेरी जर्नी की शुरुआत में इंस्पिरेशन मुझे पेरेंट्स मेरे 21-22 ईयर्स तक तो साथ थे ही, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी, हम दो सिस्टर्स हैं, उनको ये नहीं फील होने दिया कि हम गर्ल्स हैं. आजकल बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने उस टाइम में हम सबको इतना एजुकेट किया कि आज हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं और हम इस समाज में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. फिर मेरे हस्बैंड क्योंकि आर्मी में हैं, जगह जगह पोस्टिंग रही हमारी, तो हमारे साथ जितनी सीनियर लेडीज थे, जितने हमारे साथ फ्रेंड सर्कल बना, हमारी फ्रेटर्निटी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, जहां हम हाई और लोज ऑफ लाइफ साथ में शेयर करते हैं. सो उनसे हमने बहुत सीखा, सीखते सीखते बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह चले गए, फिर बच्चों ने हमें सिखाया, बच्चों ने मुझे सिखाया आज के टाइम में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है.
0: Correct.
1: कैसे हम लर्निंग को अपडेट कर सकते हैं. हमारी लर्निंग उस टाइम की है जहां हम लिखा करते थे, आजकल लैपटॉप आ गया है, आपका इतनी सारी चीजें आ गई हैं, फिर आपको सोशल मीडिया में एवरीडे अपलोड करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो इतना ज्यादा प्लेथोरा ऑफ कंटेंट है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कितना सेफ रहना है एआई के जमाने में, इतने फ्रॉड्स होते हैं, ये सब चीजें मैंने अपने दोनों बच्चों से सीखी। आज भी दोनों मेरे को यही बोलते हैं, मम्मी यू हैव गिवन योर लाइफ टू अस, नाउ इट इज योर टाइम टू फ्लरिश एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। सो मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे साथ में खड़ी है, जो हूं आज मैं वो उनकी वजह से, माई सिस्टर, माई पेरेंट्स, हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, ऑल आर एट द बैक ऑफ मी।
0: तो बिल्कुल इतना सब कुछ आपने बताया, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप रिलेशनशिप कोच भी हैं और बहुत सारी चीजें, आप एनजीओ भी चला रही हैं, फिर आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, मतलब इतना सब कुछ कि मैं किसी एक चीज से तो आपको नहीं आपको कुछ कह पाऊंगी। हाँ ये जरूर कहूंगी कि मल्टीटास्किंग लेडी से हम बात कर रहे हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने जो है हाथ आजमाए हुए हैं और अभी भी काम कर रही हैं। कभी जब आप पीछे मुड़कर खुद को देखती हैं और जब आप ये देखती हैं कि मैंने कितना सब कुछ कर लिया है, एक ख्याल तो मन में आता ही होगा, तो क्या थॉट आता है पहले आपके दिमाग में?
1: सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इसका श्रेय पूरा मेरी आर्मी फ्रेटर्निटी को जाता है। जब आप आर्मी में होते हैं, आपके हस्बैंड आगे पोस्ट होती है, तो आप अपने आप खुद बच्चे मैनेज करते हैं, घर मैनेजमेंट होता है, तो हाफ ऑफ द मैनेजमेंट हमें इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, देन वी ट्रैवल अलोन, वी डू एवरीथिंग अलोन। ये एक जो पावर आर्मी ने मुझे दी है, उसमें मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जितने भी काम हम मल्टीटास्किंग के आज कर पाए हैं, इट वॉज द ग्रूमिंग डन बाय दैट। सो आई ओ माई मल्टीटास्किंग एबिलिटी and many more things to my army fraternity. My thanks to my juniors and seniors. I learnt a lot from them. बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे। और दूसरा उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि हम बहुत सारे स्टेज शोज करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, आई हैव ऑलरेडी डन ऑलमोस्ट मोर देन 2000 स्टेज शोज, आई हैव कंपेयर्ड अ लॉट मोर देन 4000-5000 शोज देयर। सो एक अंदर जो आत्मविश्वास होता है, मैंने एनसीसीसी सर्टिफिकेट किया था, उसमें था मेरे में आत्मविश्वास, पर मैरिज के बाद कभी बच्चे हो जाते हैं, आप अपने में इतना बिजी हो जाते हैं कि आर्मी ने वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को आगे बढ़ने के लिए कि मैं अपने ऊपर खुद सबसे पहले भरोसा करूं। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आज तक मैं अब खुद को पहली प्रायोरिटी देती हूँ। माई सेल्फ केयर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ, देन एनीथिंग एल्स कम्स इन माई लाइफ, इवन फॉर द फैमिली ऑल्सो। जब मैं अपनी केयर कर पाऊंगी तभी मैं फैमिली की केयर कर सकती हूँ।
0: करेक्ट, बहुत सही बात आपने बोली कि जब मैं अपना ध्यान रख पाऊंगी, जब मैं स्ट्रांग रह पाऊंगी, तभी मैं दूसरों का ध्यान रख सकती हूँ। और ये एक बहुत ऐसी गहरी सच्चाई है जो हम सब जानते भी हैं, वाकिफ है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को ताक पर रखते हैं दूसरों की वजह से। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे मैं कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सुननी चाहिए, मैम से जरूर बात करेंगे। डॉक्टर शेफाली गुप्ता हमारे साथ में इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम का नाम है ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांगाम के साथ।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव योजना 107.8 FM पर. मैं हूं प्रांक आपके साथ और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मेरे बिल्कुल सामने स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर शेफाली गुप्ता, जिनसे आज हम बहुत सारी बात कर रहे हैं. ये काफ़ी प्रेरणादायक शख्सियत हैं जिन्होंने अपने शिक्षा से, अपने अनुभव से काफ़ी कुछ अचीव किया है. तो इनसे हम बात कर रहे हैं. अभी जैसे आपने कहा कि जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं, ये सच्चाई भी है कि खुद को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है. फैमिली को तभी हम टेक केयर कर पाएंगे, तभी हम अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे, हम खुद के लिए अच्छा कर पाएंगे, राइट. आज की जो महिलाएं हैं वो इतना ज्यादा बिजी हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं, परिवार को देखने में, अपने करियर को बनाने में इतना डूब जाती हैं कि अपने ऊपर वो ध्यान ही नहीं रहता. और कहीं ना कहीं फिर जब एक एज आती है, जब हम उस चीज को अनुभव करने का, जब वो एक्सपीरियंस करने का जब वो पल आता है ना, तब हम अपने हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं, अपने आप को लेकर परेशान होते हैं. आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को?
1: आपने बिल्कुल सही कहा. आज के दौर में हम आर्टिफिशियल दुनिया में इतना आगे भाग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक इतने खूबसूरत इंसान हम थे. आप सोचो जब हमारा बचपन था कितना सुंदर होता था, किसी चीज की फिक्र नहीं थी, बेफिक्र रहते थे हम. आज के टाइम में बच्चों का बचपन भी धीरे धीरे छिनता जा रहा है, बाहर गेम्स कोई नहीं खेलने जा रहा है. अब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई है लोगों में, समाज में, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा. और जहां तक आज की नारी की बात करते हैं, आज की नारी मल्टीटास्किंग जैसे आपने बोला वो करते हैं, लेकिन मैं जो सोचती हूँ, आपको अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं. जब हम क्लास में

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और इस प्रोग्राम में आज हम बात करें हैं मॉनसून में होने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में. वो प्रॉब्लम्स जो खांसी जुकाम बुखार नहीं है लेकिन इससे काफी बड़ी है. क्या पता इनके होने से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है. पर ये प्रॉब्लम है क्या, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो मॉनसून में ज्यादा खराब हो जाती हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या गोयल, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के डायरेक्टर और एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हमारे बीच हैं. डॉक्टर दिव्या, बारिश के मौसम में कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जो ज्यादा देखने को मिलती हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है लोगों में?
1: जी, अगर कॉमनलिटीज से शुरू करें तो माइग्रेन्स, माइग्रेन्स इंक्रीज इन द रेनी सीजन.
0: ओके,
1: उसका रीजन ये है, जैसे मैंने अभी बताया, बैरोमेट्रिक प्रेशर कम हो जाता है तो उससे हमारे ब्लड की ब्रेन वेसल्स थोड़ी फूलती हैं.
0: okay.
1: और जब भी ब्लड वेसल्स हमारी फूलती हैं तो माइग्रेन जैसे हेडेक्स बहुत कॉमन होते हैं. हेडेक्स बढ़ते हैं, एक तो थोड़ा सा क्योंकि लोगों को पसीना भी आता है, स्वेटिंग होती है ह्यूमिडिटी के कारण, उसके कारण भी, टेम्परेचर चेंजेस के कारण भी, एंड एसी थोड़ा कम सहारा जाता है इस मौसम में. तो वो जो इंक्रीज्ड टेम्परेचर सेंसिटिविटी हो जाती है उसके कारण भी थोड़ा माइग्रेन्स की बढ़ जाती है तादाद.
0: मतलब बेसिकली टेम्परेचर चेंज होने से ज्यादा डिफरेंस होता है कि बाहर एकदम से ठंडा हो जाता है फिर एकदम से ह्यूमिडिटी हो जाएगी.
1: Exactly.
0: जैसे कभी तो 3-4 दिन लगातार इतनी बारिश रहेगी फिर अचानक से धूप आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम दे जाता है ज्यादा. तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग माइग्रेन से परेशान होते हैं. अब माइग्रेन का सोल्यूशन ज्यादातर लोगों के पास होता नहीं है, आपके पास कुछ दवाइयां हैं, लेकिन जब माइग्रेन शुरू होता है तो 2 से 3 दिन परेशान करता है. तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या बेसिक दवाइयां लेके रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बार ऑफिस भी नहीं छोड़ा.

0: पिलर्स की खपत हम बहुत ज़्यादा एडवाइज़ नहीं करते हैं, रीज़न बीइंग उससे किडनी डैमेज और गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है, बट येस वंस इन अ वाइल अगर आपको पेन है तो आप पेन किलर्स भी ले सकते हैं।
1: ओके, यानी बीच बीच में पेन किलर्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है
0: जी।
1: सो माइग्रेन पेशेंट्स को थोड़ा सा ध्यान अपना रखना है। पानी की कमी बॉडी में कोई भी व्यक्ति अगर होने देगा तो इस मौसम में ज़्यादा दिक्कत रहेगी। हमने अक्सर बारिश में देखा है कि मौसम बाहर ठंडा होता है, ह्यूमिडिटी होती है और हमें वीकनेस फील होने लग जाती है। बहुत सारी लेडीज़ को अक्सर किचन में काम करते हुए बहुत ज़्यादा थकावट होती है, क्योंकि एक तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, दूसरा पानी भी कम पी रहे होते हैं। सो इस मौसम में पानी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी और भी चीज़ें जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहें तो हमारे इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आपको डॉक्टर दिव्या गोयल के साथ ये सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी, जिसको आप कभी भी किसी के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत सब बातें और भी, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत सी बातें चल रही हैं आप ही की हेल्थ के बारे में, और मानसून के सीजन में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे बढ़ जाती हैं और ये प्रॉब्लम्स कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं या इसका सोल्यूशन क्या है, इस टॉपिक पर आज हम बात करें हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर दिव्या गोयल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर दिव्या, अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, वो है डेंगू और मलेरिया। अब डेंगू और मलेरिया के बारे में हम इतनी बातें सुनते हैं, एडवाइस होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो घर घर जाकर चेक भी करता है। अब ये एक अपने आप में गंभीर समस्या है जो कि जानलेवा साबित होती है, बट क्या इसका कोई कनेक्शन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी है? क्या इससे भी कोई और दिक्कत आ सकती है, बढ़ सकती है ये?
1: जी बिल्कुल, स्पेशली अगर हम मलेरिया का जिक्र करें तो मलेरिया एनोफिलीस मस्कीटो से स्प्रेड होता है, जो कि वाटर जहाँ पे भी लॉक्ड होगा वहाँ पे ब्रीड करते हैं।
0: जी,
1: तो जब वो RBCs को इन्फेक्ट करते हैं, अंदर हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाते हैं, और ब्रेन में जाने के बाद दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ इन्फेक्शियस प्रोसेस इन द ब्रेन इटसेल्फ। इसको सेरिब्रल मलेरिया कहा जाता है, यानी दिमाग का मलेरिया। अब दिमागी मलेरिया जानलेवा भी होता है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि स्पेशली हेडेक्स से शुरू होके और कोमा तक प्रोसीड करते हैं। तो हेडेक्स, सीजर्स, कन्फ्यूजनल स्टेटस, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, बॉडी एक्स, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होना, 103, 104, 105 तक भी पहुंच जाता है, एंड फाइनली कोमा। तो कभी कभी जैसे मैंने बताया कि पेशेंट वेंटिलेट भी होता है, और इनफैक्ट कभी कभी दे आर डिफिकल्ट टू सेव अगर बहुत लेट हो जाए तो। तो वो सारा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि RBCs कितने इन्फेक्ट हुए हैं और ब्रीडिंग कितनी हो चुकी है बॉडी के अंदर। तो जितना जल्दी हम इंटरवीन करेंगे उतना जल्दी हम पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं।
0: तभी शायद बारिश के मौसम में जब फीवर 2-3 दिन नहीं उतरता तो फटाफट से टेस्ट कराए जाते हैं कि डेंगू मलेरिया सबसे पहले टेस्ट करें अगर सिम्टम्स यही हैं तो। यानी मलेरिया के केस में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद जानलेवा साबित होती है।
1: बिल्कुल।
0: अब चिकनगुनिया में या डेंगू में भी ऐसा कुछ हो सकता है?
1: जी बिल्कुल, डेंगू स्पेशली कभी कभी डेंगू इंसेफेलाइटिस हो जाती है। तो डेंगू इंसेफेलाइटिस का मतलब है डेंगू वायरस का ब्रेन की झिल्लियों को इन्फेक्ट कर देना। ब्रेन के ऊपर 3 झिल्लियां होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, अगर वो इन्फेक्ट हो जाएं तो उससे मेनिंगो इंसेफेलाइटिस नाम की प्रोसेस हो जाती है। वो एक इन्फेक्शन होती है जो बहुत तेजी से ब्रेन में स्प्रेड करती है, ब्रेन की नलियों को ब्लॉक कर देती है, और ब्रेन का जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा उसमें भी सीजर्स, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, कन्फ्यूजनल स्टेटस, हेडेक्स, कोमा, डिहाइड्रेशन, ये सब कुछ हो सकता है,
0: सारी चीजें वैसे।
1: और सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन जो डेंगू में होती है और चिकनगुनिया में होती है वो है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ब्रेन हेमरेज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है।
0: बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है डेंगू में, खासतौर पर से ब्रेन हेमरेज के केसेस हमने सुने हैं कि अचानक से सब कुछ ठीक था लेकिन प्लेटलेट्स एकदम से फॉल करने शुरू हो गए और ब्रेन हेमरेज हो गया। यानी ये जो प्रॉब्लम्स जिनकी हम बात करें कि मच्छरों से होती है, बहुत कॉमन सी है और इसको लेकर मेडिकेशन भी अवेलेबल है, अगर टाइम पर इसे डिटेक्ट नहीं किया जाता तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना पेशेंट का। डॉक्टर दिव्या, थोड़ी सी बात अब और करना चाहेंगे दिमागी बुखार के बारे में। मेनिनजाइटिस या फिर एंसेफेलाइटिस, ये दो ऐसे शब्द हैं जो आम इंसान को नहीं पता होते, लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या आपके घर में बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आपने लिस्ट देखी है तो इसकी वैक्सीन अब आने लगी है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये दोनों प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या इनका मानसून से कोई कनेक्शन है या फिर क्या इसके अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं?
1: टेक्निकली स्पीकिंग मेनिनजाइटिस ब्रेन की झिल्लियों की इन्फेक्शन है, एंसेफेलाइटिस भी वही है लेकिन मेनिनजाइटिस प्लस ऑल्टर्ड सेंसोरियम, उसको एंसेफेलाइटिस बोल देते हैं। मेनिनजाइटिस में ज़्यादातर इंसान होश में रहता है लेकिन उसी इन्फेक्शन में अगर दौरे पड़ने लग जाएं, ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाए, पेशेंट कोमा में जाना शुरू हो जाए तो वो एंसेफेलाइटिस कहलाती है। तो बहुत सारी बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फंगस इन्फेक्शन से, देन ये माइकोबैक्टीरियल यानी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन से, ये सारी इंसेफेलाइटिस और मेनिनजाइटिस की बीमारियां जुड़ी हैं, जिसमें से रेनी सीजन्स में सबसे कॉमन वायरल इंसेफेलाइटिस और जापानीज इंसेफेलाइटिस है। तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस इंडिया के कुछ खास एंडेमिक एरियाज हैं इसके लिए, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, मेघालय, हाँ। इधर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये साउथ में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये एंडेमिक जोन्स हैं इसके, क्योंकि वहाँ पर इसका जो वो मस्कीटो है, क्यूलेक्स मस्कीटो, वो पनपता है, तो रेनी सीजन्स में सबसे ज़्यादा उसका ब्रीडिंग होती है। और जैपनीज इंसेफेलाइटिस इसलिए ड्रेडेड है क्योंकि ये ब्रेन में बिल्कुल सेंटर ऑफ द ब्रेन को इन्फेक्ट करती है, उसको बेजल गैंग्लिया रीजन कहते हैं, डायरेक्टली वहाँ पे इन्फेक्ट करती है, और उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो काफ़ी केसेस में इरिवर्सिबल होते हैं।
0: ओके।
1: इनफैक्ट अप टू 50% ऑफ पेशेंट्स ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस सफर विद अ परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज इवन आफ्टर द क्योर ऑफ द डिजीज।
0: ओके।
1: तो प्रॉब्लम ये है कि मॉर्बिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस की आजकल वैक्सीन भी उपलब्ध है, तो इससे पहले कि इसका आप शिकार बने, इससे बेटर है कि पहले ही बच्चों में वैक्सीनेशन करवा के।
0: जी जी बिल्कुल, और गवर्नमेंट भी इसको काफी प्रमोट कर रही है, क्योंकि कुछ समय पहले कुछ ऐसे केसेस आए थे, बहुत हाईलाइट हुए थे, बच्चों को लेकर काफी सतर्क रहना जरूरी है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आप उसे एक्चुअली में सेफ रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको आप डॉक्टर से जाकर दिमागी बुखार की वैक्सीन बोलेंगे तो वो आपको समझा देंगे और बच्चे को वो वैक्सीन दी जाएगी। बहुत सी और भी बातें जानेंगे लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हैवी हो जाता है कई बार, तो बीच बीच में एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

0: Feel good, feel live. Radio Manav Rachna 107.8 FM. Program All Is Well. हमारे नॉलेज पार्टनर हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बातें चल रही हैं आप ही की हेल्थ के बारे में. बारिश का मौसम लगता तो बहुत अच्छा है लेकिन अपने साथ साथ ये लेकर आता है बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हम आपसी झेलते रहते हैं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी इस तरीके की चीज़ें. लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं तो ये दिमाग पर भी असर डालती हैं. कई लोगों को माइग्रेन की शिकायत बढ़ जाती है, कई लोगों को दिमागी बुखार जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं. तो कहने का तात्पर्य यह है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बढ़ने से पहले अगर आप समझ लें तो आप सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट करवा पाएंगे. हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर दिव्या गोयल. डॉक्टर दिव्या, अब बात करते हैं बेसिक हेडेक की, जो मानसून के सीज़न में आपने कहा माइग्रेन हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को माइग्रेन अगर नहीं है, क्या उनको तब भी मानसून में ज़्यादा हेडेक हो सकता है? और अगर हेडेक हो रहा है तो कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
1: जी बिल्कुल, हो सकता है. हेडेक्स सिर्फ माइग्रेनस नहीं होते, बहुत सारे ऐसे हेडेक्स हैं जो कि सिर्फ टेम्परेचर चेंजेस से होते हैं, या दिमागी बुखार में पहला सिम्टम हेडेक हो सकता है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में पहला सिम्टम हेडेक हो सकता है, जो कि ये सारी चीज़ें मानसूनस में ज़्यादा होती हैं. तो अगर आपका हेडेक परसिस्टेंट है और पूरे सर को इन्वॉल्व किए हुए है, पॉस्चर से चेंज कर रहा है, जैसे आप उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो बढ़ रहा है, और उसके साथ वॉमिटिंग्स आ रही हैं, तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं कि आपको डॉक्टर की मदद चाहिए.
0: ओके. यानी खुद इलाज ना करें कि ठीक है भाई थोड़ा सा कुछ ले लिया, जैसे बहुत सारे लोग नींबू पानी पी लेते हैं या अजवाइन ले लेते हैं कि ठीक हो जाएगा यही घरेलू नुस्खे करके, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहिए. वो भी आप करिए बट एटलीस्ट डॉक्टर से मिलिए.
1: जी
0: डॉक्टर दिव्या, बात करते हैं स्ट्रोक की. अक्सर हमने देखा है कि मौसम बदलने के साथ सर्दियों में स्ट्रोक की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और आप हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट सर्दियों में शो ज़रूर करती हैं क्योंकि लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म किया जाए. क्या मॉनसून में भी स्ट्रोक का खतरा उतना ही बढ़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा तो डाउन होता है?
1: मॉनसून में एग्जैक्टली स्ट्रोक की स्टैटिस्टिक्स ये साबित नहीं करती कि स्ट्रोक्स बढ़ते हैं. हाँ, इतना ज़रूर पॉइंट आउट करूंगी कि ये जो इन्फेक्शंस हैं, मेनिनजाइटिस और एनसेफेलाइटिस जैसी इन्फेक्शंस, अगर इसमें बहुत थिक पस एग्जुडेट्स ब्रेन में बन जाएं, तो वो पस जो है वो नलियों को ब्लॉक कर देती है और स्ट्रोक्स हो सकते हैं. तो इट कैन अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन टू मेनिनजाइटिस एंड एनसेफेलाइटिस बट नॉट एज अ डायरेक्ट प्रोसेस. तो स्ट्रोक्स हाँ बढ़ सकते हैं बट मेनिनजाइटिस एनसेफेलाइटिस में. बट इसके अलावा पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि ये इन्फेक्शंस के कारण एक पोस्ट इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको गुलियन-बारे सिंड्रोम बोलते हैं. ये एक नसों की पैरालिसिस है जिसमें हमारी अपनी जो इम्यूनिटी है वो हमारी ही नसों पर अटैक कर देती है. तो दिस इज एन ऑटो इम्यून प्रोसेस. तो ये गुलियन-बारे सिंड्रोम इन्फेक्शंस के बाद होता है, स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड गट इन्फेक्शंस. जैसे किसी को दस्त लगे हैं या फिर खांसी जुकाम हुआ है तो उसके लगभग एक दो हफ्ते के अंतराल में गुलियन-बारे सिंड्रोम जैसी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है जो किसी ने कभी सोची भी नहीं थी, प्रिडिक्ट भी नहीं की थी. होता क्या है कि उन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी ओवर एक्टिव होती है, एंटीबॉडीज बनाती है. एंटीबॉडीज नॉर्मली सुरक्षा के लिए होती हैं, लेकिन अगर वही एंटीबॉडीज हमारी दुश्मन बन जाएं और हमारी अपनी नसों पर ही अटैक कर दें तो दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज, और उसका प्रभाव होता है

0: पैरालिसिस ऑफ द नर्व्स.
1: ओके,
0: इस प्रोसेस को कहते हैं गुलियन बारे सिंड्रोम.
1: ओके, यानी ये पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है.
0: बिल्कुल, दिस इज अ ड्रेडेड डिजीज, अ फैटल डिजीज. इसमें मोर्टेलिटी रेट्स हाई होते हैं अगर इसमें ट्रीटमेंट सही वक्त पे ना दी जाए.
1: इसके सिम्टम्स एग्जैक्टली क्या हैं अगर कोई पेशेंट ऐसा कुछ महसूस करता है तो?
0: ये बेसिकली ना एक तरह की असेंडिंग पैरालिसिस होती है. असेंडिंग पैरालिसिस मतलब नीचे से ऊपर चढ़ने वाली वीकनेस.
1: ओके,
0: यानी इंसान को पहले पैरों में वीकनेस आएगी, उसके बाद टांगों में आएगी, उसके बाद उसको बाजुओं में फील होगी, और फाइनली उसको सांस लेने में तंगी होने लग जाती है. कभी कभी गले की पैरालिसिस के कारण वो चीजें निगलना भी बंद कर देता है.
1: ओके,
0: तो ये असेंडिंग पैरालिसिस लगभग 2 दिनों में पूरी हो जाती है. मतलब
1: अच्छा,
0: इतनी तेजी से स्प्रेड करती
1: है. ओके.
0: तो अगर हमारा सांस वाला जो सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व हो जाए तो पेशेंट को डायरेक्टली वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है.
1: ओके.
0: तो अगर पेशेंट उसको इन्फेक्ट होने से पहले पहुंच जाए, यानी हाथ पैर की पैरालिसिस तक ही पहुंच जाए, तो IVIG नामक ड्रग से वो वहीं पे कंट्रोल कर ली जाती है.
1: ओके.
0: बट अगर ये भी इन्वॉल्व हो जाए तो वेंटिलेशन पे कई दिन पेशेंट को रखना पड़ता है.
1: और ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ सकती है. तो डॉक्टर दिव्या, इसमें कितना विंडो होता है एक पेशेंट के पास कि जल्दी से जल्दी, मतलब कब तक वो ऐसा महसूस करें कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना ही है, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाना ही है?
0: देखिए, आइडियली एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई भी सिम्टम आपको सडन या एक्यूट ऑनसेट, यानी बहुत तेजी से आगे आया है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ या तो आपके टांगों में या हाथों में सुन्नपना आया है, और या फिर टांगों हाथों में वीकनेस आई है, आप उसको ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, या पैर से आप चल नहीं पा रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं, और ये एकदम से आया है, अनइन्वाइटेड आया है, तो दिस इज

और कैसे बच्चों और बुजुर्गों को फिट रखना चाहिए इस मौसम में, या उनको कुछ अलग से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिनसे हमें बचा कर रखना है, ये बात करेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल और आज हम बात करें हैं मॉनसून में होने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में. और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एज एन एक्सपर्ट डॉक्टर दिव्या गोयल, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. डॉक्टर दिव्या, इन्फेक्शंस की हम बात करें हैं, ब्रेन में होने वाले इन्फेक्शंस की हम बात करें हैं, तो बच्चों का अक्सर लोग बारिश में बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे ख्याल रखने नहीं देते हैं. सो क्या बच्चों और बुजुर्गों की भी मैं बात करना चाहूँगी, उनको भी ये न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस अफेक्ट कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल दीक्षा, जो बच्चे हैं उनमें एक बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस. ये पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन होती है. तो इसमें एक टेपवॉर्म नाम का ऑर्गेनिज्म होता है, बड़ा सा एक पैरासाइट होता है जो कि सॉयल्स में बेसिकली रहता है और उसका कंटेमिनेटेड वाटर में बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हो जाती है शुरू. तो रेनी सीजन्स आर अ परफेक्ट टेम्परेचर सेटिंग फॉर दैट ऑर्गेनिज्म टू ब्रीड. तो वो ब्रीड करते हैं और डायरेक्टली खाने में कंटेमिनेटेड वाटर में, स्पेशली कैबेज की सब्जी में, पोर्क में यानी पिग के मीट में, ये चीज़ें बहुत ईजिली पनपती हैं. और वो जब हम कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ वेजिटेबल्स या फिर नॉट प्रॉपरली कुक्ड पोर्क, तो वो हमारे इंटेस्टिन में जाता है और वहां से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में इन्फेक्शन करता है. और इसमें होता क्या है कि वो सिस्ट बना देता है, लार्वे होते हैं और जो ब्रीड करके वहां पे सिस्ट बना देते हैं ब्रेन में, और ब्रेन में एक गांठ सी बन जाती है जिसके कारण दौरे उत्पन्न होते हैं. तो बच्चों में ये बीमारी बहुत ही कॉमन है, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान जैसे रीजन्स में तो बहुत ज्यादा. तो क्योंकि यहाँ का सॉयल कंड्यूसिव है फॉर द ग्रोथ ऑफ टेपवर्म्स. तो दौरे आते हैं, कई तरह के दौरे आते हैं, फोकल सीजर यानी एक हिस्से को इन्वॉल्व करने वाले या पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करने वाले, बट हाईली ट्रीटेबल है. अगर आप मतलब पहले दौरे में ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लो तो उस स्टेज में ये बिल्कुल फ्रेश स्टेज में ब्रेन में पनप रहा होता है. और अगर हम एंटी पैरासिटिक ड्रग देंगे जिसका 14 से लेके 21 दिन का कोर्स होता है, तो वो पूरी तरह वहाँ पे खत्म हो जाता है.
0: और ये मैंने देखा है कि अक्सर लोग बारिश में सलाह देते हैं कि आप पत्ते वाली सब्जियां अवॉइड करें, स्पेशली पत्ता गोभी के बारे में, जैसे आपने कैबेज के बारे में कहा. इसके बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं लोगों के दिमाग में कि नहीं खाना चाहिए, बहुत लोगों ने खाना ही छोड़ दिया है इसको. सो क्या कोई तरीका है जिससे इससे बचा जा सकता है अगर आप पत्ता गोभी खा भी रहे हैं, बिकॉज इसमें फाइबर बहुत होता है तो बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं.
1: जी एक्चुअली द ओनली प्रॉब्लम इज जब आप इसको रॉ खाएं, एज अ सैलड खाएं. अगर आप कुक कर रहे हैं तो कोई भी पैरासाइट ऐसा नहीं है जो उसमें लाइव रहे, क्योंकि वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता.
0: बहुत सारे हमने ये वीडियोस भी देखे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं ये कीड़ा मरता नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए दिखता भी नहीं है.
1: नहीं, ये कुकिंग से तो ये प्रॉपरली दिस इज
0: खत्म हो जाता.
1: जैसे मैंने कहा था कि अनकुक्ड वेजिटेबल्स या फिर हाफ कुक्ड पोक जो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, तो उसी में ये कीड़ा पनपता है. अगर प्रॉपरली आपने कुक कर लिया है या माइक्रोवेव कर लिया है तो इसका इट कैन नॉट नरिश, इट कैन नॉट फ्लरिश. लेकिन अगर दूसरी तरह आप खाना चाहते हैं, रॉ में खाना चाहते हैं, सैलेड वाइज आप कैबेज की सब्जी खाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर एक लीफ को अलग अलग करके आपको बहुत अच्छे से उसको रनिंग वाटर के अंडर वॉश करना होता है. सोप की जरूरत नहीं होती है, बस रनिंग वाटर शुड बी देयर और हर एक लीफ अलग अलग करके आपको धोना है.
0: लॉन्ग प्रोसेस,
1: इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर रॉ खाना है तो. लेटस का भी सेम ही है, लेटस भी ऐसे ही होता है कैबेज जैसे ही, तो उसमें भी आपको हर एक लीफ अलग अलग करके
0: उसको प्रॉपरली
1: वॉश करना है रनिंग वाटर.
0: सो आई वुड सजेस्ट कि मॉनसून में अगर ये चीजें अवॉइड करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा. जैसे चाइनीज खाने में ये बहुत डली होती है, पर कुक हो जाती है तो एटलीस्ट आप बच सकते हैं. डॉक्टर दिव्या, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं और बहुत सारी बातों से उम्मीद है कि लोगों को समझ आया होगा कि मॉनसून में कैसे खुद को सेफ रखना है. लेकिन अब मैं चलते चलते आपसे जानना चाहती हूँ, कोई 4-5 टिप्स आप ऐसी देना चाहें लोगों को जिससे वो मॉनसून में होने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच सकें.
1: जी, मॉनसून का सीजन अपार्ट फ्रॉम एंजॉयिंग इट, जो प्रिकॉशंस लेने हैं, पहली बात कि आपको रेन वाटर में बाहर नंगे पैर या बिना जूतों के नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे जो कीटाणु हैं वो पैरों के थ्रू ही जाते हैं. दूसरी चीज़, आपको हाई ह्यूमिडिटी में क्योंकि स्वेटिंग होती है और प्यास उतनी नहीं लगती, तो आपने पानी टाइम टू टाइम पीते रहना है, अपनी प्यास के लिए वेट नहीं करना, आपने लगभग हर 2 घंटे में 1 ग्लास पानी पीने की कोशिश करनी है. तीसरी चीज हैंड वॉशिंग, ये मैं ओवर स्पेसिफाई नहीं कर सकती, हैंड वॉशिंग इज द ओल्डेस्ट मेथड जिससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो कोई भी इन्फेक्शन है और वो अगर हमारे ओरल कैविटी से जा रही है तो सबसे पहले हाथ उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छे से हैंड वॉश कीजिए, बच्चों में कल्चर बनाइए हैंड वॉश का, कि वो कोई भी चीज टच करने से पहले, खाने से पहले अपना हैंड वॉश करें। देन बैरोमेट्रिक प्रेशर जैसे लो हो जाता है तो उसमें माइग्रेन्स और जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए वही है कि सडन चेंजेस ऑफ सडन शिफ्ट्स ऑफ टेम्परेचर आपको अवॉइड करने हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक एसी रूम से बाहर निकलना या बाहर से एसी रूम में जाना, उसमें आपको थोड़ा सा स्लो कन्वर्जन, स्लो ट्रांजिशन चाहिए। तो एसी पहले ही बंद करें, 10 मिनट रुकें फिर बाहर जाएं, सो दैट आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाए।
0: जी,
1: तो दीज आर अ फ्यू टिप्स जो हम मॉनसून में अप्लाई
0: करते हैं। बिल्कुल, यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी नहीं है। आप डेली रोज़मर्रा के जीवन में ये ऐसी चीज़ें समझते भी हैं पर कई बार गलती से छूट जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा फॉलो किए और अपने आप को हर मौसम में एकदम हेल्दी रखिए। बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं और अब टाइम है आपसे इजाज़त देने का। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करेंगे आपसे एक हेल्थ एक्सपर्ट के साथ एक नए विषय पर। अभी फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. Feel good, feel light.

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा,
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को एक लंबे समय से मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ जो न सिर्फ खुद सशक्त हैं, लेकिन सशक्तिकरण की एक खूबसूरत सी जर्नी पर वो चल रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जो खुद भी सशक्त हैं और दूसरों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही हैं। आज की इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं गीतांजलि चौधरी। गीतांजलि चौधरी जी फाउंडर हैं लीडिंग लेडीज की, यानी बहुत सारी महिलाओं को लीड कर रही हैं और बहुत सारी महिलाओं को राह दिखा रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब नारनौल बेलास की, और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। और इसके लिए हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। गीतांजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू मैम।
1: गीतांजलि जी, सबसे पहला सवाल इस कार्यक्रम का हमेशा एक ही होता है, महिला सशक्तिकरण के मायने आपके लिए क्या हैं? सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप महिला सशक्तिकरण को कैसे देखती हैं?
2: मैं बताती हूँ, हर लेडी को उसकी लाइफ से जुड़े सशक्तिकरण का मतलब है, हर लेडी को उसकी लाइफ से जुड़े हर डिसीजन लेने की शक्ति, उसकी सेल्फ इंडिपेंडेंट और उसका समान अधिकार, ये उसे मिलने चाहिए। और उसके साथ साथ वो अंदर से स्ट्रांग होनी चाहिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या कहेगा, इस पर अगर वो ध्यान देती है तो वो स्ट्रांग कभी नहीं बन पाएगी। पहले होता था कि महिलाओं को घर तक सीमित रखा जाता था, मतलब ऐसे माना जाता था कि औरत सिर्फ घर की शोभा है। वो ठीक है, उसने घर संभाला, उसने घर को मजबूत बनाया, लेकिन अपनी इच्छाओं को दबाया। आज जरूरत है एक होम मेकर बनने के साथ साथ एक सोशल मेकर, सेल्फ मेकर बनने की भी, क्योंकि औरत अगर अंदर से मजबूत होगी तो घर, परिवार, समाज और ये देश भी मजबूत होगा।
1: वाकई दोस्तों, सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूं तो महिलाओं के लिए आज भी सशक्तिकरण शायद फ्रीडम के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जरूरत यह है कि महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन आज भी समाज में एक ऐसी कंडीशन है कि महिलाएं कुछ करना चाहती हैं तो उसके लिए उन्हें परमिशन लेने की जरूरत है। यानी आपको न सिर्फ अपनी ही इच्छा का काम करने के लिए दूसरों से पूछने की जरूरत है, लेकिन आपको दूसरों से वैलिडेट करवाने की जरूरत है। और इमेजिन करिए, ये कैसी विडंबना है कि जो महिला सृष्टि की रचना कर रही है उसी महिला को बाकी सारी चीजें करने के लिए सिर्फ दूसरों के परमिशन की जरूरत है। सो इसीलिए सशक्तिकरण की बहुत जरूरत है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

भैया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: है खाता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गीतांजलि चौधरी जी से, जो फाउंडर हैं लीडिंग लेडीज की और सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब नारनौल बेलास की। आने वाले समय में ये अपने क्लब को लीड करती हुई प्रेसिडेंट होने वाली हैं और आज हम इनसे बड़ा अहम सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूँ। गीतांजलि जी, मुझे बताइए, जमाने भर से महिलाओं के लिए ना बड़े सारे चैलेंजेस आए हैं
1: जी।
0: सो अगर मैं आज की बात करूँ, करंट सिनेरियो की बात करूँ, सो क्या कहेंगी, किस तरीके के चैलेंजेस महिलाओं के
1: लिए चैलेंजेस हैं? घर और नौकरी, यानी जो घर और ऑफिस दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। घर में बच्चों का, माता पिता का, इन लॉज का ध्यान रखना और ऑफिस में भी अपना बेस्ट देना, ये उसके लिए बहुत चैलेंजिंग है। और जैसा कि सब जानते हैं, संसार पुरुष प्रधान है, उसके बीच अपने वर्चस्व को बनाए रखना और अपने आप को सेफ रखना, ये आज हर लेडी की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके साथ साथ अपने आप को खुश रखना भी हर लेडी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को अगर वो पार करती है तो वो खुद भी खुश रहेगी और संसार को भी खुशियां दे सकेगी।
0: बिल्कुल सही कहा गीतांजलि जी ने, वाकई जरूरत ये है कि भाई ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाए। अब एक जमाना था कि महिलाएं हमेशा घर पर रहती थी, थोड़ा सा जमाना बदला, थोड़ी सी एम्पावरमेंट आई, थोड़ा सा सशक्तिकरण आया और इस सशक्तिकरण के आने से महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा और बढ़ाया। अब परेशानी ये है कि उन्होंने जिम्मेदारी तो बढ़ाई, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखी और अब वो घर में एक साझेदारी देने लगी, जहां वो भी घर से बाहर निकलकर ना सिर्फ नौकरी कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही हैं, लेकिन वो घर पर पैसा भी लेकर आ रही हैं, कंट्रीब्यूटर भी बन गई हैं। लेकिन परेशानी ये है कि उनकी जिम्मेदारी अब डबल हो गई है। एक तरफ तो वो पुरुषों के बराबर बाहर जाकर काम करके आ रही हैं, लेकिन घर आकर जो उनकी जिम्मेदारी पहले डिफाइन की गई थी वो आज भी बरकरार है। और कहीं ना कहीं इस कड़ी में एक बैलेंस बिगड़ रहा है, या तो आप ये दोनों चीजें बैलेंस करते हुए अपनी सेहत को, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करते रहिए और इन चीजों को बैलेंस करते हुए जिए, और अगर आप ये नहीं करती हैं तो बहुत सारे आपके सपने कहीं ना कहीं मर जाते हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, करेंगे इसके बारे में बात। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन।

0: एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गीतांजलि चौधरी जी से। गीतांजलि चौधरी जी फाउंडर हैं लीडिंग लेडीज की। ढेर सारी महिलाएं इस पूरे के पूरे कहना चाहिए लीडिंग लेडीज के साथ जुड़ी हुई हैं, और न सिर्फ उन्हें सशक्तिकरण मिल रहा है लेकिन उन सारी महिलाओं को कहना चाहिए एक वे आउट भी मिल रहा है। लीडिंग लेडीज में महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जाता है। सो मुझे ये बताइए गीतांजलि जी, आप एक होममेकर थी, फिर आप सोशल वर्क में आई, लीडिंग लेडीज जैसा कहना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन आप चला रही हैं जहां महिलाओं को आप सशक्तिकरण देने की कोशिश कर रही हैं, घर से बाहर निकलकर दो चार फेस्टिवल साथ मिलाना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ काम करना और फिर धीरे धीरे समाज के काम भी करना। मुझे बताइए ये बैलेंस करना बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, अगर 24/7 घर पर गीतांजलि चौधरी जी मिल रही हैं और सडनली फिर वो वहां से गायब हो जाती हैं, तो लोगों को लगा होगा, परिवार को लगा होगा कि भाई अब इसका पूरा समय तो बाहर निकल रहा है, औरों के काम में निकल रहा है, तो कैसे बनाया ये बैलेंस, कैसे मैनेज किया आपने?
1: ये बैलेंस मैं सच बता रही हूँ, बड़ा प्राउडली सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो बैलेंस बना है ना, ये मुझे मेरे परिवार के प्यार से बना है। बिल्कुल, जैसे जब माता पिता, सास ससुर, पति, बच्चे, ये लोग देखते हैं कि जैसे बहू है, पत्नी है, माँ है, कुछ अच्छा करना चाह रही है, वो अपने लिए कुछ करना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना चाहती है, और उसमें ये करने की काबिलियत है, जब वो देखते हैं ना कि ऐसी ताकत है उसमें, तो वो उनको अलाउ करते हैं, तो वो सबसे बड़ी ताकत तो वो परिवार है जो उसको ये करने की के लिए अलाउ भी कर रहे हैं और उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये 100% सच है कि मेरे हस्बैंड, बच्चे और मेरे इन-लॉज ने कभी भी मुझे सोशल काम करने और अपने मन का काम करने से कभी नहीं रोका, उल्टा हमेशा मुझे एंकरेज किया कि तुम कर सकती हो, तुम खुश हो तो जरूर करो। एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन की तरह अगर परिवार का साथ मिलता है तो ये तालमेल बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो एक फैमिली सपोर्ट जो बैकबोन की तरह हमारे साथ है, वो मेरे साथ रहा, इस वजह से मैं घर भी और बाहर भी दोनों जगह को मैनेज कर पाती हूँ।
0: वाकई दोस्तों, आई थिंक ये हर महिला का सपना होगा कि जब वो घर पर आए तो उसे कभी भी ये ना सुनने को मिले कि तुम बाहर थी और तुम्हारे काम हम कर रहे थे, या फिर ये सुनने को ना मिले कि तुम्हें तो घर के कामों की जिम्मेदारी ही नहीं है, कहीं ना कहीं हमें ही ये जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। सो इस गिल्ट में ना महिला ना तो अपने सपनों को पूरा कर पाती है, ना प्रोफेशनली स्ट्रांग हो पाती है, और ना ही अपने वर्क प्लेस पर उस कॉन्फिडेंस से काम कर पाती है। अब महिला दो परेशानियों में आ जाती है, या तो रिबेल करे कि भाई घर छोड़ दीजिए और आप जाकर अपना करियर बनाइए, और नहीं तो आप कॉम्प्रोमाइज करिए, और कॉम्प्रोमाइज की जो लाइफ होती है ना, वो बड़ी दुख भरी होती है। सो दोस्तों, ये जरूरत है हमारे समाज की, कहीं ना कहीं हमारे समाज को जरूरत है ऐसे परिवारों की, ऐसे सपोर्ट सिस्टम की जो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे। फिलहाल सुना रही हूँ आपको एक प्यारा सा गाना, कहीं मत जाना, जुड़े रहना रेडियो वनब्रजना 107.8 FM के साथ। वापस लौट कर आऊंगी इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फील गुड, फील लव।

बचा के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, वो मेरी लॉटरी।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। के आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं गीतांजलि चौधरी जी से। गीतांजलि चौधरी जी जो फाउंडर हैं लीडिंग लेडीज की और सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब नारनौल बेलास की। गीतांजलि जी, अगला सवाल, हमने ना बहुत सारी तरक्की की है और अगर आप देखें तो महिलाएं आज शायद हर प्रोफेशन में हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक आप जहां भी सोचें, हर जगह महिलाएं अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं। लेकिन अगर मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करूं या फिर कहना चाहिए जेंडर के साथ सामंजस्य बनाने की बात करूं, तो सोसाइटी में आज भी वो नहीं है। आज भी महिलाएं दहेज के लिए जलाई जा रही हैं, प्रताड़ित की जा रही हैं। आज भी महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीनी पड़ रही है। आज भी महिलाओं को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी घर और घर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि तुम्हारी जॉब या तुम्हारा करियर। सो मुझे बताइए कि कैसे बैलेंस आए जेंडर इक्वालिटी में, सोसाइटी में ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए।
1: ये बैलेंस तभी क्रिएट हो सकता है मैम, जब ये जो स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग होती है ना वो खत्म हो, जो ये रूढ़िवादिता है, जो हम पुरानी सोच जिसे कहते हैं, वो अगर बदलती है तो समाज काफी हद तक बदल जाएगा। जैसे पुरानी सोच में पहले कहते थे कि महिलाओं को केवल घर संभालना चाहिए, पुरुषों को बाहर काम करना चाहिए, लेकिन अगर किसी महिला में काबिलियत है तो बाहर काम कर अपना परिवार अगर वो चला सकती है तो वो क्यों नहीं करे। कुछ लोग महिलाओं की सोच को छोटा समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें इस संसार में लाने वाली एक औरत ही है। समाज और एक औरत की हिम्मत, धैर्य और उसके त्याग को कम आंकता है। और एक चुनौती है, और वो है सबसे बड़ी चुनौती जो एक लड़की के सामने आती है, वो है बॉडी शेमिंग, जिसके चलते आजकल की लड़कियों ने सर्जरी शुरू करवा दी है पतला सुंदर गोरा दिखने के लिए। क्योंकि मोटी काली लड़कियां, जो ये एक बहुत नेचुरल चीज है, उसने अपना अपने लिए वो चूज नहीं किया है कि वो मोटी हो, कि वो काली हो, कि वो नाटी हो। तो ये जो चीजें हैं ये एक प्राकृतिक है, भगवान ने उन्हें बनाया है। तो इन सब से परे अगर उसके लिए सोचा जाए, इस सबसे परे अगर समाज उसकी अच्छाइयों को देखे, ना कि उसकी सूरत को ना देखे, उसकी सीरत को देखे, तो समाज, घर, परिवार और ये देश, उनकी तरक्की से कोई उन्हें नहीं रोक सकता। ये देश तरक्की करेगा अगर उसकी अच्छाई तो है ही, एक महिला की अच्छाई के साथ साथ उसकी बॉडी शेमिंग ना की जाए, उसकी उसकी जो थोड़ी कमियां हैं उसके साथ उसको अगर अपनाया जाए, ये संसार, ये देश, ये समाज उसको अपनाए, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
0: बाकी दोस्तों, इस अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो जरूरी ये है कि लेट अस बी मोर कंपैशनेट। कोशिश करें ना कि हम महिलाओं को एक ह्यूमन बीइंग भी समझें। कई बार तो मैंने देखा है कि ऑटोमेटिकली एक माइंडसेट है सोसाइटी का जहाँ महिलाओं को ना शायद एक केयर गिवर समझा जाता है, जैसे इनकी ना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना उन्हें अप्रिसिएशन की जरूरत है। वो दिन रात खाना बनाती हैं, बट आप उसे अप्रिशिएट भी मत करिए, लेकिन जिस दिन खराब बनेगा उस दिन आप उसे क्रिटिसाइज जरूर कर दीजिए। और उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो तो उनकी जिम्मेदारी है, ये तो बाय डिफॉल्ट चिप में लगकर आया है कि आपको ये काम करने हैं। सो कहीं ना महिलाओं को एक ऑटो मोड पे डाला हुआ है जहां पर कि उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स या उनकी भी जिंदगी है, इसकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर एक महिला ऑफिस में कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो जाती है और घर पर काम नहीं पूरा हो पाता है, तो आप खुद ही सोचिए कि घर पर क्या बवाल होगा। सो कहीं ना कहीं डरी हुई महिला या तो ऑफिस से कोशिश करेगी कि भाई वो ऐप के जरिए खाना भिजवा दे, या बच्चों को कॉल करेगी या मैनेज करेगी, और फिर वो गिल्ट के साथ वापस आएगी। रादर देन, मुझे ऐसा लगता है कि होना ये चाहिए कि अगर वो काम में बिजी है तो बाकी सभी लोग ये सोच कर कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, खुद मैनेज करें, जो कि बहुत आसान होता है। आजकल छोटा सा बच्चा भी ये जानता है कि अगर उसे कुछ खाना है, फॉर दैट मैटर पिज्जा, उसे ऑर्डर करना आता है। सो ये सारी चीजें तभी होंगी ना जब हम उसे एक इक्वल जेंडर समझेंगे और उसे एक ऑटोमेटिक मशीन नहीं समझेंगे कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ महिला पर है। और आई थिंक नॉट इवन महिला के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि राइट फ्रॉम चाइल्डहुड हम फीमेल जेंडर पर एक अलग ही प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं। इसे बदलने की जरूरत है। कैसे बदला जा सकता है, आप भी मेरे को सजेशंस भेज सकते हैं। उसके लिए आप कुछ भी नहीं करिए, बस मुझे अपने व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए 8010781078 पर। चलिए भाई, वक्त हो गया एक और प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, यानी आपके लिए एक प्यारा सा गाना, और आप कहीं मत जाना, जुड़े रहना रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लव।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं गीतांजलि चौधरी जी से। गीतांजलि जी जो कि फाउंडर है लीडिंग लेडीज की और सेक्रेटरी है रोटरी क्लब नारनौल बेलास की। गीतांजलि जी, अब अगला सवाल महिलाओं के लिए। हम पूरे टाइम अभी तक यही बात कर रहे थे। देखिए वैसे तो महिलाओं को करियर अपनाने के लिए कोई नहीं रोकता है, आज के जमाने में थोड़ा लिबरेशन फिर भी आ गया है, लेकिन दो ऐसे असमंजस के समय आते हैं महिला की जिंदगी में जब उसे अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पहला जब उसकी शादी होती है,
2: बिल्कुल,
1: और दूसरा जब उसके परिवार बढ़ता है यानी बच्चा होता है
2: जी।
1: ये दो ऐसे जिंदगी के डिसीजंस हैं जहां पर कि अक्सर ये कहा जाता है अरे भाई शादी होकर तुम दूसरे शहर में जाने वाली हो, नौकरी करने की क्या जरूरत है, इसे छोड़ दो। तो कभी भी आज तक मैंने ये नहीं देखा है कि एक पति अपनी पत्नी की नौकरी के लिए प्लेस ऑफ वर्क बदल रहा है या जगह बदल रहा है, या उसका ख्याल रखते हुए कि भाई उसका भी एक अच्छा करियर है उसे मैनेज किया जाए या उसकी प्रायोरिटी रखी जाए।
2: बिल्कुल
1: वैसे ही जब एक बच्चा पैदा होता है घर में तो पूरा का पूरा परिवार बाय डिफॉल्ट ये सोच के रखता है कि अब अगर वो किसी भी करियर में है या किसी भी प्रोफेशन में है सो बच्चे का ख्याल रखना एक महिला का काम है। और उसकी मैटरनिटी लीव अगर मिलती है तो बहुत खुशी की बात है, और उसके बाद शायद उसे ये कंपेल किया जाता है कि बच्चे का ख्याल रखने के लिए वो अपनी नौकरी को भी छोड़ दें। और ऐसे में हमेशा ज्यादा जिम्मेदारी जो है घर की वो हमेशा महिला पर आती है। इसको क्या ठीक किया जा सकता है, इसको बैलेंस बनाया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर अच्छे प्रॉमिसिंग करियर वाली महिलाएं भी सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज करके रह जाती हैं क्योंकि उन्हें घर की जिम्मेदारी निभानी होती है।
2: नहीं मैम, जैसे ये चीज जो आप कह रहे हैं वो एकदम सही है कि शादी के बाद, एक तो शादी के बाद और जब वो माँ बनती है, माँ बनती है जब, तो सबसे ज्यादा मैं मानती हूँ इस चीज को कि उस वक्त जो बच्चा है उसको सबसे ज्यादा जरूरत अपनी माँ की होती है, क्योंकि जो माँ की ममता है उसके अंदर होती है वो दुनिया में कोई और उस बच्चे को नहीं दे सकता। ये सबसे मेन है और ये जरूरी है उसको संभालना। लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी प्रायोरिटीज तय कर सकती है, अपना एक बना सकती है हिसाब किताब कि उसको काम कैसे करना है। जैसे ऑफिस का काम घर पर जरूरी नहीं है कि वो करे, अपना ऑफिस का काम है ऑफिस में खत्म करो, वही वही आदमी के लिए है, वही औरत के लिए है। और काम के दौरान जैसे मान लो हम काम और यही चीज है हमारा बाहर, अगर हम ऑफिस में हैं हम काम कर रहे हैं लेकिन अगर हमें कोई टेंशन है तो हमें अपने उस काम में नहीं दिखानी चाहिए, तो हम दोनों तरफ बैलेंस कर पाएंगे, हम घर को भी ध्यान रख पाएंगे और हम ऑफिस में भी अच्छा काम कर पाएंगे। और जैसे कि वी कांट अवेलेबल फॉर एवरीबडी टू एवरीवेयर, मतलब जरूरी नहीं है कि हम, जरूरी नहीं कि हमें हर जगह होना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार हमें काम करना है और अपनी जरूरत के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। और जरूरत पड़ने पर बड़े ही सॉफ्टली से जो हम नहीं कर सकते तो हम मना कर दें कि नहीं अब हम नहीं कर सकते हैं, हमें इतना ही करना है। अपने लिए, घर के लिए और एक हेल्पर रख सकते हैं, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं जिससे कि हमें भी परेशानी ना हो और हमारे घर वालों को भी परेशानी ना हो। अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इवन फोन को भी हटा दो, थोड़ा समय ऐसा बिताओ जिससे हमें आपस में खुशी मिल सके। अपने हस्बैंड से अपनी हर प्रॉब्लम को शेयर करो, हर बात को शेयर करो, वो काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि बल्कि हम सोचते हैं कि नहीं उनको नहीं बताएंगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी मुसीबत में हैं या कोई बात आपको परेशान कर रही है या आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं दोनों लाइफ में, तो हस्बैंड बहुत ही अच्छे सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे क्या होगा, हम बहुत ही एनर्जेटिक महसूस होता है। और अच्छे दोस्त बनाओ जो हमेशा आपके साथ खड़े हों, हमेशा आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें और आपकी हर अच्छी चीज में आपका साथ दें। और अगर हम कहीं गलत भी हैं तो वो हमें समझाएं कि हम गलत हैं। और जब बच्चे छोटे हैं तो एक ऑप्शन हो सकता है, अगर ये ऑप्शन हमें मिलता है कि हम वर्क फ्रॉम होम करें तो हमें वो करना चाहिए ताकि हम जॉब छोड़ने की बजाय हम काम घर से कर सके, तो वो दोनों ही लाइफ इजीली बैलेंस हो जाएगी, जहां तक मेरा मानना है।
1: वाकई गीतांजलि जी ने बड़े सारे टिप्स दिए हैं कि भाई आप कैसे इन दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं और इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज कर सकती हैं। बट मैं तो ये कहूंगी कि इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट न सिर्फ आपके जीवन साथी का होता है लेकिन आपके परिवार का होता है। तो अगर परिवार ये कहता है कि भाई तुम्हारा करियर उतना ही जरूरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मनी, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जिंदगी का ये है कि अक्सर महिलाओं को तब तक बहुत ज्यादा अच्छी या रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेशन नहीं दी जाती है, पोस्ट नहीं दी जाती है जब वो इस फेज में होती है, या तो उनकी शादी हो रही होती है या फिर उनका कहना चाहिए कि मटर्निटी का टाइम होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि न जाने शादी के बाद ये महिला नौकरी छोड़कर न चली जाए चेंज ऑफ प्लेस के कारण, और कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसलिए भी महिलाओं को प्रमोशन नहीं देती हैं ये सोचकर कि अब ये महिला मेटर्निटी लीव पर जाएगी, यानी हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, यानी इसको हमने काम सिखाया और उसके बाद कोई और आएगा। सो ये सारी चीजें जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर होती हैं। सो ऐसे में महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, अपनी नौकरियां छोड़नी ना पड़े, या कॉम्प्रोमाइज करके वो जब अपनी मेटर्निटी लीव से वापस आती हैं तो उन्हें कई बार लगता है कि 3 साल का गैप आ गया है, जो मेरे साथ के कॉलीग्स थे वो आगे पहुंच गए हैं, वो प्रमोट हो चुके हैं, मैं आज भी वहीं पर हूं। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि महिलाओं से ये कहा जाता है फॉर पेटी मनी, अरे भाई तुमसे ज्यादा पैसा तो तुम्हारे पति और पूरा परिवार कमा रहा है सो तुम जा किस ले रही हो, तुम घर पर ही रहकर बच्चे का ख्याल रखो। सो ये सारी चीजें हर घर में होती हैं, इतना कॉमन है कि आई एम श्योर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे होंगे। बट जरूरत ये है कि उस महिला की आइडेंटिटी है, वो पैसा उसकी अपनी पहचान है, उसका अपना अस्तित्व है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द मनी उसे ये मौका मिलना चाहिए कि वो वापस अपनी उस डिग्निटी को कमा पाए, और इसके लिए मुझे लगता है पूरा परिवार और पूरा समाज भी उसकी सपोर्ट में रहना चाहिए। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आज हमने ढेर सारी बातें की गीतांजलि चौधरी जी से, जो फाउंडर हैं लीडिंग लेडीज की और सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब नारनौल बेलास की। गीतांजलि जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सभी लिसनर्स के साथ आपने बातचीत की और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी भी दी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये मौका मिला।
0: गीतांजलि जी, जाते जाते आप हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी?
1: मैं ये सबके लिए कहना चाहूंगी, उसमें मैं आप सब हैं, कि जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो सिर्फ बात करने के लिए ना रहे, वो होनी चाहिए। मेन और वुमेन दोनों ही इस संसार को चलाने के लिए जरूरी हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। दूसरा है एजुकेशन, बेटा हो या बेटी दोनों को जरूर पढ़ाएं, शिक्षित जनता ही देश का भविष्य तय करती है। तीसरा है सेफ एनवायरनमेंट, हर माँ बाप को अपने बेटा बेटी दोनों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि तभी ये समाज सेफ हो सकता है। मजबूत कानून व्यवस्था बने, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये देश में चलती रहेंगी ना, ये देश समाज कभी भी तरक्की की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा। बस लास्ट में एक शेर छोटा सा कहना चाहूंगी।
0: जरूर।
1: तुम मान दो तो मान में सम्मान देती है, तुम मान दो तो मान में सम्मान देती है, जन्म क्या पहचान क्या वो जान देती है, ना भूल कर ये भूलना उसे आंकते हो तो, ना भूल कर ये भूलना उसे आंकते हो तो, जीतेगी वो हर हाल में जब ठान लेती है।
0: भाई बहुत ही खूबसूरत सा संदेश, और वाकई आई एम श्योर कि जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं वो मोटिवेटेड हो गई होंगी, और जितने भी पुरुष सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ गया है कि उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है इस समाज में, इस सोसाइटी में। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी, जो आज आप हमारे साथ कनेक्ट हुई।
1: जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना से टाटा बाय बाय, टेक केयर, फील गुड फील लव।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, A Step Towards Humanity। आप सभी को पता है ये एक खास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। ना सिर्फ जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आप मोटिवेट होंगे, लेकिन आपको पता लगेगा कि दुनिया के कोने कोने में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आज भी मानवता को जिंदा रखा हुआ है। आज के ऐसे युग में जहाँ हम कहते हैं कि लोग अपनी इंसानियत भूलते जा रहे हैं, वहाँ इस मानवता को जिंदा रखते हुए समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और साथ के साथ इंडिविजुअल्स के लिए ढेर सारे काम करने वाले ऐसे लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं, जाइए गूगल पर सर्च कर लीजिए इस प्रोग्राम के बाद जल प्रहरी। आप ही देख रहे हैं कि आज के जमाने में पानी कितना ज्यादा स्केयरसिटी में आ गया है, मतलब अपने आप में एक ऐसा रिसोर्स हो गया है जिसको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तो कहलाते भी हैं जल प्रहरी। तो आज जल प्रहरी के जो सीईओ हैं अनिल सागर जी हमारे साथ हैं और करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, मैं रेडियो के सभी श्रोताओं का भी स्वागत करता हूँ, और आप खुद बहुत इंस्पायरिंग हैं, बहुत सारे काम अच्छे काम कर रही हैं, और मुझे लगता है कि हम सब मिल करके थोड़ा थोड़ा भी अच्छा करें, और अच्छा कर पाए ना कर पाए कम से कम बुरा ना होने दें ये भी कोशिश कर लें तो बहुत बड़ी बात है।
1: वाकई बहुत खूबसूरत बात कही अनिल जी आपने। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, जल प्रहरी, समझ में आता है कि आप प्रहरी बन गए हैं। वैसे तो हमारे अगर देखा जाए तो थल सेना, जल सेना और साथ के साथ हमारी वायु सेना अलग अलग किस्म के प्रहरी बन रहे हैं, बट सही मायने में तो जल के प्रहरी बनना भी जरूरी हो गया है। तो मुझे बताइए इसकी शुरुआत कब हुई, कैसी और इसके पीछे की क्या कहानी है।
2: देखिये मैं एक प्रोफेशनल हूँ, और एक दिन हम लोग अपने क्लब में बैठे हुए थे, हमने देखा कि बहुत सारे लोग पानी पी करके छोड़ देते हैं आधा गिलास। हमारी सोसाइटी में ना एक ऐसा माना जाता है कि अगर फूड को प्लेट में छोड़ देंगे, पानी को या कोक को या कोई भी ड्रिंक अगर हम थोड़ा छोड़ देंगे तो इट मींस दैट वी आर रिच, वी आर यू नो इन अ डिफरेंट स्वैग। तो वो स्वैग नहीं है। हमने जब वो देखा तो हमने तीन गिलास को मिलाया और वो पूरा एक गिलास पानी बन गया। सो वी थॉट यार ये पानी कितना वेस्ट कर रहे हैं लोग। अच्छा ऐसा नहीं कि वो डेलिबरेटली जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में भी हो सकता है कर रहे हो। तो हमें लगा कि इस पे कुछ काम किया जाए। हमने ये बात तब के जो जल संसाधन मंत्री थे उनको बताई और उनसे कहा कि हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और बोला कि ये काम तो हमें करना चाहिए, आप करना चाहते वेरी गुड। तो खैर हमने संसाधन सेक्रेटरी जो थे उनसे मुलाकात की, उनको बताया तो वो भी बहुत खुश हुए, बोला वेरी गुड आप लोग करिए। हमने लगभग मैं और हमारी टीम, हमारे कुछ मित्र, हमने पूरे देश में अलग अलग जा करके लोगों को ढूंढा, देखा वो कैसे काम करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगी, हम जब राजस्थान के एक गांव में गए हमें पता चला, हमें लोगों ने बताया कि एक लेडी का की शादी हुई और शादी के जब वो आए तो पता चला कि वहाँ पानी नहीं है, और थोड़े दिन बाद उसे पता चला कि उसका जो हस्बैंड है वो एक डकैत है, क्राइम करता है, और वो घर से चला गया। अब उसके पास कोई साधन नहीं था, उसने क्या किया कि अपने गांव में जो पानी का सोर्स था, पानी की जो बावड़ी थी, तालाब था, उसको जिंदा किया और वहां पर खेती की। आठ दस साल बाद जब उसका हस्बैंड आया और उसने देखा कि उसके गांव में खेती हो रही है, जहां चंबल की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर कभी कुछ भी नहीं होता था, डकैती क्राइम ही एक साधन था, तो उसने तय किया कि नहीं यार अब तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। एंड ही क्विट डकैती। आज की तारीख में वो पूरा इलाका बहुत ही अच्छे से ग्रीन है, वहां पर खेती हो रही है, वहां पर लोग हैप्पी हैं। वो खुद जो डकैत था उसको भी गवर्नमेंट ने जो भी लॉस थे उसमें पनिशमेंट के बाद कुछ छूट दे दी, और आज वो दे आर वेरी हैप्पी। तो ऐसे लोग हैं जो हमने ढूंढते, और उनको हमने जो नाम दिया क्योंकि वो पानी की रक्षा कर रहे थे, तो जो रक्षा करता है वो प्रहरी है और वो पानी की रक्षा कर रहे थे, तो इसलिए उनको हमने हम सब ने एक नाम दिया जल प्रहरी, और इस तरह से शुरुआत हो गई।
1: वाओ, सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी। और इनफैक्ट जल प्रहरी तो हम सबको बनने की जरूरत है। आज के जमाने में अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि पानी एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, और हम कहते रहते हैं कि 3/4 हमारा जो अर्थ है ये पानी है और हमें पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि चाहे अंडरग्राउंड वाटर की बात करूं या फिर मैं रिवर्स और पॉन्ड्स की बात करूं, पानी हर जगह काफी कम है, तो इसे बचाना बहुत जरूरी है। फिलहाल एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे अनिल जी से करेंगे ढेर सारी बात। टिल देन फील गुड फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि CEO हैं जल प्रहरी। जी हाँ, जल प्रहरी एक बहुत ही खास इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में पानी को बचाने के अलग अलग तरीके कोशिश की जाती है कि लोगों तक पहुंचाया जाए। अनिल जी, अब अगला सवाल, और वो सवाल बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि पानी को कंजर्व करना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसकी तरफ बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये काम इंडिविजुअल्स का नहीं है, जबकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद इंडिविजुअल अप्रोच से ही हम पानी को सही ढंग से बचा पाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन की कोशिश करते हैं?
1: बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या हुआ कि जब 2019 में हम पहला जल प्रहरी किया तो बहुत सारे लोगों का हौसला जो था वो बहुत बढ़ गया, उनके भीतर बड़ा उत्साह था, बहुत सारी जगह उनकी न्यूज पब्लिसिटी हुई। फिर कोरोना आ गया। अब कोरोना के टाइम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सभी को टारगेट्स दिए हुए, सभी डैम्स को, कि आपको ये अमृत सरोवर बनाने हैं, ये इनको रिवाइव करना है। अब ऐसे हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमें फोन किया कि आप लोगों ने जो जल प्रहरी किया था तो हमें कोई ऐसा बंदा बताइए ना, कि क्योंकि तब कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं थे, लेबर घरों में थी, तो प्रोसेस नहीं काम कर रहा था, गवर्नमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था। एंड दैट IAS ऑफिसर वर वेरी स्मार्ट, ही सेड कि वो काम हम करना चाहते हैं, हम वाटर अथॉरिटी को रिजुविनेट करवाना चाहते हैं। तो हमने एक दो जो जल प्रहरी थे उनका कॉन्टैक्ट दिया और वो उन्होंने एक वाटर बॉडी को रिजुविनेट करवाया। आपको जान करके अच्छा लगेगा, हमारे सभी श्रोताओं को ये बात सुननी चाहिए बड़े ध्यान से। क्या हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो प्रोजेक्ट करीबन 30-35 लाख रुपए का बताया गया। जब जल प्रहरी को बुलाया गया और उससे पूछा कि तुम इस तालाब को बना सकते हो, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बना सकते। बोले कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने बताया कि आप हम 50 लोग हैं, लेकिन अभी करोना में तो 7-8 लोग आ पाएंगे, और आप यहाँ पर हमारे लिए खाने का और रहने का अरेंजमेंट करवा दो, और 20 लीटर तेल लगेगा JCB मशीन से, इतने दिन JCB मशीन काम करेगी, और कुल मिला के करीबन 30-35 हजार रुपए का खर्च आएगा। तो जब जूनियर ऑफिसर ने ये सब सुना और उसने सीनियर ऑफिसर को बताया, तो सीनियर ऑफिसर ने हाथ करके कहा कि या तो ये लोग फ्रॉड हैं या फिर ये वास्तव में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो उसने कहा ठीक है, कोई नहीं, एक रिस्क लेते हैं। एंड वो रिस्क लिया उसने, और उस रिस्क को लेने के बाद वो वाटर बॉडी 7 डे में वो वाटर बॉडी तैयार हो गई, एंड ह्यूज वाटर बॉडी, अच्छी वाटर बॉडी वो तैयार हो गई। थोड़े दिन बाद जब बारिश आई तो उसमें पानी भी आ गया। जब पानी आ गया तो जो सीनियर ऑफिसर था वो उसको देखने गया, उसने देखा और जो जूनियर ऑफिसर्स ने बताया कि ये कुल 37 हजार रुपए में तैयार हुई है, तो सब ने उनके लिए क्लैपिंग की। सो दीज टाइप ऑफ स्टोरीज आ रहे हैं, ऐसे ये लोग पानी की रक्षा करते हैं। या आप यकीन मानिए, हम कोई भी क्या बैंक में बिना पैसा रख करके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं? भावना जी, आप कर सकती हैं?
0: वाकई नहीं।
1: तो हम पानी कैसे यूज कर रहे हैं? ये तो हमारा जो डिपॉजिट है हम उसे सिर्फ विड्रॉ कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, एक दिन सोच लीजिए कि अगर सुबह आपको पानी ना मिले तो क्या होगा। बस श्रोता से, हर लिसनर से मेरा एक ही सवाल है, ओनली वन क्वेश्चन इज देयर, मॉर्निंग में अगर आपको पानी नहीं मिला तो क्या होगा? इसलिए आज से विड्रॉल के साथ साथ डिपॉजिट भी शुरू कीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स ले लीजिए, उसी से बहुत भला हो सकता है। आप कर सकते हैं, आप करते हैं, आप जाने अनजाने पानी खराब भी करते हैं और जाने अनजाने आप पानी बचाते भी हैं। तो बस उसका प्रहरी बनना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा।
0: नहीं बड़ा, ये तो बहुत जरूरी है। हम सब जब तक पानी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक के लिए आप ये सोचिए कि अभी हम ये कहते हैं कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो रेड मार्क है, और पूरा दिल्ली NCR भी मैं अगर कहूँ तो इसी एरिया में आता है, लेकिन क्या हम इसको रिवाइव कर सकते हैं? एक्चुअली यस, पॉन्डमैन ने तो ये प्रूव किया हुआ है। भाई रमेश जी तो हमेशा ये कहते हैं कि आप मुझे एक जगह दीजिए और लाइए आपके पॉन्ड्स को, मैं वापस रिवाइव कर दूंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरत ये है कि क्या हम कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहे हैं और हम कॉन्शियसली सोसाइटी में जी रहे हैं, या आप एक मोबाइल फोन की जिंदगी जी रहे हैं, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, यानी सुना रही आपको एक प्यारा सा गाना, और वापस लौट कर यही आना। फील गुड, फील लव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि CEO है जल प्रहरी। अनिल जी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम ना एक मोबाइल फोन जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ जो भी मोबाइल में दिखता है, सोशल मीडिया पर दिखता है, हम उस पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम इससे बिल्कुल
1: अनजान है,
0: एक्चुअली अनजान है। सो एक बड़ा जरूरी सवाल, इतनी अवेयरनेस है, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, सरकार से लेकर इंडिविजुअल्स तक, हर कोई यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई पानी को बचाइए, कंजर्व करिए, लेकिन उसके बाद भी ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। आप लोग इस अवेयरनेस को कैसे पहुंचा रहे हैं जन जन तक?
1: देखिए, हम लोग जो है हर बार हम जब जलधरी का आयोजन करते हैं उससे पहले पूरे साल घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, और खासतौर से हम स्कूल और कॉलेज में जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर जब 2025 का हमने जल प्रहरी आयोजित किया तो हमारे साथ सिंगानिया यूनिवर्सिटी थी, सिंगानिया यूनिवर्सिटी के डीसी मनोज कुमार जी, उन्होंने हमें बच्चों से रूबरू कराया। हमारे साथ गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल था, उनकी जो प्रिंसिपल थी इत्तफाक से वो फरीदाबाद भी रहती हैं, उन्होंने हमें बच्चों से रूबरू कराया, और इन बच्चों को हम अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, जिन प्रहरियों से उनका इंटरेक्शन कराते हैं, ताकि उनको पता चले कि वो आखिर कर कैसे रहे हैं। आप यकीन मानिए, आपने देखा होगा एक ये जो आजकल शादियों के टाइम आपने बैंड वाले देखे होंगे, हमारा एक जल प्रहरी है वो बैंड का बैंड बाजा बजाता है। अब आप सोचिए वो कैसे जल प्रहरी हो सकता है, बट यू नो व्हाट ही डू, जिस दिन उसके पास काम नहीं होता है वो अपनी साइकिल लेता है, वो गरीब है, बहुत गरीब है, साइकिल लेता है और उसमें कुछ नल टोटियां प्लास्टिक की या लोहे की डाल लेता है और वो लेकर के निकल जाता है, जो पब्लिक जो टूटी लगी हुई है, नल लगे हुए हैं, वो उनमें से पानी टपकता है, वो उनको चेंज कर देता है। सो कैन यू बिलीव दिस, एक आदमी जो खुद बेचारा 200-500 रुपए कमाता है दिहाड़ी, और वो महीने में 1500 रुपए इस तरीके से खर्च करके जल प्रहरी बन।
0: वंडरफुल।
1: तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर भी आदमी ये चाह ले कि मुझे ये करना है, तो वो फिर किसी भी अवेयरनेस और किसी भी उसकी उसको जरूरत नहीं होती है। ये आयर, ये लाइट, ये मन में जो मानवता की राह पर जो चले का जो एक बीज हमारे अंदर रोपित होता है, हमने ये सब कहानियां सुनी हुई हैं दादाजी से, नानी से, और इवन मोबाइल फोन में भी अगर हम उसको भी देख के अलर्ट हो जाए, बिकॉज लोग कहते हैं हमारा शरीर जो है वो 2/3 वाटर है। आपने सुना होगा कि जब हमारे बॉडी में इन दिनों में खासतौर से जब हम ह्यूमिडिटी है तो वी फील अनकंफर्टेबल, किस लिए? बिकॉज पानी खो रहा है, जैसे ही हम पानी पी लेते हैं हम खो जाते हैं। तो जब हम बॉडी के पानी की रक्षा करते हैं, हम उसके प्रहरी हैं, तो हमें समाज के पानी की भी रक्षा करना चाहिए।
0: वाकई भाई, बड़ी खूबसूरत सी कहानी, और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे काम करने वालों को ना तो एक्नॉलेज कर रहे हैं, ना उन पर ध्यान दे रहे हैं, और पानी को बर्बाद कर रहे हैं ये सोचकर कि ये तो हमारे पास अबंडेंस में है। बहुत सारे लोग अक्सर ना जब कभी भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो लोग मुझे मैसेज करके ये कहते हैं कि अरे मैडम, आप हमेशा पानी पानी की बात करते हैं, बट क्या आपको पता नहीं है कि हमारे सागर में, या फिर कहना चाहिए हमारे ओशंस में इतना पानी है, जब कभी भी चाहेंगे इसे रिफाइन करेंगे, नमक भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। लेकिन ना लोगों को शायद आज भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो पोर्टेबल वाटर है, जिसे पिया जा सकता है, उस पानी में और हमारे समुद्र के पानी में बहुत डिफरेंस है, और इसीलिए हमें जरूरत है कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, या फिर जो पानी है जो हमें हमारे नदियों से मिल रहा है, जो हमें हमारे तालाबों से मिल रहा है, उस सारे पानी को हमें कंजर्व करने की जरूरत है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हर इंसान इसे रियलाइज करे। हम वीडियोस देखते हैं, हम अलग अलग किस्म के कहना चाहिए कि अवेयरनेस के प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। अब ये अप्लाई कैसे करना चाहिए, या हर इंसान या हर इंडिविजुअल को इसे कैसे अपनाना चाहिए, करेंगे इसके बारे में बात, छुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: Welcome back, friends. आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, A Step Towards Humanity. मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं जिनके साथ, वो है अनिल सागर जी और CEO है जल प्रहरी. जल प्रहरी एक बहुत खास संस्था है, न सिर्फ जल को बचाने के बारे में बात करती है लेकिन आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि इस जल को बचाइए क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही कल है. बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स हैं जो हम सुनते हैं लेकिन क्या हम इन पर अमल करते हैं? उसी दिन करते हैं ना जिस दिन पानी नहीं आता है. हमारे साथ अनिल जी हैं. अनिल जी मुझे बताइए, हर इंसान इंडिविजुअली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है?
1: देखिए, अभी आप बता रहे थे कि पानी की प्रॉब्लम जो कोस्टल एरियाज है, हमारे एक जलप्रहरी है अनिरुद्ध तोड़कर, अब वो महाराष्ट्र से है. ग्राउंड वाटर सोर्स पे उन्होंने बहुत सारा काम किया. जितने अब हम बड़े हैरान होते थे, सबसे ज्यादा जो केसेस थे वो महाराष्ट्र से हमारे पास आते थे जल प्रहरी के, सबसे ज्यादा नॉमिनेशन. हमने देखा कि महाराष्ट्र में वास्तव में बहुत पानी का दोहन हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, जबकि वहाँ पे इतना बड़ा एरिया है, कोस्टल एरिया है वहाँ पर, इसके बावजूद पानी की कमी है. आपको जान करके हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, इसके बावजूद वहाँ पानी की कमी है. बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, इसके बावजूद वहाँ पानी की कमी है. आखिर हमसे चूक कहाँ हो रही है? मुझे लगता है जो हमारे लिसनर्स हैं वो उनको याद आ जाएगा. आप अगर मान लीजिए दिल्ली में हैं या गुड़गांव में हैं या फरीदाबाद में हैं, तो आपने देखा होगा किसी गाँव के साथ में एक पॉन्ड था, तालाब था, वो तालाब लोगों ने कब्जा किया, उस पर कूड़ा डाल करके, मलबा डाल करके, और आपने उस पर कुछ नहीं किया. अब आप ये कह सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ जब सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है आज की तारीख में आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, आपका फोन, और मुझे लगता है आपके पास आरजे भावना है. आप आरजे भावना को बताएं कि आपके इलाके में ये वाटर बॉडी है और वो उसको ऐसे लोग किल कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट पे काम करने की जरूरत है और हमारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको काम करने देने का माहौल बनने की जरूरत है, उन लोगों को हेल्प करने की जरूरत है. और मुझे लगता है कि अब पहले से बहुत जागरूक तो हुए हैं लोग. मैंने अभी तक किसी भी गांव में जहां मैं गया हूं ये नहीं सुना कि किसी ने तालाब को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हों. और जो आदमी एफर्ट्स करता है वही जल प्रहरी होता है, और वो उसको सब पूरे गांव वाले लोग पागल कहते हैं, क्योंकि गांव वालों की नजर में तालाब जो है उसको कब्जा करके, उस पॉन्ड को फिल करके, उस पर मकान बनाने का या प्लॉट बेचने का साधन है. लेकिन नहीं, वो भूल रहे हैं, वो उनकी लाइफ लाइन है. आप सोचो अगर यमुना दिल्ली और NCR में ना हो तो पानी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. अगर हम इन छोटे छोटे पॉन्ड्स को रिचार्ज नहीं करेंगे तो पानी कैसे मिलेगा? तो इसलिए मुझे लगता है भावना कि पानी को लेकर के हमें बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है, और इसमें अपने एक एक छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं. अब पानी

0: को वेस्ट ना होने दें। मैं बताता हूँ, मेरी मेरी पत्नी तो इस अभियान से जुड़ी हुई है, उन्होंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो 3 बार चलाने के, 4 बार चलती है और 4 बार फ्रेश वाटर लेती है। उन्होंने उसको पानी को बचाने के लिए सेमी ऑटोमेटिक बना के काम करती है ताकि उसका पानी वेस्ट ना हो। तो मुझे लगता है एक होम मेकर ये कर सकती है कि वो पानी वेस्ट ना हो उसका ध्यान रख सकती है, बच्चे फ्लश करते टाइम ध्यान रख सकते हैं, अननेसेसरी पानी गिर रहा हो स्कूल कॉलेज में तो एटलीस्ट वो मैनेजमेंट को बोल करके उस टैप को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो या कहीं खुला हुआ है टैप तो उसको बंद कर सकते हैं। बहुत सारे साधन है, और अगर फिर भी ना मिले कोई साधन तो जल प्रहरी को संपर्क करें या फिर भावना आरजे भावना को संपर्क करें, हम बताएंगे।
1: वाकई बहुत सारे तरीके हैं पानी को बचाने के, और खास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट हमेशा एक ही रहती है कि भाई अगर आपके घर में आरओ है और उससे फिल्टर हुआ पानी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भाई आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं, उस पानी को जरूर बचाइए। जुड़े रहिए रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं अनिल जी के साथ, अनिल सागर जी जो कि सीईओ हैं जल प्रहरी। अनिल जी, अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सुनने में बहुत आसान लगता है कि चीजें बहुत आसानी से की जा सकती हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अगर मैं अपने भारत की बात करूं, तो आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं वाटर कंजर्वेशन के? हम पानी को क्यों नहीं सही तरीके से बचा पा रहे हैं? एक चैलेंज जो मुझे नजर आया है इतने सालों में, माइंडसेट। आप मुझे बताइए बाकी क्या चैलेंजेस हैं।
1: देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है लालच
0: जी।
1: दूसरा चैलेंज है ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही, क्योंकि सामने जिसके घर के सामने पॉन्ड है उसको ये लालच है कि मैं इसको खत्म करके और अपना प्लॉट बड़ा कर लूं। ब्यूरोक्रेसी की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब पॉन्ड बनाता है तो उसकी कैपेसिटी, उसके बहुत सारे जो टेक्निकल पहलू होते हैं वो उसे उतना अच्छे से नहीं पता होते हैं। तो कई बार वहां पर जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको काम करने से रोकता है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। कई बार फंड्स की प्रॉब्लम होती है। मजेदार बात ये है कि भावना, आप पानी का बिजनेस करें तो आपके पास फंड्स की कभी कोई कमी नहीं हो सकती, लेकिन आप पानी बचाने का काम करें तो आपको पैसे बहुत मुश्किल से मिलेंगे और फंड्स की बहुत क्राइसिस होती है। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ी जो बात आपने कही है, माइंडसेट। जब तक हम अब छोटी सी गाड़ी लेते हैं जो कि कुछ लाख की होती है, उसमें कोई स्क्रैच मार जाए तो हम डरने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो चीज हमारी जिंदगी छीन सकती है, वाटर, पानी, उनके लिए हम कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं अरे छोड़ो, खत्म हो गया, कोई 20 लीटर वाली दूसरी बॉटल मंगवा लेंगे, या 100 रुपए की ये ले लेंगे, या 50 रुपए की हम ये मंगवा लेंगे। बट मुझे लगता है नहीं, आप अगर पानी बचाने के एफर्ट्स शुरू करेंगे तो छोटे छोटे स्टेप्स शुरू करेंगे, आगे काम आएगा, बहुत काम आएगा।
0: और इसमें एक चीज आप जरूर जोड़ सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे कि बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है और लोग ये सोचते हैं कि ये इंडिविजुअली नहीं किया जा सकता, या इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, या फिर एक बहुत बड़ी अमाउंट लग जाएगी और हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो अकेले मेरे करने से क्या होगा, ये तो सरकार की या फिर प्रशासन का काम है। ये एक बहुत गलत सोच है। इंडिविजुअली आप अपने घर की यूनिट से शुरू करते हुए इंस्टीट्यूशंस तक, ऑफिसेस तक, जितना ज्यादा पानी बचा सकते हैं, और खास तौर पर वो जल जो आपको डायरेक्टली आसमान से मिलता है और जो कि सड़कों को फ्लड कर देता है, कहीं किसी शहर को वेनिस बना देता है, तो कहीं देखिए तो किसी किसी शहर को पूरी की पूरी तरीके से डुबो देता है। लेकिन इस पानी को अगर आप न सिर्फ जमीन में जाने दें तो
1: ये माँ की गोद में उतार दें।
0: एग्जैक्टली। तो ये

आपके अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा और आपकी वाटर बॉडीज को भी रिचार्ज करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके बारे में आप जरूर न सिर्फ नॉलेज ले सकते हैं और समय समय पर हम आपको हमारे प्रोग्राम्स में तो ये बताते ही रहते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव वेस्ट 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं अनिल सागर जी के साथ, जो कि CEO हैं जल प्रहरी। अनिल जी, वैसे तो आप अपने काम में काफी व्यस्त रहते होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका खास इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के बारे में जब लोग सुन रहे हैं तो न सिर्फ उन्हें अच्छा लग रहा है, आई एम डैम श्योर कि वो बहुत मोटिवेट भी हो रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आपके इस इनिशिएटिव के साथ क्या कोई जुड़ सकता है और क्या इसे रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आसपास पानी कैसे बचा सकता है, एक जल प्रहरी कैसे बन सकता है?
1: ठीक है, सबसे पहले तो बिल्कुल अपने सही का रिश्ता रहन एक बहुत ही सरल तरीका है। आपके घर के आसपास जहां भी आप एक ऐसा पिट बना सकते हैं घर के सामने, जहां आप अपनी छत से पानी को धरती माँ की गोद में उतार सकते हैं, वो करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये संभव नहीं, आपके इलाके में कोई भी बोरवेल है वो डेड है, तो आप उस पर भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इलाके में अगर कोई छोटा सा तालाब है और वो गंदा है, तो एक दिन आइए ना, एक दिन आउटिंग करते हैं, तालाब के साथ बातें करते हैं, तालाब को जिंदा करते हैं। यकीन मानिए, तालाब जिंदा होगा तो आप खुद मुस्कुराएंगे और देखेंगे कि बहुत अच्छा हो गया है। आपके इलाके में कोई नहर है, छोटी नदी है, उसमें कोई कचरा डालता है, आप उसे रोकिए, हाथ जोड़कर रोकिए। अगर नहीं मानता है तो आप उठा दीजिए वो कचरा। थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन एक बार दो बार करने के बाद लोग वहां पर डालना बंद कर देंगे। मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आप पानी को बचाने को लेकर के अपने सोशल मीडिया पर भी बहुत बात कर सकते हैं। आप कहीं पानी वेस्ट होते हुए देखते हैं तो आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, और आपको जहां भी लगता है आप जल प्रहरी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी डाल सकते हैं। हम जरूर, हमारे जल प्रहरी इन सब कामों में बहुत तेजी से सक्रिय हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। हमारे लोग काम करते हैं और सरकार के लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। पहले से बहुत चीजें बदली हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि काम करने वाले 1,500-1,00,000 होंगे, लेकिन जो खराब कर रहे हैं, यूं कहें कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, वो करोड़ों हैं। तो वो करोड़ों हाथ अगर जुड़ जाएंगे खराब ना होने, तो भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मुझे लगता है कि हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बस सिर्फ खुद से ईमानदार होने की जरूरत है, पानी के लिए, पर्यावरण के लिए, क्योंकि प्रकृति और पानी रहेगा तभी हम जीवित रहेंगे। हमने कोरोना में ये सब देख लिया है कि पानी कितना जरूरी था, हमारा प्रकृति कितनी जरूरी है हमारे लिए, इसलिए हमें अलर्ट तो रहना पड़ेगा।
0: बिल्कुल भाई, बहुत ही खास तरीके से हमें अनिल जी ने बताया है कि हम कितनी इम्पोर्टेंट जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पास ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इन्हें यूं ही एक्सप्लॉइट करते रहे तो एक दिन हमारे पास होंगे ही नहीं, और फिर हम जिएंगे कैसे? तो उसके लिए जरूरी ये है कि आज से ही हम इन्हें कंजर्व करना शुरू कर दें। बहुत अच्छा लगा अनिल जी आपसे बात करके। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
1: मैं कहूंगा कि लिसनर्स जितने भी हमें सुन रहे हैं, वो ये याद कर लें कि अगर पानी नहीं होगा स्विमिंग पूल नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो बहुत सी किताएं बदल जाएंगी। बहुत पहले कबीर ने कह दिया था कि बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। तो न मोती रहेगा, न मानस रहेगा, और ना बर्गर और पिज्जा के लिए चून यानी आटा होगा, फ्लोर होगा, मुद्दा होगा। तो चाहे आप पिज्जा बनाएं या बर्गर या कुछ भी, एक रोटी बनाएं या चावल बनाएं, कुछ भी बनाएं, आपको पानी चाहिए, और अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सो प्लीज, आज के बाद भी जल प्रहरी, सेव वाटर, थैंक यू एंड सेव वाटर।

0: जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और क्या हालचाल, क्या कर रहे हैं आप? और मुझे आप बताइए कि आप इस वक्त प्रोग्राम सुनते वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना? और नंबर हमारा 8010781078, अगर कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई बात आप किसी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई गाना आपको सुनना है, किसी गाने को आपको डेडिकेट करना है, तो नंबर हमारा बहुत ही आसान है, एक बार फिर से बता देती हूँ, 8010781078। और मैं आ चुकी हूँ आपके पास में। मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसी हूँ, तो मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छी मैं तब और ज़्यादा हो जाती हूँ जब मैं स्टूडियो में आप लोगों के पास में आती हूँ। तो ये प्रोग्राम और ख़ास तौर पे ये वक्त मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कहीं के कीमती वक्त है जब मैं आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ और हम गाने इंजॉय करते हैं जो कि प्यारे प्यारे से हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक गाने के साथ में और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आने वाली हूँ। तो चलिए एंजॉय करते हैं एक गाना, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। तो चलिए बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

ये मेरी लाइफ में, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में जहाँ मैं आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ, और मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम क्या बात करने वाले हैं। आज उलझती सी जा रही जिंदगी को ठहर कर थोड़ा समझेंगे और उनमें खुशियां कैसे लेकर के आए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इन बातों में मुझे आपका सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं ना, तो बहुत कुछ जानने, इनफैक्ट सीखने को मिलता है। तो आपका सवाल, आपका जवाब, आपकी बातें हमारे लिए सभी कुछ बहुत कीमती है, इसलिए आप ज़रूर बताना हमें अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं, अपनी ज़िंदगी को स्मूथ बनाने के लिए, खुशियों से भरने के लिए, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे बात करूंगी उस वक्त की, जब वो वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है, और एक टाइम पर ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, और वो है जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। तुलना जो है ना, कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम सब के सोचने, समझने, काम करने का तरीका बहुत अलग है, और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर इंसान बहुत खूबसूरत है और बहुत अनमोल है, लेकिन हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं और हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन इसका हमारे दिमाग पर, हमारी पर्सनालिटी पर कितना बुरा फ़र्क पड़ सकता है, वो असर पड़ सकता है, आपको मैं बताऊंगी और इससे बचने के उपाय भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए, सारी बातें आज के प्रोग्राम में होने वाली हैं, और आपका सपोर्ट मैसेज के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुंचाइए। चलिए इन्जॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांका आपके साथ में। और देखिए लाइफ में आज के टाइम पर खुश रहना बेहद ज़रूरी हो गया है क्योंकि हम हमेशा प्रॉब्लम से ही घिरे रहते हैं, है ना। कई लोगों की ये प्रॉब्लम, कई लोगों की शिकायत इनफैक्ट होती है कि प्रियंका हम ना हमेशा प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, कभी हमारे घर में तो कभी ऑफिस में, कभी कलीग में, कभी फ्रेंड्स में, कभी रिलेटिव्स में, ये सब चलता ही रहता है। सुकून कहाँ मिले ये हमें पता ही नहीं चल रहा है। कई लोगों की ये बातें मुझ तक पहुंचती है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार आज कितने ज़्यादा मतलब हम इस तरह की लाइफ जीने के आदि से हो गए हैं कि अपनी खुशियां हम भूलते ही जा रहे हैं। और एक्चुअल में खुश कैसे होना चाहिए दिल से, ये हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। ज़्यादातर लोग इसी ट्रैप में ना फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप सुकून पा सकते हैं, जिससे आपको सुकून के साथ शांति मिलेगी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में चलते चलते। आई नो आप थक गए हैं और इस थकावट को आप दूर करना चाहते हैं, खुशियों को इन्जॉय करना चाहते हैं और इस पल को महसूस करना चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशानी हमें तब होती है जब हम अपने काम का रूटीन नहीं बनाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले के लोग मालूम है रूटीन बनाकर चलते थे। रूटीन पहले पेपर पे नहीं होता था, दिमाग में होता था कि उनको किस किस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें करनी है। और यकीन मानिए पहले के लोग समय से पहले अपने टास्क कंप्लीट कर लिया करते थे। लेकिन आज की बात करें, हम इसके नोट बना लें या फ़ोन में मैसेज कर लें या जो भी हमें ईजी वे लगता है हम वो सारी चीज़ें कर लें, लेकिन उसके बाद भी हम एक दो दिन तो रूटीन याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी हैबिट में शुमार नहीं है। तो रूटीन बनाना जो है इसकी आदत आप बनाइए। देखिए लाइफ में कुछ भी पाने के लिए ज़रूरी यही है कि आप रूटीन बनाकर चलिए, इससे जीने की कोशिश कीजिए। आप बिना रूटीन के लाइफ जी रहे हैं तो आपको सब कुछ बिखरा हुआ सा लगेगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि लाइफ में सिमटा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस टाइम पर आपको क्या करना है। किसी भी काम को फिक्स आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम रूटीन बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से जीना शुरू कर पाएंगे। क्योंकि आप जब धीरे धीरे इस चीज़ को शुरू करोगे, आई नो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपकी ज़िंदगी का, आपकी आदत का हिस्सा बन चुका है। तो रूटीन में काम करना बेहद ज़रूरी है। वहीं आपको एक चीज़ और बताऊँगी जो मुझे बहुत बहुत ज़रूरी लगती है कि ज़िंदगी में इस तरह का ये चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है उसके लिए बात करेंगे थोड़ी देर में। एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांका आपके साथ।

मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और एक चीज जो मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है, अब वो पता है क्या है कि देखो हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, है ना। हम हर किसी की हाँ में हाँ करके अपने आप को पीड़ा देते हैं, लेकिन दूसरों की खुशियों के लिए जो लोग काम करते हैं ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप काम करना छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल दूसरों की खुशियों के लिए काम कीजिए, लेकिन आपके इतने एफर्ट्स के बाद भी अगर कोई आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, तो आप उन खुशियों के लिए काम करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जिनको आप खुश कर रहे हैं ना, वो हमेशा ही ऐसे रहने वाले हैं, वो आपके एफर्ट्स को नहीं देखते हैं। बल्कि कई लोग होते हैं जो हमारे लाइफ में सिर्फ हमें हर्ट करने के लिए होते हैं, तो इस टाइम पर ना कहना सीखिए। सिंपल लाइन में जीने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको ना कहना आना चाहिए, राइट। और बहुत सारे लोग ना कह ही नहीं पाते हैं, और यही वजह है कि बार बार खुद ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस हैंडल करते हैं जो उनके लिए भी सही नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको काम करना चाहिए, है ना। अब जैसे आप बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में हैं, फैमिली में हैं, जिसके भी साथ में हैं, जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए, लेकिन आप किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को गलत मत बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर किसी की खुशियों पे इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं तो वो आप जाने दीजिए। हमेशा आप उन लोगों को खुश कीजिए जो आपके जरे से एफर्ट से वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव आता है। हमेशा ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में चुने भी और उनके लिए एफर्ट दिखाएं। और जो आदमी, जो ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति जो आपके एफर्ट से खुशी नहीं है, जो आपकी खुशियों में खुशी नहीं है, और आप जितना भी उनके लिए कुछ भी कर लें बट उसको खुशी ही नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए और उनको ना कहना सीखिए, राइट। जो मुझे लगता है कि अगर आप ये करना सीख जाएंगे तो काफ़ी सारे लोगों की जिंदगी बहुत इजी हो जाने वाली है, राइट। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं मैं आपको एक चीज और, जो हमारे बुजुर्ग भी यही बात, जो बड़े बूढ़े हैं वो भी यही बात कहते हैं और बहुत सही कहते हैं, अब वो क्या है ये आपको पता चलेगा थोड़ी सी देर में। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूं प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं। वही हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी एक बात कहते हैं, आपने भी उनसे ज़रूर सुनी होगी। और पता है वो जो भी कहते हैं ना वो कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा सही होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस वक्त हमें वो बात समझ ना आए, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और वो सिचुएशन को फील करते हैं, उनको उससे सामना करते हैं, तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी बात हमारे बड़े बोल कर चले गए। तो एक यही लाइन जो है मुझे बहुत अच्छी लगती, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, कि जो भी स्थिति आए हर स्थिति में जीना सीख लीजिए। बहुत कमाल की बात है। आप भी सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं और सुकून वाली जिंदगी जीना चाहते हैं।

ना, जहाँ सुकून ही सुकून है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो देखिए हमारी जो लाइफ है उसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, यही स्थितियाँ कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं इस स्थिति को एक्सेप्ट, वो हमेशा परेशान रहते हैं अपनी सोच से, अपने चीज़ों से। लेकिन वो लोग जो हम हर स्थिति में हमेशा अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ज़िंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, वो कई बार आपकी परीक्षा होती है, और कई बार आपके दिन बदलने से पहले जो आपके पास इस तरह के दिन आते हैं ना, ये वो वाले होते हैं जो हमें एक बड़ा लेसन सिखा करके जाते हैं। तो जो लेसन सीख लेते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं खुशी खुशी, लेकिन जो नहीं सीख पाते हैं वो हमेशा परेशान रह जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप परेशान हो, बल्कि हाँ आप इस चीज़ से समझें कि जो हमसे कहा जाता है कि हर स्थिति में खुश रहा जाए, वो बस आप एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर देखिए सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको दुख में भी न्यूट्रल रहना आ जाएगा और खुशियों को भी इंजॉय करना आ जाएगा, वरना यूं ही परेशान ज़िंदगी बिता देंगे, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांगा आपके साथ, और प्रोग्राम है कि मेरी लाइफ।

मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और वो करो जो आपको पसंद है। इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना अपने लिए वक्त निकालना काफ़ी मुश्किल है आज के टाइम पे, लेकिन अगर आप वक्त निकाल पा रहे हैं तो अपने लिए उस वक्त को स्पेंड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है आप अपने लिए वक्त निकाल ही नहीं सकते। देखिए, हर कोई अपने लिए वक्त निकाल ही सकता है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, लेकिन वक्त सबके पास थोड़ा या ज़्यादा होता ज़रूर है। तो आप भी इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए और आप वो करें जो आपको पसंद है। अब आप सोचिए आपको क्या पसंद है, या आप ये सोचिए कि आज से 10 साल या 15 साल पहले आपको क्या करना पसंद आता था, आपको कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया लगती थी जो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट, एक अहम हिस्सा होती थी, रोल प्ले करती थी आपकी ज़िंदगी में, वो आप करना शुरू कीजिए। आपका मन क्या कहता है, क्या चाहता है, वो कीजिए। यकीन मानिए आप इतने एक्साइटेड रहेंगे ना अपनी लाइफ को जीने के लिए कि आपको रात को नींद तक नहीं आएगी एक्साइटमेंट में। इतनी खुशी आपको रहेगी कि हाय अब कल का दिन है, कितना खूबसूरत होने वाला है, मैं ये भी करूँगी, ऐसे भी करूँगी, वो भी होगा लाइफ में, ये भी। तो एक तो नींद हमें तब नहीं आती जब हम थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम में रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन एक नींद हमें एक्साइटमेंट में भी नहीं आती, और वो एक्साइटमेंट आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी पसंद के काम करने शुरू कर दीजिए। और एक और चीज़ आपसे बोलूँगी, ये भी हमारे बड़े कहकर गए हैं और आप लोग भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि कौन क्या कहता है, कहने दीजिए, जाने दीजिए। इसको अगर दिल दिमाग में बैठाएंगे तो ज़िंदगी परेशान हो जाएगी, आपको जीने में बहुत भारीपन लगेगा। इसलिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जैसे हैं वो सिर्फ आप जानते हैं। आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस जगह पर एक्सप्लेन करना चाहिए, आप कीजिए, लेकिन उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। कोई समझे ठीक, नहीं समझे तो जाने दीजिए, क्योंकि आप वहाँ सच्चे थे। बट उसकी सफाइयाँ बार बार अगर किसी को देते हैं तो वहाँ पर आप झूठे महसूस होते हैं। इसलिए ये चीज़ छोड़िए और आप ही परेशान होंगे, इसलिए इस चीज़ को जाने दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जीना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं जी पाए और घुट घुट कर ज़िंदगी आपने पूरा टाइम निकाल दिया, तो आखिर में जब आप बैठे होंगे चेयर पे और तब सोच रहे होंगे ना अपने आप को, तो सिवाय दुख के, तकलीफ के, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं हमेशा मैं आपको उस टाइम पीरियड पे लेके जाती हूँ जब वो वाली एज आएगी जब हम सोचेंगे बैठ के। मैं हमेशा आपसे, अगर आपने सुना हो तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप सोचो कि आप चेयर पर बैठे हैं और आप अपनी ज़िंदगी का आकलन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्या किया, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था। और जब आप पाएंगे कि मेरी ज़िंदगी का तो कोई मकसद जो मैं लेकर आया था वो तो पूरा ही नहीं हो पाया, या जो मैंने सोचा था वो तो मैं कर ही नहीं पाया, और सिवाय पछतावे के और दुख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो चीज़ आप पहले कर सकते हैं वो कीजिए, बाद में सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए ज़िंदगी को खूबसूरती से जिए और मल्टीटास्किंग से बचें। जी हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और खुश रहिए। चलिए अब आपको एक बेहद ही प्यारा सा गाना सुनाती हूँ। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारा मूड भी हैप्पी हैप्पी हो जाता है, यानी कि हम अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं, अच्छा वो सब पूरा समा लगने लगता है, होता है ना ऐसा। और पता है एक बात जो आपने अपने बड़ों से भी सुनी होगी और आपको ये पता भी होगी कि अच्छा अगर महसूस करना है, अच्छा काम करना है, तो जो अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, उनके साथ में उठना बैठना शुरू कर दीजिए। पता है क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, इसका असर बहुत पड़ता है हमारे ऊपर। इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करनी चाहिए जो जीवन को लेकर के हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, एक पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं और कुछ करने के बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छा जो लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, आज के यूथ को एक मैसेज दे सकता है। जो इस तरह की सोच रखते हैं ना, हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए। और हमारे आसपास ऐसे लोग हैं और आपको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे तो बहुत अच्छा दिमाग रहेगा। पॉजिटिव लोगों के साथ में इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, तो ये आप कर दीजिए। और एक चीज़ आपको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप सिर्फ दो तीन चीज़ें ही लाइफ में करें तो थोड़ा सा और एडवांस हो जाइए। ये सोचिए कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ अभी करना है। ये सोच के जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कई बार ऐसा भी होगा कि जाने अनजाने में ऐसे रास्ते भी आपके खुल जाएंगे जहां आपको आपको राह ही राह मिलेगी। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये सब तभी हो सकता है जब आपका हेल्दी माइंड रहेगा, खुश रहेंगे, हल्का महसूस करेंगे और ज़िंदगी को जीने के लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड रहेंगे। ये तभी चीज़ें पॉसिबल है। इसलिए मैं जो आपसे बातें कर रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगियों से ही जुड़ी चीज़ें हैं। इसको आप फॉलो कीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठाइए, इसको अपना रूटीन बनाइए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदलती है और ये बदलाव डेफिनेटली अच्छे होंगे। अच्छा, बहुत से लोगों को ना तुलना करने की बहुत आदत होती है, वो तुलना करते हैं एक दूसरे से, और ये वाली चीज़ आपके लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है आपको मैं बताऊंगी। वाकई में ये बहुत बुरी चीज़ है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। इसके बारे में बात होगी रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और काफ़ी सारी बातें हमने की खुशियों को लेके कैसे खुश रहना है ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है लेकिन एक चीज़ जिससे आज के टाइम पर काफ़ी लोग इफ़ेक्टेड हैं और देखिए हमें लाइफ में लोगों से जुड़ना होता है चीज़ें सीखने के लिए आगे बढ़ने के लिए बेहतर बनाने के लिए दूसरों से जुड़ना पड़ता है लेकिन पता है क्या होता है हम धीरे धीरे खुद को कंपेयर करने लगते हैं जब देखते हैं कि हम मान लो किसी के साथ किसी ग्रुप में हैं जहां हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं बट हमारे सामने वाला जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है लाइफ में तो हम कंपेयर करने लगते हैं और पता है यही कंपेयर करने की जो आदत है ये हमें कितना नुकसान पहुँचा सकती है और अक्सर ऐसा होता है जब एक मुकाबला शुरू हो जाता है और अपने आप को ये मुकाबला कब कैसे हम कंपेयर करने लगते हैं ये वाली चीज़ जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के अंदर ये होती है तो ये आप नहीं कीजिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है कंपेयर करना तो बिल्कुल मतलब अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है राइट इसलिए अगर आप भी कंपेयर करते हैं वो कंपैरिजन की आदत है आपके अंदर इसको आज ही से छोड़ दीजिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉइजन है जो आपको धीरे धीरे धीरे धीरे गला रहा है तो वो आप मत कीजिए अपनी आदत को आप समझिए आप समझ सकते हैं कि ख़ुद को दूसरे से बेवजह तुलना करना एक ऐसी आदत हो सकती है जो आपने अपने जीवन में या तो बचपन में या किसी एक टाइम पर आपने सीखी और अब वो तुलना इतनी ज़्यादा होने लगी है कि आप खुद परेशान होने लगे हैं तो देखिए ऐसा होता है कई बार ऐसा हो जाता है तो आपको बस अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि आप जो हैं जैसे हैं आप अपने लिए बेहतर हैं और एकदम फिट हैं और आप जो हैं वो आप ही हैं भाई आप किसी से कंपेयर खुद को कर ही नहीं सकते हैं ये वाला ना मुझे लगता है कि एटीट्यूड ना अपने अंदर आपको रखना चाहिए ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना आपके अंदर में आपको ऐसा लगेगा बस मैं ही मैं हूँ और आपको आप खुद अच्छे लगने लगेंगे तो ये आपको एटीट्यूड रखना ज़रूरी है दूसरी चीज़ खुद से आप सवाल कीजिए कि आप खुद की तुलना दूसरों से क्यों करते हैं जब आप अपनी वजह को पहचान लेंगे तो उसे संभालना आपके लिए इजी हो जाएगा शुरुआती टाइम पर आपको थोड़ा वक्त लगेगा और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि एक आदत है जो शुमार हो चुकी है और अब इसको थोड़ा ठीक करने में टाइम लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते आप ये खुद से सवाल कीजिए कि मैंने अगर कंपेयर किया तो क्यों किया मे बी बचपन से आप करते आ रहे हैं लेकिन अब क्यों मैं क्यों नहीं अपने लिए अच्छा कर पा रहा या कर पा रही ये सवाल अपने लिए रखना ज़रूरी है जिस दिन आप ये रख लेंगे उस दिन मुझे लगता है कि चीज़ें इजी हो जाएंगी तो कंपेयर करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है राइट तो मैं तो यही कहूँगी कंपेयर मत कीजिए बल्कि ज़िंदगी को इन्जॉय कीजिए ऐसे ही एक चीज़ आपके साथ में और शेयर करना चाहूँगी और वो क्या है किस बारे में है ये आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में चलिए एंजॉय करते हैं गाना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ

प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में काफ़ी सारी बातें हम कर चुके हैं, और अभी मैं एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रही हूँ, एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई लोग इससे घिरे हुए हैं, कई लोग इससे परेशान हैं, और वो है अपने आप को कंपेयर करना। पता है कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और कई बार पता है क्या होता है, हमें दूसरे लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि देखो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन देखो वो कितने अच्छे से कर रहा है। मे बी हमारे करीबी हो सकते हैं, मे बी आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कंपैरिजन लोग करते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर है कि आप कितना अफेक्टेड हो रहे हो उससे, इस चीज़ के बारे में बस आपको सोचने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना, अगर आप सोच लेते हैं तो मुझे लगता है कि आगे की ज़िंदगी आपकी काफ़ी ईजी होने वाली है। तो ख़ुद को कंपेयर किसी भी सूरत में नहीं करना है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि अपने आप को जानने की तलाश में आप बढ़ते रहिए आगे, उस चीज़ को जारी रखिए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने साथ में रखना, अपने अंदर रखना ये ज़रूरी है, राइट? तो ये जिस दिन आप कर लेते हैं, उस दिन मुझे लगता है कि आपका जो जीवन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। और पता है आज के टाइम पे ना हम हर चीज़ पा सकते हैं, अगर हमने ठान लिया कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें खूब सारी पढ़ाई करनी है, एक मुकाम पर आना है, अच्छी जॉब हमें लेनी है या किसी पोस्ट पर हमें आना है, अच्छी सैलरी, ऑफ कोर्स सबको चाहिए अच्छी सैलरी, और अच्छी जगह पर हमें रहना है, हर कोई सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही चाहता है, और ये वाली चीज़ें अगर आप देखें, अगर हम अच्छे से डट के मेहनत करते हैं तो हम इस चीज़ को पा सकते हैं। लेकिन पता है आजकल अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना, अपनी ज़िंदगी को समझना, अपनी खुशियों को समझना, इस चीज़ को पाने के लिए ना तो हम सोच पाते हैं, और सोच पाते हैं तो इसको पाने के लिए हमें कई वक्त लग जाता है, कई बार पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में है लेकिन हम उसको नहीं पा रहे हैं, काम उस पर कीजिए, राइट? और मुझे लगता है कि आप यकीनन अपने आप को पा पाएंगे। कोई सवाल आपका है, कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, कोई मैसेज आपको हम तक पहुंचाना है, नंबर हमारा है 8010781078। होप करती हूं कि आप इन चीज़ों को अमल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। मैं हूं प्रियंका आपके साथ, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर. देखा कितना प्यारा सा गाना मैंने आपको सुनाया है. ये गाना सुन के तो कोई अगर सैड भी होगा ना तो वो भी खुशी से झूम उठेगा. मैं गाने ही ऐसे लेकर के आती हूँ, 90s के खूबसूरत गाने. और अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं या अपनी फरमाइश हमसे करना चाहते हैं तो नंबर, मैं पता है आपको इस प्रोग्राम में इतनी बार नंबर बताती हूँ कि कोई भी ऐसा ना हो जो मेरे से ये बोले कि आपने का नंबर नहीं बताया. मैं नहीं चाहती हूँ कि आप नंबर से बिल्कुल एकदम आपको समझ ही ना है कि करना क्या है. तो बिल्कुल आपको आते ही नंबर देती हूँ और जाते वक्त भी. बहुत ही आसान ये नंबर है, नोट कर लीजिए, 8010781078. ये हमारा नंबर है. देखा कितना आसान है. तो बस इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कीजिए. तो चलिए, मेरे चलने का वक्त हो गया है. मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय.

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कवि देव के बारे में। रीतिबद्ध काव्य परंपरा के आचार्य कवि देव रीति काल में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रयदाताओं और राजाओं को समर्पित करने के उद्देश्य से रचा था। वो खास तौर से श्रृंगार रस के कवि हैं और उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य के भावपूर्ण और सूक्ष्म चित्र मिलते हैं। उनकी कविताएं जिनमें हंसी की चोट, सपना और दरबार को विद्यालयों के साथ साथ बीए और एमए के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है। तो आज इनके बारे में, यानी कि रीतिबद्ध कवि देव के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा, इनके जीवन की बात आपके साथ साझा करूंगा और इनकी रचनाओं का जिक्र भी होगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों बात हो रही है आज कवि देव के बारे में। देखिए दोस्तों, रीतिबद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि देव का कोई प्रमाणिक जीवन वृत्त अब तक सुलभ नहीं हो सका है, लेकिन साहित्यविदों और इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म लगभग सन 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। उनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था, लेकिन वो अपनी काव्य रचनाओं में देव उपनाम का प्रयोग करते थे। कुछ स्रोतों में पिता का नाम बिहारीलाल बताया गया है। उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के विषय में अधिक प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी है आज आपके साथ साझा करूंगा कवि देव के बारे में। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, माना जाता है कि कवि देव ने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रय दाताओं और राजाओं के सम्मान में रचा था। मुगल बादशाह यानी औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद उन्हें अनेक आश्रयदाताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा संतोष सहृदय आश्रयदाता यानी भोगी लाल के यहाँ प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उनके काव्य से प्रसन्न होकर भोगी लाल ने उन्हें लाखों की संपत्ति उपहार स्वरूप प्रदान की थी, जबकि देव का अधिकांश जीवन राज दरबारों, नवाबों और अमीरों के आश्रय में बीता था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें राज दरबारों का आडंबर, दिखावा और चाटुकारिता भरा जीवन कचोटने लगा था, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। कविदेव की रचनाओं के बारे में भी आपसे जिक्र होगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कविदेव की रचनाओं के बारे में। बताया जाता है कि 16 वर्ष की किशोर अवस्था में ही देव ने भाव विलास जैसी प्रौण रचना का सृजन किया था। वहीं इनकी काव्य रचनाओं में संस्कृत, प्राकृत और साहित्य शास्त्र की पैठ स्पष्ट दिखाई देती है। विद्वानों द्वारा उनके ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। अब मैं आपको उनकी कुछ काव्य रचनाओं के नाम बताता हूँ, जैसे रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सिरजान, सुजान विनोद, राग रत्नाकर, शब्द रसायन, देव माया प्रपंच, सुख सागर, प्रेम दीपिका, सुमेल विनोद और काव्य रसायन। तो ये इनकी वो काव्य रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ सवैये भी लिखे थे। कविदेव के सवैयों के बारे में भी बात होगी और सवैये लिखने में ये किस भाषा का इस्तेमाल करते थे वो बात भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: प्यार गुलाब।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है कवि देव के बारे में। उनके कुछ सवैये हैं जो कि बड़े मशहूर हैं और उनकी भाषा भी अपने देश भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। वो लिखते हैं, ता दिन ते अति व्याकुल है, तिये जा दिन ते पिए पंत सिधारे, भूख ना प्यास बिना ब्रज भूषण, भामिनी भूषण भेष बिसारे, पावत पीर नहीं कवि देव, करो रिक मोरी सवै करे हारे, नारी निहारी निहारी चले, तजी वैद बिचारी बिचारी बिचारे। कवि देव अपने दूसरे सवैये में लिखते हैं, बोली उठो पपीहा कहूं, पीब सु देखिए को सुनी कै धुनी धाई, मोर पुकारी उठे चहू ओर, सुदेव घटा घिर की चहू दहाई, भूली गई ती को तन की सुधी, देखे उतै बन भूमि सुहाई, सांसन सो भरी आयो गरु, अरु आसुन सो अखियां भरी आई। तो दोस्तों, इस तरह के सवैये लिखने का अंदाज था कवि देव का। इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नफरत

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, कवि देव के सवैयों के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था। एक उनका सवैया जो कि राधिका की बात करता है, कान्हा की बात करता है, वो अपने सवैये में लिखते हैं, राधिका कान्हा को ध्यान धरे, तब कान्हा है राधिका के गुण गावे, त्यों असुवा बरसे बरसानी को, पाती लिखे लिखी राधिका धावे, राधे है जाई ते ही छिन देव, सु प्रेम की पाती ले छाती लगावे, आपू ते आपू ही में उर्जे, सुरझे बिरझे समुझे समुझावे। तो इस तरह से दोस्तों अपने सवैये के माध्यम से उन्होंने राधिका और कान्हा की बात को भी लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन कहते हैं संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो इस संसार में आया है उसे वापस जाना भी है। आचार्य कविदेव ने कई दशकों तक अपने आश्रयदाताओं के लिए अनुपम काव्य रचनाओं का सृजन किया था, लेकिन वृद्धावस्था के कारण सन 1767 के आसपास उनका देहांत हो गया। फिर भी वो अपनी लोकप्रिय काव्य रचनाओं के कारण आज भी साहित्य जगत में विख्यात हैं। अब दोस्तों वक्त मेरे जाने का हो चुका है, आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

0: और ये बिल्लू ने पूरे जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था सीताफल के बारे में, सीताफल केवल स्वादिष्ट फल ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं और ये पाचन तंत्र को एकदम मजबूत कर देता है और शरीर की मेटाबॉलिक

प्रिज्म प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को हानिकारक रसायनों और फ्री रेडिकल्स के बचाने में भी बहुत मदद करते हैं। डॉक्टर अक्सर गर्भवती महिलाओं को सीताफल खाने की सलाह देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये एनीमिया को कम करने और गर्भावस्था के दौरान पोषण प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने, त्वचा को स्वस्थ बनाने, बालों को पोषण देने और शरीर की कमजोरी दूर करने में भी उपयोगी माना जाता है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता के कारण बाजार में सीताफल की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी इसकी खेती करके अच्छे दाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन सीताफल के बारे में बहुत सारी बात हैं जो जानना जरूरी है, जैसे इसकी बुवाई कब होनी चाहिए या इसका सही समय क्या है या फिर जलवायु कौन सी होनी चाहिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देगा आपका दोस्त फहीम। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: किसान भाइयों, आज आपसे बात कर रहा हूं सीताफल के बारे में। देखिए, सीताफल की खेती के लिए सही समय और अनुकूल जलवायु का चयन बहुत जरूरी होता है। इसकी जो बुवाई है साल में दो बार की जा सकती है, पहला समय जुलाई से अगस्त के बीच और दूसरा फरवरी से मार्च के बीच सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये जो फल है ना किसान भाइयों, सीताफल, ये गर्म और हल्की शुष्क जलवायु में अच्छी पैदावार देता है। जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ठंड और पाला नहीं पड़ता, वहाँ इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड से पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको ऐसे क्षेत्रों का चयन करना चाहिए जहाँ तापमान संतुलित बना रहे। गर्म मौसम में पौधे तेजी से विकसित होते हैं और फलों की जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर होती है। यही कारण है कि देश के कई राज्यों में इसकी खेती तेजी से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन किसान भाइयों, सीताफल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, उस मिट्टी के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं, अगर हम सीताफल की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। देखिए, सीताफल की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, पहली बात तो यह है। लेकिन अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कमजोर और पथरीली जमीन पर भी इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच करवाना बेहद जरूरी होता है किसान भाइयों, ताकि पीएच मान की जानकारी मिल सके और सीताफल की खेती के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच मान जो है 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत तैयार करते समय 60x60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदे जाते हैं और हर एक गड्ढे के बीच लगभग 5x5 मीटर की दूरी रखी जाती है। खुदाई के बाद गड्ढों को 15 से 20 दिनों तक खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट और जीवाणु नष्ट हो सकें। इसके बाद गड्ढों में सड़ी हुई गोबर खाद, खली और एनपीके उर्वरक मिलाकर भराई की जाती है। अब सवाल आता है कि इसकी बुवाई का समय क्या होता है या इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो किसान भाइयों, सीताफल की बुवाई के बारे में भी आपके साथ बातें साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, सीताफल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी बुवाई की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत अगर आप काम करेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उसका दाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। सीताफल की बुवाई के लिए पौध तैयार करने की वैज्ञानिक विधि अपनाना अधिक फायदेमंद माना जाता है। देखिए किसान भाइयों, आप क्या कर सकते हैं, पॉलिथीन की जो थैली होती है, उन पॉलिथीन की थैलियों में मिट्टी भरकर उसमें बीज डालना चाहिए, और पौध तैयार होने के बाद इन्हें खेत में रोपित किया जाता है। इससे पौधों की जो वृद्धि है वो बेहतर होती है और नुकसान की संभावना कम हो जाती है। गड्ढों में खाद और उर्वरक डालने के बाद 3 से 4 दिनों तक सिंचाई की जाती है ताकि मिट्टी अच्छी तरह तैयार हो सके। इसके बाद पौधों की रोपाई की जाती है। पौधों की उचित दूरी बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों।

ताकि उन्हें पर्याप्त धूप और पोषण मिल सके। विशेषज्ञों के अनुसार अगर शुरुआत में पौधों की सही देखभाल की जाए तो आगे चलकर उत्पादन काफी बेहतर मिलता है। तो किसान भाइयों, आप भी तो यही चाहते हैं ना कि आप जो भी फसल अपने खेत में बोएं उसका उत्पादन बेहतर से बेहतर हो। तो चलिए कुछ और भी बातें हैं आपको बताऊंगा सीताफल के बारे में कि इसमें खाद और उर्वरक का जो प्रबंधन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में भी बात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक के प्रबंधन के बारे में। सीताफल की अच्छी पैदावार के लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का उपयोग करना बेहद आवश्यक होता है। प्रति पेड़ लगभग 20 से 22 किलोग्राम जैविक खाद या गोबर की खाद देना लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही 40 ग्राम नाइट्रोजन, 60 ग्राम फास्फोरस और 60 ग्राम पोटाश की मात्रा भी हर साल दी जानी चाहिए। हालांकि किसान भाइयों, उर्वरकों का उपयोग करने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए और कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहतर होता है। होता क्या है किसान भाइयों, जैविक खाद जो है ना, उसका उपयोग करने से मिट्टी की जो उर्वरता है वो लंबे समय तक बनी रहती है और पौधों को आवश्यक पोषण मिलता रहता है। संतुलित पोषण मिलने से पौधों की वृद्धि तेजी से होती है और फलों की गुणवत्ता भी बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। अब सवाल आता है सिंचाई का, कि सिंचाई और इसकी देखभाल कैसे करने चाहिए जिससे कि हमारी उपज और भी बेहतर हो सके। तो किसान भाइयों, सिंचाई और इसकी देखभाल के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बस सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: बा।
1: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
2: किसान भाइयों, देखिए सीताफल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। सीताफल की खेती में सिंचाई का विशेष महत्व होता है। ड्रिप सिंचाई और छिड़काव विधि इस खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इससे पानी की बचत होती है और पौधों को पर्याप्त नमी मिलती रहती है। गर्मियों के मौसम की अगर बात करें तो गर्मियों के मौसम में पौधों को हर 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना जरूरी होता है। और किसान भाइयों, पौधों की नियमित देखभाल, खरपतवार नियंत्रण और समय समय पर छिड़काव करने से रोगों और कीटों से बचाव किया जा सकता है। एक पूर्ण रूप से विकसित पौधे से हर साल लगभग 100 फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जो करीब मेरे ख्याल से 50 किलोग्राम उत्पादन के बराबर होता है। अच्छी देखभाल और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके आप लोग उत्पादन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।

0: करता हूँ।
1: चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। देखिए किसान भाइयों, सीताफल की खेती के बारे में बहुत सारी बातें आपसे मैंने कर ली हैं, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सीताफल की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल मानी जाती है। एक एकड़ खेत में लगभग 400 से 450 पौधे लगाए जा सकते हैं। इससे सालाना लगभग 30 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बाजार में

वाले सालों में इसकी खेती और अधिक लोकप्रिय होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम भी आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम।

वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। ये शो हर बार की तरह बहुत खास होगा आज भी, क्योंकि आज फिर से हम आ चुके हैं लेकर के यहाँ पर ये प्यारी प्यारी बातें, जिसमें हम आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बताते हैं, केस स्टडी आपको बताते हैं, इंडस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं, जमाने भर की चीजें यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। करेंगे बात कौन सी आज की कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री है, क्या कुछ ये करती है, क्या इसकी यूएसपीज हैं, कौन इसके फाउंडर्स हैं। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। ये शो हर बार की तरह बहुत खास होगा आज भी, क्योंकि आज फिर से हम आ चुके हैं लेकर के यहाँ पर ये प्यारी प्यारी बातें, जिसमें हम आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बताते हैं, केस स्टडी आपको बताते हैं, इंडस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं, जमाने भर की चीजें यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। करेंगे बात कौन सी आज की कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री है, क्या कुछ ये करती है, क्या इसकी यूएसपीज हैं, कौन इसके फाउंडर्स हैं। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर, शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योरटेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई है। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योरटेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है, अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में, हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाय डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है, चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ

रहे हैं, और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस इंडस्ट्री वी आर एड्रेसिंग इट, द नेम ऑफ दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इनका रिकॉर्ड, जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 बिलियन US डॉलर्स, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर 3 ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहाँ पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसके नाम हम सबने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो है इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाय इंश्योर टेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए, यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनीज, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नजर आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली 3 मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खिंच जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपके म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत इजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार, हमारे पास ई आधार जैसी ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हमें टिक करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है, एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज, ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपए या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए, होता है ना ऐसे। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्वस्ट 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज़ करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहाँ पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीज़ों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या, दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यू कैन गो टू ओम्बड्समैन, वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीज़ें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत ज़रूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस। जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नज़र आती हैं चीज़ें, कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल

आशा करता हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फेजेज आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीज़ें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाए तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स का आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कैपिटल भी वहां पर चाहिए। सो इट इज रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जाकर के आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

उम्मीद कर रहा हूँ आपको गाने पसंद आए। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। तो बिना किसी देरी के अपने शो में हम बात करते हैं अब उस ब्रांड की जिसके अराउंड इतनी सारी बातें हमने करी है, इंडस्ट्री के बारे में आपको पूरा कुछ बताया। सो इस ब्रांड का नाम है रिस्कवरी। जी हाँ, डिस्कवरी नहीं, रिस्कवरी। तो इंडस्ट्री के बारे में तो आपने जान लिया। रिस्कवरी एक मुंबई बेस्ड इंश्योरटेक स्टार्टअप है जो बिल्ड कर रहा है डिजिटल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजनेसेस के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये समझना कि हम लोग जब इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस हमें समझ में आता है गाड़ी का, हमें समझ में आता है अपनी हेल्थ का, हमें लाइफ इंश्योरेंस समझ आता है, लेकिन भैया बिजनेस जो लोग करते हैं उनके तो करोड़ों रुपए वहां पर इन्वेस्ट हुए होते हैं, तो इंश्योरेंस की उनको भी जरूरत होती है। और उसी एक प्रॉब्लम को हल करते हुए ये कंपनी लेकर के आई है अपने प्रोडक्ट्स। 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई और ये कंपनी अपने आप को फ्रेम करती है एज एन इंश्योरेंस इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म, जहां पर टेक्नोलॉजी, कंप्लायंस, इंश्योरेंस प्रोडक्ट सब कुछ आपको मिल जाता है एक जगह पर। 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई एंड इट वॉज बॉर्न आउट ऑफ द रियलाइजेशन कि जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया का वो बहुत फ्रेगमेंटेड है, मैनुअल है और डिजिटली उसको स्केलअप नहीं किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम जो उस टाइम पर हर्ट करती थी, मतलब 2018 से पहले तक एज पर दिस कंपनी, वो ये था कि आपके पास मतलब इंश्योरेंस तो है बट वो बहुत अच्छा वैल्यू चेन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, या टेक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ठीक ठाक नहीं था, मतलब बहुत मैनुअल था, बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस था, ट्रस्ट इश्यूज थे, बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती थी, बहुत सारी चीज़ें मिलती भी नहीं थी लोगों को। सो दैट वॉज द थिंग कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो या तो आपको बहुत महंगा प्रीमियम देना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा आपके पास विकल्प हुआ नहीं करते थे। अब कभी भी ये होता है, कोई भी मार्केट जब ग्रो करती है तो कॉम्पिटिशन हमेशा बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पर 100 कॉम्पिटिटर्स हैं, बड़े ब्रांड्स। अब 100 कॉम्पिटिटर्स का मतलब है कंज्यूमर को फायदा होगा क्योंकि सारे ब्रांड्स के पास एक सर्टेन पॉइंट के बाद प्रोडक्ट तो अपना उन्होंने डिफाइन कर दिया, लेकिन प्राइस फैक्टर बहुत बड़ा होता है। एक उदाहरण के तौर पर 2016 से पहले तक क्या होता था, हम लोग 200-250 रुपए का 1 GB का रिचार्ज कराते थे अपना, करेक्ट, कि 1 GB डेटा आपको एक महीने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर जियो आया, जियो के आने के बाद से पूरी की पूरी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसकी काया पलट हो गई। हमने देखा ड्रास्टिकली जो है प्लान्स नीचे हुए हैं, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा, आपको लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी, जितना हो सकता है कम दाम पर आपको उनको वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट वॉज द थिंग। तो इसलिए कंपटीशन का बहुत बड़ा एक रोल होता है और लोगों का, कंज्यूमर्स का बहुत फायदा हो सकता है अगर कॉम्पिटिशन सही तरीके से किया जाए, माइंडफुली क्यूरेट किया जाए तो। सो या, दिस इज आर टूडेज ब्रांड विच इज रिस्कवरी। इसके ऊपर बात कर रहे हैं, 2018 में स्टार्ट हुई और एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, वो है कि टेक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया है इंश्योरेंस के लिए। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। मैं सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। अब बात करेंगे अपनी आज की कंपनी की, विच इज रिस्क कवरी, कि इसके पीछे का आइडिया क्या था। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो भारत में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया गया है, बहुत अच्छा अच्छा जो है टेक के प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट्स के लिए UPI बनाया गया। अब कितना इजी सॉल्यूशन है कि एक QR कोड से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कोई नाम नहीं बताना, नंबर नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, सिंपली आपको अपना ऐप ओपन करना है, कैमरा ओपन होगा, आपको स्कैन करना है, पैसे आ जाएंगे, डालो, खत्म, सॉर्टेड। कितना नैरो डाउन कर दिया उस प्रोसेस को। सिमिलर टू दिस बहुत सारी कंपनीज जो पैसे प्रोवाइड करती हैं और लैंडिंग लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, कितनी सारी कंपनी आगे पाई गई। ऐसी कंपनीज जो बैंक भी नहीं है लेकिन RBI से उनको जो है वो लाइसेंस मिला हुआ है कि वो लोन डिसबर्स कर सकते हैं और वो करोड़ों अरबों रुपए का लोन जो है डिसबर्स करते हैं हर साल। ठीक, कितनी सारी कंपनीज आ गई। अगेन प्रोसेस को कितना सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको महज अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड डालना है और कंपनी वहां पर अपने एंड पर ऐसा सॉफ्टवेयर बना के बैठी है कि इंस्टेंटली चेक करेंगे, इंस्टेंटली अप्रूवल आएगा, आपको लोन मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्टिकल्स रहे हैं भारत में जिनके ऊपर बहुत काम किया गया है। बट व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस सेक्टर, उसमें आपको ये पेन नजर आता था कि उसमें बहुत ज्यादा या तो किसी को दिखा नहीं कि स्कोप है, भैया यहां पर भी कुछ इनोवेट करना चाहिए, पता नहीं क्या था, बट उसके ऊपर काम एक्चुअली नहीं किया गया। इट यूज टू बी वेरी ऑफलाइन, मतलब लोगों को लिटरली वो ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, दफ्तरों में जाना पड़ता था। तो वहीं पर इस कंपनी के फाउंडर्स ने ये सवाल पूछा खुद से कि भैया ये जब तमाम चीजें जब इतनी एडवांस हो गई हैं, हर चीज के ऊपर इतना काम कर दिया गया है, तो केवल इंश्योरेंस को क्यों हम ट्रेडिशनली बेच रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि केवल और केवल इंश्योरेंस को हम ट्रेडिशनल तरीके से बेचेंगे? क्यों हम यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स या जो बाकी एप्लीकेशंस हैं उनकी तरह का अपना इंश्योरेंस बना पाए? सो या दे टुक दिस इनिशिएटिव, दैट्स हाउ दे अप्रोच दिस प्लेटफॉर्म, कि यार लोगों को ना इंश्योरेंस भी एडवांस तरीके से बेचा जाएगा, अब ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं चलेगा। वो लेंदी प्रोसेस, वो ऑफलाइन प्रोसेस, दफ्तरों के चक्कर काटना, ट्रस्ट इश्यूज, वो सब फेस नहीं करेंगे। एंड दैट वाज द इनिशियल थॉट, दैट्स हाउ दे बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म। सो या दैट वाज द रियल आइडिया बिहाइंड इट, कि जब भारत में इतनी सारी चीजों के ऊपर काम हो रहा है, इतनी सारी डिस्कवरीज हो रही है, इतनी सारी एडवांसमेंट हो रही है, तो इंश्योरेंस को क्यों छोड़ा जाए भैया? एंड बूम, दैट्स हाउ दे स्टार्टेड। आई होप इट हेल्प्स। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद में शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून, फील गुड, फील।

फील गुड फील लाइव। मैं आरजे सागर, शो चल रहा है टैक्सी नंबर 107.8। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्फत 107.8 एफएम के साथ। आइए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी वजह से ये कंपनी उठ पाई, जिनकी वजह से ये कंपनी फॉर्म हुई, जिनकी वजह से इस कंपनी को जो है अपनी एक पहचान मिली और कुछ अलग इस कंपनी ने करके दिखाया, यानी कि इस कंपनी के फाउंडर्स की अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कंपनी हमारी चल रही है रिस्क कवरी, कंपनी डील करती है हमारे इंश्योर अटैक में, यानी कि इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी, और इसके फाउंडर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, सुवेंदु प्रस्ती, सौरभ भंडारी, चिरांत पाटिल, विद्या श्रीधरन, आसिफ सीएच, ये इस कंपनी के 5 को फाउंडर्स हैं। पहले नाम है सुवेंदु प्रस्ती, जो कि इस कंपनी के को फाउंडर हैं, एंड लिटरली इनका अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस है पूरी इंडस्ट्री में, डेकेड्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रखते हैं, कई दशकों का

लीड का अनुभव है. तो यू कैन से ही इज अ लेजेंड, ही इज अ ग्रेट लीडर, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. दैट्स हाउ ही थॉट अबाउट दिस आइडिया एंड स्टार्टेड दिस. दूसरा नाम है सौरभ भंडारी, अनदर को फाउंडर, और ये इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपर्टीज लेकर के आते हैं. इंश्योरेंस में काम किया, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखिएगा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, रिमोट भारत में आपको ऐसी बहुत सारी वर्सेटिलिटी नजर आएगी, और हर एक एरिया में, हर एक लेवल पे आपको एक डिफरेंट तरह का माइंडसेट नजर आएगा. अलग तरीके से लोग उसको अप्रोच करते हैं. किसी के लिए इंश्योरेंस टैक्स सेविंग होता है, किसी के लिए लाइफ सेविंग होता है, कोई इसको किसी तरीके से यूज करता है, कोई इसको किसी तरीके से यूज करता है, बट एंड प्रोडक्ट लोगों का फायदा करना चाहिए. दैट्स अ होल सो पर्पस. तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपर्टीज सौरभ लेकर के आते हैं, स्पेशली बैंक अश्योरेंस एंड एफिनिटी चैनल्स. तीसरा नाम आता है चिरांत पाटिल, अनदर को फाउंडर. ये प्रोडक्ट स्ट्रेटजी एंड स्टार्टअप एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, ठीक है, जहां पर इन्होंने कंसल्टिंग फर्म्स के साथ एंड फिनटेक कंपनीज के साथ बहुत काम किया है. तो ये समझते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, स्टार्टअप कैसे बिल्ड किया जाता है, किस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ा जाता है, ट्रस्ट कैसे गेन किया जाता है. He is that person. Fourth name is Vidya Sridharan, another co-founder and CTO. CTO यानी कि Chief Technological Officer. अब टेक की दुनिया की बात हो रही है, टेक प्लेटफॉर्म है, वहां पर एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वहां पर आप एक ब्रांड बना रहे हो, तो वहां पर टेक का होना बहुत जरूरी है. टेक का जितना स्मूथ एक वर्जन आपको नजर आएगा, उतना ही ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर हमें जल्दी वहां पर लोगों का नजर आएगा, ठीक है, जहां पर ये भी एक स्टार्टअप का बैकग्राउंड लेकर के आते हैं, और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म इन्होंने यहां पर ये बना के तैयार किया है. And the last name is Asif CH, CTO Tech Leadership. Focus करते हैं प्लेटफॉर्म को कैसे स्केल अप किया जाए. तो ये एक पर्टिकुलर चीज है कि जहां पर आपको मल्टीपल एक्सपीरियंस नजर आते हैं. कोई इंसान है जो पूरी इंडस्ट्री का ओवरऑल एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा है, कोई इंसान है जो डिस्ट्रीब्यूशन लेकर के आ रहा है, कोई इंसान है जो प्रोडक्ट डिजाइन करने में हेल्प कर रहा है, कोई इंसान है जो टेक्नोलॉजी बना रहा है, कोई इंसान उस टेक्नोलॉजी को स्केल अप कर रहा है. ये पांच को फाउंडर्स हैं जिनकी वजह से ये कंपनी जो है यहां तक पहुंची है. फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे. स्टे ट्यून, फील गुड, फील.

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहे हैं पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। ऑन दिस नोट अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितनी बातें होंगी आपको पसंद आई। आज की हमारी कंपनी है रिस्क कवरी और अब बात करते हैं इसकी यूएसपी की, यानी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यहाँ पर आपको नजर आएगा टेक्नोलॉजी प्लस इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कंप्लायंस, तीन चीजें मिला करके इस प्लेटफॉर्म को लेकर के आई यहाँ तक। तीन प्राइमरी मैं जो कहूंगा पिलर्स हैं जिनके बलबूते पर ये कंपनी खड़ी हुई है और लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। सो दैट्स व्हाट मेक्स दिस कंपनी रियली स्पेशल। ठीक है, जहां पर आपको बहुत सारी और चीजों के यहाँ पर प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे ही, इंश्योरेंस जैसे मल्टीपल तरह के इंश्योरेंस आपको मिल जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो प्लेटफॉर्म है ये थ्री कोर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स को सपोर्ट करता है। फर्स्ट इज DIY, डू इट योरसेल्फ। कस्टमर खुद से करते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या हटाना है क्या रखना है। जहां पर आपको थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है, लीडरशिप मिल जाती है, वहां पर बाय डिफॉल्ट आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। सेकंड आता है असिस्टेड। यहां पर एजेंट्स एंड ब्रोकर्स जो हैं वो आपकी सेल को क्लोज करते हैं, वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, आपको स्पून फीड करेंगे प्रॉपर, आपको कुछ भी खुद से एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खुद से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, गूगल करने की जरूरत नहीं है, सिंपली वो आपको बताएंगे। आई मीन इट्स अ गुड हैबिट टू डू इट, बट एनीवेज आई एम टॉकिंग कि कंपनी किस लेवल पर तैयार है। एंड थर्ड इज एम्बेडेड। ठीक है, लोन्स के साथ अटैच कर दिया, कोई और चीज आप खरीद रहे हो उसके साथ अटैच कर दिया, तो इसको एक कॉन्टेक्चुअल बना दिया है इंश्योरेंस को। तो ये एक पर्टिकुलर चीज है कि आपका वहां पर मैक्सिमाइज हो जाएंगी चीजें। आपने लोन लिया है उसके साथ आपको इंश्योरेंस फ्री दे दिया, हालांकि फ्री कुछ नहीं होगा, बट आप कह सकते हैं एक तरीके से सॉर्ट आउट कर दिया, क्लैरिटी आपको दे दी। तो ये तीन ऐसे कोर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं इस कंपनी के पास, DIY, असिस्टेड एंड एम्बेडेड, जिनके आधार पर आप कह सकते हैं इंश्योरेंस इन अ बॉक्स अपने टाइटल को सही तरीके से कंपनी जस्टिफाई कर पा रही है। तो ये वो चीजें हैं, और ये मुझे लगता है कि कस्टमर का अगर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है ना तभी कंपनी ग्रो कर पाती है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट अगर कस्टमर खुश नहीं है तो। अब बात करें इस कंपनी के की ड्राइवर्स की। एक तो मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी है, नो कोड कॉन्फ़िगरेटर्स हैं यहाँ पर, डैशबोर्ड्स हैं फॉर बाय टू मैनेज इट, टू सी द क्लेम्स प्रोसेस, मतलब हर एक चीज के लिए आपको डैशबोर्ड वहाँ पर नजर आएगा। सेकेंड है एंटरप्राइज एडॉप्शन, डिजिटल लेंडर्स, बैंक्स, ब्रोकर्स, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी कि इस टेक्नोलॉजी की जो है मदद करते हैं टू स्केल इंश्योरेंस ऑफरिंग्स। ठीक है, इंश्योरर नेटवर्क बहुत बड़ा है, 30 से ज़्यादा इंश्योरर इनके पास हैं, 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इनके पास लिस्टेड हैं जिसमें लाइफ, हेल्थ, जनरल सब कुछ आपको नजर आएगा। फोर्थ इज हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स, तो डिजिटल तो है ही जहाँ पर सेल्फ सर्व आपको नजर आता है, प्लस असिस्टेड सेल्स भी है। एंड लास्ट इज फंडिंग एंड रिकॉग्निशन, मल्टीपल राउंड्स जो हैं इनके हो चुके हैं, प्री सीरीज ए हो चुका है, सीरीज ए हो चुका है, बहुत सारे। आई एम नॉट रिवीलिंग द नेम ऑफ इन्वेस्टर्स, बट द पॉइंट इज कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आया तभी इस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया। सो दीज आर द की ड्राइवर्स ऑफ दिस कंपनी जो इसको बहुत ही खास बना देते हैं। अब इसके साथ लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून, फील गुड।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और आप लोग जुड़े हुए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम के साथ। अब इसके साथ अपने शो को हम यहां पर लेकर के चलेंगे आगे। आज की हमारी कंपनी है रिस्कवरी, और लगभग लगभग सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में। हालांकि और डीप डाइव हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है, तो उसकी तरफ नहीं जाएंगे। बट मेजर पॉइंट ये है कि अब यहां पर अपने शो को हम कंक्लूड करेंगे। रिस्कवरी स्टैंड आउट करता है बिकॉज ये केवल इंश्योरेंस बेच नहीं रहा है, ये ना इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को डिजिटाइज कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं इंश्योरेंस स्केलेबल है, कॉन्टेक्चुअल है, एम्बेडेड है, जो अपने आप में बहुत अमेजिंग चीज है कि कस्टमर को एट द एंड ऑफ द डे फायदा हो रहा है, उसको जॉय मिल रहा है, उसको उसकी तरह का मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसको बहुत दिमाग नहीं लगाना, टाइम नहीं है, उसको एजेंट एक्सप्लेन करेगा। एक इंसान है जो लोन ले रहा है, एडिशनल कुछ पे नहीं करना, ठीक है, आपको फ्री मिल जाएगा इंश्योरेंस के साथ। हालांकि फ्री नहीं है, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसमें, बट एक माइंडसेट की बात करता हूँ। DIY है, अपने हिसाब से रखिए क्या राइडर्स चाहिए, कितना इंश्योरेंस चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, कितना प्रीमियम पे करिए, एंड सो ऑन। तो वो जो चीजें हैं ना, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, वहां पर कंपनी जीत जाती है। और यही इस कंपनी ने भी करके दिखाया है कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को अच्छा करो, कस्टमर अपने आप कंपनी को ग्रो करने में मदद करेगा। दिस इज द थिंग। और यहां पर बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है कि ये इंश्योरेंस को सेल नहीं कर रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म बना के बैठे हैं, कंप्लायंस को फॉलो किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर अलग हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन वो कस्टमर एक्सपीरियंस में एड ऑन करती हैं, तो कंपनी अपने आप ग्रो करती है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी हमने बात करी, जितना शो को आपको समझा पाए हैं, वो आपको पसंद आया। अब इसी के साथ चलता हूं, अपने शो को यहां पर खत्म करूंगा, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: Narang, and you're listening to Radio Manavrachana 107.8.
1: Well, hello, good afternoon, namaskar, sat sri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum dosto, main hoon RJ Sagar, aaj hum lekar ke show, Voice of Youth. Jo bahut special hai, uski bahut sari wajahein bhi hai ki yahan par ye show बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है. आई मीन हर बार हमारे साथ यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंस से कुछ कुछ स्किल्स हम लोगों तक पहुंचाते हैं. आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से कलाकार मौजूद हैं. यदिन सेतिया नाम है इनका.

0: पर्सनली नहीं जानता हूँ, बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही प्यार की कलाकार, एक अभिनेता हैं, फोटोग्राफर हैं एंड इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें करते रहते हैं, वॉइस ओवर्स भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिएटर किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर. आज प्राइमरली हम लोग जो फोकस करेंगे दैट वी गोना टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन लर्न इट, हाउ टू मेक योर वीडियोस, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हाउ टू अपलोड इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑल यू नीड टू यू नो और यू कैन से जस्ट जॉट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कंटेंट क्रिएशन. सो टुडेज शो इज गोना बी रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस. ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट द शो और यहां पर सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे यतिन सेठिया का. यतिन, स्वागत है हमारे शो में.
1: इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूँ. ऑलमोस्ट 100 के मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं फैमिली, और उसमें मैं बेसिकली फनी, रिलेटेबल, कभी कभी इमोशनल वीडियोस डालता हूँ. और मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिमिक्री आती है. मैं कम से कम 10 वॉइस प्लस आवाजें मैं निकाल सकता हूँ. और इससे पहले मैं एज अ फोटोग्राफर वर्क करता था, क्रिएटर्स के लिए रील्स बनाता था, मैं उनकी शूट करता था. और अब मैं खुद कैमरा के आगे आ चुका हूँ. तो मेरी जर्नी कैमरा से पीछे से लेके आगे तक की मेरी जर्नी रही है और अभी आगे बहुत चलेगी. तो ये है यतिन यार.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सी यात्रा यहाँ पर रही है. एंड ये हम सब लोग देख पा रहे हैं, 100 के से ज्यादा इनकी फैमिली है यहाँ पर. एंड प्योरली हार्डवर्क है उनका और जो उन्होंने रन किया यहाँ पर. एक सवाल यहाँ पर उठता है कि व्हाट ट्रिगर्ड यू और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर कंटेंट जर्नी? क्या ऐसा था जिससे आपको ट्रिगर किया और आपको लगा कि नहीं यार मेरे को ये करना चाहिए?
1: ये कीड़ा मुझे स्कूल टाइम से था. तो मुझे काफी स्कूल टाइम से ऐसे एक्ट करने का शौक, अच्छा मतलब ऐसे एक्ट करना मुझे अच्छा लगता था. मैं स्कूल टाइम में मिमिक्री करता था अपने टीचर्स की और अपने आसपास लोगों की. तो वहां से मुझे था कीड़ा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी इसको प्रोफेशनली करूंगा. मैं तब मजे में कर रहा था. बट धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैं ऐसे लोगों से मिलता गया जो ये इस कंटेंट में कर रहे हैं, मैं एज अ प्रोफेशनली उनसे मिला था कि मैं शूट करता हूँ और वो ये चीजें वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो काफी फेमस क्रिएटर हैं, और उनके साथ मैं करता गया. फिर वहां से जब मैं शूट उनका करने लगा, धीरे धीरे धीरे उनको देख के मेरा वो कीड़ा जो दबा हुआ था, जो मेरे अंदर जो चाह थी, वो बाहर आने लगी. तो मैंने उनको देख देख के अपना शुरू करा कंटेंट बनाना. मैं मिमिक्री अपना करता था, मिमिक्री वॉइस निकालता था, वो उसको मैंने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करा. फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था वॉइस एक्सरसाइजेस. और ये हमारे बीच में जो अभी हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं सागर जी, इनसे पूछता था मैं वॉइस के बारे में. इनको बहुत नॉलेज है, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो इन्होंने अपनी वॉइस पर बहुत अच्छा काम किया है. तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए. तो मैं इनसे पूछता था सागर जी से कि कैसे करना है, क्या करना है. तो एक्सरसाइज पे अपना ध्यान देता, वॉइस एक्सरसाइज पे. फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके करते करते इंस्टा पे मैंने फाइनली मुझे जो जिनका मैं शूट करता था, ऋषभ भैया और पूरी टीम, ऋषभ भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे में पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, तुझे ट्राई करना चाहिए. तो उनके कहने पे मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू करा. इनिशियली तो बहुत ऐसे ही वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया, करता गया और सबके साथ से मैं सीखता गया और अब अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा मुझे ऑडियंस बोलती है, प्यार देती है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं. तो ये जर्नी थी कि एक स्कूल का कीड़ा जग गया, फिर यहाँ पे अच्छे क्रिएटर्स को देख के मेरा भी मन करा कि हाँ करना है, तो वहां से मैंने फिर शुरू किया.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. उसका प्रमाण ये भी है कि आज आप रेडियो पर लाइव हैं, लोग आपको सुन पा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रमाण है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं. डेफिनेटली अपने आप में ये चीजों को सीखना एक हुनर होता है सीखने का भी, तो हर इंसान में ये चीज जो है होनी चाहिए कि आपको सीखना आना चाहिए चीजों को उठाना कैसे है. हमारे आसपास एलिमेंट मौजूद होते हैं. इसी नोट पर दोस्तों लेंगे म्यूजिकल ब्रेक. यहाँ पर अभी तक हमने यतिन से बात करेंगे, डोमेन के बारे में जाना है. आइए इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेकर के जाएंगे, आगे कंटेंट के बारे में बात करेंगे, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम.

0: चल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। अपना रेडियो।

0: Welcome back. I just hope you're loving the vibes of this show. You're loving the vibe of this musical break. And agar aapke paas koi feedback hai, mere liye, Yatin ke liye, koi bhi cheez hai jo aapke zehen mein hai aur hum tak pahunchani hai, do make sure 8010781078 is number tak aap pahuncha chuke ho. Filhal apne show ko aage badhayenge. Yatin, mera next question aapse rahega content creation ke bare mein. When you think about a content, a piece of content, to usko kaise aap sochte ho and what is the process? Kya jata hai uske piche?
1: प्रोसेस यही है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मैं रिलेटेबिलिटी पे कंटेंट बनाता हूँ और उसको फिर बाद में फनी करने का ट्राई करते हैं. तो वो जो रिलेटेबिलिटी आती है, जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी एक बचपन से ही मतलब आदत थी, मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ. तो छोटी छोटी चीजें मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है. तो मैं वही, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई जो क्रैक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि मुझे कंटेंट बनाना है, तो वो ऑटोमेटिकली मैं ग्रैब कर लेता हूँ कि हाँ यार, इस टॉपिक पे बनाया जा सकता है, ये टॉपिक शायद अभी कवर नहीं हुआ, इस टॉपिक को पे कुछ और अच्छे से इसको लिख के करा जा सकता है. तो पहले तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मुझे रहता है कि मैं ऑब्जर्व करूँ, और फिर उसके बाद मैं राइटिंग के लिए बैठता हूँ. राइटिंग के लिए मैं, मेरा दिमाग से या तो रात को चलता है, या फिर मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, तब मेरा दिमाग चलता है. तो ये दो टाइम पे मेरा दिमाग चलता है. फिर मैं उसके वॉइस नोट्स बनाता हूँ सबसे पहले रफ, कि इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं. फिर मैं उसको आराम से रात में बैठ के प्रॉपर लिखता हूँ कि ये डायलॉग्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए. तो फिर उसके बाद जाके मैं उसको शूट करता हूँ, और फिर शूट करने के बाद एडिट मैं साथ साथ ही उसी टाइम मूवमेंट पे कर लेता हूँ, सो दैट कि कुछ अगर दिक्कत होती है तो मैं फटाफट कुछ शॉट लेना होता है वो कर लेता हूँ. और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्ट शूट्स भी हो जाते हैं. कभी कभी जैसे हम बैठे हुए हैं, जैमिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया आया और फटाफट उसको शूट कर लिया और वन टेक मतलब बना के कुछ भी, जैसे कि वो गैबल करके फटाफट उसको ऑन मोमेंट और उस टाइम पे शूट कर लिया. कभी कभी वो रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट हाँ इस तरीके से लेकिन मैं करता हूँ कि पहले मैं अपना स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं शूट करता हूँ. और मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको नहीं आता, आप मतलब आप 1% जानते हो, 2% जानते हो, नॉलेज आपकी बहुत कम है, अगर कुछ भी नहीं आता, इस पे कोई दिक्कत नहीं है. बट आपके अंदर एक जिद है कि मुझे करना है और सीखना है, तो आप शुरू करो. सबसे पहले, सबसे पहला काम ही है, सबसे मुश्किल काम है शुरू करना. अगर आपने शुरू कर लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपके रास्ते आराम से खुलते जाएंगे, आप कर लोगे. सबसे पहले जीवाइए, 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है, 1 to 10 जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और 10 to 100 की जर्नी बहुत आराम से हो जाती है. तो सबसे पहला मुश्किल काम है स्टार्ट करना, शुरू करना. आप कैमरा लेके, आप कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप कुछ नहीं, आप नॉर्मली वीडियो कैमरा ऑन करके आप अपना बोलना शुरू करो. आप अपने आपको देखो कि क्या बोल रहे हो, कैसे, क्या कॉन्फिडेंस लेके आओ. और ये है, सबसे पहले आप अपना ही मतलब कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और धीरे धीरे धीरे करके हो जाएगा. सबसे मेन चीज है शुरू करना. और शुरू कैसे करना, आपको खुद ही, अगर जिद है, दिल है, तो आप कर सकते हो.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और प्रोसेस क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जीर, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात करूँ कि एक बिगिनर के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें फॉल करती हैं?
1: यही है कि टेक्निकल अगर आए तो आपके पास नॉर्मली एक अच्छा कैमरा होना चाहिए. जरूरी नहीं आपके पास सबसे महंगा कैमरा हो, फोन कैमरा, बेसिक फोन कैमरा आईफोन के अच्छे आते हैं, जो बेस स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, नहीं तो एंड्रॉयड के भी कुछ आज के एंड्रॉयड बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल एंड्रॉयड. तो आप वीडियो, बेसिकली वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आप पॉसिबल हो सके माइक भी, बहुत बेसिक से शुरू हो जाते हैं, माइक भी रखोगे कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैटर करती है कॉन्टेंट क्रिएशन में. वो जितनी अच्छी होगी, लोग उतना अच्छा देख पाएंगे, उतना अच्छा समझ पाएंगे. तो ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी राइटिंग के ऊपर आती है. धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपको उस पे काम करना चाहिए. मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कपल था, उन्होंने मिस्टर बीस्ट से ये बात पूछी थी कि हमें ग्रो करना है, हमें चैनल को अच्छा बनाना है, अपनी वीडियोस को बेहतर बनाना है, तो क्या करें. तो मिस्टर बीस्ट ने ये एडवाइस दिया था कि आप 100 वीडियोस बनाओ और डेली आप एक वीडियो जब बनाओगे तो आपको जो भी कमी है अपनी पिछली वीडियो में वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करोगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आप वीडियो शुरू करो और 100 वीडियोस का एक टारगेट बनाओ और आप नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाओगे तो पिछली वीडियो से एक कमी आपको इम्प्रूव करनी है, आपको सुधारना है। ऐसे करते करते उस कपल ने 1 मिलियन कर लिए थे 100 वीडियोस में।
0: बहुत सुंदर।
1: कुछ भी नहीं था, सबसे मेन चीज थी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए।
0: यही दोस्तों ये प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ में हर चीज का प्रोसेस यही होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग द फर्स्ट मोस्ट रिजर्व्ड एरिया इज द बिगिनिंग पॉइंट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट सो आप खुल जाते हो थोड़ा सा एंड उसके बाद फिर आपको ये सिर्फ देखते रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। जैसे अतन ने बताया कि आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस अपने प्रीवियस वर्क को देख करके आपको इम्प्रूव करना है, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अगले में ना हो। मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, राइट।

0: वंस अगेन आई एम होपिंग आपको गाने अच्छे लगे। वंस अगेन आई एम होपिंग ये बातचीत आपको पसंद आ रही है। यतिन बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे शहर फरीदाबाद के हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बता रहे हैं और ईमानदारी से हमें जवाब दे रहे हैं कि आप जेन्युइनली कैसे ग्रो कर सकते हो। अभी तक हमने बात करी यतिन के डोमेन के बारे में, हमने बात करी कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में, हमने बात करी प्रोसेस कैसे होता है, हमने ये भी बात करी है कि एक बिगिनर को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों के दिमाग में एक अवहम होता है कि कॉन्टेंट क्रिएशन में पैसा कैसे होता है नहीं होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये दिन बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना है लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि पैसा होता है नहीं होता है, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है। आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है व्हाइल परस्यूइंग द कंटेंट क्रिएशन जर्नी।
1: इसमें पैसा होता है, अच्छा होता है, और लेकिन ये है कि वो एक समय बाद आता है। जैसे कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम फर्स्ट डे से उसमें से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में भी इस तरीके से अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। किसी को 3 महीने लग जाएंगे, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक बिजनेस की तरह है कि आप इसको कितना आप जितना पानी डालेंगे उतने पौधा उगेगा, उतना ज्यादा पौधा बड़ा होगा। तो ये भी वैसा ही है, इसके अंदर पैसा अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बार जब पौधा उग गया, जब पेड़ उग जाएगा तो उसमें से फल निकलेंगे ही, और मीठे मीठे फल निकलेंगे जितना आप पानी डालेंगे। तो पैसा अच्छा है, बढ़िया है। शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें भी होंगी लेकिन जब आना शुरू होगा तो अच्छा होगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, अलग अलग जगह है, प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सेम वीडियो बना के 4 प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म इसमें से आपको मॉनेटरी फायदा देती है और जो चौथा इंस्टाग्राम है वो आपको ब्रांड्स के थ्रू फायदा देता है। आपकी फेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पास ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड्स आपसे काम कराएंगे। इंस्टाग्राम पे इस तरीके से काम होता है और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ब्रांड्स आ सकते हैं उस, लेकिन साथ साथ आपका बेस जो पैसिव इनकम रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। आप डालेंगे शॉर्ट्स फॉर्म को, डालेंगे स्नैपचैट पे, डालेंगे यूट्यूब पे, डालेंगे फेसबुक पे डालेंगे, तो ये 3 प्लेटफॉर्म आपको पे करता है। मोनेटाइजेशन होता है पूरा, सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, उसके बाद इसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, एक आपको अचीव करना होता है, वो एक टारगेट होता है इनका, पॉलिसी होती है प्लेटफॉर्म की, वो आप क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है और उसके बाद ही होता है। तो ये चीज है कि हाँ, आप करते रहोगे, वही वही बात है कि जितना पानी, जितनी मेहनत डालोगे आप अपने काम में, जितना अच्छी तरह आप अपने आप को स्किल्स इंप्रूव करोगे और अपना टैलेंट को बढ़ाते जाओगे, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाते जाओगे, आपका अर्निंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा बात उम्दा। और यदि आपने, अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपका चैनल जो है अच्छा हुआ है, अभी आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, पैसा वैसे आ रहा होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट द बिगिनिंग पार्ट, जब आपने शुरू किया था तो जाहिर सी बात है डे वन पे आपके पास पैसा नहीं होगा। उस फेज में जब आपके पास ब्रांड नहीं आ रहे हैं, जब तक आपने ग्रो नहीं किया, आप ग्रोइंग फेज में हो, कैसे अपने आपको सस्टेन किया जाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ किया जाता है, या आपने कैसे किया?
1: मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया। मेरा फोटोग्राफी बिजनेस था, मैं उसमें बहुत अच्छा कमा रहा था, तो मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मुझे था कि मैं 1 साल तक का बिना कमाए मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूँ। तो मैंने उतना सेव कर लिया था और इसी वजह से मैं वो कर पाया। बट आप इसको इनिशियली, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कमाते कमाते आप ये करते रहें कि कुछ, मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये साथ में पैरेलली करते रहें। मेन स्ट्रीम इनिशियली बना रहे हैं तो आप, या तो आप घर से, आपका बहुत सपोर्ट होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। वरना ये है कि इसमें ये काम आपको इतना निचोड़ देगा कि आपको लगेगा कि पैसा भी नहीं, और ये सब वो आपको डिमोटिवेट करेगा। तो आपको पहले ही बैकअप लेके चलना पड़ेगा। आइदर आपके पास जॉब होनी चाहिए, या कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अच्छा बेसिक हो, आप अपने खर्चे निकाल पाओ। इनिशियली आपको ये सब तक ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे कम में सेटल करना है इनिशियली, या तो आप उस चीज के लिए माइंड सेट कर लो।
0: Alright, we are concluding the show here. यदि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आप पूछ पाए हो और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: बस यही कहूंगा कि सबसे मुश्किल स्टेप होता है शुरू करना, सबसे हार्ड स्टेप होता है, कि किसी चीज का शुरू करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आप ये सोचते रहोगे मैंने करना है, सोचते रह जाओगे तो रह ही जाओगे। तो अगर आपको जेन्युइनली आपको कुछ करना है, कोई भी काम करना है, नॉट कंटेंट क्रिएशन, तो शुरू करें, खड़े हुए अभी और वेट मत करें किसी चीज का।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमने यतिन से बात करी है, यतिन एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल को, यतिन यार नाम से इनकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, 100K से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं एंड सच अ लवली गाय, सच अ ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा इनका काम। और याद है हमने बात करी है यतिन से, यतिन ने हमें बहुत अच्छे शब्दों में एक गाइड के तौर पर समझाया कि कॉन्टेंट क्रिएशन एग्जैक्टली दुनिया कैसी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है, काम कैसे करना होता है, पैसा कैसे आता है, कैसे अपना सस्टेन करना होता है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यतिन मैं आपका। थैंक यू सो मच मैन।
1: थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों अब इसी के साथ वक्त है अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज के शो से कुछ मूल्य हम आप लोगों तक पहुंचा पाए। तो इसी नोट पर चलते हैं अपने शो को यहाँ पर साइन ऑफ करते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन कहीं जाइएगा मत, जुड़ रही हमारे साथ, मैं हूँ आरजे सागर। शो है ये वॉइस ऑफ यूथ, यहाँ पर खत्म होता है, इसके बाद और शोज हैं, जरूर सुनिएगा रेडियो 107.8 FM पर। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ है एक बार फिर से प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी सेहत के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका शब्द आपने शायद कभी कभी सुना होगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल शायद आप नहीं जानते। सिर्फ वो लोग जानते हैं जो इस चीज से सफर करते हैं या फिर उनके आसपास के लोग। अगर आप बहुत ज्यादा अपने पैरों की तरफ नजर दौड़ाएं, खास तौर पर से अपनी काफ मसल्स या अपने पैरों की तरफ, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारी नसें विजिबल होती हैं। जी हाँ, ये जो नसें होती हैं, ये वैसे तो हमें फिट रखने के लिए ही होती हैं, हमारी बॉडी का पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही से इनसे चलता रहता है। लेकिन कई बार अगर ये ज्यादा विजिबल हैं तो फिर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वेरिकोज वेन्स भी हो सकती है। मैं तो सिर्फ आपको बेसिक ही बता सकती हूँ, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो आपको बताएंगे बहुत सारी बात वेरिकोज वेन्स से जुड़ी हुई कि आखिर वेरिकोज वेन्स है क्या। तो आज हमारे कार्यक्रम ऑल इज वेल में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेप्रोस्कोपिक लेजर और जनरल सर्जरीज में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
1: धन्यवाद। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार हूँ, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया
0: जी।
1: और आजकल हम लोग लेप्रोस्कोपिक तो कर रहे थे पिछले 20 साल से, रिसेंटली 5 इयर्स बैक लेजर इंक्लूड हुआ हमारे आर्मामेंटेरियम में
0: जी।
1: और हम लोग उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, डिफरेंट इंडिकेशंस के आ रहे हैं। तो आपने आज जो इंट्रोड्यूस किया कि वेरिकोज वेन्स के बारे में
0: जी, जी।
1: तो वेरिकोज वेन्स एक प्रॉब्लम है और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि किस में होता है, क्यों होता है और उसका क्या करना चाहिए, नहीं करने से क्या होगा प्रॉब्लम।
0: जी बिल्कुल। तो सर, पहला सवाल बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता। ये खांसी जुकाम की तरह नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों को होता है, लेकिन जिनको होता है वो बहुत तकलीफ में रहते हैं। सो बेसिकली वेरिकोज वेन्स है क्या?
1: जैसे कि आपने कहा कि पैरों में नसें होती हैं, तो नसें तो चाहिए, आर्टरीज हैं जो आर्टरीज हैं जो ले जाते हैं खून को आगे दूर की तरफ, और उस तरफ से फिर रिटर्न के लिए जो नस होती है उसको वेन्स बोलते हैं, जो ब्लू ब्लू दिखते हैं आपको कई बार पैरों में
0: जी।
1: तो ये नॉर्मल है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी वॉल होती है और वॉल में कुछ वाल्व होते हैं जो बैक फ्लो को रोकता है। तो कई कारणों से इनका बैक फ्लो कम हो जाता है और धीरे धीरे ये वेन्स डायलेट होने लगते हैं बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वेन्स। तो फिर वो डायलेट होने से जो मोटे मोटे वेन्स दिखने लगते हैं लोगों को, या कई तरह के होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के हैं, और उसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं
0: जी। यानी ये जो नसें विजिबल हो जाती हैं, एक जाल की तरह हमारे पैरों में दिखने लग जाती हैं, ये वेरिकोज वेन्स कहलाई जाती हैं। अब वेरिकोज वेन्स होने से प्रॉब्लम क्या होती है और क्यों इसे कंट्रोल करना जरूरी है, या फिर किन लोगों को हो सकती है, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर प्रेम कुमार। अगर आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर हमारा बहुत आसान है 8010781078। इसके साथ साथ आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके थ्रू आप इंटरनेट रेडियो के माध्यम से दुनिया में किसी भी कोने में ये खास जानकारी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। रेडियो मानव रचना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए, आरजी दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ ये सारी जानकारी वेरिकोज वेन से जुड़ी आपको मिल जाएगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातें चल रही हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में, एक ऐसी समस्या जो काफी आम नहीं है लेकिन फिर भी जिसको होती है वो ही इसकी तकलीफ समझ सकता है। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रेम कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि जाने माने सर्जन हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करें वेरिकोज वेन से जुड़े कुछ बहुत ही अहम सवाल। सर, आपसे अब मैं जानना चाहूंगी वेरिकोज वेन्स के बारे में हम बात करें। आपने बताया कि जो आर्टरीज ब्लड लेकर जाती हैं वेन्स वापस लेकर आती हैं, और इस वेन्स का जो एक जाल बन जाता है वो वेरिकोज वेन्स कहलाया जाता है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी ये किन लोगों को इफेक्ट कर सकता है, किस एज में कर सकता है, क्या बच्चों को हो सकता है या बुजुर्गों को हो सकता है, यंगस्टर्स को हो सकता है?
1: एक्चुअली वेरिकोज वेन्स जैसे आपने बोला ना जाल हो जाते हैं, तो कई तरह के वेरिकोज वेन्स के कई टाइप्स हैं
0: जी।
1: जैसे कुछ वेरिकोज वेन्स जो स्पेसिफिक बोलते हैं उसमें जो खून की नसें डायलेट हो जाती हैं मोर देन 3 mm साइज अगर हो जाए
0: अच्छा।
1: तो वेरिकोज वेन्स बोलते हैं।
0: ओके।
1: अगर 1 mm से कम है तो फिर वो टेलेंजेक्टेसिया बोलते हैं।
0: ओके।
1: और अगर उससे थोड़े बड़े हो 1 to 2.9 तक अगर होता है तो उसको बोलते हैं रेटिकुलर वेन्स।
0: Okay.
1: जैसे आप बोलते हैं जाल, जाल इज रेटिकुलर।
0: Okay.
1: तो जाल की तरह होते हैं। और वेरिकोज वेन जो 3 mm से बड़े होते हैं वो आप देखेंगे टॉर्सुअस हो जाते हैं। और एकदम लंबे लंबे से सांप की तरह आपको पैर के ऊपर दिखेंगे,
0: स्वेलिंग जैसी दिखने लग जाते हैं,
1: वो वेरिकोज वेन्स है बेसिकली 3 mm से बड़े साइज के। तो ये होते हैं। और उसका कारण क्या होता है मेनली कि सारे जगह वाल्व्स होते हैं। पैर में 2 सिस्टम ऑफ वेन्स हैं, 2 डीप है और 1 सुपरफिशियल है, उस दोनों के बीच में वाल्व होता है। तो जब हम खड़े रहते हैं तो उसमें बहुत हाई प्रेशर जनरेट होता है, मतलब मोर देन 100 mm ऑफ एचजी तक हो जाता है वेन में अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हम रहते हैं खड़े। तो उसको सस्टेन करने के लिए वाल्व्स होते हैं जो बैक फ्लो को रोकता है, क्योंकि पैर से जब ब्लड निकलता है, पैर में आपने सुना हो एक पेरिफेरल हार्ट भी होता है, सोलियस मसल होता है, तो जब हम चलते हैं काफ मूव करता है तो फिर वो वेन ब्लड जो है ऊपर पंप होता है हार्ट की तरफ, फिर और सांस भी लेते हैं लंबी, तो वहाँ निगेटिव प्रेशर होता है चेस्ट में, तो वेन ब्लड को सक करता है ऊपर।
0: ओके।
1: तब ब्लड जो है पेरिफेरी से हार्ट में आता है।
0: ओके।
1: तो इस तरह से उस प्रोसेस में हिंड्रेंस हो जाता है, वाल्व खराब होने से बैक फ्लो हो जाता है, ब्लड का पुलिंग होने लगता है, पैर में ब्लड जमा होने लगता है।
0: ओके।
1: तो इसको इससे ये जो फिजियोलॉजिकल चेंज ये हो जाता है कि हार्ट को कम ब्लड जाता है, पैरों में ब्लड स्ट्रेसिस हो जाता है।
0: ओके। यानी वो नसें जो है वो इतनी स्वेलिंग सी हो जाती है कि ऊपर तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, और उसकी वजह से हार्ट पर भी असर पड़ सकता है। ये तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान को अंदाजा ही नहीं है कि पैरों की नसों में प्रॉब्लम आने से आपके दिल पे असर पड़ता है। और डॉक्टर साहब, उम्र क्या होती है जिसको ये इफेक्ट करता है? क्या किसी बच्चे को, क्योंकि बच्चे जनरली इतना ज्यादा,
1: बच्चों में नॉर्मली ये नहीं होता है, बहुत रेयर, बहुत कम चांस परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में एजेनेसिस ऑफ वाल्व होता है, वाल्व बनते ही नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो उनको अर्ली स्टेज में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये एक्वायर्ड रहते हैं। और जो यंग एज की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में, जब लेडीज जो यंग एज में प्रेगनेंसी है जैसे 20s-30s में शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी, तो इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से कई बार वाल्व खराब होते हैं।
0: Okay.
1: तो प्रेग्नेंट लेडी में थोड़े कॉमन होते हैं ये वेरिकोज वेन्स, बनना शुरू हो जाता उसी समय से।
0: Okay.
1: बट मैनिफेस्ट होते होते कई साल लग जाते हैं।
0: Okay. यानी उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बाद में। ओके। और बुजुर्गों में काफी देखे गए हैं,
1: जैसे जैसे एज बढ़ता है वेरिकोज वेन्स का इंसिडेंस बढ़ने लगता है।
0: ओके।
1: तो ये एज से रिलेटेड है, कुछ फैमिली प्रीडिस्पोजिशन होता है, कुछ फैमिली में भी चलते हैं ये।
0: अच्छा। यानी हेरिडिटरी भी हो सकता
1: है, हेरिडिटरी भी हो सकता है, फैमिलियल बोलते हैं।
0: ओके।
1: तो ये हो जाता है। और कुछ मोटापा हो, वेट गेन हो गया, लॉन्ग स्टैंडिंग वाले जो प्रोफेशन है उसमें भी होता है ये, जैसे टीचर्स हैं या पुलिस में हैं या फिर सर्जन जो लॉन्ग आवर ऑफ सर्जरी करते हैं, तो उन लोगों में ये होने के चांसेस थोड़े रहते हैं
0: जी। यानी अगर आप 6-7 घंटे के आसपास खड़े हो रहे हैं डेली नॉन स्टॉप, जैसे मॉल्स में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं, या फिर गार्ड्स बहुत सारे होते हैं,
1: टीचर्स गार्ड हैं, उन लोगों में सबके चांसेस रहते हैं।
0: सो अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है तो वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप 6-7 घंटे-8 घंटे अगर खड़े हुए हैं तो आपको तकलीफ तो एक अलग लेवल पर हो रही है, बाकी चीजें भी आपकी बढ़ सकती हैं, जैसे आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपके पैरों में तकलीफ बढ़ सकती है। लेकिन वेरिकोज वेन्स भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग पॉस्चर की वजह से आपको परेशान कर सकती है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और साथ ही जानेंगे कि पहचाने कैसे इस प्रॉब्लम को। लेकिन अभी वक्त एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का, इसके बाद आते हैं वापस बात करते हैं वेरिकोज वेन से जुड़ी। तब तक आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं 8010781078 पर।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल। बातें चल रही हैं आपकी हेल्थ के बारे में और हेल्थ का टॉपिक है वेरिकोज वेन्स। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात करनी बेहद जरूरी है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप शायद उन्हें ना जानते हो या आपसे कभी उन्होंने डिस्कस ही ना किया हो, लेकिन अगर उनकी बहुत लंबे समय तक खड़े होने की जॉब है, जैसे बहुत सारे टीचर्स या फिर सर्जन या फिर गार्ड्स या फिर मॉल में खड़े हुए बहुत सारे एम्प्लॉयज जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में काफी परेशानी भी झेल रहे होते हैं क्योंकि वेरिकोज वेन्स उन तक पहुंच रही होती हैं। शुरुआत में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रेम कुमार, जाने माने सर्जन, और इनसे हम जानने की कोशिश करें हैं वेरिकोज वेन से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब। सो डॉक्टर प्रेम कुमार, अब मैं सिम्टम्स के बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो रही है, सपोज हमारे ऑफिस में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं खड़े रहते हैं घंटों, या लिफ्ट मैन होते हैं वो घंटों खड़े रहते हैं, अब ऐसी परिस्थिति में वो अपनी इस तकलीफ को पहचाने कैसे?
1: बहुत अच्छी बात है कि पहले तो प्रॉब्लम है और वो कैसे मैनिफेस्ट करता है वो जानना चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है, पैर में सूजन आना शुरू हो जाता है।
0: अच्छा, पैरों में।
1: जैसे आपने बोला, बहुत से लोगों को स्टैटिस्टिक है कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ वेनस प्रॉब्लम है फुट लेग में, लोअर लिम में 50% लोगों को है। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ वेनस डिजीज। तो उसमें सबसे पहले जो लॉन्ग स्टैंडिंग, जो आप देखते होंगे सफर में जाते हैं या कोई लंबा काम करके आते हैं, तो पैरों में थोड़ी सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ वो कॉस्मेटिक नहीं है, उसके पीछे कुछ पैथोलॉजी भी, प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब थोड़े दिन और निकलते हैं, बिकॉज ये तुरंत नहीं होता है, वेरिकोज वेन डेवलप नहीं होते, इट टेक्स लॉन्ग टाइम,
0: लॉन्ग टाइम, एक दो साल का समय लग जाता है।
1: हाँ जी, उससे भी ज्यादा भी लग सकता है। तो उससे पहले पैर में सूजन आना शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको वेनस प्रोमिनेंस देखेंगे, जो ब्लू ब्लू वेन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर आप अगर उसको भी इग्नोर करते हैं तो और प्रोमिनेंट होगा और वो टॉर्चुअस से हो जाते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े से दिखने लगेंगे, स्ट्रेट वेन्स नहीं होके उसका कैपेसिटी बढ़ने लगता है, जिसमें वेनस पुलिंग होने से क्या होता है, वो लंबा और मोटा हो जाता है, तो वो टॉर्चुअस हो जाता है,
0: जैसे आपने कहा वो स्नेक वाला वैसा दिखने
1: टाइप के दिखेंगे आपको। तो ये सेकंड उसके बाद का स्टेज है। उसके बाद भी अगर हम छोड़ देते हैं, नहीं अटेंशन देते हैं, तो फिर आप देखेंगे ब्लैकिश पिगमेंटेशन होता है, हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं, मतलब ब्लड के कतरे, जो खून की कतरे हैं वो बाहर, रेड ब्लड सेल्स बाहर आते हैं और उसमें से जो आयरन निकलता है वो स्किन को ब्लैकिश पिगमेंटेशन देने लगता है। जी, तो वो एक उसके बाद का स्टेज है जिसपे भी आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कुछ उसमें फैट डिपोजिट होने लगता है। और फिर उसके बाद इचिंग शुरू हो जाएगा। तो अच्छा। कई बार आप देखते होंगे लोग बोलेंगे कि शाम को घर आता हूँ, पैर में बहुत खुजली होता है, इचिंग सा रहता है,
0: दर्द बहुत होता है, खुजली बहुत होती है,
1: तो इचिंग सा होने लगेगा। इवनिंग होते होते पैरों में, काफ में क्रैम्स होना और भारीपन लगना, तो ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर इनको भी अभी इग्नोर करते हैं, मेडिकल एडवाइस नहीं लेते हैं, कुछ केयर नहीं कर पाते हैं, तो फिर अल्सर्स बनने लगते हैं, छोटे छोटे इचिंग के बाद छोटे छोटे घाव बनेंगे और वो ग्रेजुअली डीप हो जाते हैं और उनको वेनस अल्सर कहते हैं। ये फुल थिकनेस स्किन लॉस हो जाता है। एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हील, किसी भी मेडिसिन से हील नहीं होता है। कुछ भी आप एंटीबायोटिक देते हैं, लोग कुछ भी करते हैं, उससे ठीक नहीं होगा,
0: ठीक नहीं होगा
1: जब तक कि हम उसके कॉज को खत्म नहीं करेंगे। लाइक जब तक वेरिकोज वेन को एबलेट नहीं करेंगे, खत्म नहीं, ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक घाव बंद नहीं होगा।
0: बिल्कुल, और ये बहुत सीरियस सिचुएशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है, आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप सर्जन हों, चाहे आप गार्ड हैं, या फिर किसी भी प्रकार की आप जॉब कर रहे हैं और आप खड़े बहुत देर तक रहते हैं, 6 से 7 घंटे 8 घंटे, सो आपको अपने सिम्टम्स को समझना है। पैरों में होने वाली स्वेलिंग, साथ ही पैरों में होने वाली इचिंग जो होती है, आपकी टांगों में अगर इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा और नसें जो हैं वो अब विजिबली दिखाई दे रही हैं, थोड़ी मोटी हो गई हैं और आपको तकलीफ दे रही हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे जाकर वेरिकोज वेन्स में तब्दील हो सकती है। ये अभी शुरुआत है, इसलिए ये सिम्टम समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे जाकर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बड़े बड़े घाव हो सकते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं, कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर पाती है। इसलिए अभी अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो बिना देर करे डॉक्टर से ज़रूर मिलें। फिलहाल बहुत सारी बातें और भी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं आप इसके बारे में जानेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बातें चल रही हैं वेरिकोज वेन से जुड़ी हुई। वेरिकोज वेन एक ऐसी समस्या जो आपकी टांगों में होने वाली प्रॉब्लम है, नसों का बहुत ज्यादा विजिबल होना, बहुत ज्यादा स्वेलिंग की वजह से आपको पेन होना, इचिंग होना, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरुआती दौर में सिम्टम्स के तौर पर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये घाव यानी चोट सी भी बन जाती है जिसका ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल है। पर अगर ये शुरुआती दौर के सिम्टम्स आपने समझ लिए तो फिर क्या इलाज होगा और डॉक्टर कैसे आपकी वेरिकोज वेन्स की समस्या को सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार से जो कि जाने माने सर्जन है, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट है और हमारे आज के एक्सपर्ट भी। सो डॉक्टर साहब, क्या ट्रीटमेंट रहेगा? अब एक व्यक्ति है, कोई टीचर है सपोज, और 36-37 साल की उम्र है, उनको ये दिक्कत जो है वो शुरू हो गई है, उनके पैरों में स्वेलिंग हो गई है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके पैरों में वेरिकोज वेन्स की हल्की हल्की समस्या आने लगी है, जैसे आपने कहा कि वेट की वजह से हो जाती है प्रॉब्लम। सो अब उनको क्या ट्रीटमेंट आप दें?
1: बहुत अच्छी बात। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, जो कितना समस्या कितनी गहरी है, कितना कहां से शुरू है, ये पता करना चाहिए हम लोगों को। उसके लिए सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जो हम देख के आंख से और डिफरेंट मेथड से ये पता करें कि ये प्रॉब्लम कहां से शुरू है
0: जी।
1: और उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम लोग उसको कन्फर्म करते हैं
0: जी।
1: तो नॉर्मली पैर में ना दो वेनस सिस्टम है, एक तो डीप और सुपरफिशियल बताया। सुपरफिशियल में भी एक ग्रेट सेफेनस वेन है, लंबी वाली, जो जांग के पास से थाइक्स के से शुरू होके और फुट तक जाती है।
0: ओके।
1: तो उसको ग्रेट सेफेनस वेन बोलते हैं। और एक नी के पीछे से
0: काफ मसल्स,
1: फुट काफ मसल्स के थ्रू फुट में जाती है
0: जी।
1: उसको शॉर्ट सेफेनस वेन बोलते हैं। तो ये दो सिस्टम ऑफ वेन्स है जिसमें वेरिकोज वेन्स होते हैं नॉर्मली। तो उनको हम लोग पहले इवेलुएट करते हैं, क्लिनिकल मेथड से देखते हैं कि किस सिस्टम का प्रॉब्लम है, और फिर एक अल्ट्रासाउंड टाइप का चीज होता है जो डॉपलर बोलते हैं।
0: वेनस डॉपलर वगैरह, कलर डॉपलर जी
1: जी। तो वेन्स का भी करते हैं, आर्टरी का भी करते हैं। इसमें वेनस डॉपलर करके हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा रियल वाल्व कौन सा खराब है, किस लेवल पे खराब है, और फिर उसके नीचे डीप और सुपरफिशियल वेन्स के बीच में कई कनेक्शंस होते हैं, उसमें जो परफोरेटर है उसमें वाल्व होते हैं, तो वाल्व कहाँ पे खराब है, तो जहां जहां होता है उसको हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं स्किन पेंसिल से ड्यूरिंग प्रोसीजर डॉपलर के टाइम में, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं
0: जी। जी जी। तो यानी पहले आप उस चीज को समझेंगे कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब डॉक्टर साहब, अगर ट्रीटमेंट की बात मैं करूँ तो ट्रीटमेंट क्या खाली ओरल मेडिकेशन से ठीक हो जाता है, या फिर कोई सर्जरी या किसी तरीके की और कुछ आप चीजें करते हैं?
1: कई स्टेज है ट्रीटमेंट के। अगर बहुत अर्ली है तो मेडिसिन भी है, लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं और उनको बड़े लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है विद मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, जैसे वेट लॉस करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि वॉक करने से जो हमारे पेरिफेरल हार्ट, जो सोलियस मसल के अंदर जो पंप है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फिर वेनस फ्लो को बढ़ा देते हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो स्टेसिस कम हो जाता है। तो एक तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद एक स्टॉकिंग सुना होगा आपने, कंप्रेशन स्टॉकिंग होते हैं, तो उसमें कई टाइप के हैं, ग्रेड 1, 2, 3 करके। तो उस स्टॉकिंग को आप पहन सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, जब आप वॉक करते हैं या लॉन्ग खड़े रहते हैं, तो उस समय आप पहन के उसको यूज करके अपने वेनस रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, और अर्ली स्टेज में इससे फायदा भी हो सकता है।
0: ओके, यानी चीजें बेटर हो सकती हैं सिर्फ ओरल मेडिकेशन से।
1: ओरल मेडिकेशन एंड कंप्रेशन स्टॉकिंग, जिसका लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है, जो बड़े सारे दिन खड़े रहते हैं, तो उनको अगर पैर में सूजन आना शुरू हो गया तो कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनना शुरू करना चाहिए।
0: जी जी। डॉक्टर साहब, सर्जरी जो होती है वो किस तरीके से होती है? लेजर होती है या जैसे आप करते हैं नॉर्मल सर्जरी वैसे होती है, और कितने टाइम में रिकवरी हो जाती है इसमें?
1: शुरू में जब हम लोग पढ़े कॉलेज में थे तो उस समय तो ओपन सर्जरी ज्यादा होता था, स्ट्रिपिंग करते थे, वेन के अंदर एक तार डाल के उसको खींच के निकाल देते थे। थोड़ा सा म्यूटिलेटिंग था, कुछ साइड इफेक्ट्स भी उसके होते थे, नर्व इंजरी वगैरह हो जाता था। धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट सा हो गया है, और आज के दिन में जैसे एडवांसमेंट हुआ सर्जरी में, बहुत सा चीज आ गए, तो लेजर के आने से एकदम से रिवोल्यूशनाइज हो गया। पिछले 10-15 साल से लेजर वेरिकोज वेन हम लोग कर रहे हैं।
0: अच्छा
1: जी। और उसमें बहुत कम तकलीफ होता है, बस एक नीडल प्रिक करते हैं वेन में और अल्ट्रासाउंड में देखते हुए, और फिर एक सीथ डाल के उसके थ्रू लेजर फाइबर्स जाता है, और ट्यूमिसेंस देते हैं, मतलब ठंडा पानी या उसमें विथ कुछ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डाल के, सो दैट की पोस्ट ऑपरेटिव पेन ना हो. तो उसमें फिर लेजर फाइबर से मतलब 60 जूल पर सेंटीमीटर एनर्जी डिलीवर करते हैं, सो दैट कि वो बर्न हो जाए, कोलैप्स हो जाए वेन्स. फिर वेन धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं, वो बंद होता जाता है.
0: जी, और इसमें रिकवरी कितने समय में हो जाती है? क्या व्यक्ति दोबारा वही जो जॉब है अपनी कर सकता है? सपोज कोई टीचर है तो वो टीचिंग प्रोफेशन वापस अपना शुरू कर सकती है?
1: कब से रिज्यूम करे अपना जी? तो मैं आपको ये बता थी कि पहले तो एक लेजर था, फिर उसके बाद थोड़े RFA आया, रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेजन बोलते हैं वो. फिर कुछ हाल के दिनों में कुछ ग्लू भी आए हैं, तो उससे वो थोड़ा एक्सपेंसिव है ज्यादा, बट और भी कम पेन और फास्टर रिकवरी. जो आप बोलिए कब ज्वाइन कर सकता, तो नॉर्मली ये सारे जो भी कोई प्रोसीजर करते हैं हम लोग 24 आवर में सारे पेशेंट घर चले जाते हैं. मतलब कैन डू इन डे केयर आल्सो, बट एहतियातन

0: डिजाइन हो सकता है दोबारा, क्योंकि बॉडी में एक बड़ा मतलब फैंटास्टिक फीचर बोले कि हमारा बॉडी खुद को रिकवर करता है, रिपेयर करते रहता है। तो जिस वेन को हम लोग बर्न कर देते हैं वो धीरे धीरे देखेंगे रिकैनलाइज हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे कई बार आपने सुना होगा पैर के नसों में ब्लड जमा हो गया, थ्रोम्बस बन गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो 4-6 महीने में आप देखेंगे वो रिकैनलाइज हो जाते हैं, फिर से उसमें नए वेन्स पेटेंट हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो वैसे ही बॉडी अपने को रिपेयर करता है और वो वेन फिर से पैदा हो जाते हैं, और लेकिन बहुत कम नंबर ऑफ पेशेंट्स में, 5-10%, बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। तो ऐसे लोगों को होने की संभावना है 5 ईयर्स के बाद।
1: ओके, सो वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट आपने समझ लिया है, सर्जरी से या फिर ओरल मेडिकेशन से, लाइफस्टाइल चेंज से या फिर ग्लू से। जी हाँ, ग्लू से भी वेरिकोज वेन्स को ठीक किया जा सकता है, ये डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया है। लेकिन आगे हम जानेंगे कि वेरिकोज वेन्स की समस्या आए ही ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर किसी को ऑलरेडी वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, रीअकरेंस ना हो, तो भी हमें क्या करना चाहिए, जानेंगे ये सारी चीज़ें इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातें चल रही हैं आज वेरिकोज वेन से जुड़ी हुई, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में अक्सर आपने बहुत कम लोगों को बात करते हुए देखा होगा, पर बात करना जरूरी है। अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है, आप काफी घंटों तक नॉनस्टॉप खड़े रहते हैं, तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके पैरों में बहुत स्वेलिंग आ रही है और नसें जो हैं आपकी वो विजिबल हो रही हैं, थोड़ी मोटी दिख रही हैं, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या आप क्रैम्प्स भी उठने लगे हैं, तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। वेरिकोज वेन्स खतरनाक क्यों है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया है हमें कि भाई ये हार्ट पर भी असर डालती हैं। अगर नसों में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो सीधा दिल पर असर पड़ेगा, और दिल पर असर पड़ेगा तो आपकी पूरी हेल्थ खराब हो सकती है। इसलिए वेरिकोज वेन्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ग्लू हो या फिर सर्जरी हो या फिर ओरल मेडिकेशन, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि वेरिकोज वेन्स की नौबत आए ही ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जाने माने सर्जन हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर साहब, अब जानना चाहूंगी आपसे कि कैसे कोई व्यक्ति इस सिचुएशन में पहुंचे ही ना, उसके लिए अपना ख्याल क्या रखें, क्या डाइट ठीक रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, क्योंकि जनरली हमने यही देखा है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पहले ही रोक दिया जाता है।
1: मैडम, इसमें ना दो तरह के दो पार्ट हैं। एक तो ये है कि जो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में और कुछ चीजें जैसे हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे एजेनेसिस ऑफ वाल्व है या फैमिलियल ट्रेट्स हैं, तो ये इतनी ग्रुप है, किसी किसी देश में किसी किसी रीजन में ज्यादा होता है, तो ये सब अपने कंट्रोल में तो है नहीं, तो इनको, लेकिन इनका रोल बहुत कम है
0: जी,
1: बहुत रेयर है ये सब, तो उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट जो कंट्रोल करने वाले पार्ट हैं, उस पे हम लोगों को थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वेट गेन को रोकना, तो उसमें आपको डाइटरी मॉडिफिकेशंस और फिजिकली एक्टिव रहना, ताकि आपके जो पेरिफेरल हार्ट हैं, सोलियस मसल्स का मूवमेंट हो, काफ का मूवमेंट ज़्यादा रहे, तो उससे क्या होगा कि ये वेन डेवलप नहीं होंगे। या जैसे आपका, आप बात कर रहे हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग वाले जॉब हैं, तो वो भी बीच में थोड़ा ब्रेक लें और पैर को मजबूत रखें विद द गुड एक्सरसाइज, वॉक करके बीच बीच में आप काफ को मूव करें, फुट को मूव करते रहें, सो दैट कि आपका काफ रिलैक्स रहे मसल्स को। जैसे आप देखते होंगे लॉन्ग फ्लाइट में हम लोग जाते हैं, तो वो उसमें लिखा रहता है प्लेन में भी कि पंजे को चलाते रहें, बीच बीच में पैर को उठाएं, ताकि आपका ब्लड का फ्लो बना रहे। तो ये एक्सरसाइज, ये मॉडिफिकेशन आप अपने डे टू डे लाइफ स्टाइल में भी डाल सकते हैं, जो आपके वेरिकोज वेन को प्रिवेंट कर सकता है।
0: ओके जी जी, यानी अपना जो है फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने वजन को कंट्रोल करें, अपनी डाइट को लिमिटेड ठीक ठाक तरीके से मैनेज करें और फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें, तो आपकी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है, अगर हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो आप तक पहुंचेगी भी नहीं। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: तो वेरिकोज वेन्स के बारे में हम जान चुके हैं, बस हमारा तात्पर्य या फिर हमारी कोशिश ये रहती है कि आप अपना ख्याल रखें और फिट रहें, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब कुछ कमा सकते हैं, बस सेहत नहीं कमा सकते जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, एक नए टॉपिक से जुड़ी हुई बातचीत पर। तब तक मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त। Feel good, feel live. This is Deeksha signing off.

0: Dim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana
1: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा,

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कवि देव के बारे में। रीतिबद्ध काव्य परंपरा के आचार्य कवि देव रीति काल में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रयदाताओं और राजाओं को समर्पित करने के उद्देश्य से रचा था। वो खास तौर से श्रृंगार रस के कवि हैं और उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य के भावपूर्ण और सूक्ष्म चित्र मिलते हैं। उनकी कविताएं, जिनमें हंसी की चोट, सपना और दरबार को विद्यालयों के साथ साथ बीए और एमए के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है, तो आज इनके बारे में, यानी कि रीतिबद्ध कवि देव के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा, इनके जीवन की बात आपके साथ साझा करूंगा और इनकी रचनाओं का जिक्र भी होगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है आज कवि देव के बारे में। देखिए दोस्तों, रीतिबद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि देव का कोई प्रमाणिक जीवन वृत्त अब तक सुलभ नहीं हो सका है, लेकिन साहित्यविदों और इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म लगभग सन 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। उनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था, लेकिन वो अपनी काव्य रचनाओं में देव उपनाम का प्रयोग करते थे। कुछ स्रोतों में पिता का नाम बिहारीलाल बताया गया है। उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के विषय में अधिक प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी है आज आपके साथ साझा करूंगा कवि देव के बारे में। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, माना जाता है कि कवि देव ने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रय दाताओं और राजाओं के सम्मान में रचा था। मुगल बादशाह यानी औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद उन्हें अनेक आश्रयदाताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा संतोष सहृदय आश्रयदाता यानी भोगी लाल के यहाँ प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उनके काव्य से प्रसन्न होकर भोगी लाल ने उन्हें लाखों की संपत्ति उपहार स्वरूप प्रदान की थी, जबकि देव का अधिकांश जीवन राज दरबारों, नवाबों और अमीरों के आश्रय में बीता था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें राज दरबारों का आडंबर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कवि देव की रचनाओं के बारे में। बताया जाता है कि 16 वर्ष की किशोर अवस्था में ही देव ने भाव विलास जैसी प्रौण रचना का सृजन किया था। वहीं इनकी काव्य रचनाओं में संस्कृत, प्राकृत और साहित्य शास्त्र की पैठ स्पष्ट दिखाई देती है। विद्वानों द्वारा उनके ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। अब मैं आपको उनकी कुछ काव्य रचनाओं के नाम बताता हूँ, जैसे रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सिरजान, सुजान विनोद, राग रत्नाकर, शब्द रसायन, देव माया प्रपंच, सुख सागर, प्रेम दीपिका, सुमेल विनोद और काव्य रसायन। तो ये इनकी वो काव्य रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ सवैये भी लिखे थे। कवि देव के सवैयों के बारे में भी बात होगी और सवैये लिखने में ये किस भाषा का इस्तेमाल करते थे वो बात भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।
1: पल भर

0: चार गुलाब।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
2: दोस्तों, बात हो रही है कवि देव के बारे में। उनके कुछ सवैये हैं जो कि बड़े मशहूर हैं और उनकी भाषा भी अपने देश भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। वो लिखते हैं, ता दिन ते अति व्याकुल है, तिये जा दिन ते पिए पंत सिधारे, भूख ना प्यास बिना ब्रजभूषण, भामिनी भूषण भेष बिसारे, पावत पीर नहीं कवि देव, करो रिक मोरी सवै करे हारे, नारी निहारी निहारी चले, तजी वैद बिचारी बिचारी बिचारे। कवि देव अपने दूसरे सवैये में लिखते हैं, बोली उठो पपीहा कहूं, पीब सु देखिए को सुनी कै धुनी धाई, मोर पुकारी उठे चहूं ओर, सुदेव घटा घिर की चहूं दहाई, भूली गई ती को तन की सुधी, देखे उतै बन भूमि सुहाई, सांसन सो भरी आयो गरु, अरु आसुन सो अखियां भरी आई। तो दोस्तों, इस तरह के सवैये लिखने का अंदाज था कवि देव का। इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।
3: नफरत

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, कवि देव के सवैयों के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था। एक उनका सवैया जो कि राधिका की बात करता है, कान्हा की बात करता है, वो अपने सवैये में लिखते हैं, राधिका कान्हा को ध्यान धरे, तब कान्हा है राधिका के गुण गावे, त्यों असुवा बरसे बरसानी को, पाती लिखे लिखी राधिका धावे, राधे है जाई तेही छिन्नदेव, सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे, आपू ते आपू ही में उर्जे, सुरझे बिरझे समुझे समुझावे। तो इस तरह से दोस्तों अपने सवैये के माध्यम से उन्होंने राधिका और कान्हा की बात को भी लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन कहते हैं संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो इस संसार में आया है उसे वापस जाना भी है। आचार्य कविदेव ने कई दशकों तक अपने आश्रयदाताओं के लिए अनुपम काव्य रचनाओं का सृजन किया था, लेकिन वृद्धावस्था के कारण सन 1767 के आसपास उनका देहांत हो गया। फिर भी वो अपनी लोकप्रिय काव्य रचनाओं के कारण आज भी साहित्य जगत में विख्यात हैं। अब दोस्तों वक्त मेरे जाने का हो चुका है, आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।

0: रेडियो वन ऑफ रेशनो वन ऑफ 7.8 एफएम पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
1: जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर। इस इबादत का यही दस्तूर है, इसमें उसमें और उसमें है वो ही, इसमें उसमें और उसमें है वो ही। यार मेरा हर तरफ भरपूर है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 पर शुरू हो चुकी है प्यार मोहब्बत अमन की महफिल, सूफी महफिल। और इस महफिल में शामिल सभी दोस्तों की खिदमत में फहीम का नमस्ते सलाम।

0: इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, सबका नाथ परम पिता परमेश्वर है।
1: दोस्तों सूफी जो है ना, सूफी तो बस अपने प्रियतम के प्यार में दीवाना होता है, उससे मिलने के इंतजार में बेताब होता है। और सच तो ये है कि बेकारों या बेखबरों का भी कोई दर्शन होता है, कोई धर्म होता है, वो तो बस अपने के मिलन में व्याकुल होता है। तो ऐसे में सूफी को या सूफीवाद को किसी धर्म से जोड़ना गलत ही नहीं, निरर्थक है, क्योंकि अपने इष्ट के प्रति ये अवस्था किसी की भी हो सकती है। और जब भी कोई इस स्थिति से गुजरता है तो वो हर बंधन से परे हो जाता है, हर बंधन से आजाद हो जाता है।

इस दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका जीवन अकलंक हो। दोस्तों, सूफी संत बुल्ले शाह कहते हैं, प्रभु कहीं और नहीं, मेरे अंदर है। उसे बाहर खोजना, उसे बाहर तलाश करना फिजूल की बात है, सब व्यर्थ है। इसलिए मैं काबे की ओर कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे दिल में तो इनायत शाह के तख्त हजारी की चाह है। मैं क्यों कर जावा काबे नू, दिल लोचे तख्त हजारे नू। इन्हीं बातों का समर्थन करते हुए सूफी संत शेख फरीद जंगल जंगल प्रभु की तलाश में भटकते हुए वैरागियों से कहते हैं, अरे ओ वैरागी, जंगल में क्यों मारा मारा फिरता है, क्यों पांव तले कांटों को रौंदता है, भगवान तेरे हृदय में ही बसता है, इसे बाहर जंगल में क्यों ढूंढता है। इसी बात का समर्थन करते हैं सूफी संत सुल्तान बाहू। सुल्तान बाहू कहते हैं कि भक्ति का आडंबर करने से, यानी कि माला फेरने से, सिर मुड़ाने से, व्रत उपवास रखने से, रोजे रखने से, नमाज पढ़ने से कोई खुदा को नहीं पा सकता, कोई ईश्वर को नहीं हासिल कर सकता। सभी कर्म कांड दिखावे मात्र हैं।

अध्ययन हमें आनंद प्रदान करता है, अलंकृत करता है और योग्यता प्रदान करता है। दोस्तों, कई सूफियों ने जिक्र यानी कि सिमरन ध्यान को ही कलमा या जिक्र रूही कहा है। उन्हीं में से एक है रूमी। रूमी कहते हैं, तू जिक्र कर जिससे वो रब प्रकट हो जाए। ऐसा जिक्र नहीं जो जुबान से हो, क्योंकि जुबानी जिक्र आरजी होता है, पर जिक्र रूही दरवेशों के हुनर हैं। लेकिन लोग हैं दिखावे में लगे हुए हैं। कोई ढेरों किताबें पढ़कर खुद को ज्ञानी करार देता है। किताबी ज्ञान को पढ़कर किसी को इल्म या आत्मज्ञान हासिल नहीं हो जाता, ना ही कोई किताबें लिखकर बहुत बड़ा ज्ञाता हो जाता है। इसलिए फिर कलमा पढ़ा जाए या किताबें, ये सब कभी किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब बाहरी बातें हैं और सच्चा सुख भीतर है, मन में है, जहां सच्ची सत्ता यानी खुदा का वास है।

अनर्गल प्रलाप भी ध्यान से सुनो, उसमें भी अर्थ होता है। कीचड़ में हाथ डालने पर ही कमल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, फना मतलब मिट जाना, खो जाना, मिल जाना। स्वयं को परमात्मा में, परम शक्ति में इस कदर लीन कर लेना कि स्वयं का कुछ भी अस्तित्व ना बचे। खुदा में खो जाने की अवस्था को कहते हैं फना। ऐसी स्थिति में साधक खुद नहीं बचता। सूफियों में फना की ये स्थिति हिंदू धर्म के मोक्ष और बुद्ध धर्म के निर्वाण की स्थिति से काफी मिलती जुलती होती है। और जब कोई भी सूफी फना होता है, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है।

0: हर काम में अड़ंगा लगता है। ये प्रकृति का नियम है। पाते वही हैं जो इसकी परवाह किए बिना कदम बढ़ाते चले जाते हैं। दोस्तों, उसे संसार के दुख क्या दुख देंगे जिसने खुद दुखों को गले लगा रखा हो, जिसने हमेशा दुख का स्वागत किया हो और पीड़ाओं को चुना हो, उसे जन्म मरण का दुख क्या सताएगा। प्रेमी खुद अपना ख्याल रखना जानता है। प्रेमी प्रेम में खुद को पहचानना सीख जाता है। प्रभु प्रेम ही जिसके जीवन का आधार हो, उसको खुद उस आदि सत्ता से आदेश हासिल होने लगते हैं। जिसने खुद अपने खुदा के हाथों प्रेम का प्याला पिया हो, उसके जीवन में किसी भी तरह की दुविधा या मुसीबत की कोई जगह नहीं बचती।
1: प्रीत खिलत मोहे ऐसी लागी,

0: जो अडिग है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंगद की तरह अपना पांव रख दो, तुम्हारी जय होगी।
1: दोस्तों, सूफी शेख कहते हैं, अपनी कमी या कमजोरी जान लेना ही काफी नहीं, उसको जड़ से मिटाना भी जरूरी होता है। सिर्फ सोचो ही नहीं, उसे करो भी। जिसके लिए तीन चीजें जरूरी हैं, या यूं कहें तीन नियम हैं। पहला, कि अच्छा और शुभ करने में कभी भी वक्त बर्बाद मत करो। कोई मुहूर्त या बहाना मत खोजो। हर प्रकार के आलस से बचो। दूसरा, कि अपने अच्छे कर्मों पर भी ध्यान दो। जिन्हें तुम अच्छा कहते हो या लोग अच्छा कहते हैं, उसमें भी खुद कमी ढूंढो। नहीं तो हमें ये गलत फहमी होगी, या अहंकार होगा, या घमंड होगा कि हम सबसे सही हैं या हम सबसे नेक हैं।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे थे प्यार मोहब्बत अमन की महफिल, सूफी महफिल। लेकिन अब आपकी रात का हम सफर फहीम चाहता है आपसे इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

ख्याल करना कि सुख से भी बड़ी संभावना दुख में है, क्योंकि आदमी सुख में तो सो जाता है, दुख में जागता है। घर बन जाए तो स्वभावतः हम कहते हैं हमारे गुरु की कृपा, घर जल जाए तब भी तुम हिम्मत रखना कहने की हमारे गुरु की कृपा। जो घर बारे आपनों चले हमारे संग, कबीर ने कहा है, जो सब जला जलू के तैयार हो जाए वो हमारे साथ चल सकता है। तो ठीक ही हुआ माणिक बाबू, आग भी लग गई, अग्निकांड में जल भी गया, संजय गांधी भी डूबे, 5 लाख भी ले गए, स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा है, हृदय भी दुर्बल हुआ है, ये सब भी ठीक है, इस सब को भी वरदान में बदला जा सकता है। सिर्फ जाग के इसे देखना, इससे तादात्म मत बनाना। जो घर जल गया वो अपना था ही नहीं, और जो हृदय दुर्बल हो गया है वो भी तुम्हारा असली हृदय नहीं है, और जो शरीर बूढ़ा होने लगा है वो भी तुम नहीं हो, और जो रुपए तुम्हारे डूब गए उसमें तुम्हारा क्या था, किसका क्या है। हम ऐसे ही आते बिना कुछ लिए और बिना कुछ लिए जाते, इसमें अगर हम साक्षी हो पाए, जाग के देख पाए, तो परम प्रसाद उपलब्ध होता है। और ध्यान रखना, दुख में जागने की संभावना ज्यादा है, सुख में तो आदमी सो जाता है, सुख में जागना ही कौन चाहता है। जब तुम कोई सुखद सपना देख रहे हो फिर कोई जगाने लगे तो तुम कहते हो ठहरो भी, अभी पूरा सपना तो हो जाने दो, लेकिन दुखद सपने में कोई जगाए तो तुम धन्यवाद देते हो। फिर ख्याल करना, कहते हैं ना हम कि दुख में भगवान की याद आती, दुख में हमें दिखाई पड़ना शुरू होता है जगत का सत्य, सुख में तो आंखों पर पर्दे पड़ जाते और झूठ सच मालूम होने लगता है, दुख में असलियत दिखाई पड़ती। बुद्ध के 4 आर्य सत्य कि दुख है, पहला आर्य सत्य अनुभव में आना शुरू होता है, बुद्ध के वचन सार्थक होने शुरू होते हैं कि दुख है, जरूर दुख है। अब इस दुख के साथ अपना तादात्म्य मत करना, ही ऐसा मत सोचना कि मैं दुख हूं तो सौभाग्य की घटना घट जाएगी। दूर खड़े रहना, देखते रहना, जो हो रहा है वो दृश्य है, मैं देखने वाला हूं। अगर हम दृष्टा होकर खड़े हो जाएं तो फिर कोई विचलित कर नहीं पाती बात, फिर हम असंग मन, निर्लिप्त मन, अकंप मन अपने भीतर इतने दूर बने रहते हैं इस जगत में होकर जितने दूर हुआ जा सकता है। जगत में होना और जगत में न होना एक साथ घट जाते, और जब दोनों बातें एक साथ घटती हैं तभी कुछ घटा, तभी जानना कुछ घटा, तभी जानना कि मेरा संन्यास फलित हुआ। तुम्हारे बाबू ठीक ही हुआ है, इस सबको सौभाग्य मानना, इस सबके बीच शांत भाव से देखते रहना, ये भी चला जाए। एक सूफी कहानी, एक सम्राट बूढ़ा हुआ, उसने अपने वजीरों को कहा कि मुझे कुछ ऐसा सूत्र चाहिए जो हर हालत में काम आ जाए। वजीरों ने बहुत सोचा कि ऐसा सूत्र जो हर हालत में काम आ जाए, उनकी कुछ समझ में ना पड़ा, वो एक फकीर के पास गए। उस फकीर ने एक सूत्र लिखा एक कागज पर, एक अंगूठी में बंद किया और सम्राट को लाके अंगूठी दे दी और कहा इसे खोलना तभी जब और कोई सहारा न रह जाए, जब सब तुम जो कर सकते हो कर चुके हो और कुछ सहारा न रहे तभी खोलना, जल्दी मत खोजना। ये सूत्र ऐसा है कि कठिनाई की आखिरी घड़ी में ही इसका अर्थ प्रकट होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली, कई बार उत्सुकता भी जगी लेकिन वचन दे दिया था तो खोला नहीं। फिर देश पर हमला हुआ, कोई 10 साल बाद सम्राट हार गया, भागा अपने घोड़े पर, जंगल में दुश्मन पीछा कर रहे हैं, दुश्मन करीब आते जाते हैं, उसकी घबराहट बढ़ती जाती, तभी उसे अचानक अपने हाथ में अंगूठी की याद आई, और तभी वो घड़ी भी आ गई, लेकिन सोचा कि अभी भी ऐसी घड़ी कहां आई है, अभी भी बच सकता हूं, अभी भी कुछ कर सकता हूं, लेकिन वो घड़ी भी आ गई। आगे जाके रास्ता समाप्त हो गया, नीचे खाई थी, पीछे लौट नहीं सकता था, दुश्मन करीब आता जा रहा है, घोड़ों की टाप और भी करीब आने लगी, और भी करीब आने लगी। उसने आखिरी क्षण तक धीरज रखा, जब उसे लगा कि बस अब क्षण भर की देर है कि दुश्मन आ जाएंगे, उसने अंगूठी खोली,
कागज निकाला, कागज में कुछ भी न था, एक छोटी सा वाक्य लिखा था, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। एक क्षण में जैसे एक बिजली कौन गई, एक क्षण में उसे दिखाई पड़ा अपना सब जीवन, सब बीत गया। तो स्वभाव था यह भी बीत जाएगा, रुकता क्या है, बचपन नहीं रुका, जवानी नहीं रुकी, पिता नहीं रुके, पत्नी नहीं रुकी, बेटे नहीं रुके, कुछ नहीं रुका, आया और गया। गंगा कितनी बह गई, जीवन के इस चित्र को देखते वो तो भूल ही गया क्षण भर को कि दुश्मन पास, और जब वो जागा इस जीवन की कथा से तो अचानक उसने पाया घोड़ों की टाप सुनाई नहीं पड़ती, वे किसी और दिशा में मुड़ गए थे। 7 दिन बाद वो पुनः जीत गया, वापस अपने महल में आ गया। जब महल में आया तो बड़ा उसका स्वागत हुआ, असरफियां लुटाई गईं, फूल फेंके गए, सारे गांव में दीप मालिका जलाई गई, सारा गांव पागल होकर नाचा, उत्सव मनाया। जब ये सारे उत्सव में अपने हाथी पर सवार उसकी शोभा यात्रा निकल रही थी, तब एक क्षण को फिर उसने अंगूठी खोली, ये सुख, उसने फिर वो कागज पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। उसने अंगूठी वापस कर ली, जैसा वो अलिप्त हो गया था दुख की घड़ी में, वैसा ही अलिप्त हो गया सुख की घड़ी में भी। कहते हैं वह सम्राट बिना कुछ किए समाधि को उपलब्ध हो गया। तो मानिक बाबू, इन घड़ियों का उपयोग करना, जो हो होता है बीत जाता है। एक ही चीज है हमारे भीतर जो कभी नहीं बीतती, वो हमारा साक्षी भाव है, वही है शाश्वत, सनातन, सदैव। उस एक को पकड़ के ही आदमी परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाता है। आखिरी प्रश्न, आपको सुनकर आंसू ही आंसू बहते हैं, रोके नहीं रुकते, मैं क्या करूं, इससे शुभ और क्या होगा? आंसू बहते हैं अर्थात आंसू कुछ कहते हैं। आंसू दुख के ही थोड़ी होते हैं, आंसू आनंद के भी होते हैं, और आंसू सदा उदासी का ही थोड़ी प्रमाण लाते, आंसू उत्सव की भी खबर लाते। आंसू का तो एक ही अर्थ होता है, कुछ जो हम शब्दों से नहीं कह पाते वो आंसू से कहना पड़ता है। आंसू तो बड़ी गहरी अभिव्यक्ति है। आंसू का अर्थ पूछते हो, आंसू के अर्थ यदि भाषा में समा पाते तो फिर मैं रोता क्यों, कविता और कहानी ना लिखता। जब भाषा असमर्थ हो जाती है आंख से आंसू बहते, जो बात हम किसी भी विधा में नहीं कह पाते उसे रो रो कर कहते। आंसू कुछ कहते, कुछ ऐसा कहते हैं जो और किसी विधा में कहा नहीं जा सकता, कुछ ऐसा कहते हैं जो शब्दों में अटता नहीं, बनता नहीं, शब्दों की सीमा है, आंसू असीम है। तो आंसू के संबंध में एक बात समझना, जब भी तुम्हारे मन में कोई भाव इतना घना हो जाएगा, चाहे दुख चाहे सुख, चाहे शांति चाहे अशांति, चाहे उदासी चाहे उत्सव, कोई भी भाव जब इतना घना हो जाएगा कि तुम उसे संभाले ना संभाल सकोगे, तो वही भाव आंसुओं में बहता है। आंसू निर्भर करते हैं, और इनको कुछ रोकना मत। कभी कभी मेरी बात सुन के आनंद के आंसू बहेंगे, कभी कभी मेरी बात सुन के तुम्हें अपने सारे जीवन का दुख याद आ जाएगा, सारे जीवन की व्यर्थता याद आ जाएगी, सारे जीवन का घाव जैसे मैंने छू दिया हो पीला बहने लगेगी, तब भी आंसू बहेंगे। दोनों हालत में शुभ है। आंसू तो इतना ही कह रहे हैं कि तुमसे मेरे हृदय का नाता हो गया, अब नाता बुद्धि का ना रहा, और बुद्धि का जब तक नाता है तुम विद्यार्थी, जिस दिन हृदय का हो गया उस दिन शिष्य, जब तक बुद्धि का नाता है तब तक मैं तुम्हारा शिक्षक, जिस दिन हृदय का हो गया उस दिन गुरु। जिस दिन तुमने आंसुओं से सेतु बना लिया, जिस दिन तुमने आंसुओं में पातियां लिखकर मेरी तरफ भेज दी, दर्द स्वयं ही मचल गया है, गीतों का अपराध नहीं है।

तुम स्वयं ही छलक गया है। अधरों का अपराध नहीं है, गीतों का अपराध नहीं है। प्यार भरे दो शब्द कहे थे पर तुमने रच दिए कथानक। ज्ञात नहीं था बदनामी के व्यग उड़ेंगे कभी अचानक। आकर्षण की विष कन्या से अनजाने ही ब्याह रचाया। सुरभि स्वयं ही बिखर गई है। भ्रमरों का अपराध नहीं है, गीतों का अपराध नहीं है। अश्रु स्वयं ही धुलक गए हैं। पलकों का अपराध नहीं है, गीतों का अपराध नहीं। दर्द स्वयं ही मचल गया है, गीतों का अपराध नहीं। जो स्वयं हो शुभ, जो सहज हो शुभ। आंसू बहे तो रोकना मत, ना बहे तो बहाने की चेष्टा मत करने लगना। जो सहज हो शुभ, जो असहज हो अशुभ। आंसू बहे तो बह जाने देना, संकोच मत करना। यहां कोई लोकलाज थोड़ी करनी। कहा ना मीरा ने, सब लोकलाज खोई। यहां भी रोके रखोगे आंसुओं को तो फिर कहां रोओगे? और अगर आंसू रोक लिए तो फिर मुस्कुराहट भी रुक जाएगी, क्योंकि उसी द्वार से मुस्कुराहट भी आती है जहां से आंसू आते हैं। वहीं से गीत भी पैदा होते हैं जहां से आंसू पैदा होते हैं। वहीं से उत्सव भी झरता है जहां से उदासी पैदा होती। तुम हल्के बनो, तुम सहज बनो। जो आए उसे आने दो, जैसा आए वैसा ही आने दो। तुम जरा भी हेरफेर ना करना। दोनों तरह की संभावनाएं, कुछ लोग जो नहीं रो सकते वो भी चेष्टा कर सकते हैं रोने की, वो गलत हो जाएगी। अभी अपने से नहीं आए हैं तो प्रतीक्षा करो। और कुछ लोग जो रो सकते हैं उनको भी भय लगता है कि रोना कि नहीं, कोई क्या कहेगा, पास पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, गांव में खबर होगी तो लोग समझेंगे पागल, बुद्धि खराब हो गई। तो तुम भी प्रभावित हो गए, सम्मोहित हो गए, लोग कुछ कुछ कहेंगे, तो आदमी रोकता है। नहीं, रोकना मत, क्योंकि यहां अगर हम कुछ भी काम करने इकट्ठे हुए हैं तो वो काम सहजता में ही हो सकता है। यहां तो मैं एक गीत गा रहा हूं, यहां तो मैं तुम्हारे हृदय के तारों को छेड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यहां कुछ सिद्धांत थोड़ी दिए जा रहे हैं, यहां तो एक साधना की जा रही है। मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, प्रणय प्रणय की मधु सीमा में जी का विश्व बसा दो मालिक। रागे हैं लाचारे मेरी, ताने बान तुम्हारी मेरी, इन रंगीन मृतक खंडों पर अमृत रस ढुलका दो मालिक। मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, संस्कृति का बोझ न छू, छू मत इतिहास लोक, छू मत माया न ब्रह्म, छू मत तू हर शोक, सिर पर मत रख अतीत, एक गीत एक गीत। मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, प्रणय प्रणय की मधु सीमा में जी का विश्व बसा दो मालिक। गीत हो कि जी का हो, जी से मत फीका हो, आंसू के अक्षर हो, स्वर अपने ही का हो, प्रलय हार प्रलय गीत, एक गीत एक गीत। मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, प्रणय प्रलय की मधु सीमा में जी का विश्व बसा दो मालिक। यहां तो प्रभु का गीत तुम सुन सको इसका प्रयास चल रहा है। मैं तुम्हारे हृदय के तार छेड़ सकूं इसके लिए तुम्हें राजी कर रहा हूं। ये सारी बातें कि गीता की, कि धम्मपद की, कि जिन सूत्रों की, बहाने, इन बहानों से तुम्हारे हृदय के तार किसी तरह छिड़ जाएं, उनमें झंकार उठे। तुम सहज होगे तो ही झंकार उठ सकेगी। मैं चाहता हूं तुम रोमांचित हो जाओ, तुम्हारा रोआ रोआ कपने लगे, प्रभु के लिए पुकार से, सत्य की आकांक्षा से, अभीप्सा से। उस यात्रा में सहजता पाथे, पुण्य पाथे, वही कलेवा है उस यात्रा में मार्ग का। तो जिनकी आंखें सक्षम है रोने को, रोकना मत। उन्हीं आंखों से अभी आंसू बहते, उन्हीं आंखों से रोशनी भी बहेगी। आंसू साफ कर देंगे रास्ते को ताकि रोशनी बह सके। और ये जो घटना घटती है ये बुद्धि की नहीं, हृदय की है, ये जी की है, ही की है। इसे तो वही पा सकते हैं जो पागल होने को तैयार है। ये मतवालों की दुनिया है,
यहां तुम्हें मैं थोड़ी शराब

0: दिला सकूं तो काम पूरा हो गए। यहां से तुम थोड़े डगमगाते लौटो तो मैं सफल हुआ। तुम कहीं पैर रखो और कहीं पढ़ने लगे तो बात हो गई। एक तरफ तुम बेहोश हो जाओ तो दूसरी तरफ होश जगता है। इस संसार के प्रति बेहोशी आ जाए तो परमात्मा के प्रति होश आता है। यहां तुम अगर बहुत ज्यादा होश से जिए, संभल संभल के जिए, नियंत्रण से जिए तो परमात्मा में कभी भी न जाग सकोगे। और ध्यान रखना, धन्य भागी हैं वे जो यहां सो जाएं और वहां जाग जाएं। तो लोक लाज की फिक्र छोड़ो। पूछा है, आपको सुनकर आंसू ही आंसू बहते, रोके नहीं रुकते, मैं क्या करूं? रो, करने को क्या है? कर करके तो तुमने सब खराब किया है। करने से ही तो कर्म पैदा हुआ है। करो मत, अब होने में बहो। भगवान जेतवन में विहरते थे। पास के किसी गांव से आए एक युवक ने सन्यास की दीक्षा ली। वह सबकी निंदा करता था। कारण हो तब तो चूकता ही नहीं था, कारण न हो तब भी निंदा करता था, कारण न हो तो कारण खोज लेता था, कारण न मिले तो कारण निर्मित कर लेता था। कोई दान न दे तो निंदा करता है, और कोई दान दे तो कहता, अरे यह भी कोई दान है। दान देना सीखना हो तो मेरे परिवार से सीखो। वह अपने परिवार की प्रशंसा में लगा रहता है। शेष सारे संसार की निंदा, अपने परिवार की प्रशंसा, यही उसका पूरा काम था। अपनी जाति, अपने वर्ण, अपने कुल, सभी की अतिशय प्रशंसा में लगा रहता। उसके अहंकार का कोई अंत न था, शायद इसलिए वह संन्यस्त भी हुआ था। एक बार कुछ भिक्षु उसके गांव गए तो पाया कि जैसे वह व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करता था, वैसे ही व्यर्थ ही अपने कुल परिवार की प्रशंसा भी करता था। उसके परिवार की तो कोई स्थिति ही न थी। वह तो अत्यंत हीन वृत्तियों वाले परिवार से आया था। भिक्षु ने यह बात भगवान को कही। भगवान ने कहा, हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। जो श्रेष्ठ है उन्हें तो अपने श्रेष्ठ होने का पता भी नहीं होता है। वही श्रेष्ठता का अनिवार्य लक्षण भी है। फिर यह भिक्षु न केवल इसी समय ऐसा करता घूमता है, पहले भी ऐसा ही करता था और जन्मों में भी ऐसा ही करता था। जन्म जन्म इसने ऐसे ही कमाए। जितनी शक्ति इसने दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा में व्यय की है, उतनी शक्ति से तो यह कभी का निर्वाण का अधिकारी हो गया होता है। उतनी शक्ति से तो न मालूम कितनी बार भगवत्ता उपलब्ध कर ले सकता था। भिक्षुओं, इससे सीख लो, दूसरों की निंदा दूसरों का नहीं अपना ही अहित करती है। ये दूसरों के बहाने अपनी ही छाती में छुरा भोंकना है। अपने पर दया करो और अपने अकल्याण से बचो, क्योंकि मनुष्य अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। युवक ने अत्यंत क्रोध से पूछा, कोई दान न दे तो हम कैसा भाव रखें? कोई दुत्कारे तो हम कैसा भाव रखें? और कोई हमें तो दान न दे और दूसरों को दान दे तो हम कैसा भाव रखें? उस दिन उसने भगवान को भगवान कहकर भी संबोधित नहीं किया। मनुष्य की श्रद्धाएं भी कितनी छिछली। इस पृष्ठभूमि ने भगवान ने आज की पहली दो गाथाएं कही। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। जो दूसरों के खान पान को देखकर सहन नहीं कर सकता, वह दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हो गई है, समूल नष्ट हो गई है, वही दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त करता है। ददाति वे यथा सद्धम यथा प्रसादनम जनो तथ यो मंकु भवति परेशम पान भोजने नासो देवा व रत्तिम व समाधिम अधिगच्छति यस चातम समुच्छिन्नम मूल घंचम समूहतम सवे देवा व रत्तिम व समाधि अधिगच्छति। पहले तो इस पृष्ठभूमि का ठीक ठीक विश्लेषण समझे। कथा छोटी सीधी साधी है, पर अत्यंत मनोवैज्ञानिक है।
1: भगवान के पास एक युवक ने दीक्षा ली और कथा कहती है कि शायद इसलिए दीक्षा ली कि वो युवक अत्यंत अहंकारी था। यह बात पहले समझ लेने जैसी। लोग धन भी जोड़ते अहंकार के लिए और त्याग भी करते अहंकार के लिए। पहले अकड़ के चलते हैं कि कितना उनके पास है, फिर अकड़ के चलते हैं कि कितना उन्होंने छोड़ दिया। जितना उनके पास है उसे भी बहुत बहुत गुना करके बतलाते हैं, जो छोड़ा है उसे भी बहुत बहुत गुना करके बतलाते हैं। लेकिन हर हालत में आदमी अपने अहंकार को ही भजता है। मैं कुछ विशिष्ट हूं, मैं कुछ अनूठा हूं, अद्वितीय हूं, मैं कुछ अलग हूं, औरों जैसा नहीं हूं, मैं असाधारण हूं, सामान्य नहीं हूं। इसी चेष्टा में आदमी लगा रहता है, कभी धन कमा के, कभी बड़ी दुकान चला के, कभी किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित होकर, कभी सबको लात मारकर, लेकिन सबके पीछे मूल आधार एक ही है कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं। आदमी साधारण से बड़ा डरता है। सोचो, ये भाव ही कि मैं साधारण हूं छाती पे पत्थर जैसा रख जाता है। ये ख्याल ही कि मैं असाधारण हूं, विशिष्ट हूं, कुछ अनूठा हूं और तुम्हें पंख लग जाते। लेकिन अगर तुम असाधारण हो तो सभी कुछ असाधारण है। पत्ते, फूल, पत्थर, चांतारे, सभी कुछ असाधारण है। और अगर सभी कुछ असाधारण है तो फिर साधारण असाधारण का भेद ही क्या। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है, ना तो कोई साधारण है ना कोई असाधारण, अस्तित्व एक है। इसलिए कौन साधारण होगा, कौन असाधारण होगा? तो या तो कहो सभी साधारण है तब भी सच, या कहो सभी असाधारण है तब भी सच। लेकिन एक को साधारण और एक को असाधारण करने में भूल हो जाती, कोटियां बांटी की भूल हो जाती, वर्ग बांटे की भूल हो जाती, वर्ण बनाए की भूल हो जाती, कहा कि ब्राह्मण शूद्र भूल हो गई, कहा कि ऊंचा नीचा भूल हो गई, कहा कि शुभ अशुभ भूल हो गई। जहां तक भेद है और जहां तक द्वंद है वहां तक संसार है। तो एक आदमी कहता है कि देखो मैं कितना बुद्धिमान, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पास कितना धन, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पुण्य, मैंने कितना पुण्य किया। इनमें कोई फर्क है? इनमें कोई भी फर्क नहीं। जब तक आदमी कहता है देखो मैं विशिष्ट, तब तक कोई फर्क नहीं। इस जगत में जो आदमी साधारण होने को राजी है वही असाधारण है। जो ये कहने को राजी है कि मैं अति साधारण हूं उसकी ही असाधारणता सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक को असाधारण होने का ख्याल है, इसलिए असाधारण का भाव तो बड़ा साधारण है। तुम अगर कुत्ते से पूछो, घोड़े से पूछो, पशु पक्षियों से पूछो, अगर वो बोल सकते तो वो भी कहते कि तुम हो क्या। आदमी मात्र असाधारण हम है। तुम पत्थर से पूछो, अगर पत्थर बोल सकता तो वो भी कहता कि तुम तो बस आदमी हो, आज हुए कल गए, हम सदा रहते, हम असाधारण है। कोई ना कोई बात खोज ही लेगा जिसके कारण असाधारण की घोषणा हो सके। असाधारण की घोषणा में अहंकार है, साधारण होने के भाव में अहंकार विसर्जित हो गया। और मजा यह है कि साधारण होते ही तुम असाधारण हो जाते, क्योंकि साधारण होने की भावदशा बड़ी असाधारण भावदशा है। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई कृष्ण, कभी कोई क्राइस्ट इस दशा को उपलब्ध होते। ये कथा कहती उस युवक ने अहंकार के कारण ही शायद संन्यास लिया। यदि कोई अहंकार के कारण ही संन्यास ले तो संन्यास व्यर्थ हो गया। अहंकार से जाग के कोई संन्यास ले तो संन्यास की सार्थकता है। कोई ये देख के संन्यास ले कि अहंकार व्यर्थ है, दुख लाता है, नरक है, और अहंकार को छोड़कर जागे तो संन्यास है, नहीं तो संसार से संन्यासी हो गए। अहंकार वैसा का वैसा रहा तो रोग पुराना रहा, नाम बदल लिया, भीतर तो पुराना ही कचरा रहा, ऊपर रंग रोगन कर लिया। ये झूठ चल नहीं सकता, इस झूठ का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, ये प्रकट हो जाएगा। इसलिए युवक सन्यासी तो हो गया, लेकिन पुरानी आदत न छूटी। पुरानी आदत थी अपने को विशिष्ट मानने की। अब अपने को विशिष्ट मानना हो तो दूसरे कुछ भी नहीं है ये सिद्ध करना जरूरी है। दूसरों की निंदा जरूरी है। अहंकार की छाया की तरह दूसरों की निंदा चलती, दूसरे कुछ भी नहीं है ये बताना ही पड़ेगा, ये रोज रोज बताना पड़ेगा। तो वो युवक निंदा करने में संलग्न रहता और अब निंदा कर भी सुविधा से सकता था क्योंकि सन्यासी था। तुम जाओ मंदिरों में आश्रमों में तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी को सुनो, वो निंदा कर रहा है, वो उन चीजों की निंदा कर रहा है जिनका तुम भोग करने में आतुर उत्सुक हो। और शायद वो भी तुम्हें इसलिए प्रभावित करता है कि उन्हीं बातों की निंदा करता है जिनमें तुम्हारा रस है। तुम भी जानते हो कि तुम्हारा रस है, उसका भी रस है, नहीं तो निंदा कभी की खो गई होती। जब कोई साधु सन्यासी समझाता हो कि धन मिट्टी है तो जानना कि उसे धन में अभी भी धन दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो ये तो नहीं समझाता कि मिट्टी मिट्टी है, धन मिट्टी है। जब कोई साधु सन्यासी समझाता हो कि स्त्री के शरीर में क्या है, हड्डी मांस मज्जा मल मूत्र और कुछ भी नहीं है, जब वो तुम्हें ऐसा समझाता हो तो जान लेना उसे अभी स्त्री का रूप आकर्षित करता है। वो तुम्हें नहीं समझा रहा, तुम्हारे बहाने अपने को समझा रहा है। जब वो सांसारिक जीवन की निंदा करता हो तो वो ये कह रहा है कि देखो हम सन्यासी कैसे पवित्र, कैसे पुण्य को उपलब्ध, कैसे साधु, कैसे सरल, और देखो तुम अपना पाप और अपना नरक। वो अपने को ऊपर रख रहा है, वो तुम्हें नीचे रख रहा है। वस्तुतः जब किसी व्यक्ति के जीवन में साधुता का प्रकाश होता है तो वो तुम्हें नीचे नहीं रखता। वो तो कहता है तुम भी भगवान हो, तुम भी आत्मवान हो, तुम भी वही हो जहां मैं हूं। मुझे पता चल गया, तुम्हें पता नहीं चला, इतना सा भेद है। ये भी कोई खास भेद है। तुम्हारे जेब में 1000 रुपए पड़े, मेरी जेब में 1000 रुपए पड़े, मुझे पता चल गया मैंने जेब में हाथ डाल लिया, तुमने हाथ नहीं डाला, ये भी कोई बड़ा भेद है। 1000 रुपए तुम्हारी जेब में भी पड़े, तुम जब हाथ डाल लोगे तभी उपलब्ध हो जाएंगे, ना भी हाथ डालो तो भी उपलब्ध है ही। जानने में फर्क हो सकता है, होने में कोई फर्क नहीं। बोध में फर्क हो सकता है, अस्तित्व में कोई फर्क नहीं। तुम में वही है जो बुद्ध में, तुम में वही है जो कृष्ण में, रत्ती भर कम नहीं। तुम में वही है जो मुझ में, रत्ती भर कम नहीं। सिर्फ तुमने कभी अपनी गांठ खोलकर देखी नहीं, तुमने कभी अपने भीतर टटोला नहीं। बस टटोलने का फर्क है, जिस दिन टटोलोगे उसी दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम पापी हो, परमात्मा पापी कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुम नारकी हो, परमात्मा कैसे नारकी हो सकता है। तुम हो तो परम अवस्था में, लेकिन तुम लौट के अपनी तरफ देखते नहीं, तुम्हारी आंखें बाहर भटक रही। बाहर भटकती आंखें भीतर के खजाने से अपरिचित रह जाती, बस इतना ही फर्क है। फिर अगर साधु को भी यह न दिखाई पड़े कि फर्क ना के बराबर है ना कुछ है, तो फिर किसको दिखाई पड़ेगा। बुद्ध से किसी ने पूछा कि जब आप ज्ञान को उपलब्ध हुए फिर क्या हुआ। बुद्ध ने कहा फिर एक बात घटी, जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ उसी दिन सारा संसार मेरे लिए ज्ञान को उपलब्ध हो गया, उस दिन से मैंने अज्ञानी नहीं देखा। बुद्ध का सारा जीवन लोगों को यही समझाने में बीता कि तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम जिद करते हो कि हम अज्ञानी, और बुद्धों का सारा प्रयास यही है समझाना कि तुम नहीं हो, तुम्हारी भ्रांति तोड़नी, तुम मालिक हो, तुमने गुलाम समझा हुआ, तुम विराट हो, तुमने छोटे के साथ अपना संबंध बना लिया। आंखें आकाश की तरफ उठाओ, सारा आकाश तुम्हारा है, तुम आंखें जमीन पर गड़ाए खड़े हो। इससे यह नहीं होता कि आकाश तुम्हारा नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारी आंखें छोटे में उलझ गई। मगर आंखों की क्षमता आकाश को भी समा लेने की है, कितने ही छोटे में उलझे रहो, जिस दिन आंख उठाओगे उस दिन पूरा आकाश तुम्हारी आंखों में प्रतिबिंबित हो उठेगा। बुद्ध ने कहा जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ सारा संसार ज्ञान को उपलब्ध हुआ, आदमियों की तो छोड़ ही दो, पशु पक्षी पौधे सब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। आत्मज्ञानी जब अपने खजाने को देखता है उसी क्षण उसे दिखाई पड़ जाता है सब खजाना लिए चल रहे, सबके भीतर दीप्त है वो दिया, सबके भीतर रोशनी जल रही। अजीब है हालत की लोग अपनी रोशनी नहीं देखते, भागे चले जा रहे हैं रोशनी की तलाश में, भागे चले जा रहे हैं धन की तलाश में, और धन भीतर पड़ा है, ऐसा धन जिसे तुम चुकाओ तो भी चुके नहीं, जिसे तुम उलीचो तो उलीच ना पाओ, जिसे तुम फेंकते जाओ और बढ़ता चला जाए, ऐसा धन, ऐसा परम धन भीतर पड़ा है। बुद्ध पुरुष तुम्हें पापी से पुण्यात्मा नहीं बनाते, तुमने अपने को देखा नहीं है, बस तुम्हें अपने को देखने की सूझ सीख देते हैं। यह युवक सबकी निंदा में संलग्न रहता है, कारण हो तब तो चूकता ही नहीं था, तब तो चूके ही कैसे। जिसको निंदा करनी है वो कारण होगा तब तो चूकेगा ही नहीं, कारण नहीं होगा तब कारण निर्मित करेगा। जिसको निंदा नहीं करनी है वो कारण तो निर्मित करेगा ही नहीं, जब कारण होगा तब भी दया करेगा, तब भी वो कहेगा तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा जीना तुम जियो, मैं कौन, मैं हस्तक्षेप करूं ऐसा मैं कौन, मैं बाधा डालूं, मैं कहूं कि बुरा भला ऐसा मैं कौन। तुम्हारा जीवन है, तुम अपने जीवन के मालिक हो, तुमने जैसा उसे जीना चाहा है तुम जियो, निंदा नहीं होगी। जीसस के पास एक स्त्री को लाया गया है, गांव स्त्री के खिलाफ है क्योंकि स्त्री ने व्यभिचार किया है, और पुरानी बाइबल कहती है कि जो स्त्री व्यभिचार करे उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। जीसस नदी के किनारे रेत पर बैठे, सारा गांव इकट्ठा हो गया है, और उन्होंने कहा जीसस से पूछ लो, ये बहुत ज्ञान की बातें करता है, और इससे एक बात ये भी पता चल जाएगी कि पुराने धर्म के पक्ष में है या विरोध में। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कहते हो, पुराने पैगंबरों ने कहा है कि जो स्त्री अनाचार करे व्यभिचार में पड़े उसे पत्थर मार के मार डालना चाहिए, तुम क्या कहते हो? क्योंकि जीसस तो हमेशा ऐसा ही कहते थे, पुराने पैगंबरों ने ऐसा कहा लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, तो अब तुम क्या कहते हो? जीसस ने कहा पुराने पैगंबरों ने कहा है कि जो तुम्हें ईंट मारे उसे तुम पत्थर मारना, और जो तुम्हारी एक आंख फोड़े तुम उसकी दूसरी भी फोड़ देना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तुम दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना, और जो तुम्हारी तुम्हारा कोट छीन ले कमीज भी उसे दे देना, और जो तुमसे कहे एक मील तक इस बोझ को ढो तुम दो मील तक उसके साथ चले जाना, मैं तुमसे ऐसा कहता हूं। तो उन्होंने कहा अब तुम क्या कहते हो? पुराने पैगंबर कहते हैं पत्थर मार के इसे मार डालना। उन्होंने एक उपाय खोजा था जीसस को फांसने का, या तो जीसस कहेंगे पुराने पैगंबर गलत कहते तो भी वो जीसस पर नाराज होते, तो एक तुम ही पैगंबर हो अब तक सब ना समझी हुए, या जीसस कहेंगे पुराने पैगंबर ठीक कहते तो हम कहेंगे फिर क्या हुआ तुम्हारे उस प्रेम के सिद्धांत का कि कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा कर देना, पत्थर मार के मारने को मार डालने को कहते हो, हत्या के लिए कहते हो, दोनों हालत में जीसस फंस जाएंगे। गांव बड़ा उत्सुक था, गांव का जो रबाई था जो धर्म गुरु था वो भी आगे खड़ा था आके कि पूछो इस युवक से ये क्या कहता है, और जीसस ने एक क्षण सोचा और कहा आप पत्थर उठा ले, नदी का किनारा था पत्थर तो पड़े ही थे ढेर लगे थे, लोगों ने पत्थर उठा लिए, और जीसस ने कहा अब मैं कहता हूं जिस आदमी ने कभी व्यभिचार न किया हो या व्यभिचार का विचार न किया हो वो पहला पत्थर मारे। वो जो आगे खड़े बड़े बुजुर्ग थे धीरे धीरे भीड़ में पीछे हट गए, धर्मगुरु भी भीड़ में भीतर सटक सरक गया, धीरे धीरे भीड़ छट गई, जीसस और वो स्त्री अकेले वहां छूट गए। वो स्त्री तो उनके पैरों में गिर पड़ी, उसने कहा तुमने मुझे जीवन दान दिया, तुमने मुझे बचा दिया, अन्यथा आज भी मुझे मार डालते, लेकिन पाप तो मैंने किया है, उनसे तो मैं इंकार भी करती रही, तुमसे मैं इंकार भी कैसे करूं, पाप तो मैंने किया है, अब तुम मुझे जो सजा देना चाहो दो। जीसस ने कहा मैं तुझे सजा देने वाला कौन, ये तेरे और तेरे परमात्मा के बीच की बात है, मैं बीच में आने वाला कौन, अगर तुझे लग गया कि पाप है तो अब मत करना, और अगर तुझे लगता हो कि पाप नहीं है तो तेरी मर्जी, जो तुझे पाप न लगे तो जरूर करना। रही बात निर्णय की तो तेरा परमात्मा और तेरे बीच निर्णय होगा, मैं कौन हूं बीच में। उस स्त्री के जीवन में क्रांति घट गई, क्रांति घट गई इसलिए कि इस आदमी ने निंदा नहीं की, इसने कहा मैं कौन हूं, इस आदमी ने कोई वक्तव्य भी ना दिया, इसने ये भी ना कहा कि ये पाप है। इसने कहा तुझे पाप लगता हो तो छोड़ देना, जब तुम्हें पाप लगता

है तो छूट ही जाता है, छोड़ना भी नहीं पड़ता। दूसरे के कहने से कोई छोड़ता है। और निंदा तो करना ही मत, निर्णय तो लेना ही मत। दूसरे आदमी के हम मालिक नहीं है, उसकी स्वतंत्रता परम है, उसकी गरिमा परम है। उसके ऊपर निंदा का एक शब्द भी उठाना सिर्फ अपनी हीनता की घोषणा है। लेकिन वो युवक कारण होता तब तो चूकता ही कैसे, कारण को खूब बढ़ा चढ़ा लेता होगा। कारण ना हो तब भी कारण खोज लेता था, निर्मित कर लेता था। कोई दान ना दे तो निंदा करता कि देखो कृपण, देखो कंजूस, मरेगा पापी, नरकों में सड़ेगा, इसी धन की ढेरी पर सांप बन के बैठेगा जब मरेगा तो निंदा करता। और कोई दान देता तो कहता अरे ये भी कोई दान है। दान देना सीखना हो तो मेरे परिवार से सीखो, ये क्या मुट्ठी मुट्ठी दे रहे हो। अगर कोई किसी दूसरे को दान देता तब तो वो बहुत ही निंदा करता है। उसको देता तब भी नहीं छोड़ पाता था निंदा करना, लेकिन दूसरे को देता तब तो वो बहुत ही निंदा करता है। इसके साथ ही साथ उसका दूसरा काम था अपने परिवार की प्रशंसा, अपनी जाति की प्रशंसा, अपने वर्ण की प्रशंसा। ख्याल करना, तुम जब अपने देश की प्रशंसा करते, अपनी जाति की, अपने वर्ण की, अपने धर्म की, अपने कुल परिवार की, तो तुम वस्तुतः क्या कर रहे हो? तुम प्रकारांतर से अपनी प्रशंसा कर रहे हो। जब तुम कहते हो भारत देश धन्य, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि मैं भारतवासी हूं। अगर तुम चीन में पैदा हुए होते तो तुम कभी ना कहते भारत देश धन्य, तुम कहते चीन देश धन्य। तुम जहां पैदा होते वही देश धन्य होता। ये देश की प्रशंसा नहीं है, ये बड़ी तरकीब से अपनी प्रशंसा है, ये आत्म प्रशंसा है। तुम कहते हो हिंदू कुल धन्य, जैन से पूछो वो कहता जैन कुल धन्य, बौद्ध से पूछो वो कहता बौद्ध कुल धन्य। ये संयोग की बात है कि तुम जैन घर में पैदा हो गए इसलिए जैन कुल धन्य हो गया। ये संयोग की बात है कि तुम हिंदू घर में पैदा हो गए इसलिए हिंदू कुल धन्य हो गया। ये विश्व भरी बातें हैं, लेकिन इनको तुम इस तरह दोहराते हो कि तुमने जैसे विचार ही नहीं किया इन पर। अब ये बड़े मजे की बात है कि जो लोग निरअहंकार की शिक्षा देते हैं वो भी इन बातों में पड़े। तुम जैन मुनि से जाकर पूछो तो वो कहेगा जैन कुल में पैदा होना बड़े पुण्यों से होता है, बाकी आदमी कोई आदमी थोड़ी, बाकी आदमी तो बस नाम मात्र के आदमी। जैन कुल में पैदा होना बड़े पुण्यों से होता है, जन्म जन्म के पुण्यों से होता है। अब यही आदमी रोज समझाता है निरहंकार, अहंकार छोड़ो, और बड़ी गहराई में अहंकार को पोषण दे रहा है। तुम ब्राह्मण से पूछो वो कहता ब्राह्मण होना कोई साधारण बात थोड़ी, असाधारण बात है। तुम पुरुष से पूछो पुरुष कहता है पुरुष होने में धन्यता है, स्त्री होने में दुर्भाग्य। शास्त्रों में लिखा है कि पहले तो मनुष्य होना बहुत दुर्लभ, फिर पुरुष होना बहुत दुर्लभ, फिर ब्राह्मण होना और भी दुर्लभ, फिर इस भारत देश में पैदा होना। ये तो धर्म देश है, यहां तो सदा धर्म की धारा बहती रही, यहां पैदा होना और भी दुर्लभ, बाकी सब तो मलेच्छ। मगर यही धारणा उनकी भी है। और तुम ये मत सोचना कि बड़े बड़े मुल्कों की, छोटे से छोटे मुल्क की भी धारणा यही है। ये धारणा मनुष्य के अहंकार की है। दुनिया में 300 धर्म है और सभी धर्मों के मानने वालों की यही धारणा है। और दुनिया में कितने देश हैं, सभी देशों की यही धारणा है। और अब तो स्त्रियों ने भी घोषणा करनी शुरू कर दी, और ठीक किया है क्योंकि बहुत हो गया। अब पश्चिम में स्त्रियां घोषणा कर रही हैं कि स्त्री होना धन्य भाग है, पुरुष होने में क्या रखा है। पूरब के देशों में बूढ़ों के हाथों से शास्त्र लिखे गए तो बूढ़े कहते हैं बूढ़ों का आदर करो क्योंकि बूढ़ों ने शास्त्र लिखे। पश्चिम में जवान किताबें लिख रहे हैं वो कहते हैं कि 30 साल के ऊपर किसी आदमी का भरोसा मत करना। मैं एक बड़ी मजेदार घटना कल पढ़ रहा था, जेरी रूबिन जिसने इस बात का नारा दिया अमेरिका में कि 30 साल के ऊपर के आदमी का भरोसा मत करना, 30 साल के बाद आदमी बेईमान हो ही जाते, वो ये भूल ही गया ये कहने में कि 30 साल के ऊपर उसको भी एक दिन होना पड़ेगा। जब उसने ये कहा था तब वो 26 साल का था, भूल ही गया होगा जोश खरोश में। फिर वो 32 साल का हो गया। अमरीका में उसके पीछे एक आंदोलन चला इप्पी, और इप्पियों ने
सारे अमेरिका में तहलका मचा दिया कि 30 साल के ऊपर जितने लोग सब बेईमान। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो 30 साल के ऊपर हो गए। एक दिन वो होटल से बाहर निकला जहां ठहरा हुआ था, बाहर आया तो देखा कि उसकी कार में किसी ने आग लगा दी। वो बहुत हैरान हुआ कि किसने ये किया। जब पास गया तो पता चला वहां एक तख्ती लगी, उस पर लिखा है कि जेरी रूबिन अब तुम 30 साल के ऊपर के हो गए, अब हमारे नेता नहीं रहे। जिनका उसने आंदोलन खड़ा किया था वही उसके विरोध में हो गया क्योंकि वो 30 साल के ऊपर हो गया। तब उसको पता चला, अभी मैं उसकी किताब पढ़ रहा था, उसने लिखा कि तब मुझे पता चला कि 30 साल के ऊपर एक दिन मुझे भी होना पड़ेगा, तब मैं ही झंझट में पढ़ूंगा। पश्चिम में युवक किताबें लिख रहे हैं तो बूढ़ों का सम्मान नहीं, पूरब में बूढ़ों ने किताबें लिखी तो युवकों का सम्मान नहीं, किसी दिन अगर बच्चे किताबें लिखेंगे तो जवानों का भी सम्मान नहीं रह जाएगा। पुरुषों ने किताबें लिखी तो स्त्रियों का अपमान, स्त्रियां किताबें लिखती हैं तो पुरुषों का अपमान, आदमी किस किस भांति अपने अहंकार की पूजा किए चला जाता। हम जो हैं हम प्रकारांतर से उसकी प्रशंसा करते हैं। इससे जागना, ये अहंकार के सूक्ष्म सहारे हैं। मत भूल के कहना कि तुम हिंदू हो तो बड़ा कोई पुण्य हो गया, मत भूल के कहना कि तुम ईसाई हो तो कोई बड़ा पुण्य हो गया। पुण्य तो उस दिन होगा जिस दिन तुम ना कुछ हो जाओगे, उसके पहले कोई पुण्य नहीं है। न तुम्हारा कोई देश रहेगा, ना कोई जाति रहेगी, ना कोई कुल रहेगा, न स्त्री पुरुष का भाव रहेगा। पुण्य तो उस दिन होगा, धन्यता तो उस दिन होगी जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई रोग न रह जाएंगे, कोई तादात न रह जाएगा। तुम ये कह ही ना सकोगे कि मैं हिंदू कि मुसलमान कि ईसाई कि जैन, तभी तुम धन्य होगे। उसके पहले तो धन्यता झूठी है। वह युवक शायद इसीलिए संन्यास्त भी हुआ था ताकि वो कह सके कि देखो मैं संन्यास्त हूं, सारा जगत पापी है। संन्यास का मजा ही यही है, उससे तुम्हें बड़ी सुगम सुविधा मिल जाती है सारी दुनिया को निंदा करने की। संन्यास्त होते से ही तुम एकदम शिखर पर विराजमान हो जाते हो। एक क्षण पहले सड़क पर थे, एक क्षण बाद शिखर पर विराजमान हो जाते। तुम देखते हो जी दीक्षाएं होती तो कितना शोर शराबा जुलूस निकलता और बड़ी उत्सव मनाया जाता कि कोई सज्जन दीक्षा ले रहे। इसमें उत्सव की क्या बात है? मैं संन्यास देता हूं तो जरा भी आहट नहीं होने देता, क्योंकि आहट की क्या बात है? इसमें उत्सव की क्या बात है? उत्सव तो अहंकार की ही पूजा है। उत्सव का तो मतलब यह हुआ कि तुमने दीक्षा लेने वाले का खूब अहंकार पोषित कर दिया, अभी अकड़ के चलेगा। देखते हैं जैन मुनि हाथ जोड़ के किसी को नमस्कार नहीं करता, कर नहीं सकता क्योंकि वो कहता है मुनि और नमस्कार करे, ग्रस्तों को श्रावकों को गैर सन्यासियों को नमस्कार करे मुनि। मुनि सिर्फ आशीर्वाद दे सकता, नमस्कार नहीं कर सकता। ये तो हद हो गई। और उनसे जो कि निरअहंकार की बात करते हो, ये हाथ जोड़ के नमस्कार भी नहीं कर सकते। इन्हें दूसरे में सिर्फ ग्रस्त दिखाई पड़ रहा है, दूसरे में छिपा परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। ये सब अहंकार के ही नए नए रूप है, नए नए ढंग है। तो संन्यास्त हो गया युवक, कथा बड़ी मीठी है। कहती कि शायद इसीलिए संन्यास्त हुआ कि ये अहंकार में एक और नया पंख लग जाएगा, एक नया रंग लग जाएगा। एक बार कुछ भिक्षु उसके गांव गए तो पाया कि वो व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करता है और व्यर्थ ही अपने कुल की प्रशंसा करता है। उसके कुल में तो कुछ था ही नहीं, कुछ खास बात ही न थी, वो तो साधारण लोग थे, साधारण से भी गए बीते लोग थे। बड़े हीन कुल से वो आया था, बड़ी हीन वृत्तियों वाले कुल से आया था। भिक्षु ने यह बात भगवान से कही। 2500 साल पहले बुद्ध ने जो वक्तव्य दिया उस पर फ्रायड और जुंग को ईर्ष्या हो, एडलर परेशान होता अगर इस वक्तव्य का उसे पता चल जाता, क्योंकि एडलर ने अभी जो मनोविज्ञान विकसित किया है उसका मौलिक आधार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हीनता की ग्रंथि। वो कहता है जो लोग जितने हीन होते हैं उतने ही श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। काश उसे बुद्ध की ये कथा पता होती तो उसे ये ख्याल पैदा नहीं होता कि उसने कोई अनूठी बात खोज ली। तुम अगर पुराने शास्त्रों में गहरे उतरो तो तुम चकित हो जाओगे, शायद कोई अनूठी बात खोजने को बची नहीं। होना भी ऐसी चाहिए, कितने अनंत काल से आदमी सोचता रहा है, सब पहलू देख लिए गए, सब परतें उलट ली गई, सब द्वार खोल लिए गए, मगर वहां भी अहंकार का एक खेल चलता है। हर युग कहता है कि जो हमने खोजा वो किसी ने नहीं खोजा,
और हर आदमी कहता है कि जो मैं जानता हूं वो कोई नहीं जानता, मैं मौलिक हूं। ये सदियों से आदमी सोचता रहा है, हजारों वर्षों से आदमी चिंतन करता रहा है। बड़े बड़े मनीषी हुए, बचा कैसे होगा कुछ तुम्हारे लिए मौलिक होने को। जिससे कृष्णमूर्ति के अनुयायी कहते हैं कि कृष्णमूर्ति जो कहते हैं मौलिक, तो उन्होंने अष्टावक्र नहीं पढ़ा, नहीं तो वो बड़े हैरान हो जाएंगे। कृष्णमूर्ति का एक भी वक्तव्य नहीं है जो अष्टावक्र वक्तव्य से आगे जाता हो। खैर, कृष्णमूर्ति तो शास्त्र पढ़ते नहीं, उनकी जिद है कि वो पुराने शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, चलो उनको क्षमा किया जा सकता है। मगर उनके शिष्य जो दावा करते हैं उनको तो कम से कम इधर उधर देखना चाहिए इसके पहले कि मौलिक होने का दावा हो। ऐसा एक वक्तव्य नहीं है जो आदमी दे सके जो कि पहले नहीं दिया गया हो। यह हो सकता है कि समय ने बहुत धूल जमा दी हो, दूरी हो गई हो, हम भूल भी गए हो, लेकिन जो भी आज है वो कल भी था, परसों भी था, कल भी होगा, परसों भी होगा। हमारी मूढ़ता वैसी ही है जैसे गुलाब का एक फूल जो आज खिला है वो खिलते ही से कहे ऐसा फूल पृथ्वी पर कभी नहीं खिला, या सूरज आज उगा है वो कहे कि ऐसा सूरज पहले कभी नहीं उगा, कि रात तारे आकाश में फैले हों और घोषणा कर दें कि ऐसी तारों भरी रात पहले कभी नहीं हुई। जो आज हो रहा है वो सदा होता रहा है, आज अनूठा नहीं, सूरज के तले नया कुछ भी नहीं। हाँ, बहुत बार बातें खोजी जाती हैं, फिर खो जाती, समय की धारा में भूल जाती, फिर खोज ली जाती, इसलिए हर खोज पुनर्खोज है, कोई खोज नई नहीं। बुद्ध ने कहा हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। एडलर की पूरा मनोविज्ञान इस वचन में आ गया। तुम देखना आदमी के व्यक्तित्वों में झांकना तो तुम पाओगे जहां जहां हीनता की ग्रंथि होती है वहां वहां श्रेष्ठ होने का भाव पैदा होता है। चोर सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मैं चोर नहीं, चोर बड़ी जोर से कोशिश करता है कि मैं चोर नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ है भीतर से, हूं तो चोर ही, सिद्ध तो करूंगा, नहीं सिद्ध कर पाऊंगा तो पकड़ लिया जाऊंगा। चोर अगर चुप रहे तो उसे डर लगता है कि मेरी चुप्पी कहीं मेरी चोरी का प्रमाण न बन जाए। झूठ बोलने वाला सिद्ध करता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। जो लोग बहुत कसमें खाते हैं समझ लेना है कि वो झूठ बोलने वाले लोग, नहीं तो कसमें नहीं खाएंगे। हर बात पे कसम, कि भगवान की कसम, कि तुम्हारी कसम। जो आदमी कसमें खाता है ये झूठ बोलने वाला आदमी है, क्योंकि इसे सच अपने आप में काफी है ऐसा नहीं मालूम पड़ता। इसे लगता है कसम जोड़ो साथ में, अपने आप में तो कुछ है नहीं, कसम की बैसाखी लग जाए तो शायद झूठ थोड़ा चल जाए। सच बोलने वाला आदमी कसम नहीं खाएगा। कसम का मतलब ये होता है झूठ का तुम्हें पता है, अब तुम झूठ को लीपापोती कर रहे हो, अब तुम किसी तरह से प्रमाण जुटा रहे हो कि सच हो जाए। हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। तुमने दुनिया में देखा, अगर तुम बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की जीवन कथा पढ़ो तो तुम बहुत चकित हो जाओगे। उनमें कोई ना कोई हीनता की ग्रंथि थी, इसलिए वो पदों की तरफ भागे। नेपोलियन की ऊंचाई कम थी, 5 फीट 2 इंच, मनोवैज्ञानिक कहते हैं यही कारण था। वो हमेशा बेचैन था इस बात से कि उसकी ऊंचाई बहुत कम है। वो दुनिया को बताना चाहता था मेरी ऊंचाई कितनी, वो ये दिखाना चाहता था कि मेरे शरीर से मुझे मत तोलो, शरीर में क्या रखा है, मेरी असली ऊंचाई देखो, मेरे सिंहासन से देखो। उसने दुनिया का सबसे बड़ा सिंहासन बनवाया था ताकि उसके ऊपर बैठ कर वो दिखला सके। वो चाहता था सारी दुनिया को जीत लूं ताकि मैं बता सकूं कि मेरी ऊंचाई कितनी। एक दिन वो घड़ी ठीक करना चाहता था, घड़ी जरा ऊंची लगी थी दीवार पर और उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो उसका जो अंग रक्षक था उसने कहा रुकिए महानुभाव, मैं आपसे ऊंचा हूं, मैं ठीक कर दूंगा। उसने कहा कि चुप, भूल के इस तरह का शब्द मत उपयोग करना, मुझसे ऊंचा, मुझसे लंबा है, ऊंचा नहीं। उसने तत्काल सुधार करवा दिया, लंबाई और ऊंचाई में फर्क होता, मुझसे लंबा तू जरूर है लेकिन ऊंचा क्या है, ऊंचा कैसे होगा, मेरा अंग रक्षक और मुझसे ऊंचा। नेपोलियन ने सिद्ध करने की कोशिश की। कहते हैं कि लेलिन जब बैठता था तो उसके पैर बहुत छोटे थे, ऊपर का शरीर तो ठीक था, पैर बहुत छोटे थे, कुर्सी पे लटक जाते थे पैर उसके, जमीन से नहीं लगते थे।
इससे वो बड़ा पीड़ित था, वो छिपा के बैठता था अपने पैरों को। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो पैरों की कमजोरी ही उसकी दौड़ थी कि जमा के बता देगा पैर, ऐसे जमा के बता देगा कि कोई भी उखाड़ ना सके। तुम इसे अगर खोजोगे तो पालोगे, दूसरों में नहीं अपने में भी पालोगे। तुम अपने में भी पालोगे कि कौन सी चीज तुम्हें बेचैन किए जा रही है, कौन सी बात तुम्हें घाव की तरह खटक रही है, उसी के कारण तुम दौड़ रहे हो। जिसके सब घाव भर गए उसकी कोई पदाकांक्षा नहीं रह जाती, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रह जाती। उसके जीवन से राजनीति विसर्जित हो जानी चाहिए, हो ही जाएगी। राजनीति का अर्थ ही होता है हीन ग्रंथियों से पीड़ित लोगों की दौड़। राजनीति का अर्थ होता है विक्षिप्तता, एक तरह का पागलपन। धन की दौड़ भी एक तरह का पागलपन है। महत्वाकांक्षा ही पागलपन का सार है, सूत्र पागलपन का महत्वाकांक्षा है। कुछ हो के दिखा दूं, क्यों? क्या तुम नहीं हो? कुछ बन के बता दूं, क्यों? क्या तुम जैसे हो वैसे परिपूर्ण पर्याप्त नहीं हो? विंसेंट वान गाग पश्चिम का बहुत बड़ा चित्रकार, बहुत कुरूप था, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसकी कुरूपता के कारण ही वो सौंदर्य का आराधक हो गए। उसने बड़े सुंदर चित्र बनाए, सुंदरतम चित्र बनाए। वो चित्रों से सिद्ध करना चाहता था कि मेरी छोड़ो, मेरे हाथ के सौंदर्य को देखो। चेहरा उसका कुरूप था, कुरूप आदमी सौंदर्य में उत्सुक हो गया। तुमने कभी किसी सुंदर स्त्री को चित्र बनाते देखा? सुंदर स्त्री को कविता लिखते देखा? मैं एक घर में मेहमान था एक बार, एक गांव में। वहां एक कवित्री सम्मेलन हो रहा था, अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन। तो मेरे मित्र ने मुझे भी कहा आप भी चलिए, सारे देश की महिला कवित्रियां इकट्ठी हो रही। मैंने कहा तुम जाओ, सिर्फ एक बात मुझे बताना, उनमें कोई एक आध सुंदर भी है? उन्होंने कहा क्यों आप ऐसा प्रश्न क्यों उठाते? मैंने कहा तुम जाके फिर मुझे बताना। वो जब रात 12 बजे लौटे, मैं तो सो गया था, मुझे आके उठाया। उन्होंने कहा कि मैं रात भर रख नहीं सकूंगा इस बात को, मैंने आपने हैरान कर दिया, उनमें एक भी सुंदर नहीं थी। मगर आपने ये प्रश्न क्यों पूछा? मैंने कहा प्रश्न इसलिए पूछा था कि सुंदर स्त्री कुछ और करती नहीं, सौंदर्य काफी। असुंदर स्त्रियां कुछ करती देखी जाती, समाज सेविकाएं बन जाएंगी, कवित्रियां बन जाएंगी, चित्रकार बनेंगी, क्योंकि सौंदर्य की कमी है, कुछ खटक रहा है। जो खटक रहा है उसे किसी तरह भरना होगा, तो कुछ करके उसे भर लिया जा सकता है। कुछ और पैदा करके वो जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो कुछ दुनिया में आदमी ने किया है वो आदमी का है, स्त्रियों ने कुछ खास नहीं किया। और जिस कारण को वो कहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, वो कारण सुनने और समझने जैसा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि स्त्रियां बच्चे पैदा कर लेती, ये इतना बड़ा कृतित्व है मां बनना। क्या और क्या बनाना है? एक मूर्ति बनाने से क्या होगा, एक जिंदा मूर्ति पैदा करती है। एक चित्र बनाने से क्या होगा, एक जिंदा तस्वीर पैदा कर दी, एक जिंदा चेहरा पैदा कर दिया, जीवित आंखें, चलता फिरता बच्चा पैदा कर दिया। इससे बड़े सौंदर्य का और क्या जन्म होगा? स्त्रियां तृप्त है एक बच्चे को जन्म देके, पुरुष बड़ा बेचैन है। स्त्रियों के सामने वो अपने को जरा असहाय पाता है, वो किसी चीज को जन्म नहीं दे सकता है। तो उसकी परिपूर्ति करता वो एक मूर्ति बनाएगा, एक चित्र बनाएगा, कविता लिखेगा, काव्य रचेगा, कुछ करके वो सृजनात्मक होता है। सिर्फ इसीलिए ताकि स्त्री के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, वो कह सके मैंने भी कुछ बनाया है। और धीरे धीरे उसने इतनी चीजें बना डाली कि स्त्री बेचैनी अनुभव करती, उसे लगने लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। पुरुष ने इतना बना डाला, तुम चकित हो गए। जिन कामों में स्त्रियों को ही खोज करनी चाहिए उनमें भी पुरुष ही खोज करता है। पाक शास्त्र भी पुरुष लिखते हैं, स्त्रियां नहीं लिखती। और दुनिया की बड़ी होटलों के जो बड़े से बड़े भोजन बनाने वाले लोग हैं, रसोई हैं, वो पुरुष हैं, स्त्रियां नहीं। क्यों? स्त्री तृप्त है, पुरुष अतृप्त है। कुछ बात खटक रही, कुछ कम है, कुछ खाली जगह है, तो कुछ करके इसे पूरा कर लेना है। कुछ भी करने से पूरा नहीं होता, क्योंकि कमी कैसे पूरी हो सकती है? कमी तो स्वीकार करने से विसर्जित होती। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति धार्मिक जगत में प्रवेश नहीं करता उसकी हीनता नहीं मिटती।
वो लाख उपाय कर ले, धन इकट्ठा कर ले, पद इकट्ठा कर ले, प्रतिष्ठा बना ले, कमी नहीं मिटती। तो बुद्ध ने कहा हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। जो श्रेष्ठ हैं उन्हें तो अपने श्रेष्ठ होने का पता भी नहीं होता है। वही श्रेष्ठता का अनिवार्य लक्षण भी है।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइफ।
1: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। आपके हम हर बार बताते हैं कि इतने सारे ईमेल्स आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं और आज इसीलिए हमने तय किया है कि कुछ ऐसे सवाल जो बहुत से दर्शकों के होते हैं और बहुत सारा उसमें ही जवाब मिल सकता है, उन्हें हम चुने और अपने प्रोग्राम में शामिल करें और इन सवालों का जवाब साथ मिलकर तलाशेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हमारे हम सफर हैं ब्रह्मा कुमारी से शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: शिवानी, इतने सारे सवाल और इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के सवाल होते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं हम कि मिलते जुलते सवाल हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी वही है, मुश्किलें वही हैं, अड़चनें वही हैं, स्ट्रेस उतना ही है, एंगर है, मेरा बाकी सारी और चीज़ें हैं। एक सवाल जो यहाँ पे इन्होंने भेजा है, मुंबई से आया है और विनय जी ने ये लिखा है, मेल भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि आई एम अ मैरिड मैन और मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन हर बार मुझे ये लगता है कि सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मुझ पर बहुत शक करती है। मैं उन्हें इतनी बार समझाने के बाद भी कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा कहीं कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आई डू केयर फॉर हर एंड हो ये रहा है कि धीरे धीरे मैं इरिटेट होने लग गया हूँ। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ से भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है और आप शायद उन्हें कुछ समझा पाएं और मैं चाहूँगा कि आप बात करें।
2: वही टिपिकल प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि जहाँ दोनों वर्किंग हो गए और दोनों बहुत सारा समय बाहर बिताने लगे तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम क्रीप अप होने लग गई, क्योंकि हम परिवार के साथ कम समय
1: और बाहर ज़्यादा
2: समय बिताने लगे। और एक नॉर्मल भी होता गया कि जहाँ हम बाहर इतना समय बिताएंगे तो वी विल हैव अ क्लोज friend circle there, we will have people who are very close to us, but now it becomes all the more important कि हमारे जो close परिवार के जो संबंध है वो और भी एक strong foundation पर based होते जाएं। तो कहीं ना कहीं इस केस में एक तो जिन्होंने ईमेल लिखा विनय जी ने, he also has to do a little work because maybe उन्हें लग रहा है कि सारा काम
1: कहीं ना कहीं जो responsibility है वो हमारी।
2: क्वेश्चन भी जिस तरह से भेजा है कि आप मेरी वाइफ को ये समझाइए, तो लेकिन हमारा तो हमेशा मोटो यही रहता था, वी कांट चेंज अदर पीपल, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे थिंग्स विल बिकम इजी फॉर हर। मे बी शी doesn't have too much of a doubt. Maybe I am feeling like that. Because कई बार हो सकता है कि अगर मेरे से कुछ questions पूछे जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, या छोटा छोटा जो sometimes maybe just out of you know कि जैसे इकट्ठे रहते हैं तो it's good to know about each other. It's good to know कि हम एक क्या कर रहे हैं सारा दिन में, लेकिन जब और किसी की नेचर ज्यादा पूछने की होती है कि मुझे पता रहे कि आप सारा दिन कहाँ पर हैं, लेकिन कई बार जब हम बार बार उस तरह का पूछते हैं तो जिससे वो सवाल किए जाते हैं उसको लगता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत डीप रूटेड ये संस्कार बन गया है डाउट करने का। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, वाइफ डाउट कर रही है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हस्बैंड डेफिनेटली डाउट कर रहे हैं कि ये मुझसे क्यों
1: डाउट कर रही है।
2: You know, ये एक एनर्जी है जो क्रिएट हो जाती है, तो मे बी इफ शी हैज नॉट सेड इट डायरेक्टली तो मे बी डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम देयर, मे बी बिकॉज क्या होता है जिस वायुमंडल में हम आज हैं तो हम जब ऑफिस पहुंचते हैं हमारे को ये बातें बहुत कॉमन सुनने में मिलती है। दीज हैव बिकम द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन एवरीवेयर के हस्बैंड का कुछ और
1: वाइफ, इट इरिटेट्स मी सो मच, मुझे कंटिन्यूस इरिटेशन रहती है, मुझे गुस्सा चढ़ने लगता है, मैं उसे चुप हो जाता हूँ, बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू टॉक टू हर। अब
2: हम जब बात करना बंद कर देंगे
1: तो पनिशमेंट वाला जो फैक्टर था
2: कि एक तो दूसरे को दर्द मिलेगा। अब अगर सपोज एक तो है कि पता, आई हैव टू मेक श्योर कि वाइफ डाउट कर रही है या नहीं। नाउ अगर कर रही है, हाउ डू आई मेक हर अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो शब्दों से नहीं होगी। उन्होंने कहा मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे से वो सही एनर्जी नहीं पहुंच रही,
1: व्यवहार में लानी पड़ेगी आपको।
2: तो अब जो हम कर रहे हैं वो और ही दूरी ला रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम इरिटेट हो रहे हैं कि हम बात करना ही बंद कर देते हैं। अब अगर हम बात करना ही बंद कर देंगे तो डाउट और भी
1: ज्यादा
2: बढ़ता जाएगा। तो नाउ इफ आई लुक एट हर विद कंपैशन, right now I'm looking at her with anger. कि ये क्यों doubt कर रहे हैं?
1: Maybe you know again this thing comes यहाँ पे शिवानी की शायद वो अगर doubt कर रही हैं तो वो pain में हैं.
2: पेन में तो है ही, बहुत दर्द में है. आप इमेजिन करो ना, दो क्षण के लिए अपने आप को वाइफ की स्थिति में रख के देखो, वो कितने दर्द में है. अब इस दर्द में क्या मैं उसको और दर्द दूं? यही तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. पहले हमें हो रहा था गुस्सा, क्यों डाउट कर रही है, जबकि मैं सिंसियर हूँ तो क्यों डाउट कर रहे हैं मेरे पर. टू बी सेंट एंगर, एंड एंगर जैसे इन्होंने कहा व्यवहार में भी आने लग गया, थॉट्स में भी नहीं. तो आई हैव टू फील कंपैशन कि वो डाउट कर रही है, मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच टर्मोइल. तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है इसको हमें चेंज करना होगा. तो स्टार्ट गिविंग हर मोर पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी कि मे बी बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन जो कहीं से मिले होगी, या फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा उस तरह की बात करते हैं, या उनको अपने ऑफिस में कई ऐसे लोग दिखाई देते होंगे जिन्होंने इस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए. तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो डाउट बैठ गया है. मुझे उस डाउट को फिनिश करने के लिए और भी प्योरिटी और भी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी इफ दैट रिलेशनशिप मैटर्स टू मी. सी दैट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी. अगर रिलेशनशिप मैटर करता है देन इट इज नॉट अबाउट ईगो कि आप गलत हैं, आप मुझ पर कैसे ये डाउट कर सकते हैं. मेरा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए इस समय ये रिलेशनशिप में दर्द है, मुझे इस दर्द को हील करना है. क्योंकि सामने वाले के अंदर तो इस टाइम ताकत ही नहीं
1: है. डेफिनेटली, बिकॉज ही सेज मैं हर्ट हो रहा हूँ. सो अगेन हमने बात ये की थी कि हर्ट कोई और नहीं कर सकता हमें, हम खुद कर रहे हैं.
2: तो अगर कोई डाउट भी कर रहा है, लेकिन अगर मैं सिंसियर हूँ तो मुझे क्यों हर्ट होना चाहिए? मुझे हर्ट इस बात से होता है कि तुमने मुझे डाउट किया कैसे. यू सी दैट्स ईगो. That's where it gets hurt. But if I understand from her perspective, I will see it's okay. Accept. It's understandable. और जितनी जल्दी हम उसको heal कर देंगे, उतनी जल्दी वो trust बहुत जल्दी build हो जाएगा. हमें लगता है इसने doubt कर दिया तो इसका मतलब कोई trust
1: खत्म हो गया, वो लड़ाई होती जाती. बहुत सुंदर विनय जी यही कहना चाहेंगे कि प्यार अगर आप करते हैं सचमुच, if you really
2: love, बहुत important होना चाहिए मेरे लिए.
1: अगर वो इतना important है आपके लिए और you really love your wife, then accept her. This is what we said. Loving somebody means accepting. और अगर आप उन्हें accept कर लेंगे तो उनकी जो problem है वो भी accept कर रहे हैं.
2: जैसे कई बार क्या होता है कि husband और wife में से किसी एक को कोई बीमारी लग जाती है. It could be an accident जिसमें आप physically handicap हो जाते हैं, या आपको कोई ऐसी illness हो जाती है जो ठीक नहीं होती है. हमें बहुत तरह के responses देखने को मिलते हैं दूसरे members से. Majority तो होना चाहिए या होता है कि spouse बहुत understanding है, और with your physical handicap also I accept you. हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पहले तो ठीक थे लेकिन अब आपका ये हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए. नो, विद द फिजिकल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो विद अ लिटिल इमोशनल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को. वो बिल्कुल ठीक थे लेकिन थोड़ा सा हैंडीकैप आ गया, थोड़ी सी चोट लगी है बीच में, तो क्या हम रिजेक्ट कर देंगे? जिसको चोट लगी है उसको ही डांटना शुरू कर देंगे? सिर्फ ये है कि फिजिकल एलिमेंट और फिजिकल हैंडीकैप देखना बहुत इजी लगता है, इट्स इजी, लेकिन इमोशनल एलिमेंट देखना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि हम खुद ही चोट में बैठ जाते हैं
1: और इमोशनल एलिमेंट में हम दूसरे को दोष देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल. You know, see, we don't take it as an ailment. Yeah. We say you're responsible for it.
2: Responsible. And now you have hurt me. So now I have the right to hurt you. So aapne mujhe doubt kiya.
1: It's an emotional ailment actually.
2: Yehi to ho raha hai na, to wohi to baat hui thi ki aap bhi dard mein to main bhi dard mein. To aapne mujhe doubt kiya, to ab main aapko gussa karunga. To kya hua? Aap bhi dard mein, main bhi dard mein.
1: Wonderful. That's actually a different way of looking at it. और कहीं ना कहीं आप शायद विनय जी उम्मीद ये कर रहे थे कि हम आपकी वाइफ से बात करना चाहेंगे, लेकिन जरूरी यही है कि बदलना हमें खुद को होगा.
2: हाँ, और ये सिर्फ इस प्रॉब्लम को नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग जस्ट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग कि ये हर प्रॉब्लम जो हमारी फैमिली में या हमारी कोलीग्स के साथ आ जाता, लुक एट इट एज अ हैंडीकैप, लुक एट इट एज एन इलनेस, डू नॉट लुक एट इट ये तो है ही ऐसे. मतलब हमें ये समझना होगा जानबूझकर कोई कुछ नहीं कर रहा होता. कहीं ना कहीं वाइफ के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि वो अपने हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही है. मेजर इनसिक्योरिटी है अंदर, इस कारण से उसको लग रहा है कि आप बाहर किसी और के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, क्योंकि उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं
1: कम है, बहुत कम.

0: ऐसी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं जो उन्हें लगता है कि कहीं नहीं कर पाते. एंड दिस इज अ गर्ल हु इज 14 ईयर ओल्ड. शी सेज माय मदर इज वेरी ब्यूटीफुल. टिल सम टाइम आई हैड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन हर. आई वाज वेरी प्राउड ऑफ हर. वो एक वर्किंग वुमन है और मेरी उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था. लेकिन धीरे धीरे अब मैं ये देखती हूँ, आई स्टार्टेड हेटिंग हर. व्हाई? बिकॉज आई फाइंड हर मच मोर ब्यूटीफुल देन मी. और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा. और मैंने ये देखा, अपनी फ्रेंड से भी बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मी से बहुत दूर चली गई हूँ. दिस इज अ चाइल्ड टॉकिंग.
1: इट जस्ट शोज कि हमारी इनसिक्योरिटी किस लेवल तक पहुँच गई है. पहले ये होता कि अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे से ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं या मेरी सिस्टर या ब्रदर मेरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती. लेकिन पेरेंट्स के साथ इस तरह की चीज़ फील करना, पहली बात तो हमने यही समझा कि ब्यूटीफुल एक्चुअली मतलब क्या है, है ना. अभी ये क्यों ये इनसिक्योरिटी आ रही है? इट कुड बी विद मदर, इट कुड बी विद एनीबडी एल्स, इट कुड बी विद फ्रेंड्स. इट इज़ बिकॉज जो ज़्यादा सुंदर है फिजिकली, हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको औरों से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी. और उसको औरों से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती और मुझे नहीं मिलती है तो मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है. क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम इस पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. एंड आई बिलीव कि आप मेरे बारे में सोचते हैं कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल, या आई बिलीव कि आप सोचते हैं कि शी इज मोर ब्यूटिफुल देन मी. सो आई स्टार्ट फीलिंग यू लाइक हर मोर देन मी. एंड ये मेरे लिए बहुत डैमेजिंग हो जाता है क्योंकि मैंने सारा कुछ इस बिलीफ पर बेस कर दिया कि फिजिकल लुक्स एक्सेप्टेंस लाते हैं, फिजिकल लुक्स पे मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है और लोगों की अप्रिसिएशन मेरी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है. अब क्या होता होगा मे बी कि जहाँ भी मदर एंड डॉटर इकट्ठे जाते हैं, इफ शी फील्स कि फिजिकली मदर उससे ज्यादा सुंदर है, शी मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग कि मदर को ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है. और जहाँ ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता तो शी मस्ट हैव फेल्ट कि ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. अब ये समझने की बात होगी कि इट्स नॉट एक्चुअली फिजिकल ब्यूटी. किसी को भी आप सिर्फ एक दो मिनट के लिए फिजिकल ब्यूटी पर आप इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि लोगों की हमारे प्रति एक्सेप्टेंस या हमारे तरफ अट्रैक्ट होने की जो बात आती, इट्स मोर ऑन माई एनर्जी लेवल. So and in your mother, I mean, you can never compete with a mother.
0: No, but then I can understand. Yeah. She's Yana from Rajasthan, and yeah. she is so hurt. मतलब आप anger और hurt से जुड़ा हुआ कि she was my best friend, my mother was my best friend, and now I don't even want to talk to her.
1: हाँ, लेकिन इस केस में तो कोई problem ही नहीं है. ये problem तो खुद अपनी create की हुई है, and one thought. एंड वो फिनिश हो जाएगी.
0: ज्यादा टीनेजर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं,
1: क्योंकि सेल्फ एस्टीम बहुत लो है इस टाइम. और सेल्फ एस्टीम सारा फिजिकल पर बहुत ज्यादा आधारित है. एंड सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंडेंट है कि कितने लोग
0: मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे अटेंशन कितना दे रहे हैं, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे देखते हैं.
1: सेल्फ इतना वैक्यूम में है कि मुझे औरों की अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि पहली बात, मेरी सेल्फ एस्टीम के लिए मुझे औरों से अटेंशन नहीं चाहिए. और दूसरी बात, दूसरे लोग भी अगर आपको चाहिए एक्सेप्टेंस, देन इट्स नॉट फिजिकल ब्यूटी, इट्स योर इनर ब्यूटी. सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट. अपने इनर सेल्फ पर काम करना शुरू करें. मे बी इट्स पॉसिबल दैट फिजिकली तो आपकी मदर अट्रैक्टिव है ही है, लेकिन इट्स ऑल्सो दैट शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन, है ना. तो शी सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, तो उनके अंदर से वो पॉजिटिविटी जो रेडिएट होती है उसके प्रति लोगों का आकर्षण होता. और इसको देख देख के मैंने अपने अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, वो नेगेटिव ऑरा मेरे अराउंड है, उसकी वजह से लोग मेरे से
0: दूर होते जाएंगे
1: और भी दूर हो जाएंगे. क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो वॉक इन करता, यू कैन फील द एनर्जी. आप फील कर सकते हैं कि कितना फियर है, कितनी इनसिक्योरिटी है. तो नथिंग अबाउट द फिजिकल लुक, लेकिन लोग वैसे ही दूर हो जाएंगे. बिकॉज आई एम कैरिंग अ वेरी नेगेटिव ऑरा, तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल लुक्स. वो आधारित है कि हमारा ऑरा क्या है. जैसे ही हम किसी भी कमरे में प्रवेश करते, हमारे साथ साथ हमारी एनर्जी फील्ड एंटर करती है. एंड वो एनर्जी फील्ड डिसाइड करती है और लोग मेरी एनर्जी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं या मुझसे दूर होना चाहते हैं. तो उस पर वर्क करें. एंड यू विल हैव एवरीवन विद यू.
0: एंड समवेयर आई थिंक शी

0: have to accept her mother as well, you know.
1: Mother is already a very beautiful person. Internally also, it's understandable. And she should understand that she should like the idea that her mother is so beautiful.
0: Yeah, so it's like...
1: Ek thought hai, ki, you know, insecurity kis baat ki. कुछ भी नहीं, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि उनको जब वो दोनों इकट्ठे होंगे
0: और कितना बिल्डअप कर लेते हैं इतना हर्ट में रह के, इतना हर्ट में रह के कंटिन्यूअसली, यानी आप अपने आप को बहुत ज्यादा दुख दे रही हैं कहीं ना।
1: और ये आज आप अपनी मदर के साथ एक्सपीरियंस करें, कल आप औरों के साथ भी करेंगे, तो इसको अगर बिलीफ को यहाँ ही नहीं ठीक कर दिया तो ये इनसिक्योरिटी मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होगी और रिलेशनशिप्स में। और अगर मेरा मदर डॉटर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं अपने आगे की रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकूंगी। मेरे हर रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं एक हीनता की भावना, एक भय और एक इनसिक्योरिटी महसूस होती रहेगी। मुझे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उनसे डर है, उनसे खतरा है, तो मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी। और ये मेरी अपनी प्रॉब्लम होगी। आई हैव टू रिमेम्बर ये औरों की वजह से नहीं है,
0: जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी। आप आज बहुत अच्छी बात है कि आपने हिम्मत करके हमें लिखा है, इट्स अ बिग स्टेप। अगला स्टेप ये है कि आप जिम्मेदारी उठाइए, आप अपने जिस भी जो भी आप फील कर रही हैं, और फिर एक थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे, एक थॉट।
1: इस केस में तो वो रियलाइज भी कर रही होंगी कि मदर की कोई गलती तो है ही नहीं है, इट्स जस्ट दैट उनको ये लग रहा होगा मुझे ऐसे थॉट्स आए क्यों रही हैं। तो कुछ नहीं, स्टॉप, इंट्रोस्पेक्ट, और अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर दे, वो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दे, और अपने आप
0: एंड ऑलवेज बिलीव दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज़ यू आर दैट ब्यूटीफुल सोल एक्चुअली। ऐसे शिवानी, एक ये एक और सवाल है जो बहुत से दर्शकों का सवाल से जुड़ता है, और ये है वितेश शर्मा जी हैं, ये इन्होंने हैदराबाद से लिखा है। ही इज अ रिटायर्ड जज एंड ही सेज आई हैव गॉट टू सन्स, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड बच्चे हैं दोनों, एक अमेरिका में है और एक बैंगलोर में है। मैं और मेरी वाइफ एक बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन अब मैं 65 के करीब हूँ, ज़्यादा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मेरा मन ये करता है कि बाकी लोग भी देखें, बहुत अच्छा लगता है, पर मैंने अपने हिसाब से ही बच्चों को कभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आने दिया था। जब वो छोटे थे तब मैं इतना बिजी था अपने प्रोफेशन में, और वाइफ के साथ जो था वो भी एक दूरी बनी रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा। अब इतनी लोनलीनेस में फील करता हूँ, ना बच्चों के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, ना वाइफ के साथ रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ उनको, और वाइफ ने अपना सर्कल बना रखा है। मेरे पास ना मैं कह पाता हूँ अपने बच्चों से कि मैं लोनली हूँ, क्योंकि मुझे अब प्रोग्राम भी देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मैंने भी उन्हें लोनलीनेस कहीं दी है, और ना मैं वाइफ के साथ जो है अपना रिलेशनशिप दोबारा, मतलब मुझे पता ही नहीं कि कम्युनिकेट कैसे करूँ मैं, एंड देयर इज दिस लोनलीनेस व्हिच इज सीपिंग इन, सो आई वांट टू शेयर इट विद यू।
1: ट्रू, नाउ ये बहुत अच्छा है कि ये एक रियलाइजेशन आ गई है, और कहीं ना कहीं और भी एक बात जो बहुत अच्छी है वो है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उसके, यू नो, ये एक फर्स्ट स्टेप है जो उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया।
0: I think he says because of the, you know, program I've been seeing. I'm realizing that.
1: Because you start looking at yourself. तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला स्टेप होता है, क्योंकि इसी सीढ़ी पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हमारा दृष्टिकोण नहीं तो सिर्फ औरों की तरफ होता है। तो ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट किया था। अब ये भी समझना होगा कि ये एकदम से एक दिन में दूसरे नहीं चेंज होंगे। हाँ, मैं चेंज हो सकता हूँ, लेकिन औरों को, और लोग भी, क्योंकि है तो फैमिली, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये तो बहुत नज़दीक के संबंध है। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं करना चाहते होंगे। इट्स जस्ट दैट उनको तो इसी व्यवहार की आदत पड़ी है ना बहुत समय से।
0: अच्छा, उन्हें पता ही नहीं चला कि आप बदल गए, ये ना हमने कहा था एक बार पहले।
1: क्यों? क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में तो पुराना वाला पास्ट एक्सपीरियंस से चल रहा है, क्योंकि लेबलिंग ये होता है वो ब्लॉकर बिलीफ, यू नो, जो हमने सोच देखा था कि किसी को भी हम एक लेबल लगा देते हैं कि ये तो ऐसे है। हाँ। अब क्या होगा, वाइफ बच्चे सभी एक साइड पर, जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम के साथ कि ये हमारे फादर ये तो है ही ऐसे। नाउ इट विल नीड टाइम फॉर देम फॉर दैट बिलीफ सिस्टम टू चेंज। तो उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए मुझे ही वो एनर्जी भेजनी पड़ेगी। अगर तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बहुत समय से एक ऐसी पर्सनल कॉन्वर्सेशन शायद की नहीं, तो बहुत इजी नहीं होगा बताना कि यू नो आई एम रियलाइजिंग, क्योंकि इजीएस्ट वे तो अदरवाइज ये है जस्ट गो एंड शेयर आई हैव रियलाइज्ड, लेकिन हमारे ईगो हमें ये सब करने से रोक देती है. सिंपल, बहुत सिंपल होगा अगर यू कैन वॉक अप टू ऑल थ्री एंड टेल देम आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने अपनी पूरी जीवन क्या किया है, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड एंड सो आई हैव चेंज्ड, यू नो नॉट इवन वांटिंग I have changed. And कुछ उसके बाद बोलना नहीं है कि मुझे ये करना है या मुझे वो रिलेशनशिप बिल्ड होना है. वो एक बैरियर है जो मैंने ही रखा था बीच में, अब मुझे जाकर सिर्फ उस बैरियर को हटाना है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो तो वैसे ही रेडी थे, तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. तो या तो मैं एनर्जी से उस बैरियर को हटाऊं, और अगर मेरे अंदर वो ह्यूमिलिटी है तो अगर मैं सीधा वो मैसेज कन्वे कर देता हूँ तो वो बैरियर एक क्षण में फिनिश हो जाएगा. एंड इतना ब्यूटीफुल ये रिलेशनशिप होता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता. ये तो सिर्फ हमने पकड़ के रखा है कि हम दूर हैं, हम दूर हैं. दूर मतलब क्या? रिलेशनशिप है क्या? एनर्जी एक्सचेंज. ठीक है, बहुत समय से हमने एक्सचेंज किया ही नहीं, हम अलग अलग होके बैठे थे, बीच में एक वॉल था, आज वो वॉल हट गया, क्या होगा? एनर्जी फ्लो बिगिंस. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट. इसमें कोई पुरुषार्थ तो इनको करना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट बिगिन. एंड अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत समय से कम्युनिकेट नहीं किया, अगेन बिगिन,
0: स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. एक्चुअली अगर आप ये नहीं भी कहना चाहते कि जैसे आपने कहा कि ईगो आ जाती है कि मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने जिंदगी भर क्या किया, तो आई थिंक एक बार कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं से भी शुरू हो जाएगा.
1: कन्वे कर देंगे ना अपने थॉट पैटर्न और अपने बिहेवियर से, हम वो मैसेज कन्वे कर देंगे. और एक्चुअली जैसे ही आपकी थॉट चेंज होती है, सामने वाले को वो वाइब मिल जाता है.
0: इतना इजी होता है, इट्स जस्ट वन थॉट. एक्चुअली इन्होंने कितना बड़ा हमने बनाई हुई होती है वो चीज कि ये पॉसिबल नहीं हो पाए,
1: उनको वो वाइब मिल जाएगा. एंड इमेजिन दे आर तो एनीवेज वेटिंग, वो तो वेट कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा इस बात को लेकर और शायद कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है.
0: बिल्कुल. एंड मे बी यू नो कहीं इनको ये भी हो सकता है, इनको ये एक रिजेक्शन का डर भी लग रहा हो शायद कहीं, कि क्योंकि मैंने जिंदगी भर नहीं किया है,
1: वही इनसिक्योरिटी है. लेकिन यही याद रखना होगा कि जब हम पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, देयर इज नो वे कि हमें रिटर्न में नेगेटिव मिलेगा. हो सकता है थोड़ा अप्रिहेंशन हो, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा अप्रिहेंशन हो तो भी आई हैव टू जस्ट कीप
0: गिविंग. Because now the time has come.
1: Positive energy देता जाओ, the other person is ready.
0: Wonderful sister Shivani. In fact, जो इतने सारे हमारे पास mails आए आज भी, हमने कई सारी समस्याएं ली. एक बात हम, क्योंकि वक्त नहीं है पर खत्म करें, कि ये जो पूरा राजयोग का, ये जो पूरी हमारी जो ये जो ज्ञान है, तो उसमें हर सवाल आप तक नहीं पहुंच सकता या हम पूरा नहीं इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते. क्या ऐसा किया जाए कि अपने सवालों के जवाब हमें खुद भी मिलने शुरू?
1: अपने सभी सवालों के जवाब हमारे पास अपने पास ही है, क्योंकि उसकी जो बॉटम लाइन प्रॉब्लम है वो हमें पता होती है. लेकिन कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करना पड़ेगा. और उसमें सिंपल सिर्फ यही है, जब तक औरों को ब्लेम कर रहे थे तब वो बिल्कुल दिखेगा नहीं, जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा कि एकदम से मुझे जड़ से पता चल जाए कि ये क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हर सिचुएशन में, एंड दैट मीन्स एवरी सिचुएशन, लेट इट बी एनी सिचुएशन, एवरी सिचुएशन, इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या इसमें वे डिड आई गो रॉन्ग, नॉट यू वेंट रॉन्ग. जैसे यू वेंट रॉन्ग, फोकस इज चेंज. तो फोकस इतना इंटरनलाइज होता जाएगा, इसी को बोलते हैं लुकिंग इनवर्ड्स. जो आज दिन तक हम सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी मीन्स लुक इनवर्ड्स, तो लुक इनवर्ड्स इज नॉट के क्या देखूं, लेकिन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें और अपना रोल देखना शुरू करें, अपना पर्सपेक्टिव देखना शुरू करें और कहां मेरे पर्सपेक्टिव में परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा.
0: बहुत सुंदर आपने बात की सिस्टर शिवानी, और यही वक्त है कि हम विराम लें, लेकिन आपसे ये कहना चाहेंगे कि इतना सारा जो प्यार हमें मिल रहा है और सवालों के जवाब हम खुद भी मिलकर तलाश सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
1: अब शांति.

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला। और दोस्तों, हमारा जो प्रयत्न है वह है लोगों के दुखों का निवारण करना। अब दुख दूर कैसे हों, जीवन की समस्याएं दूर कैसे हों। हर इंसान परेशान है, हर इंसान दुखी है, हर इंसान समस्याओं से घिरा हुआ दिखता है। अब कैसे उनके दुखों का नाश हो सकेगा, इसका सरल उपाय एक ही दिखता है दोस्तों, वो है शिव पुराण या शिव भक्ति या अपने इष्ट की भक्ति। बस इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और यह पुराण जो है वो तो ऐसा पुराण है, ऐसा रामबाण है उपाय, इसको पठन मात्र से या श्रवण मात्र से इंसान के सारे दुख, सारी समस्याएं जो वो घिरा हुआ है, जिनसे परेशान है, दुखी है, सब दूर हो जाते हैं। वो उसको व्यापते ही नहीं हैं। और जो ऐसा पुराण हो, जो ऐसा अचूक उपाय हो, इसमें पैसा भी खर्च नहीं होता, तो वो क्यों ना कर लिया जाए। सिर्फ इसीलिए आपके परोपकार के लिए एक छोटा सा प्रयत्न हम कर रहे हैं कि आपकी समस्याएं, आपका जीवन जो है वो आनंदित हो, उसके लिए आप शिवपुराण सुने। और दोस्तों, शिवपुराण सुनवाने के लिए हम हमेशा ही अपने स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी डॉक्टर लीना सिन्हा जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने एक बहुत ही सुंदर, रोचक और जो गूढ़ ज्ञान वर्धन करने वाला प्रसंग था, वो हमारे दोस्तों को आपने सुनाया कि किस प्रकार से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस को मारा, जिसे और कोई मार ही नहीं सकता था, और कैसे फिर सारे देवगण जो साथ गए थे, उन्होंने भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए उनकी स्तुतियां की। फिर भगवान शिव शांत हुए। जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, सब ने उनकी स्तुति की थी। तो लीला जी, हम पूछना चाहते हैं कि उसके बाद क्या सारे देवगण वापस चले गए और भगवान शिव भी पार्वती सहित अपने कैलाश को लौट गए, तो क्या हुआ, इसके बाद कथा कैसे आगे बढ़ती है, वो हम सब सुनना चाहते हैं।
1: मंजू जी, रुद्र संहिता के युद्ध खंड का 11वां अध्याय चल रहा है। और इस 11वें अध्याय में भगवान शिव जब रुद्र रूप धारण किए त्रिपुर को मारने के लिए, तो फिर वो वापस अपने स्वरूप में नहीं आए। शंकर रूप में, शिव रूप में वापस नहीं आए। उनके रौद्र रूप को देख करके सभी भयभीत होने लगे, कांपने लगे। तब देवताओं ने उनकी स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, विष्णु भगवान ने स्तुति की। अब देवता स्तुति करते हैं और वो भगवान शिव से कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं यहाँ देखते हैं। देवनाथ महादेव करुणा कर शंकर, प्रसीद जगताम नाथ, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद सर्वकर्ता त्वम, नमाम त्वाम वयम मुदा, त्वयि भक्तिर ढास्मा।

0: नित्यम स्यादन पायनी। वो कहते हैं देवताओं ने कहा कि देवनाथ महादेव दयालु शिव जी संसार के स्वामी हे शिव जी प्रसन्न होइए, हम सब प्रसन्न होकर आपको प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। अविनाशी मतलब भक्ति ऐसी हो जो विनाश को प्राप्त नहीं हो, कि आज तो हमने पूजा की है कल जो है छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, या आज हमने पूजा की 2 घंटे और उसके बाद फिर भूल गए भगवान को, 24 घंटे में से 22 घंटे भूले रहे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो अविनाशी भक्ति क्या होती है, प्रश्न ये उठता है, अर्थात भक्ति वह जो कभी खत्म ही नहीं हो, भगवान के साथ जो भक्ति होती है वो हमेशा अविनाशी ही रहे, यानी कि सुबह दू शाम दू मन करता आठो याम दू, ये भक्त कहता है कि आपको सुबह सुबह में जो है नमन करूं, शाम में भी नमन करूं, लेकिन मन तो कहता है कि आपको आठों याम नमन करता रहूं, आपकी आठों याम भक्ति करता रहूं। इसलिए आपने देखा होगा कीर्तन होते हैं बहुत जगह तो अष्टयाम कहे जाते हैं, यानी कि आठों याम कीर्तन, सुबह दोपहर शाम तक रात तक कीर्तन चलता ही रहता है, अखंड जप भी आपने सुना होगा 24 घंटे चलते रहते हैं। तो ये सब बाहरी क्रियाएं हैं, अखंड जप है, कीर्तन है, आठों पहर जो भी किया जाता है, वो सब बाहरी क्रियाएं हैं, लेकिन मन हमारा अंतर में निवास करता है। तो आंतरिक क्रियाएं ये होनी चाहिए कि हम जो भी काम करें ईश्वर को समर्पित कर दें, और आठों याम यानी आठों पहर सिर्फ भगवान ही हमारे सामने हो, तो इसको अष्टयाम भक्ति कहते हैं। ये अविनाशी दृढ़ भक्ति होती है कि जरा भी भगवान के नाम से जो है हम दूर नहीं हो पाते, और इसी अविनाशी दृढ़ भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं कि आपके चरणों में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे, हम सब प्रसन्न होकर आपको प्रणाम करते हैं, ये देवतागण शिव जी से कहते हैं। अब सनत कुमार जी कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि देवों द्वारा स्तुति किए गए संसार का कल्याण करने वाले शिव जी ने प्रसन्न होकर के कहा। अब शिव जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे विधे हे हरे देवा प्रसन्नो अस्मि विशेषतः मनो अभिलषितम ब्रुत वरम सर्वे विचारतः। कहते हैं शिव जी की ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं में मैं आज विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, आप सब इच्छा अनुसार वर मांगिए। शरद कुमार जी ने कहा हे नारद, शिव जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। अब सभी देवताओं ने कहा, क्या कहा, यदि प्रसन्नो भगवन यदि देयो वरस्त्वया देव देवेश चास्मभ्यं ज्ञात्वा दासान हि न सुरान, यदा दुःखं तु देवानां संभवेद देव सत्तमा तदा त्वं प्रकटो भूत्वा दुःखं नाशय सर्वदा। वो देवतागण कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको वर देना है तो हम सभी देवताओं को अपना दास समझकर यह वर दीजिए। हे देवों में श्रेष्ठ, जब कभी देवताओं का पर कष्ट पड़े तब आप प्रकट होकर सदा दुख का नाश करें। ये बहुत बड़ी बात देवताओं ने मांग ली कि जब भी कष्ट हो तब आप हमारा कष्ट दूर करें, हमारा कष्ट हरण करें, क्योंकि आप ही कष्ट हरता है, और आप अगर प्रसन्न होते हैं तो समझिए कि हमारा भी अंतर्मन प्रसन्न हो जाता है। वो कहते हैं संत कुमार जी ने कहा इसके बाद कि इत्युक्तो भगवान रुद्रो ब्रह्मणा हरिनामरे युग युगपत प्राह तुष्टात्मा तथेत्यस्तु निरंतरम। इस तो अब ब्रह्मा जी सब जो है जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है कि सनत कुमार जी ने कहा हे नारद, शिव जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर देवता प्रसन्न मन से कहने लगे, और उन्होंने यही कहा कि भाई आप जो है जब भी हमारा कार्य पड़े तो आप आ जाया करिए। तो संत कुमार जी कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के कहने पर प्रसन्न होकर शिव जी ने तथास्तु ऐसा ही कहा, ऐसा ही हो कहा। हे देवताओं, आपके कहे हुए उन स्तोत्रों से मैं प्रसन्न हूँ। इन्हें जो पढ़ेगा या सुनेगा उनको मैं इच्छित पदार्थ प्रदान करूँगा। ऐसा कहकर देवताओं के दुखों को हरने वाले शिव जी ने देवताओं को इच्छित वरदान देकर उन्हें सब कुछ दे दिया। तो यहाँ जो भक्तिमय स्तोत्र हैं, जो स्तुति है देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, हरि के द्वारा, तो ये स्तुति हम सबको भी पढ़नी चाहिए, जिससे कि भगवान शिव हमसे प्रसन्न रहे, सदैव प्रसन्न रहे, क्योंकि वो प्रसन्न तो हमारा अंतर्मन प्रसन्न, और हमारा अंतर्मन प्रसन्न तो फिर हम सारे कार्य प्रसन्नता पूर्वक करेंगे। नहीं तो बस ऐसे ही आशा निराशा दुख सुख में डूबे रहेंगे, और दुख सुख का गह्वर जो है वो तो है ही, सबके साथ है। कहते हैं कि जैसे रथ का पहिया होता है, उसमें 24 अरे लगे हुए होते हैं, ये सभी जैसे जैसे रथ घूमता है वैसे वैसे ये भी घूमते हैं। तो हमारा सुख दुख ठीक इसी तरह से है, कभी पहिया ऊपर होता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर होता है, फिर नीचे आता है। तो दुख होगा तो सुख होगा, सुख होगा तो दुख होगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष तो इस सृष्टि का नियम ही है।
1: लीला दी, ये सत्य है कि जीवन है तो सुख दुख आएंगे ही। ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा कि हमेशा सुख ही सुख रहे या हमेशा दुख ही दुख रहे। तो ऐसा तो दोस्तों कभी होता नहीं है। जब इनका युद्ध खत्म हो गया था महाभारत का, तो कृष्ण ने कुंती से पूछा था कि बुआ आप मांग लो, क्या मांगना है। तो दोस्तों पता है क्या मांगा था कुंती ने कृष्ण से? उसने कहा था, केशव तुम मुझे दुख ही दुख देना। दोस्तों उसने दुख ही दुख क्यों मांगे? वो तो कुछ भी मांग सकती थी कि मुझे कभी ऐसा दृश्य ना देखने को मिले, कभी महाभारत जैसा, कभी मुझे दुख ना मिले, मेरे संतान को, कुछ भी मांग सकती थी ना। अब हम क्या मांगते हैं भगवान से? हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे बच्चों को धन देना, हमारे बच्चों के काम संभालना, बहुत कुछ मांगते ही रहते हैं। चलो भगवान से तो मांगना है, उसी से ही मांगना चाहिए। लेकिन उसने दुख क्यों मांगा? ताकि वो भगवान को, केशव को, श्री कृष्ण को पहचानती थी कि ये कौन है, और वो हमेशा उनको स्मरण रखना चाहती थी। वो जब भी बुलाए दुख में तो उनको आना ही पड़ेगा, वो हमेशा उनको स्मरण रखना करते रहना चाहती थी। बिल्कुल वही बात आप अपने जीवन पर लागू रखिए। आप हमेशा ईश्वर को, अपने इष्ट को स्मरण करते रहेंगे तो दुख आएंगे जरूर, पर दुख सहने की क्षमता भी ईश्वर ही देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब दुख आए और कब चले गए। और सुख आएंगे तो सुख में भी अभिमान करने की दुर्बुद्धि ईश्वर आपको नहीं देगा। दुख आए उसमें भी समान, और सुख आए उसमें भी समान, आएंगे तो दोनों ही। इतने उदाहरण ईश्वर ने प्रकृति में ही दे रखे हैं। गुलाब का फूल इतना खूबसूरत होता है, फिर भी उसकी हर डाली में इतने कांटे होते हैं, एक फूल के साथ 10-10 कांटे होते हैं। अब इससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि फूल में सुगंध भी है, सुंदरता भी है, ईश्वर ने मतलब देखते जाओ इतना सौंदर्य उसमें दिया है, लेकिन उसके साथ कांटे भी हैं, यानी कि उसके जीवन में दुख भी है और वो सुख भी है, उसकी सुगंध का, उसकी सुंदरता का। तो इन सब से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन में संतुष्ट रह सकते हैं। संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। आजकल जो संतुष्ट है वही सुखी है, जो संतुष्ट नहीं है वह कभी संतुष्ट हो भी नहीं सकता, उसे संतोष मिल भी नहीं सकता। जो कुछ अपने पास है दोस्तों, उसमें ही संतुष्ट रहिए। एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाकर रात को आता है, और बिना कोई चिंता किए हुए अपने सारे परिवार के साथ वह आनंदित होकर जैसा भी भोजन घर में बनता है उसको करके आराम की नींद सोता है। लेकिन जिसके घर में धन अधिक है, ना तो उसको चैन की नींद आती है, ना ही वह अपने भोजन का आनंद ले पाता है, ना ही वह सो पाता है, दवाइयों पे दवाइयां खाता रहता है। तो ऐसे धन का क्या फ़ायदा? क्या आप ऐसा धन चाहेंगे जिसमें जीवन का सुख ही चला जाए, जिसमें संतुष्टि ना आए? अब क्योंकि संतोष ही नहीं है तो सुख कहाँ से होगा, हैं? संतोषम ही परम सुखम ये कहा गया है, लेकिन संतोष ही नहीं है तो सुख कहाँ। तो दोस्तों जो लीना जी ने अभी बताया जैसा कि हमारा शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर भगवान का स्मरण करते रहोगे तो दुख व्यापेंगे नहीं, आएंगे पर आपको अंदर तक दुखी नहीं देंगे, आप आएंगे और आप उसको सहन करते चले जाएंगे, सुख आएंगे, उसको आनंदित होते चले जाएंगे।
0: तो इस तरह से रुद्र संहिता के युद्ध खंड के 11वें अध्याय में भगवान शिव ने देवताओं को वर दिया। अब 11वें अध्याय के बाद 12वां अध्याय शुरू हो रहा है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कहते हैं सनत कुमार जी, एतस्मिन् अंतरे शंभुम प्रसन्नम वीक्ष्य दानव तत्र आजगाम सुप्रीतो मयो दग्ध कृपा बलात् प्राणनाम हरम प्रीत्या सुरान्यान अपि ध्रुवम कृतांजलिर नत स्कंध प्रणमाम पुनः शिवम। कहते हैं इसी बीच में शिव जी की कृपा से जलने से बचा हुआ मैं दानव शिव जी को प्रसन्न देखकर वहां आया। शिव जी तथा अन्य देवताओं को हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर उठकर शिव जी को देखकर गदगद स्वर से भक्ति पूर्वक मैं दानव ने उनकी स्तुति की। क्योंकि मैं दानव ही है जो भगवान विश्वकर्मा की तरह है। भगवान विश्वकर्मा क्या करते हैं, ईश्वर से संबंधित जो भी शिल्प कला होती है वो भगवान विश्वकर्मा ही करते हैं। जैसे जब ये बनाया गया महल भगवान शिव के लिए तो वो किसने बनाया था,
1: विश्वकर्मा।
0: और जो
1: ये रथ बनाया था तो भी विश्वकर्मा,
0: वो भी विश्वकर्मा। शिल्प कला से संबंधित हर कार्य विश्वकर्मा करते हैं देवताओं की ओर से। और दानवों की ओर से जो शिल्प कला है वो कौन करते हैं, मैं दानव। तो मैं दानव ने त्रिपुरासुर की नगरी बनाई थी, लेकिन वो मैं दानव बचा रह गया। क्यों बचा रह गया भाई, क्योंकि वो शिव जी को का भक्त था और शिव से उसका द्रोह नहीं था। त्रिपुरासुर आदि भी भक्त थे लेकिन उनका धीरे धीरे शिव से द्रोह बढ़ता चला गया था, तो इसलिए वे नष्ट हुए। लेकिन मैं का शिव से द्रोह नहीं था इसलिए वो नष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि हम सब अगर शिव भक्ति में रमे रहेंगे तो हम सब का शरीर भले समाप्त हो जाए लेकिन हमारे मन हमारी आत्मा सब में शुभ कर्म ही विराजेंगे। और शुभता जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ अंधेरा छट जाएगा। तो मन का अंधेरा अगर हमें छांटना है तो भगवान शिव के शरण में हमें जाना चाहिए। तो अब मैं दानव का अंधेरा छट चुका था, उसने देखा कि भगवान शिव ने उसे नहीं मारा, तो वो खुश होकर के शिव के पास गया। और देखिए आगे क्या होता है, मैं दानव ने उनकी स्तुति की। अब वो भी कहता है, मैं दानव भी कहता है कि देव देव महादेव भक्तवत्सल शंकर कल्प वृक्ष स्वरूपो असी सर्व पक्ष विवर्जित ज्योति रूप नमे नमस्ते अस्तु विश्व रूप नमो अस्तु ते नमः पूतात्मने तुभ्यं पावनाय नमो नमः चित्र रूपाय नित्याय रूपातीताय ते नमः दिव्य रूपाय दिव्याय सुदिव्या कृतये नमः नमः प्रणत सर्वार्थी नाशकाय शिवात्मने कर्त्रे भर्त्रे च संहर्त्रे त्रिलोकानाम नमो नमः। अब देखिए मैं दानव भी पढ़ा लिखा विद्वान था और उसने भी बड़े सुंदर शब्दों में भगवान शिव की स्तुति की। उसने कहा देव देव महादेव भक्तवत्सल शंकर आप सभी पक्षों से रहित कल्प वृक्ष के समान है। क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि ये दानव है और ये देवता है, आपने तो दोनों को समान रूप से
1: आशीर्वाद दिया।
0: तो आप ज्योति रूप विश्व रूप पवित्र आत्मा तथा सबको पवित्र करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। विभिन्न रूपों वाले नित्य रूपातीत आपको नमस्कार है। दिव्य रूप दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। सभी भक्तों के कष्टों का नाश करने वाले शिवात्मा तीनों लोकों के कर्ता भर्ता संघर्ता आपको नमस्कार है। भक्तों को भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले कृपालु तपस्या के फल को देने वाले शिवापति शिवेश्वर आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, हे स्तुति प्रिय, हे सर्वेश, मैं स्तुति करना नहीं जानता। इतना चीज सब कुछ बोल करके आगे वो कहता है कि मैं स्तुति करना नहीं जानता, आप मुझ शरणागत पर प्रसन्न होकर मेरी रक्षा कीजिए। अब उसके अंदर भय खत्म हुआ और थोड़ा साहस करके वह भगवान शिव के पास गया और शिव की आराधना किया, उनकी स्तुति की और अंत में अपनी अज्ञानता भी बताई, अपना जो उसके अहंकार के समूल नाश का प्रतीक है कि भगवान शिव जो है सबसे पहले अहंकार का भक्षण करते हैं। वो किसी भी मनुष्य, किसी भी पशु के अंदर तो अहंकार काम क्रोध होता नहीं है, लेकिन मनुष्य को कहा गया है, मनुष्य को भी पशु की ही संज्ञा दी गई है, तो वो किसी के अहंकार का वो तुरंत भक्षण कर लेते हैं भगवान शिव। तो जब मैं दानव उनके पास पहुंचा तो वो अहंकार रहित हो गया था। अहंकार रहित व्यक्ति ही कह सकता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ स्तुति करना, तो कैसे स्तुति करूँ ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न होइए मुझ पर और मुझे शरणागति, अपनी शरणागति प्रदान कीजिए। तब सनत कुमार कहते हैं, इत्याकर्ण्य मयोक्ताम हि संस्तुतिम परमेश्वर प्रसन्नो अभिभूत द्विज श्रेष्ठ मयम प्रोवाच चादरात। कहते हैं सनत कुमार जी कि इस प्रकार मेरे द्वारा कही गई स्तुति को सुनकर वे नारद शिव जी ने प्रसन्न होकर आदर से मैसे कहा, हे नारद, शिव जी ने प्रसन्न होकर आदर से मैसे कहा। देखिए शिव जी पर ब्रह्म परमेश्वर है, फिर भी वे अपने से छोटों का निरादर कभी नहीं करते, तो आदर पूर्वक उन्होंने मैं दानव से कहा। क्या कहा शिव जी ने? कहते हैं, वरम ब्रूहि प्रसन्नो अहम मैं दानव सत्तम मनो अभिलषितम यत्ते तद दास्यामी न संशय। वो कहते हैं कि हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपना इच्छित वर मांगो, मैं निसंदेह तुम्हें दूंगा। सनत कुमार जी ने कहा कि मैं दानव शिव जी के शुभ वचनों को सुनकर प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर तथा सिर झुकाकर कहने लगा। अब मैं दानव ने क्या कहा? कहते हैं कि देव देव महादेव प्रसन्नो यदि मे भवान वर योग्यो अस्मि अहम चेद्धि स्वभक्तिम देहि भावो भवेन मम महेश्वर निर्भय श्याम स्वभक्तिम देहि शाश्वतीम स्वभक्तेषु सदा सख्यम दीनेषु च दयाम सदा उपेक्षा मन्य जीवेषु खलेषु परमेश्वर कदापि नासुरो भावो भवेन मम महेश्वर निर्भय श्याम सदानाथ मग्न मग्न त्वद भजने शुभे। अब मैं दानव कहते हैं क्या कि देव देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे अपनी सनातन भक्ति दीजिए। यानी कि मैं दानव के मन में भी भक्ति जागृत हुई और वह दानवता छोड़ करके भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा भगवान शिव की कृपा से। और वो फिर आगे कहता है, हे परमेश्वर, अपने भक्तों के साथ सदा मित्रता दिनों में दया खल तथा अन्य जीवों के प्रति उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मेरे मन में कभी असुर भाव पैदा ना हो, असुरत तो उसके अंदर पैदा नहीं हो, क्योंकि वो मैदान अब जान रहा था कि जो राक्षस कोटि के हैं, जो राक्षसी वृत्ति जिनकी है, उनके साथ भगवान नहीं होते हैं। इसलिए उसने ऐसा भगवान महेश्वर से कहा और महेश्वर ने फिर कहा कि हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, मेरे भक्त हो, विकार रहित हो, मैंने तुम्हारे इच्छित वर इस समय तुम्हें दे दिए हैं, तुम मेरी आज्ञा से सपरिवार बीतल लोक में चले जाओ। अब दानव जो है सब पाताल के नीचे रहते हैं, अतल बीतल सुतल आदि बहुत सारे सात लोक हैं, तो उन्होंने बीतल लोक में मैं दानव को भेज दिया। उन्होंने कहा कि यह स्वर्ग से भी अधिक रमणीय है, तुम भक्ति भावना से युक्त होकर प्रसन्न मन से वहां रहो, तुम्हारे मन में मेरी आज्ञा से कभी भी असुर भाव नहीं पैदा होगा। यह आश्वासन भगवान शिव ने किसे दिया? मैं दानव तो भगवान शिव के लिए देव और दानव दोनों बराबर है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये धनुज हैं, ये राक्षस हैं, इनको वर नहीं दिया जाए, या उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये देवता हैं तो सिर्फ इन्हें ही वर का अधिकार है। जिसने भी उनसे जो कुछ भी प्यार से मांगा, भक्ति से मांगा, उसे उन्होंने इच्छित वर प्रदान किया। तो मैं दानव को भी उन्होंने इच्छित वर प्रदान किया कि आप बीतल लोक में सपरिवार रहिए जा करके, और यह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक ये प्रसंग था लीना जी, और ये बहुत ही गूढ़ रहस्य वाला था जिसको हमने कभी ना बाहर सुना है और ना ही हमें सुनने को कहीं मिला। कि किस तरह से एक दानव भी भगवान की भक्ति पाकर उनके जो वरदान का है वो पात्र बन गया। तो जब दानव बन सकते हैं पात्र, तो इंसान क्यों नहीं बन सकते। तो लीना जी, अब क्योंकि एपिसोड समाप्त करने का समय हो चला है, तो हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: धन्यवाद
1: जी। और दोस्तों, अब मुझे भी आप इजाज़त दीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम पुनः फिर मिलेंगे। इस एपिसोड को हम अब आगे नहीं पढ़ा सकते, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो मुझे भी इजाज़त दीजिए। फील गुड, फील लाइफ।

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
1: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हयन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
0: हैं बिन बुलाए मेहमान।
1: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
2: खुद के मन में क्या है
1: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
2: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
1: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
2: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
1: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित।

0: चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही

0: टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है। और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोत्स्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें
0: उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे। हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया। तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे।
1: बिल्कुल,
0: इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें।
2: और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधियते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है, और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट

0: कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं, और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी, और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव वृष 107.8 FM पर। नमस्कार।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए, बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे आध्यात्मिक तत्वों की बात करते हैं और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, आजकल हम आत्मदर्शन कार्यक्रम में बात कर रहे हैं महाभारत जो एक ग्रंथ है, इसके अंदर समाहित बहुत सारे विषयों के बारे में, बहुत सारी कथाओं और प्रसंगों के बारे में, और रागलेखा दासी जी हमेशा की तरह बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो रागलेखा दासी जी, आज के इस कार्यक्रम में कौन सी कथा आप हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं?
1: कौरवों की घोष यात्रा और उनका गंधर्वों के साथ युद्ध में पराभव। तो वन में रहकर जाड़ा, गर्मी, वायु, धूप सहने से नरश्रेष्ठ पांडवों के शरीर बहुत कृष हो गए थे
0: जी।
1: उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने अपने हित चिंतकों को विदा कर दिया और वहाँ कुटी बनाकर आसपास के रमणीय वन पर्वत नदियों के किनारे विचरने लगे। अनेक वेद अध्ययनशील ब्राह्मण आते और नरश्रेष्ठ पांडव लोग यथाशक्ति उनकी सेवा करते। इन्हीं दिनों वहाँ एक बातचीत करने पर कुशल ब्राह्मण आया। उनसे मिलकर वह कौरवों से मिला और फिर धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने कहा कि इस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव बड़ा भीषण कष्ट सह रहे हैं। द्रौपदी की तो बात ही मत पूछो, दुख के कारण उन सबके शरीर बहुत कृश हो गए हैं और वह वीर पत्नी होकर अनाथाशी हो रही है और सब और से दुखों से दबी हुई है। उसकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुना की राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव इस प्रकार से दुख की नदी में खड़े हुए हैं, तो उनका हृदय करुणा से भर आया। सुपुत्र के मुंह में सच कर मैंने तो वह काम कर डाला जिसके कारण कौरवों का अंतकाल समीप दिखाई दे रहा है। धृतराष्ट्र की ये सब बातें सुबल पुत्र शकुनी ने सुनी और फिर कर्ण के साथ एकांत में बैठे हुए दुर्योधन के पास जाकर इसे सुनाई। आजकल पांडव लोग द्वैत वन में एक सरोवर के ऊपर कुछ ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। अपने तेज से पांडवों को संतप्त करो, तुम्हारी महिषिया भी बहुमूल्य वस्त्र से सज्जित होकर चले और मेघ चर्म और वलकल धारिणी कृष्णा को देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्य से उनका घी जलावे। दुर्योधन से ऐसा कहकर दुर्योधन ने कहा, मेरे मन में भी ये बात बसी हुई है, पांडवों को बलकल वस्त्र मधु चर्म होने देख कर मुझे जैसी खुशी होगी वैसी इस सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी
0: जी।
1: और इससे बढ़कर प्रसन्नता की क्या होगा कि मैं द्रौपदी को दुर्योधन वस्त्र पहने देखूं। कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, मुझे द्वैत वन जाने का एक उपाय सूझ गया है, उसे सुनिए। आजकल आपकी गौओं के गोश द्वैत वन में है और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग गोश यात्रा के बहाने वहां चलेंगे। इस काम के लिए महाराज हमें अवश्य अनुमति दे देंगे और पांडवों से मेलजोल करने के लिए भी समझाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे तात, लोगों की देखभाल करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैंने सुना है आजकल नरशार्दुल पांडव लोग भी उधर कहीं पासी में ठहरे रहे हैं। ये लोग जब से निरंतर तप करते रहे हैं और अब तक प्रकार से शक्ति संपन्न हो गए हैं, किंतु अहंकार और मोह में चूर हो रहे हैं, इसलिए उनका अपराध किए बिना मानोगे नहीं। ऐसा होने पर अपने तप के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही भस्म कर देंगे। सचिने ने कहा, जहाँ पांडव लोग रहते होंगे वहाँ तो हम जाएंगे ही नहीं। उस प्रकार जब सब लोगों के ठहरने की ठीक ठाक हो गया तो दुर्योधन ने अपनी असंख्य गौओं का निरीक्षण किया और उन पर नंबर और निशानी डलवा कर सबकी अलग अलग पहचान करा दी। दुर्योधन ने अपने सहस्त्र सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ क्रीड़ा भवन तैयार करो। द्वैत वन के सरोवर पर गए वे लोग और वे वन के दरवाजे में घुसने लगे तो उनके मुखिया को गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वहाँ गंधर्व राज चित्रसेन जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक देवता और अप्सराओं के सहित आया हुआ था और उसी ने सरोवर को घेर रखा था। सुखा सरोवर को घिरा हुआ देख कर वे लोग दुर्योधन के पास लौट आए। दुर्योधन ने रणोन्मत्त सैनिकों को यह आज्ञा देकर तुम्हें वहां से निकाल दो उसे सरोवर पर भेजा। गंधर्व हंसने लगे और बोले, मालूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मंद बुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है, उसी से हम देवताओं पर इस प्रकार की हुकूमत चलाता है, मानो हम बनिए ही हैं। दुर्योधन की आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सहस्त्र योजना कमर कस के तैयार हो गए। और गंधर्वों को मार पीट कर बलाते स्वयं में घुस गए। गंधर्वों ने ये सब समाचार अपने स्वामी चित्रसेन से जाकर सुनाया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ इन नीच कौरवों की अच्छी तरह मरम्मत कर दो। तब वे सबके सब अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों पर टूट पड़े। एक एक कौरव वीरों को 10-10 गंधर्वों ने घेर लिया। उनकी मार से पीड़ित होकर वे रणभूमि से प्राण लेकर भागे। अकेला कर्ण ही पर्वत के समान अपने स्थान पर अचल खड़ा रहा। तब गंधर्वों ने सैकड़ों और हजारों की संख्या में मिलकर अकेले कर्ण पर ही धावा बोल दिया। उन्होंने कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दुर्योधन ने इस प्रकार रथ से नीचे गिर जाने पर उसे चित्रसेन ने झपट कर जीवित ही कैद कर लिया। चित्रसेन जी ने दुर्योधन के ऊपर आक्रमण किया और वो नीचे गिर गया रथ से। और बहुत से गंधर्वों ने रथ में बैठे हुए दुशासन को घेर कर पकड़ लिया। तब दुर्योधन को गंधर्वों के पंजे से छुड़ा लाने के लिए अत्यंत आतुर हुए। उनके मंत्री ने रो होकर धर्मराज से कहा, महाराज हमारे प्रिय दर्शी महाबाहु दृष्टराज कुमार महाराज दुर्योधन को गंधर्व पकड़ कर लिए जाते हैं, अतः आप उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। भीमसेन कठोर स्वर से इस प्रकार कहने लगे। धर्मराज ने कहा, भैया भीम इस समय कड़वी बातें सुनाने का नहीं है। देखो ये लोग भय से पीड़ित होकर उससे प्राण पाने के लिए हमारी शरण में आए हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में पड़े हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? कुटुंबियों में मतभेद लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, कभी कभी उनमें बैर भी ठन जाता है, किंतु जब कोई बाहर का पुरुष उनके कुल पर आक्रमण करता है तो उसे उस तिरस्कार को वो सह नहीं सकते। अर्जुन नकुल सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ दुर्योधन को छुड़ा लाओ। यदि वह गंधर्वराज समझाने में जाने से ना माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधन को छुड़ा लाना। तब अर्जुन ने गंधर्व को समझाते हुए कहा, तुम मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो, क्योंकि अरे युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग ये हमारा भाई दुर्योधन नहीं है सुयोधन है और हम लोग 105 भाई है। हम 5 भाई नहीं है 105 है
2: जी।
1: हमें आज्ञा देने वाला तो गंधर्वराज चित्रसेन के सिवा और कोई नहीं है, इसलिए ही हम जैसी हमें जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हम करते हैं। मारुति पांडव लोग जब गंधर्वों को इस प्रकार दिव्य अस्त्रों से मारने लगे तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर आकाश में उड़कर जाने लगे। गंधर्व उन्हें उड़ते देखकर बाणों का एक ऐसा विस्तृत जाल छा गया जिसके चारों ओर से उनकी गति रोक दी। उस जाल में वे चित्कार बंद हो गए जैसे पिंजरे में पक्षी। अर्जुन के उन अस्त्र शस्त्रों से चित्रसेन तिल मिला उठा। उसने अपने को प्रकट करके कहा, अर्जुन देखो तुम्हारे युद्ध में तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ। अर्जुन ने जब अपने सखा को युद्ध में जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों को लटा दिया। अर्जुन ने चित्रसेन से हंसकर पूछा, कौरवों का पराभव करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? चित्रसेन ने कहा, देवराज इंद्र को स्वर्ग में ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो गया था। वे लोग ये सोचकर कि आजकल पांडव लोग वन में विपरीत परिस्थिति में रहकर अनाथों की तरह कष्ट भोग रहे हैं और हम खूब आनंद में हैं तुम्हें देखने और इस दुर्दशा में यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, जाओ दुर्योधन को उसके भाई और मंत्री सहित बांध कर ले जाओ। भाइयों के साथ अर्जुन की सब प्रकार से रक्षा करना क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और दान विद्या का शिष्य है। फिर ये सब महाराज युधिष्ठिर के पास गए और उसकी सब बातें उन्हें बता दी। अब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने गंधर्वों की बातें सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवों को छुड़वा दिया। बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अप्सराओं के सही चित्रसेन आदि गंधर्व अत्यंत प्रसन्न चित्त से सरलोक को चले गए। देवराज इंद्र के दिव्य अमृत की वर्षा करके कौरवों के हाथ के मरे हुए गंधर्वों को जीवित कर दिया। युधिष्ठिर व दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और हृदय में अत्यंत लज्जित होकर अपने नगर की ओर चला गया। उस समय वैसा व्याकुल हो रहा था मानो इंद्रियां नष्ट हो गई है, शोक के कारण उसके हृदय थका जा रहा था।
2: जी श्रोताओं, बहुत सुंदर प्रसंग जान रहे हैं और अभी रागलेखा दासी जी ने हमें कथा सुनाई किस तरह से पांडवों की जो दुर्दशा हो रही थी वो भी बताया और कौरवों की क्रूरता के बारे में बताया, गंधर्वों से उनका किस तरह से युद्ध हुआ, किस तरह से भाइयों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, ये सारी कथा हमने जानी महाभारत के इस ग्रंथ के अंतर्गत। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली कथा हम जान लेते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
1: दुर्योधन ने कहा, जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया, जिनका सदा से शत्रु बना रहा, उन्होंने मुझे मंदोदती को मुंडन से छुड़ाया और मुझे जीवन दान दिया। हे वीर, इसकी अपेक्षा तो मैं उसी महान संग्राम में मेरे प्राण निकल जाते तो अच्छा होता। इस प्रकार का जीना किस काम का? यदि गंधर्व मुझे मार डालते तो संसार में मेरा यश फैल जाता और इंद्रलोक में अक्षय पुण्य लोगों की प्राप्ति होती। मेरा जो विचार है वह सुनो। मैं यहाँ अंजल छोड़कर प्राण त्याग दूंगा। तुम और दुशासन आदि मेरे सब बाह्य सीमा से उड़ चले जाओ। इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। दुर्योधन का प्राय वेश देखकर देवताओं से पराजित पतालवासी दैत्य और दानवों ने विचारा कि यदि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत हो गया तो हमारा पक्ष गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाने के लिए कर्म कांड आरम्भ किया। वेद विधान में निष्णात ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण पूर्वक अग्नि में घी दूध की आहुति देने लगे। कर्म समाप्त होने पर यज्ञ से बड़ी ही अद्भुत कृपया जमाई लेती हुई प्रकट हुए। बोली, बताओ मैं क्या करूं? तब दैत्य ने प्रसन्न के साथ इस प्रायोपवेश करते हुए राजा दुर्योधन को यहाँ ले आ। कृपया ने कहा, जो आज्ञा कहकर गई और एक क्षण में दुर्योधन के पास पहुँच गई। एक क्षण में ही उसे देखकर रसातल में पहुंच गई। दुर्योधन को आता देखकर दानवों के चित्त प्रसन्न हो गए। जो पुरुष आत्महत्या करता है वह तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोगों में भी उसकी निंदा होती है। कुछ दूसरे दैत्य भीष्म द्रोण और कृप आदि के शरीर में प्रवेश करेंगे, जिससे वे दया और स्नेह को तिलांजलि देकर आपके शत्रुओं में संग्राम करेंगे। अब आप अपने घर जाइए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दूसरे दिन सवेरा होते ही कुछ पुत्र करण ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा, महाराज, मरकर कोई भी मनुष्य शत्रुओं को नहीं जीत सकता। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक शस्त्र छुपकर कहता हूँ, पांडवों के अज्ञातवास का 13वां वर्ष समाप्त होते ही मैं उन्हें आपके अधीन कर दूंगा। इस प्रकार कहने और दुशासन के बहुत अनुनय विनय करने पर दैत्यों की बात याद करके दुर्योधन आसन से खड़ा हो गया और पांडवों के साथ युद्ध का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर चलने के लिए साथी जोड़े उसको नियुक्त कर दिया। दुर्योधन के लौट आने पर पितामह भीष्म ने उससे कहा, इस कुल की वृद्धि के लिए मैं तो पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा समझता हूँ। विष्णु के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्योधन हंसकर शकुनी के साथ चल दिए। उस समय कौंडिन्य का राजन, सुनिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ। विष्णु सदा ही हमारी निंदा करते हैं और पांडवों की प्रशंसा करते हैं। इन शब्दों को सहन नहीं कर सकते। आपने जो सेवक सेना सवारी देकर पृथ्वी की विजय करने की आज्ञा दीजिए, आपकी विजय अवश्य होगी। मैं शास्त्रों की शपथ कहकर सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ। दुर्योधन के ऐसा कहने पर कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार कर ली। हस्तिनापुर से बड़ी भारी सेना लेकर चला और महाधनुर्धर कर्ण ने राजा द्रुपद की राजधानी को घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर द्रुपद अपना अशुद्ध बना लिया। उसे कर रूप में बहुत सा सोना चांदी तरह तरह के रत्न लिए। जो राजा द्रुपद के अधीन थे उन्हें जीत कर उनसे भी कर लिया। वो हिमालय से शत्रुओं से लड़ता लड़ता हिमालय पर चढ़ गया। सब राजाओं को जीत कर उसने नेपाल देश के राजाओं को भी परास्त कर दिया। उन सबको जीत कर इनसे कर लेकर कर्ण ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार उसने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में सारी पृथ्वी की विजय कर ली। दुर्योधन ने कहा कर्ण से कि मैं पांडवों का बड़ा भारी राजसूय यज्ञ देखा था मैंने।

0: इच्छा है कि राजसूय यज्ञ करने की है, तुम उसे पूरी करो। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने उससे कहा, राजन उस समय सभी निपतिगण आपके अधीन है, आप याचकों को बुलाकर यज्ञ की तैयारी कराइए। दुर्योधन ने पुरोहित को बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए शास्त्र अनुसार विधिवत राजसूय यज्ञ आरम्भ कर दीजिए, इसकी समाप्ति पर मैं यथेष्ट दक्षिणाएं दूंगा। उस पर पुरोहित ने कहा, राजन युधिष्ठिर के जीवित रहते हुए आप ये यज्ञ नहीं कर सकते, किंतु एक दूसरा यज्ञ है जो किसी के लिए भी निषिद्ध नहीं है, उसका नाम है वैष्णव यज्ञ। ये राजसूय यज्ञ ही जोड़ का है और हमें बहुत प्रिय है, इससे आपका हित होगा और बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाएगा। राजन यज्ञ सब सामग्रियां तैयार है, सोने का बहुमूल्य हल भी बन चुका है, यज्ञ का नियत समय भी आ गया है। दुर्योधन को शास्त्र अनुसार विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी गई। उस समय सारे श्रेष्ठ धृतराष्ट्र भीष्म सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनमें से एक दूत ने दुशासन से कहा, तुम शीघ्र जयक्रम जाओ और वहाँ रहने वाले पांडवों और ब्राह्मणों को विधिवत यज्ञ का निमंत्रण दो। युधिष्ठिर ने कहा, हम भी उसमें सम्मिलित होते किंतु इस समय इस प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि 13 वर्ष तक हमें वनवास का नियम करना है। इस प्रकार वन में रहते हुए महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते, फल मूल खाकर रहते थे। राजा युधिष्ठिर से उसके हम भाइयों पर जो महान दुख आ पड़ा है वे मेरी ही करने का तो फल है, उन्हें रात भर नींद नहीं आती और भीम नकुल सहदेव द्रौपदी भी राजा युधिष्ठिर का मुँह देख कर सारा कष्ट धैर्य पूर्वक सह लेते थे। एक समय की अपने व्यास जी पांडवों को देखने के लिए आए। उन्होंने अपने पौत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल और जंगली फल मूल खाते देखकर जीवन निर्वाह करते हुए व्यास जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, महाबाहु युधिष्ठिर सुनो, संसार में तपस्या के बिना किसी को उच्च कोटि का सुख नहीं मिलता, तप से बढ़कर कोई साधन नहीं है, इसलिए अपने शरीर को तप और नियमों के पालन में लगाना चाहिए। राजन समय पर यदि कोई ब्राह्मण या अतिथि आ जाए उसे प्रसन्न होकर अपनी यथाशक्ति से दान दे। युधिष्ठिर ने कहा, महामुनि दान और तपस्या में किसका फल अधिक है और दोनों में कौन कठिन है? व्यास जी ने कहा, राजन दान से बढ़कर कठिन कार्य स्थिति पर दूसरा नहीं है, इस प्रकार कष्ट सहकर कमाए धन का त्याग करना बड़ा ही कठिन है, अतः दान से दुष्कर कोई कार्य नहीं है, उन्हें दान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसमें से यदि कोई धन न्याय से कमाया गया हो तो उत्तम देश काल पात्र का विचार करके इसका दान किया जाए और इसका और भी अधिक महत्व समझना चाहिए। न्याय पूर्वक प्राप्त किए हुए धन से जो दान धर्म किया जाता है तो कर्ता की महान भरोसे रक्षा नहीं करता। इस विषय में जानकर लोग एक पुराने इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, वह है मुद्गल ऋषि की कथा।
1: जी तो श्रोताओं, इस ऋषि की कथा हम जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त जो है वो आपसे इजाजत लेने का हो चला है। और इसी तरह बहुत सारी कथाएं और प्रसंग महाभारत के अंतर्गत जो समाहित हैं वो हम जानते रहेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव कृष्णा 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और होती हैं बहुत सारी बातें। जी हाँ, आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, क्योंकि सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। और सेगमेंट जो है हमारा पहला, वो है दिल धड़कने दो, जिसपे हेल्थ और फिटनेस की करती हूँ ढेर सारी बातें। और इसके बाद लेकर के आती हूँ सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज, जिसमें बातें होती हैं योग से जुड़ी हुई। और उसके बाद आ जाता है हमारा अगला सेगमेंट, सेगमेंट का नाम है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि ये है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसपे स्पोर्ट्स की बात होती है। जिसके बाद आ जाता है आपका फेवरेट फेवरेट फेवरेट सेगमेंट, जिसका नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ और जिसका जल्दी से झटपट से आपको जवाब देना होता है। तो चलिए इस बार भी हम जुड़ जाते हैं और बहुत सारी करते हैं बातें। अगर आप कुछ खास कहना चाहते हैं, कोई दिल की बात मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, या फिर हमारे थ्रू किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई फरमाइश है, तो जल्दी से सुन सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ। सेगमेंट दिल धड़कने दो में एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आई हूँ। अच्छा, क्या आपके घर में भी जो है वो अगर कभी दूध फट जाता है तो आप देखते ही होंगे ना कि जब दूध फट जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं ना, उसका जो पानी होता है हम निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद पनीर जो है हम उससे बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब लेकिन ये जो पनीर है खाने में तो स्वादिष्ट होता है, इससे अलग अलग चीज़ें भी आप ज़रूर बना सकते हैं। कभी हम पनीर भुर्जी बना लेते हैं तो कभी हम कुछ सेट करके उसको कोई सब्जी पनीर की बना लेते हैं। लेकिन पानी का क्या? अब पानी जो उसका है, अब उसको तो हम ये सोच के फेंक देते हैं कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो ख़राब है। अब अगर आप भी फेंक देते हैं ना तो आज से रुक जाइए। कभी भी अगर दूध फट जाए या फिर ना भी फटे तो जानबूझ के आप जो दूध है इसको आप फाड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मिल जाएंगे इसके कई सारे गुण, क्योंकि अब भी आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो है फ़ायदे बहुत सारे हैं। इस पानी के जो हम यूं ही फेंक देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और क्यों है ये बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रीचार्ज मॉर्निंग। और इस रीचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। हफ्ते के सातों दिन 2 घंटे का हमारा सफ़र जो है ये रहता है और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि बात अब मैं कर रही हूँ बहुत ही एक खास टॉपिक की। बात हम कर रहे हैं ये जो जब दूध जो है वो फट जाता है, चाहे गलती से या चाहे आपने पनीर बनाने के लिए उसे फाड़ा हो या कुछ भी आप बना रहे हैं, कोई रसमलाई बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं, होता है ना पनीर के लिए हम उसके जो छेने के लिए हम फाड़ते हैं दूध को, तभी छेना बनता है। तो हम क्या करते हैं, जो पानी होता है उसे हम फेंक देते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि गलती से फट जाता है या फिर आपने कोई चीज़ बनाने के लिए यानी कि पनीर या छेना बनाने के लिए अगर आप उसको फाड़ा है आपने दूध को, तो अब पानी फेंकने की उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है ये प्रोटीन का पावर हाउस कहलाता है। जी हाँ, जब दूध फटता है तो आप उसे पनीर बनाते हैं, तो बचा हुआ पानी वो वे प्रोटीन से भरपूर होता है। वे प्रोटीन मांसपेशियों की ग्रोथ, मरम्मत और साथ ही रिकवरी के लिए बेहतरीन माना जाता है। और ये चाहे एथलीट्स हों या जिम जाने वाले जो भी लोग हों, उनके लिए तो वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं है। आपने सुना होगा वे प्रोटीन जो है ये लेते भी हैं, जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन लेते हैं, जिसका नाम वे प्रोटीन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो एकदम बहुत ही प्योर प्रोटीन जो है वो होता है। इसमें यह होता है कि देखिए, जैसे ये जो पानी है ये यानी कि जो दूध फट के जो पानी निकलता है, इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, अच्छे से बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से जो है प्रोसेस किया जाता है, इसको अच्छे से जो है पकाया जाता है, इसके बाद बिल्कुल सुखा दिया जाता है, इसका पाउडर बना दिया जाता है। तो बस वही पाउडर जो है, वही वे प्रोटीन जो है उसे खाया जाता है, इनटेक किया जाता है। तो ये चाहे जिम जा रहे हैं, एथलीट्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल है, वरदान से कम नहीं है। इसका सेवन करने से अपनी डेली प्रोटीन की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के अच्छे सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जो फटा हुआ दूध होता है, उसका जो पानी होता है जिसे हम फेंक देते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और आपको अभी बता रही हूँ मैं बहुत ही खास एक वे प्रोटीन के बारे में, जो कि आपको मिलता है नेचुरली. जो दूध जब फटता है ना, तो उसका पानी जो निकलता है उसको हम यूं ही फेंक देते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वही है पावर हाउस प्रोटीन का. जी हाँ, फटे दूध में, पानी में जो है, इसका जो पानी होता है इसमें लैक्टिक एसिड और कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन में काफ़ी मदद करते हैं, और ये पेट को हल्का रखने में और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करता है. इसमें मौजूद जो है प्रोबायोटिक्स, यानी कि हल्की कम मात्रा में जो है वो होती है आपके आंतों में, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है. स्वास्थ्य आपका बनाए रखने में काफ़ी अच्छी है, आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका भी ये निभा सकता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो. डाइजेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इनफैक्ट हड्डियों को भी ये मजबूती देता है. कैल्शियम और फोस्फोरस जैसे मिनरल्स हड्डियों और ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. फटे दूध के पानी में अगर आप खनिजों की अच्छी मात्रा जो है ये पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी काम करती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है. गर्मियों में या किसी भी समय जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा डाइजेशन की ज़रूरत होती है या फिर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो पानी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है ये जो है. और ये जो है भाई, मैं आपको बता दूँ, इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम हमारी बॉडी में तरल पदार्थों को संतुलित बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं, जिससे आपकी हाइड्रेशन से भी आप जो है डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, हाइड्रेटेड रहेंगे. और ये जो सादे पानी से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पानी ही नहीं है बल्कि ये कुछ पोषक तत्वों का भी जो है वो भी प्रदान करता है. कुछ ऐसे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़ रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ. 2 घंटे का हमारा सफर है जिसमें होती हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल हमारे सेगमेंट दिल रखने दो में आपसे बातें मैं कर रही हूँ और बातें जो है वो हमारी चल रही हैं. ये जो दूध होता है जब फट जाता है तो पानी, इसका आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं. लेकिन अब इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है. साथ ही साथ ये आपको जो है डाइजेशन के लिए आपके बहुत अच्छा है. साथ ही आपको डिहाइड्रेशन से भी ये पानी बचा सकता है. हड्डियों को मजबूती जरूर देगा, साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी वरदान है. इसमें मौजूद पोषक तत्व जो है ये विशेषकर क्योंकि प्रोटीन है और साथ ही विटामिन्स हैं तो आपकी त्वचा और बालों के लिए, उसकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन है. तो आप प्रोटीन कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. त्वचा को जवा और चमकदार दिखाए रखने में भी काफ़ी काम करता है. जबकि विटामिन और मिनरल्स जो हैं बालों को मजबूती और हेल्दी रखने में मददगार हैं, जो कि आपको इसी में मिल जाएगा. कुछ लोग सीधे या त्वचा पे या बालों पर भी इसे लगाना ठीक समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो पानी है या तो आप इसे सीधे पी सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है. अपने दाल सूप या ग्रेवी में भी इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आटा गूंदने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. और इसमें रोटियां जो है वो मुलायम और पौष्टिक बनेगी. अगर आप सोच रहे हैं कि रोटी अच्छी नहीं बनेगी, रोटी काफ़ी टेस्टी बनेगी और काफ़ी अच्छी बनेगी. इसी के साथ स्मूदी या शेक में मिला सकते हैं आप. सब्जियों को उबाल के उसके उसमें भी आप डाल सकते हैं. तो ये कई तरीकों से आप इसका जो है सेवन कर सकते हैं. अलग अलग चीज़ों के साथ इसका सेवन कर सकते हैं. तो ये आपको जो है प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपकी गट हेल्थ को सुधार लेकर के आएगा. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
1: ज्वाला समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और. बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
2: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है. हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
2: तो फिर एक वादा करो.
1: मेरी जान मांग लो जान मेरी.
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी

0: वाला जिंदा है सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ. और बहुत सारी होती हैं बातें. आपको बता दूँ मैं कि अभी फिलहाल एक बहुत ही खास बारे में बात मैं कर रही हूँ, और बात मैं कर रही हूँ मेंटल हेल्थ और योग की. जी हाँ, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है ये शुरू हो गया. सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज. और देखिए, स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योग की, मेडिटेशन की. अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं. देखिए, अच्छा, अगर आपको जीवन जीना है, आपको लाइफस्टाइल अपनी बेहतर बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें. अब मेंटल हेल्थ में सुधार लाने के लिए या शांति मन में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना मैं कुछ 15 से 20 मिनट योग ज़रूर करें. अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी आप रिलैक्स और रिचार्ज कर सकते हैं. और वो कैसे? वो होता है योग से. जी हाँ, क्योंकि योगा जो है इससे ही होगा, यही हम सुनते हैं, यही कहते हैं. और आज कुछ ऐसी बातें लेकर के आई हूँ जो कि आपके मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, यानी कि कुछ ऐसे योगा आसन की बात करेंगे जो कि आपके मेंटल हेल्थ में सुधार लेकर के आती है और आपको जो है स्वस्थ रखती है मेंटल तौर पर भी. अब ये बातें क्या है बताऊंगी कुछ ही देर में. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. Feel good, feel life.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, हफ्तों के सातों दिन मैं आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें, फिलहाल आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे 5 योगा आसन जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूती देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आता है भुजंगासन। जी हाँ, भुजंगासन बॉडी को कई तरीकों से फायदे पहुंचाता है और साथ ही ये जो आसन है ये पेट की चर्बी को कम करने से लेकर कमर दर्द और यहाँ तक कि मानसिक शांति दिलाने में भी ये आसन काफी कारगर है। भुजंग आसन करने से योगा आपको जो है, अगर आप ये भुजंग आसन करते हैं तो इससे आपको बेली फैट तो आपको कटता है, हटता है, साथ ही जो है आपके पेट में जो भी जो जमा फैट होता है ये तो हटेगा, साथ ही मेंटली भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और भुजंग आसन ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और ये जो है ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ, आपकी कमर दर्द, आपके जो है मेंटल पीस, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कुछ आसनों पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, जिससे आपको ढेर सारे फायदे मिले। इसी के साथ साथ एक और आसन है जो कि बहुत ज़्यादा काम का है और वो है सेतु बंधनासन। अब ये जो आसन है ये भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ब्रिज पोज यानी कि सेतु बंधनासन, इस आसन के अभ्यास से ही जो है, अगर आप इसका अभ्यास सिर्फ कि बॉडी और दिमाग को चुस्त दुरुस्त कर देता है, अगर आप आसन करते हैं सुबह थोड़ी देर, अगर आप ये आसन करते हैं तो इससे आपके पूरे दिन जो है आपकी जो रिचार्ज है आप हो जाएंगे, आपके पूरे दिन जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। सेतु बंधनासन जब आप करेंगे तो इससे फायदे तो आपको मिलेंगे ही साथ ही, और इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको योगा मैट लेना है, पीठ के बल आपको लेट जाना है सबसे पहले, इसके बाद आपको पैरों को घुटनों से आपको जो है आपको मोड़ना है और उसके बाद दोनों पैरों पर आपको वजन डालते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। हाँ, तो आप हाथ चाहे तो आप पैर से या पीछे से आप पैरों को पकड़ सकते हैं और या फिर आप उंगली को आपस में फंसा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब इस स्थिति में रहते हुए आपको 15 से 20 सेकंड तक आपको ये होल्ड करके रखनी है और सांस आपको लेती और छोड़ते रहने हैं। बस इसके बाद ये जो आसन हो जाएगा इसको कुछ देर आपको करना है और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस होगा। तो चलिए, ये तो आसन है काफ़ी ज़्यादा आसान और आपको ये करना है आसन रोज़ सुबह जल्दी जल्दी से सुबह उठ के आसन आपको करना है। और अपने सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में बातें मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा शांति देंगे. जी हाँ, अब बात करते हैं उत्तनासन की. जी हाँ, उत्तनासन ये जो है, इसे करते टाइम ऊपर से आपको लेकर लोअर, मतलब आपकी पूरी जो बॉडी है वो अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी की हो जाएगी, जो ना सिर्फ आपकी मसल्स की टेंशन को दूर करती है बल्कि दिमाग को भी, दिमाग की जो टेंशन है इसे भी दूर करेगी. तो दिमाग को अगर दुरुस्त रखना चाहते हैं तो ये आसन आप जरूर कीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी. इसके लिए आपको क्या करना है, उतना आसन करने के लिए मैट पर आपको सीधे खड़े हो जाना है, लंबी गहरी सांसें भरते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको कमर से बॉडी को नीचे झुकाना है और हाथों से पैरों को, आपको जो पंजे हैं ये छूना है, इसको कोशिश करनी है. कुछ टाइम आपको जो है अपने घुटने के पीछे की ओर दर्द जरूर होगा, महसूस होगा, लेकिन हो सकता है कि शुरुआती दिन में ही ऐसा हो, क्योंकि ये आसन कम से कम अगर 50 सेकंड भी आप करते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा है. 50 सेकंड काफी ज्यादा हो सकते हैं बिगनर्स के लिए. तो अगर आप, जितना भी आपको लगे कि अगर ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा आपको कठिनाई आ रही है, तो आप रुक जाइए, छोड़ दीजिए. इतना ज़्यादा फोर्सफुली आपको अपनी बॉडी के साथ जो है वो नहीं करना है, जितना हो सके शुरुआत में उतना करना है. धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है जब भी आप योगा करते हैं. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल आपको बता रही हूँ मैं उत्तना आसन के बारे में. मैंने आपको बताया ये जो कुछ ऐसे आसन है जो कि आपके ना सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. अब बात करेंगे बालासन की, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है. और ये आसन भी मन को शांत और स्थिर रखता है. इस आसन को करने के बहुत ही आसान सा तरीका है. तो जब कभी आपका दिमाग अशांत आपको महसूस हो रहा है तो आप थोड़ी देर ये आसन कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा. बालासन करने के लिए आपको योगा मैट लेना है, घुटनों को आपको टिकाना है और बैठ जाना है. लंबी गहरी सांसें लेते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लाना है और मैट पर टिका लेना है. और सिर को आपको मैट पर ही लगाकर रखना है. और इस आसन को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट होल्ड करके रखना है. कोशिश करनी है कि आप होल्ड कर सके इस आसन को, तो आपके लिए ये मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. जिसके बाद आ जाता है जानू शीर्षासन. जी हाँ, जानू शीर्षासन करने से मन आपका शांत रहता है. और इसके अलावा ये आसन जो है डिप्रेशन, थकान, चिंता, सिर दर्द और साथ ही आपकी नींद की अगर कमी हो रही है, अनिद्रा की आपको समस्या हो रही है, कुछ भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें काफ़ी कारगर है. इसे करने के लिए आपको क्या करना है, योगा मैट लेना है और इस मैट पर दोनों पैरों को आपको सामने की ओर सीधा करते हुए बैठ जाना है. जब आपने अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर को जांघ के पास आपको लेकर के आना है और दोनों हाथों को आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर सीधा करना है. सांस छोड़ते हुए आपकी बॉडी को आगे की ओर आपको झुकाना है और बाएं पैर के पंजों को आपको पकड़ना है, कोशिश करनी है. और इस स्थिति को आपको सर को आपको बाएं पैर से आपको घुटने पर रखना है. इस आसन को करने के लिए आपको 10 से 12 सेकंड आप कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा हो सके तो आप 10 से 12 बार इस आसन को ज़रूर कीजिए. कुछ सेकेंड्स के लिए कीजिए, फिर धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो देखते रहिए, बढ़ाते रहिए. इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी मेंटल हेल्थ को काम डाउन करने का. तो चलिए इसी के साथ अब यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी. अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ गई हूँ. सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आपके साथ कुछ कहानियां शेयर करने वाली हूँ. तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। बात अब मैं कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट की। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आज कुछ खास जानकारी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो कि अनसंग हीरोज की है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। बात करते हैं अब कमल प्रीत कौर की। जी हाँ, फ्रॉम डस्ट टू डिस्कस ये है। और मैं आपको बता दूं, कमल प्रीत की हम बात करें तो पंजाब की एक सिंपल किसान की बेटी, जिसके हाथ जो है वो घूमता नहीं बल्कि चक्रव्यूह तोड़ देता है। कमल प्रीत कौर एक छोटे से गांव की लड़की फ्रॉम पंजाब, और पंजाब के श्री मुख्तसर साहब डिस्ट्रिक्ट की ये लड़की है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। बचपन से ही स्पोर्ट्स में इनकी रुचि थी, लेकिन स्कूल में बस एक ही फोकस होता था और वो है पढ़ाई। जी हाँ, देखिए पढ़ाई जो है इस पर ही सारा फोकस इनका होता था। लेकिन जब कमलप्रीत ने पहली बार डिस्कस थ्रो किया तो देखिए उसी थ्रो ने उनको सब कुछ जो है उनका बिल्कुल सब कुछ हिला दिया। कोच ने कहा इस लड़की में बात है, अगर इसी फोकस के साथ ये काम करे तो इंडिया का नाम रोशन करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी डिस्कस का प्रैक्टिस ग्राउंड बिल्कुल नहीं था और इक्विपमेंट्स अफोर्ड करना मुश्किल था, पर फिर भी उन्होंने मिट्टी के मैदान पर प्रैक्टिस जारी रखी। कमलप्रीत बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ब्रीच द 65 मीटर मार्क इन डिस्कस थ्रो, और फिर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडिया को फाइनल तक इन्होंने पहुंचा दिया। उनका थ्रो ओलंपिक मेडल में कन्वर्ट तो नहीं हो पाया, पर इंडिया की एक्सपेक्टेशंस जरूर उन पर टिक गई थी और आगे भी हो सकता है कि ये जरूर कोशिश करें और एक मुकाम जरूर हासिल करें, मेडल जरूर हासिल करें। जब मिट्टी से निकली बेटी चक्री घुमाती है तो दुनिया के मेडल भी झुक जाते हैं, और ये जरूर होगा अगली बार। और ये जो कोशिश है बिल्कुल जारी है कमलप्रीत जी की। चलिए इसी के साथ यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

सुनो हरदीप, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी. आपको बता दूं मैं कि अब बात मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है पावर प्ले विद आरजे साक्षी में. कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की कहानियां लेकर के आ जाती हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सितारे खो गए. लेकिन खोने हम ऐसे नहीं देंगे क्योंकि इनकी कहानी आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे. बात अब मैं कर रही हूँ कबड्डी की छोटी शेरनी रितु नेगी की. जी हाँ, ये जो कबड्डी के मैदान में जब उतरी, मैदान छोटा हो या जिंदगी, रितु हर टैकल के बाद और स्ट्रांग होती रही. रितु नेगी एक हिमाचली लड़की जिसके कबड्डी का पहला जो टेस्ट है वो स्कूल में उनका मिला. और वो स्कूल की एक इकलौती लड़की थी जो भाई बॉयज के अगेंस्ट कबड्डी खेला करती थी. लोग कहते थे कि इसे शादी इससे कौन करेगा, और ये तो कबड्डी खेलती है तो इससे शादी तो कोई नहीं करेगा. पर रितु ने सोसाइटी के सब नॉर्म्स इग्नोर किए. उन्होंने हिमाचल वुमेन्स टीम ज्वाइन करी और उसके बाद नेशनल जो है वो नेशनल चैंपियनशिप ये जीत गए और फिर इंडियन वुमेन्स नेशनल कबड्डी टीम की कप्तान भी बनी. एशियन गेम्स 2023 में रितु ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में मेजर रोल प्ले किया. जमीन से जुड़ी रितु आज भी अपने गांव के ट्रेनिंग ये जो है वो बच्चों को देती हैं, यानी कि लड़कियों को देती हैं और नए प्लेयर्स को और ज्यादा मोटिवेट करती हैं. वो गिरती है, उठती है और फिर से वही खड़ी हो जाती हैं और उसी जज्बे के साथ खड़ी होती हैं कि उनको अब अगला

लेकर के आना है, ऋतु की कबड्डी जिंदगी का लेसन बन गई। और आप देखिए कि कितना कमाल कि गोल्ड मेडल लाने में भी, इंडिया को, भारत का नाम रोशन करने में भी ऋतु का काफी बड़ा हाथ है इसमें। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दूं, अगले आपको कहानी की भी आपको बताऊंगी, किसकी आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अभी लेने वाली हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

जिसने दूसरों के पाप देखे वो अपने पुण्य गिनता है। चोरी तुम 1000 रुपए की करो तो तुम भुला देते हो, दान तुम 1 पैसे का दो तो तुम याद रखते हो। 1 पैसे का दान भी बहुत बड़ा मालूम पड़ता है, 1000 रुपए की चोरी भी छोटी मालूम पड़ती है। शायद 1000 रुपए की चोरी करके तुम 1 पैसे का दान देके उससे निपटारा कर लेना चाहते हो। थोड़ा सोचो, धार्मिक लोगों ने कैसी कैसी तरकीबें निकाली। पाप करते हैं, गंगा में स्नान कराते। अब गंगा में स्नान करने का और पाप के मिटने से क्या संबंध हो सकता है? दूर का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। गंगा का कसूर क्या है? पाप तुमने किया। और ऐसे अगर गंगा धो धो के सबके पाप लेती रही हो तो गंगा के लिए तो नरक में भी जगह ना मिलेगी, इतने पाप इकट्ठे हो गए होंगे। और अगर इतना ही आसान हो, पाप तुम करो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप हल हो जाए, तब तो पाप करने में बुराई ही कहां रही। सिर्फ गंगा तक आने जाने का श्रम, तो जो गंगा के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तुमने तीर्थ बना लिए, तुमने छोटे छोटे पुण्य की तरकीबें बना ली ताकि बड़े बड़े पापों को तुम झुठला दो, भुला दो। छोटा मोटा अच्छा काम कर लेते हो, अस्पताल को दान दे देते हो। दान उसी चोरी में से देते हो जिसका प्राश्चित कर रहे हो। 1,00,000 की चोरी करते हो, 10 रुपया दान देते हो, लेकिन 1,00,000 की चोरी को 10 रुपए के दान में ढांक लेना चाहते हो। तुम किसे धोखा दे रहे हो? या इतना भी नहीं करता कोई, रोज सुबह बैठ के 5-10 मिनट माला जप लेता है, माला के गुरिये सरका लेता है, सोचता है हल हो गया, या राम राम जप लेता है, या राम नाम छपी चदरिया ओढ़ लेता है, सोचता है मामला हल हो गया, जैसे राम पर कुछ एहसान हो गया। अब राम समझे, चदरिया ओढ़ी थी, कहने को अपने पास बात हो गई, मंदिर गए थे, हिसाब रख लिया है। जीवन अंधेरे से भरा रहे और प्रकाश की ज्योति भी नहीं जलती, सिर्फ अंधेरी दीवालों पर तुम प्रकाश शब्द लिख देते हो या दिए के चित्र टांग देते हो। प्यास लगी हो तो पानी शब्द से नहीं बुझती, अंधेरा हो तो दिए शब्द से नहीं बुझता। मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं। तुम अगर सिर्फ तस्वीर का अवलोकन करते रहो, मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, तो तुम्हारे दिल की पीड़ा ना मिटेगी तस्वीरों के देखने से। प्रेमी की तस्वीर लिए बैठे रहो, इससे कहीं कोई प्रेमी मिला है? आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं, आईने में कैसी पानी की झलक है, पर उससे तुम्हारी प्यास न बुझेगी। शब्द दे सकते हैं सत्य नहीं, अंधेरे की दीवालों पर बनाई गई दिए की तस्वीरें धोखा दे सकती हैं, रोशनी है। और जो व्यक्ति दूसरों के दोष पर ध्यान देता है वो अपने दोष पर तो ध्यान देता नहीं। जो छोटे मोटे जिनको तुम पुण्य कहते हो, जिनको पुण्य कहना फिजूली है, जिनको पुण्य केवल ना समझ कह सकते, जो तुम्हारे पाप के ही सजावटों से ज्यादा नहीं है, पाप का ही श्रृंगार है, जो पाप के ही माथे पे लगी बिंदी, पाप के ही हाथों में पड़ी चूड़ी, पाप के ही पैरों में बंधे घूंघर, उन्हें तुम पुण्य कहते हो, उनका हिसाब रखते हो। बुद्ध ने कहा, छोड़ो ये बात, दूसरों के दोष पर ध्यान ना दो, उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हारा प्रयोजन केवल तुमसे है। दूसरों के कृत्याकृत्य मत देखो, केवल अपने कृत्य अकृत्य का अवलोकन करो, सिर्फ अपना ही ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ये शब्द समझ लेने जैसा है, अवलोकन। अवलोकन बुद्ध की प्रक्रिया है जीवन के अंधकार से मुक्त होने के लिए। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने पाप को देखो और दुखी हो, पश्चाताप करो कि मैं पापी हूं, और न बुद्ध कहते हैं तुम अपने पुण्य को देखो और बड़े फूले न समाओ और उछल के चलो कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं।
बुद्ध कहते हैं तुम अवलोकन करो। अवलोकन का अर्थ होता है तत्वस्थ दर्शन, बिना किसी निर्णय के, न ये कहना कि ठीक, न ये कहना कि बुरा, न भला, न पाप, न पुण्य। तुम कोई निर्णय मत लेना, तुम कोई मूल्यांकन मत करना, तुम सिर्फ देखना। जैसे कोई आदमी रास्ते के किनारे खड़ा हो जाए, भीड़ चलती है, देखता है, अच्छे लोग निकलते हैं, बुरे लोग निकलते हैं, उससे कुछ प्रयोजन नहीं। साधु निकलते हैं, असाधु निकलते हैं, प्रयोजन नहीं। या जैसे कोई लेट गया है घास पर, छांव पर, आकाश में चलते बादलों को देखता है, उनके रूप रंग अलग अलग, काले बादल हैं, शुभ्र बादल हैं, कोई हिसाब नहीं रखता, चुपचाप देखता रहता है। अवलोकन का अर्थ है एक वैज्ञानिक दृष्टि, तटस्थ भाव। मात्र देखने पर ध्यान रखो, जोर देखने पर है, जो तुम देख रहे हो उसके निर्णय करने पर नहीं कि वो ठीक है या गलत। तुम न्यायाधीश मत बनो, तुम तराजू लेके तौलने मत लगो, तुम मात्र दृष्टा रहो। जिसको उपनिषद साक्षी कहते हैं, उसी को बुद्ध अवलोकन कहते हैं। बस देखो, जैसे अपना कुछ लेना देना नहीं, एक तटस्थ भाव, एक फासले पर खड़े हुए चुपचाप, और एक अद्भुत क्रांति घटती। जितने तुम तटस्थ होते जाते हो, उतना ही तुम्हें पता चलता है कि तुम अपने कृत्यों से अलग हो, पाप से भी अलग, पुण्य से भी अलग। और ये जो अलगपन है, इसी का नाम मुक्ति है, मोक्ष। जो पाप के साथ अपने को एक समझता है, वो भ्रांति में है। जो पुण्य के साथ अपने को एक समझता है, वो भी भ्रांति में, उसने कृत्य के साथ अपने को एक समझ लिया, उसने अपने को कर्ता समझ लिया। अवलोकन करने वाला इस नतीजे पर आता है कि मैं केवल दृष्टा हूं, कर्ता नहीं। फिर पाप और पुण्य दोनों ही मिट जाते, जैसे स्वप्न में किए हों कभी, जैसे किसी उपन्यास में पढ़े हों कभी, जैसे कभी अफवाह सुनी हो, स्वयं से उनका कोई संबंध नहीं रह जाता। यही शुद्ध बुद्धत्व है। कभी कभी तुम्हें भी अचानक क्षण भर को इसकी झलक मिल जाएगी, और क्षण भर को भी बिजली कौंध जाए तो जिंदगी फिर वही नहीं होती जो पहले थी। अवलोकन करो, तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दूसरों को संबंध में सोचते विचारते, बाजार में भटकते, संसार की लंबी परिक्रमा करते, अपने तक आए। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। अन्यथा जरा गर्दन झुकाने की बात थी। अवलोकन से तुम सीधे स्वयं में पहुंच जाओगे। हाँ, दूसरे के कृत्य अकृत्य का विचार करते रहे तो बड़ी परिक्रमा है, अनंत परिक्रमा है। अनंत जन्मों तक भी तुम ये विचार चुकता न कर पाओगे, कितने हैं दूसरे, किस किस का हिसाब करोगे, किस किस के लिए रोओगे, हंसोगे, किसकी प्रशंसा, किसकी निंदा करोगे। अगर ऐसे तुम चल पड़े, मैंने सुना है कि एक आदमी भागा जा रहा था, राह के पास बैठे आदमी से उसने पूछा कि भाई दिल्ली कितने दूर है। उस आदमी ने कहा जिस तरफ तुम जा रहे हो बहुत दूर, क्योंकि दिल्ली तुम 8 मील पीछे छोड़ा है। अगर इसी रास्ते से जाने की जिद हो तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब आओगे, अगर बच गए तो दिल्ली पहुंच जाओगे, अगर लौटने की तैयारी हो तो ज्यादा दूर नहीं। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दिल्ली बिल्कुल पीछे, 8 मील का फासला भी नहीं। अवलोकन की बात है, निरीक्षण की बात है, जागृति की बात है, अप्रमाद की बात है, जरा हो साधना। पहली बात, दूसरों का विचार मत करो, अपना ही विचार करने योग्य काफी है। आंख बंद करो, अपने ही कृत्यों को देखो, और अपने कृत्यों के भी निर्णायक मत बनो, अन्यथा अवलोकन समाप्त हो गया। तुम आसक्त हो गए, तुमने कहा ये ठीक तो प्रीति बनी, तुमने कहा ये ठीक नहीं तो अप्रीति बनी। किसी कृत्य से घृणा हुई, किसी कृत्य से प्रेम हुआ, आसक्ति अनासक्ति, राग द्वेष पैदा हुआ,
तो कृत्य तो दूर रहे, राग द्वेष के भाव जाल में तुम खो गए। बस कृत्य को देखते रहो। अगर घड़ी भर भी तुम रोज कृत्य का अवलोकन करते रहो तो तुम्हें ऐसा ही अनुभव होगा जैसे आत्मा ने स्नान कर लिया, दिन भर उसकी ताजगी रहेगी और दिन भर रह रह के लहरें आती रहेंगी आनंद की, लहर रह के झोंके आ जाएंगे, पुलक आ जाएगी, एक मस्ती छा जाएगी, तुम झूम झूम उठोगे किसी भीतरी रस से। और ये जो भीतरी रस है ये बुद्धि का नहीं है, हृदय का है। जब तुम सोचते हो और निर्णय करते हो बुद्धि सक्रिय हो जाती, जब तुम मात्र देखते हो तब हृदय का फूल खिलता है। जैसे ही तुमने निर्णय लेना शुरू किया बुद्धि बीच में आई, क्योंकि निर्णय विचार का काम है। जैसे ही तुमने तौला तराजू आया, तराजू बुद्धि का प्रतीक है। तुमने नहीं तौला बस देखते रहे तो बुद्धि को बीच में आने की कोई जरूरत ही ना रही। मात्र देखने की अवस्था में साक्षी भाव में बुद्धि हट जाती और जीवन के जो गहरे रहस्य उन्हें हृदय जानता है। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजता नहीं करते। और हृदय ने कोई राज प्रेम का, परमात्मा का, बुद्धि को कभी बताया नहीं। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजता नहीं करते। पराये को कहीं कोई भेद की बातें बताता है। बुद्धि पराई है, उधार है, हृदय तुम्हारा है, इसे थोड़ा समझो। जब तुम पैदा हुए तो हृदय लेकर पैदा होते हो, बुद्धि समाज देता है, संस्कार देते हैं, शिक्षा देती है, घर परिवार सभ्यता देती है। तो हिंदू के पास एक तरह की बुद्धि होती, मुसलमान के पास दूसरी तरह की बुद्धि होती, जैन के पास तीसरी तरह की बुद्धि होती, क्योंकि तीनों के संस्कार अलग, शास्त्र अलग, सिद्धांत अलग, लेकिन तीनों के पास दिल एक ही होता है। दिल परमात्मा का है, बुद्धियां समाजों की। रूस में कोई पैदा होता है तो उसके पास कम्युनिस्ट बुद्धि होगी। ईसाई घर में कोई पैदा होता है तो उसके पास ईसाई बुद्धि होगी। बुद्धि तो धूल है बाहर से इकट्ठी की हुई, जैसे हृदय के दर्पण पर धूल जम जाए। दर्पण तो तुम लेके आते हो, धूल तुम्हें मिलती है, इस धूल को झाड़ देना जरूरी है। समस्त धर्म की गहनतम प्रक्रिया धूल को झाड़ने की प्रक्रिया है कि दर्पण फिर स्वच्छ हो जाए, तुम फिर से बालक हो जाओ, तुम फिर हृदय में जीने लगो, तुम फिर वहां से देखने लगो जहां से तुमने पहली बार देखा था। जब तुमने आंख खोली थी तब बीच में कोई बुद्धि ना खड़ी थी, तब तुमने सिर्फ देखा था, वह था अवलोकन। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। दूसरा सूत्र, जैसे कोई सुंदर फूल रंग बिरंगा है, बहुत वर्णयुक्त है, लेकिन फिर भी गंध शून्य, ऐसा ही पांडित्य है। रंग बहुत है उसमें, सुगंध बिल्कुल नहीं। जीवन में सुगंध तो आती है आचरण से, तुम जो जानते हो उससे जीवन में सुगंध नहीं आती, वो तो मौसमी फूल है, दूर से लुभावना लग सकता है, पास आने पे तुम उसे कागजी पाओगे। आदमी भला धोखे में आ जाए, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तितलियां धोखे में नहीं आती, भौरे धोखे में नहीं आते, भौरे धोखे में नहीं आते, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे। तितलियां धोखे में नहीं आती, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे। सम्राट सोलोमन के जीवन में कथा है, एक रानी उसके प्रेम में थी और उसकी परीक्षा करना चाहती थी कि सच में वो इतना बुद्धिमान है जितना लोग कहते, अगर है तो ही उससे विवाह करना है।
तो वो आई, उसने कई परीक्षाएं ली, वो परीक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। उसने एक परीक्षा ये भी थी, वो आई एक दिन राज दरबार में दूर खड़ी हो गई, हाथ में उसने दो गुलदस्ते के फूलों के गुलदस्ते लाई थी, और उसने सोलमन से कहा दूर से कि इनमें कौन से असली फूल हैं बता दो। बड़ा मुश्किल था, फासला काफी था, वो उस छोर पर खड़ी थी राज दरबार के, फूल बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। सोलमन ने अपने दरबारियों को कहा सारी खिड़कियां और द्वार खोल दो। खिड़कियां और द्वार खोल दिए गए, न तो दरबारी समझे न वो रानी समझी कि द्वार दरवाजे खोलने से क्या संबंध। रानी ने सोचा कि शायद रोशनी कम है इसलिए रोशनी की फिक्र कर रहा, कोई हर्जा नहीं। लेकिन सोलमन कुछ और फिक्र कर रहा था। जल्दी ही उसने बता दिया कि कौन से असली फूल हैं कौन से नकली, क्योंकि एक मधुमक्खी भीतर आ गई बगीचे से, और वो जो असली फूल थे उन पे जाके बैठ गई। न दरबारियों को पता चला न उस रानी को पता चला। वो कहने लगी कैसे आपने पहचाना? सोलमन ने कहा तुम मुझे धोखा दे सकती हो लेकिन एक मधुमक्खी को नहीं। मधुमक्खी को धोखा देना मुश्किल है, परमात्मा को कैसे दोगे? बुद्ध कहते हैं जैसे कोई सुंदर फूल वर्ण युक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निश्चल होती। तुम्हें जीवन के सत्यों का पता है, सोचने से न लगेगा, उन सत्यों को जीने से लगेगा। जियोगे तो ही पता चलेगा। जो ठीक लगे उसे देर मत करना, उसे कल के लिए स्थगित मत करना। जो ठीक लगे उसमें आज ही डुबकी लगाना। अगर तुम्हें अवलोकन की बात ठीक लग जाए तो सोचते मत रहना कि कल करेंगे, ऐसे तुम्हारे जीवन में कभी सुगंध ना आएगी। ऐसे ये हो सकता है कि अवलोकन के संबंध में तुम बातें करने में कुशल हो जाओ और ध्यान के संबंध में तुम शास्त्रकार बन जाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुगंध ना आएगी। प्रार्थना के संबंध में जान लेना प्रार्थना को जानना नहीं, प्रार्थना को तो वही जानता है जो करता है, प्रार्थना को तो वही जानता है जो डूबता है, प्रार्थना को तो वही जानता है जो प्रार्थना में मिट जाता है। जब प्रार्थना तुम्हारा अस्तित्व बनती, आचरण का अर्थ है तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा अस्तित्व हो, तुम जो जानते हो वो सिर्फ ऊपर से चिपकी हुई बात न रह जाए, उसकी जड़ तुम्हारे जीवन में फैले, तुम्हारे भीतर से वो बात उठे, वो तुम्हारी अपनी हो। ऊपर से इकट्ठा ज्ञान ऐसा है जैसे तुमने भोजन तो बहुत कर लिया हो लेकिन पचा ना सके, उससे तुम बीमार पड़ोगे, उससे शरीर रुग्ण होगा। पचा हुआ भोजन जीवन देता है, ऊर्जा देता है, अनपचा भोजन जीवन को नष्ट करने लगता है। भूखे भी बच सकते हैं लोग ज्यादा देर तक, ज्यादा भोजन से जल्दी मर जाते हैं, बोझ हो जाता है पूरी व्यवस्था पर, और ज्ञान का तो भारी बोझ है। तुम्हारा चैतन्य अगर दब गया है तो तुम्हारे ज्ञान के बोझ से तुम जानते ज्यादा हो जिए कम हो, एक असंतुलन हो गया है। बुद्ध कहते हैं थोड़ा जानो लेकिन उसे जीने में बदलते जाओ, थोड़ा भोजन करो लेकिन ठीक से चबाओ, ठीक से पचाओ, रक्त मांस मज्जा बन जाए। होश के बंदे समझेंगे क्या गफलत है क्या होशियारी, अक्ल के बदले जिस दिन दिल की जोत जला कर देखेंगे। अक्ल के बदले जिस दिन दिल की जोत जला कर देखेंगे, खुश के बंदे समझेंगे क्या गफलत है क्या होशियारी, केवल वे ही समझ पाएंगे जो बुद्धि से गहरे उतर कर हृदय का दिया जलाएंगे। हृदय के दिए से अर्थ है जो जानते उसे जीवन बना लेंगे, जो समझा है वो समझ ही ना हो कि समाधि बन जाएगी, जो सुना है वो सुना ही नहीं पी लिया है। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। थोड़ा जानो जियो ज्यादा,
और तुम पहुंच जाओगे। जाता तुमने जाना और जिया कुछ भी नहीं तो तुम न पहुंच पाओगे। तब तुम दूसरों की गायों का ही हिसाब रखते रहोगे, तुम्हारी अपनी कोई गाय नहीं, तुम गायों के रखवाले ही रह जाओगे, मालिक न हो पाओगे। पंडित मत बनना, पापी भी पहुंच जाते हैं, पंडित नहीं पहुंचते, क्योंकि पापी भी आज नहीं कल जग जाएगा, दुख जगाता है। पंडित एक सुख का सपना देख रहा है कि जानता है, बिना जाने शास्त्र से बचना, शास्त्र जंजीर हो सकता है, सुभाषित सुंदर वचन जहर हो सकते, जिस चीज को भी तुम जीवन में रूपांतरित न कर लोगे वही जहर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की व्यवस्था में जो भी चीज पड़ी रह जाएगी बिना रूपांतरित हुए, बिना लहू मांस मज्जा बने, वही तुम्हारे जीवन में जहर का काम करने लगेगी। पंडित का अस्तित्व विषाक्त हो जाता है, जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती। तो ध्यान इस पर हो कि मेरा आचरण क्या है, मेरा होने का ढंग क्या है, मेरे जीवन की शैली क्या है। परमात्मा को मानो या न मानो, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है घर लौटने वाले का, संसार की तरफ जाने वाले का नहीं, प्रत्याहार करने वाले का, अपनी चेतना के केंद्र की तरफ आने वाले का, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है व्यर्थ का कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले का नहीं, सिर्फ हीरे ही चुनने वाले का, अगर तुम्हारा आचरण हंस जैसा है कि मोती चुन लेता है, कि दूध और पानी में दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है। हमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है, तुमने कभी समझा क्यों? दो कारणों से। एक तो हंस सार को असार से अलग कर लेता है, और दूसरा हंस सभी दिशाओं में गतिवान है, वो जल में तैर सकता है, जमीन पर चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है, उसके स्वातंत्र पर कहीं कोई सीमा नहीं। जमीन हो तो चल लेता है, सागर हो तो तैर लेता है, आकाश हो तो उड़ लेता है, तीनों आयामों में, तीनों डायमेंशंस में उसके कहीं कोई रुकावट नहीं। जिस दिन तुम सार और असार को पहचानने लगोगे उस दिन तुम्हारा स्वातंत्र भी इतना ही अपरसीम हो जाएगा जैसा हंस का। इसलिए हमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है। न जानने से ही बंधे हो, जमीन पर ही ठीक से रहना नहीं आता, पानी पे चलने की तो बात अलग, आकाश में उड़ना तो बहुत दूर। शरीर में ही ठीक से रहना नहीं आता, मन की तो बात अलग, आत्मा की तो बात बहुत दूर। शरीर यानी जमीन, मन यानी जल, आत्मा यानी आकाश। इसलिए मन जल की तरह तरंगायत, शरीर फिर है पृथ्वी की तरह, 70 साल तक डटा रहता है, गिर जाता है उसी पृथ्वी में जिससे बनता है। मन बिल्कुल पानी की तरह, पारे की तरह कहो, छितर छितर जाता है। आत्मा आकाश की तरह निर्मल है, कितने ही बादल घिरे कोई बादल धुएं की एक रेखा भी पीछे नहीं छोड़ गया। कितनी ही पृथ्वियां बनी और खो गई, कितने ही चांद तारे निर्मित हुए और विलीन हो गए, आकाश कूटस्थ है, अपनी जगह हिलता डुलता नहीं। शरीर में ही रहना तुमसे नहीं हो पाता, मन की तो बात अलग, मन में जाते ही चिंता पकड़ती है, विचारों का उहापोह पकड़ता है। आत्मा तो फिर बहुत दूर है, क्योंकि आत्मा यानी निर्विचार ध्यान, आत्मा यानी समाधि, आकाश मुक्त असीम। परमहंस कहा है ज्ञानियों को, लेकिन ज्ञान को आचरण में बदलने की कीमिया, बदलने का रहस्य समझ लेना चाहिए। तुम समझ भी लेते हो कभी कोई बात, इस स्फटिक मणि की भांति साफ दिखाई पड़ती है कि समझ में आ गई, अगर तुम उसी क्षण उसका उपयोग करने लगो तो और निखरती जाए, तो
तुम कहते हो कल उपयोग कर लेंगे, परसों उपयोग कर लेंगे, अभी समझ में आ गई संभाल के रख ले। एक मित्र यहाँ सुनने आते थे, डॉक्टर से पढ़े लिखे, मैंने उनको देखा कि जब भी वो सुनते तो बैठ के बस नोट ले रहे, फिर मुझे मिलने आए तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, कहते आप इतनी अद्भुत बातें कह रहे हैं फिर नोट कर लेना जरूरी है, पीछे काम पड़ेंगे। जब मैं समझा रहा हूं तब वो समझ नहीं रहे, वो कल पे टाल रहे हैं, समझ तक को कल पे टाल रहे हैं, करने की तो बात अलग, वो नोट ले रहे हैं अभी, फिर पीछे कभी जब जरूरत होगी काम पड़ जाएगी। तुम अभी मौजूद थे, मैं अभी मौजूद था, अभी ही उतर जाने देते हृदय में, लेकिन वो सोचते हैं कि वो बड़ा कीमती काम कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। ये बचाव है समझने से, समझना नहीं। सामने एक घटना घट सकती थी अभी और यही, मैं तुम्हारी आंख में झांकने को राजी था, तुम आंख बचा लिए, नोट करने लगे। मैंने हाथ फैलाया था तुम्हें उठा लूं बाहर तुम्हारे गड्ढे से, तुम्हारा हाथ तुमने व्यस्त कर लिया, तुम नोट लेने लगे। मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने पुकार न सुनी, तुमने अपनी किताब में कुछ शब्द अंकित कर लिए, तुम बड़े प्रसन्न हुए। तुम अभी जीवित सत्य को न समझ पाए, कल के लिए टाल दिया, करोगे कब? टालना मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी है, जो समझ में आ जाए उसे उसी क्षण करना, क्योंकि करने से स्वाद आएगा, स्वाद आते से करने की और भावना जगेगी, और करने से और स्वाद आएगा। अचानक एक दिन तुम पाओगे जिसे तुमने ज्ञान की तरह सोचा था वो ज्ञान नहीं रहा, आचरण बन गया। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती है। और ध्यान रखना, जो भी जाना जा सकता है वो जीकर ही जाना जा सकता है, नाहक की बहस में मत पड़ना, क्योंकि बहस भी अक्सर बचने का ही उपाय है। और व्यर्थ के तर्क जाल में मत उलझना, क्योंकि तुम्हें बहुत मिल जाएंगे कहने वाले कि इसमें क्या रखा है, लेकिन गौर से देख लेना कि जो कह रहा है उसने कुछ अनुभव लिया है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाएं, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाएं, कोई हर्जा नहीं, तर्क करें, लेकिन पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है, उनके पास भी कुछ स्वाद हो तभी। तुम उसी की बात सुनना जिसके पास कुछ स्वाद हो, अन्यथा इस जगत में आलोचक बहुत है, निंदक बहुत है। किसी भी चीज को गलत कह देना जितना आसान है, उतनी आसान और कोई बात नहीं। ईश्वर को कह देना नहीं है कितना आसान है, कहना बहुत कठिन, क्योंकि जो है कहे उसे सिद्ध करना पड़े, जो नहीं कहे उसे तो सिद्ध करने का सवाल ही नहीं रहा, जब है ही नहीं तो सिद्ध क्या करना है। प्रेम को इनकार कर देना कितना आसान है, लेकिन प्रेम को हाँ करना कितना कठिन है, क्योंकि प्रेम का अर्थ होगा फिर एक आंख से गुजरना। नहीं बहुत आसान है, इसलिए कायर हमेशा नहीं कहते थे जिंदगी चला लेते, हालांकि वो दिखते बड़े बहादुर। कोई आदमी कहता ईश्वर नहीं, लगता है बड़ी हिम्मत का आदमी, अपनी इतनी हिम्मत नहीं। पर मैं तुमसे कहता हूँ कायर नहीं कहते काम चला लेते, क्योंकि जिस चीज को नहीं कह दिया उसे न सिद्ध करने की जरूरत, न जीवन में उतारने की जरूरत, न दांव लगाने की जरूरत, न मार्ग चलने की जरूरत। जिसने हाँ कहा वही बहादुर है, वही साहसी है, लेकिन हाँ भी नपुंसक हो सकती है। अगर तुमने सिर्फ बहाने के लिए हाँ कहती हो, अगर किसी ने कहा ईश्वर है, तुमने कहा होगा भाई, जरूर होगा, सिर्फ झंझट छुटाने को, कि इतनी भी किसको फुर्सत है कि बकवास करे, इतना भी किसके पास समय है कि विवाद करे, अब कौन झंझट करे कि है या नहीं, कि बिल्कुल ठीक जरूर होगा। अगर तुमने हाँ भी सिर्फ बचाव के लिए कही, तो तुम्हारी हाँ नहीं ही है, उस हाँ में हाँ नहीं, नहीं ही है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाए, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है, उसी के पास पूछना,
कि जिसके जीवन में कोई सुगंध हो और सुवास, और जिसके जीवन में कोई स्वाद, जिसके ओठों से जिसकी श्वासों से शराब की थोड़ी गंध आती हो, उसी से शराब की बात पूछना। जिसके आसपास थोड़े मस्ती की हवा हो, जिसकी आंखों में खुमार हो, उसी से पूछना। हर किसी से मत पूछने बैठ जाना और हर किसी की बात मत सुन लेना, नहीं तो जिंदगी को ऐसे ही गंवा दोगे। ना समझ बहुत है, कायर बहुत है, आलोचक बहुत है, उनका कोई अंत नहीं, क्योंकि ये सब बचाव की तरकीबें हैं। जिंदगी को जानने वाले बहुत कम हैं, और तुम भी कहीं इसी भीड़ में ना खो जाना। खो ही जाओगे अगर जीवन में कोई सूत्र तुम्हारे पास आए और तुमने उनका जल्दी उपयोग न कर लिया, वे जंग खा जाते। सत्य बड़ी नाजुक चीज है, वो बीज की तरह, तुम उसे हृदय में ले जाओ तत्क्षण तो वो अंकुरित हो जाता है। बीज को रखे रहो तिजोरियों में, संभाल के वो सड़ जाएगा। सारे सत्य तुम्हारे शास्त्रों की तिजोरियों में सड़ गए। ऐसा नहीं है कि सत्यों की कोई कमी है, सत्य बहुत है, शास्त्र भरे पड़े लेकिन किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारे जीवन के शास्त्र में जब तक कोई सत्य उतर कर खून मांस मज्जाना बन जाए, पच न जाए, तुम्हारे रग रेशे में न दौड़ने लगे, तब तक किसी काम का नहीं। इसे स्मरण रखना। जैसे फूलों से मालाएं बनती, वैसे ही जन्म लेकर प्राणी को बहुत पुण्य करने चाहिए। जीवन दो ढंग का हो सकता है, बुद्ध ने बड़ा ठीक प्रतीक चुना है। एक तो जीवन ऐसा होता है जिसको तुम ज्यादा से ज्यादा फूलों का ढेर कह सकते हो, और एक जीवन ऐसा होता है जिसे तुम फूलों की माला कह सकते हो। माला और ढेर में बड़ा फर्क है। माला में एक संयोजन है, एक तारतम्य है, एक संगीत है, एक लयबद्धता है। माला में एक जुटता है, एक श्रृंखला है, एक सिलसिला है। फूलों का एक ढेर है, उसमें कोई श्रृंखला नहीं, उसमें कोई संगीत नहीं, उसमें दो फूल जुड़े नहीं है किसी अन्य संयुक्त धागे से। सब फूल अलग अलग है, बिखरे पड़े। तो या तो जीवन ऐसा हो सकता है कि जीवन के सब क्षण बिखरे पड़े, एक क्षण से दूसरे क्षण के भीतर दौड़ती हुई कोई जीवन धारा नहीं, कोई धागा नहीं जो सबको जोड़ता हो। अधिक लोगों का जीवन क्षणों का ढेर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तुम्हें भी उतने ही क्षण मिलते हैं जितने बुद्ध को, लेकिन बुद्ध का जीवन एक माला है, हर क्षण परोया हुआ है, हर क्षण अपने पीछे क्षण से जुड़ा है, आगे क्षण से जुड़ा है। जन्म मृत्यु एक श्रृंखला में बंधे, एक अनसयुत संगीत है। इसे थोड़ा समझो, तुम ऐसे हो जैसे वर्णमाला के अक्षर, बुद्ध ऐसे है जैसे उन्हीं अक्षरों से बना एक गीत। गीत में और वर्णमाला के अक्षरों में कोई फर्क नहीं है, वही अक्षर है। वर्णमाला में जितना है उतना ही सभी गीतों में। मार्क ट्वेन के जीवन में घटना है, उसके एक मित्र ने उसे निमंत्रित किया। मित्र एक बहुत बड़ा उपदेषता था, मार्क ट्वेन कभी उसे सुनने नहीं गया था। कुछ ईर्ष्या रही होगी मन में मार्क ट्वेन के। मार्क ट्वेन खुद बड़ा साहित्यकार था, लेकिन उपदेषता की बड़ी ख्याति थी। मित्र ने कई दफा निमंत्रित किया तो एक बार गया, सामने की कुर्सी पर बैठा था। उस दिन मित्र ने जो सृष्टम उसके जीवन में भाव में था कहा, क्योंकि मार्क ट्वेन सुनने आया था, लेकिन मार्क ट्वेन के चेहरे पर कोई भाव दशा नहीं बदली, वैसे ही बैठा रहा आकड़ा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे क्या कचरा बकवास कर रहे हो। मित्र भी चकित हुआ। जब दोनों लौटने लगे गाड़ी में वापस, रास्ते में उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें मेरी बातें कैसी लगी? मार्क ट्वेन ने कहा, बातें सब उधार, मेरे पास एक किताब है जिसमें सब लिखा है, तुमने उसी को पढ़ के बोला है। उस आदमी ने कहा, चकित कर रहे हो, कोई एक आध वाक, कोई एक टुकड़ा कहीं लिखा हो सकता है, लेकिन जो मैंने बोला है वो मैंने किसी किताब से लिया नहीं। मार्क ट्वेन ने कहा, शर्त बदते हो, $100 की शर्त लग गई। उपदेष्टा सोचता था, निश्चित ही शर्त में जीत जाऊंगा, ये पागल किस बात की शर्त लगा रहा है, जो मैं बोला हूं ये पूरा का पूरा एक किताब में हो ही नहीं सकता, संयोग नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन उसे पता नहीं था, मार्क ट्वेन ने दूसरे दिन
एक डिक्शनरी बेचती और लिखा इसमें सब है जो भी तुम बोले हो, एक एक शब्द जो तुम बोले हो सब इसमें है, शब्द सा। पर डिक्शनरी और शेक्सपियर में कुछ फर्क है, शब्दकोश में और कालिदास में कुछ फर्क है, शब्दकोश और उपनिषद में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? वही फर्क तुम में और बुद्ध में। तुम केवल शब्दकोश, फूल की भीड़ एक ढेर, अनसयुत नहीं हो, जुड़े नहीं हो, तारतम्य नहीं है। सब फूल अलग अलग पड़े हैं, माला नहीं बनता है। माला उसी का जीवन बनता है जो अपने जीवन को एक साधना देता है, एक अनुशासन देता है, जो अपने जीवन को होश पूर्वक एक लयबद्धता देता है। तब जीवन न केवल गद्य बन जाता है, अगर धीरे धीरे तुम जीवन को निखारते ही जाओ तो गद्य पद्य हो जाता है। जीवन तुम्हारा गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है, तुम्हारे भीतर से अहिर्निश संगीत की एक धारा छूटने लगती है, तुम बजने लगते हो। जब तक तुम बजो ना, तब तक तुम परमात्मा के चरणों के योग्य न हो सकोगे। और ध्यान रखना, व्यर्थ की शिकायतें शिकवे मत करना, उनसे शिकवा फजूल है, सीमा काबले इल्फात।

तू ही नहीं, परमात्मा से क्या शिकायत करनी कि आनंद नहीं है जीवन में। काबिले इल्तिफात तू ही नहीं, परमात्मा की कृपा के योग्य तू ही नहीं, इसलिए किसी और से शिकवा मत कर। तुम जैसे अभी हो ऐसे ही तुम परमात्मा पर चढ़ने योग्य नहीं हो। तुम माला बनो, तुम जीवन को एक दिशा दो। तुम ऐसे ही सब दिशाओं में मत भागते फिरो पागलों की तरह। तुम एक भीड़ मत रहो, तुम्हारे भीतर एक स्वरता है और बुद्ध इसी को पुण्य कहते हैं। तुम चकित होगे, बुद्ध कहते हैं जिसके जीवन में एक स्वरता है वही पुण्य धर्मा है। पापी एक भीड़ है, पुण्य धर्मा एक माला है। पापी असंगत है, कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, होता कुछ है। पापी के भीतर एक स्वरता नहीं, बोलता कुछ है, आंखें कुछ और कहती हैं, हाथ कुछ और करते हैं। पापी एक साथ बहुत है, पुण्यात्मा एक है, योगस्थ है, जुड़ा है, इंटीग्रेटेड है। वो जो भी करता है वो सब संयोजित है, वो सभी एक दिशा में गतिमान है। उसके पैर भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसकी आंखें जा रही हैं, उसके हाथ भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसका हृदय जा रहा है, उसकी सांसें भी उसी तरफ जा रही हैं जिस तरफ उसकी धड़कने जा रही। वो इकट्ठा है, उसके जीवन में एक दिशा है, एक गति है, विक्षिप्तता नहीं है। जैसे फूलों से मालाएं बनती है वैसे ही जन्म लेकर प्राणी को पुण्य अर्जन करना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन एक माला बन जाए। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, बड़ी मीठी बात बुद्ध कहते हैं, खूब हृदय भर के सुनना। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, न बेला की। अगर हवा पूरब की तरफ बह रही हो तो चंदन कोई उपाय नहीं चंदन के पास कि अपनी सुगंध को पश्चिम की तरफ भेजते। हवा के विपरीत नहीं जाती, न तगर की, न चमेली की, न चंदन की, न बेला की। लेकिन सज्जनों की सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाता है। एक ही सुगंध है इस जगत में जो विपरीत दिशा में भी चली जाती है, वह है सत्पुरुष की, वह है संत पुरुष की, वह है जागृत पुरुष की सुगंध। मनुष्य भी एक फूल है और जो कली ही रह गए खिल ना पाए उनके दुख का अंत नहीं। कलियों से पूछो जो खिलने में असमर्थ हो गई, जिनमें गंध भरी थी और लुटा ना पाई। ऐसे ही जैसे किसी स्त्री को गर्भ रह गया और फिर बच्चे का जन्म ना हो तो उसका संताप समझो। गर्भ बड़ा होता जाए और बेटे का जन्म ना हो तो उस स्त्री की पीड़ा समझो। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य पीड़ा में, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बड़ा हो रहा है वो जन्म नहीं पा रहा, तुम एक गर्भ लेके चल रहे हो। गर्भ बड़ा होता जाता है लेकिन तुम्हारे जन्म की दिशा खो गई, तुम भूल ही गए हो, तुम एक कली हो, उसके भीतर गंध इकट्ठी होती जा रही है, बोझिल हो गई है कली, अपने ही बोझ से दबी जा रही। मेरे देखे तुम्हारी पीड़ा ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम्हारी असली पीड़ा यही है कि जो सुख हो सकता था वो नहीं हो पा रहा। ये दुख की मौजूदगी नहीं है जो तुम्हें पीड़ित कर रही है, ये उस सुख की मौजूदगी का अभाव है जो हो सकता था और नहीं हो पा रहा। तुम्हारी गरीबी तुम्हें पीड़ा नहीं दे रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो अमीरी का झरना फूट सकता था, फूटने को तत्पर खड़ा है, उस पर चट्टान पड़ी, वो झरना फूट नहीं पा रहा है। ये विकास की छटपटाहट है आदमी का संताप, ये आदमी की पीड़ा जन्म लेने की छटपटाहट है। सारा अस्तित्व खिलने में भरोसा रखता है, जब भी कोई चीज खिल जाती तो निर्भर हो जाती। आदमी भी एक फूल है और बुद्ध कहते हैं बड़ा अनूठा फूल है, और बुद्ध जान के कहते हैं उनका फूल खिला। तब उन्होंने एक अनूठी बात जानी कि विपरीत दिशाओं में भी, जहां हवा नहीं भी जा रही हो
वहां भी संत की गंध चली जाती। संत की गंध कोई सीमाएं नहीं मानती। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की सुगंध, न तदर की, न चमेली की, न बेला की, लेकिन सज्जनों की सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती। सज्जन की सुगंध एकमात्र सुगंध है जो संसार के नियम नहीं मानती, जो संसार के साधारण नियमों के पार जो अतिक्रमण कर जाती। सीख ले फूलों से गाफिल, मुद्द आए जिंदगी, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। इतना ही काफी नहीं कि खुद महको, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। इसलिए बुद्ध ने कहा है, समाधि फिर प्रज्ञा, समाधि फिर करुणा। बुद्ध ने कहा है वो ध्यान ध्यान ही नहीं जो करुणा तक न पहुंचाते। खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। उसी समाधि को बुद्ध ने परिपूर्ण समाधि कहा है जो लुट जाए सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में बह जाए। लेकिन ये समझ लेने की बात है, ये बड़ी विरोधाभासी बात है। तुम साधारण अवस्था में सभी दिशाओं में दौड़ते हो और कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्धत्व की तरफ चलने वाला व्यक्ति एक दिशा में चलता है और जिस दिन पहुंचता है उस दिन सभी दिशाओं में बहने में समर्थ हो जाता है। तुम सभी दिशाओं में बहने की कोशिश करते हो, थोड़ा धन भी कमा लें, थोड़ा धर्म भी कमा लें, थोड़ी प्रतिष्ठा भी बना लें, थोड़ी समाधि भी कमा लें, थोड़ा दुकान भी बचा लें, थोड़ा मंदिर भी। तुम सभी दिशाओं में हाथ फैलाते हो और अखीर में पाते हो भिखारी के भिखारी विदा हो गए। जैसे आए थे खाली हाथ वैसे खाली हाथ गए। बहुत पकड़ना चाह कुछ पकड़ने ना आया। तुम्हारी हालत करीब करीब वैसी है जैसे तुमने बहुत प्रसिद्ध गधे की सुनी हो कि एक मजाकिया आदमी ने एक गधे के पास दोनों तरफ घास के दो ढेर लगा दिए बराबर दूरी पर। वो गधा बीच में खड़ा था, उसे भूख तो लगी, तो वो बाएं तरफ जाना चाहा, तब मन ने कहा कि दाएं, उस तरफ भी घास था। दाएं तरफ जाना चाहा तो मन ने कहा बाएं। कहते हैं गधा भूखा बीच में खड़ा खड़ा मर गया क्योंकि न वो बाएं जा सका न दाएं। जब दाएं जाना चाहा तब मन ने कहा बाएं, जब बाएं जाना चाहा तो मन ने कहा दाएं। तुम्हारा मन यही कर रहा है। जब तुम मंदिर की तरफ जाना चाहते हो तब मन कहता है दुकान, जब तुम दुकान पर बैठे हो मन को भजन याद आता मंदिर। ऐसे ही मर जाओगे। और दोनों तरफ तृप्ति के साधन मौजूद थे, कहीं भी गए होते। मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम दुकान पर ही पूरी तरह से चले जाओ तो वहीं ध्यान हो जाएगा। आधे आधे मंदिर जाने के बजाय दुकान पर पूरे चले जाना बेहतर है, क्योंकि पूरे चला जाना ध्यान है। ग्राहक से बात करते वक्त भीतर राम राम गुनगुनाना गलत है, ग्राहक को ही पूरा राम मान लेना उचित है। आधे आधे कुछ सार न होगा, आधा यहाँ आधा वहां। तुम दो नाव पर सवार हो, तुम बड़ी मुश्किल में पड़े हो। तुम सब दिशाओं में पहुंचना चाहते हो और कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्ध पुरुष एक दिशा में जाते हैं और जिस दिन मंजिल पर पहुंचते हैं सब दिशाओं में उनकी गंध फैल जाती। तुम सब पाने की कोशिश में सब गंवा देते हो, बुद्ध पुरुष एक को पा लेते हैं और सब पा लेते हैं। महावीर ने कहा जिसने एक को पा लिया उसने सब पा लिया, जिसने एक को जान लिया उसने सब जान लिया। जीसस ने कहा सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल एल्स शैल बी एडेड अनटू यू। अकेले तुम परमात्मा की खोज कर लो, प्रभु का राज्य खोज लो, ये सब अपने से आ जाएगा, तुम उसकी फिक्र ही मत करो। एक को जिसने गमाया वो सब गमा देता है और एक को जिसने पाया वो सब पा लेता है। लेकिन तुम्हारा सब अधूरा अधूरा है। अधूरे अधूरे के कारण तुम खंड खंड हो गए हो, तुम्हारे भीतर बड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा कहीं जा रहा, दूसरा टुकड़ा कहीं जा रहा। तुम एक टूटी हुई नाव जिसके तख्ते अलग अलग बह रहे हैं। तुम कैसे पहुंच पाओगे, तुम कहां पहुंच पाओगे? तुम हो ही नहीं, तुम इतने खंड खंड हो गए हो कि तुम हो ये कहना भी उचित नहीं है।
होने के लिए जरूरी है कि तुम्हारी दिशा बने, एक अनुशासन हो, एक श्रृंखला हो। तुम फूलों को पुरोना सीखो, फूलों की माला बनाना सीखो। जीवन में सत्य का आविष्कार करना है, प्रेम का आविष्कार करना है। जीवन में तुम कौन हो इसका आविष्कार करना है, इसे ऐसे ही नहीं गंवा देना है। तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे अनुशासन होना शुरू हो जाए। अगर तुम्हारे पास कुछ भी थोड़ी सी भी दृष्टि हो, दिशा हो, कहां पहुंचना है, तो एक तारतम्य आ जाए। उस तारतम्य के साथ ही साथ तुम्हारे भीतर एकता का जन्म होगा। इस एकता के माध्यम से ही किसी दिन तुम माला बन सकते हो, और जिस दिन तुम माला बन जाते हो उस दिन परमात्मा के गले में चढ़ाने नहीं जाना होता, परमात्मा का गला खुद तुम्हारी माला में आ जाता, आ ही जाएगा। तुम काबिल हो गए, काबिले इल्तिफात तो ही नहीं, तभी तक अर्चन थी। उनसे सिकवा फजूल है सीमा, शिकायत बेकार है। इतना ही जानना कि अभी हम तैयार नहीं हुए। अब ये फूलों की गठरी को तुम किसी के गले में डालना चाहोगे तो माला कैसे बनेगी? गिर जाएंगे फूल नीचे, धूल में पड़ जाएंगे। ये माला किसी के गले में डालनी हो तो माला होनी चाहिए। फूलों के ढेर को माला मत समझ लेना। थोड़ा देखो माला और ढेर में क्या फर्क है। ढेर में संगठन नहीं है, अर्थात आत्मा नहीं है। माला में एक संगठन है, एक व्यक्तित्व है, एक आत्मा है। धागा दिखाई नहीं पड़ता, एक फूल से दूसरे फूल में चुपचाप अदृश्य में पिरोया हुआ है। जीवन के लक्ष्य भी दिखाई नहीं पड़ते, एक क्षण से दूसरे क्षण में अदृश्य पिरोए होते हैं। बुद्ध उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो हर घड़ी के भीतर ध्यान का धागा पिरोया हुआ है। जो भी करते हैं एक बात ध्यान रखते हैं कि उस करने में से ध्यान का धागा न छूटे, वो धागा बना रहे। फूल से भी ज्यादा मूल्य धागे का है, लक्ष्य का है, दिशा का है। और जिस दिन ये घड़ी घट जाती कि तुम संगठित हो जाते हो, तुम एक हो जाते हो, उसी दिन परमात्मा की कृपा तुम पर बरस उठती। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसलिए बुद्ध उस संबंध में चुप रहे। जो कहा जा सकता था उन्होंने कहा, जो नहीं कहा जा सकता था उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सारा जोर इस पर दिया है कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसे एक हो जाए, तुम्हारा ज्ञान कैसे आचरण बन जाए, तुम्हारे बिखरे फूल कैसे माला बन जाए। इससे ज्यादा उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि इसके बाद बात करनी ठीक ही नहीं। इसके बाद जो होना है वो होता ही, वो हो ही जाता है, उसमें कभी कोई अड़चन नहीं पड़ती। इसलिए परमात्मा को तुम भूल जाओ तो अड़चन नहीं, अपने को मत भूल जाना। अपने को भूला तो सब गया, सब डूबा। खुद की याद रखी और सियादास को रोज रोज संभालते गए। रोज रोज हर तरह से वो याददाश्त तो सघन होती चली जाए। जैसे जल गिरता है पहाड़ से, चट्टान मजबूत है, जल बिल्कुल नाजुक है, लेकिन रोज गिरता ही चला जाता है। एक दिन चट्टान तो रेत होकर बह जाती है, जल की धार अपनी जगह बनी रहती है। कठोर से कठोर भी टूट जाता है सातत्य के सामने। इसलिए घबराना मत। अगर आज तुम्हें अपनी दशा चट्टान जैसी लगे, तुम कहो कि कैसे ये अहंकार बहेगा, ये चट्टान बड़ी मजबूत है, कैसे ये दिल झुकेगा, ये झुकना जानता नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करना। तुम सिर्फ सातत्य रखना, ध्यान का, अवलोकन का, साक्षी का, से सब अपने से हो जाता है। बुद्ध ने मनुष्य के व्यक्तित्व का विज्ञान दिया, उन्होंने मनोविज्ञान दिया, मेटाफिजिक्स, परलोक के शास्त्र की बात नहीं की। बुद्ध बड़े यथार्थवादी हैं। वे कहते हैं जो करना जरूरी है वही, और ज्यादा व्यर्थ की विस्तार की बातों में तुम्हें भटकाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही तुम काफी भटके हुए हो, थोड़े से तुम्हें सूत्र दिए, अगर तुम उन्हें कर लो
तो उन सूत्रों में बड़ी आग है।

क्योंकि बुद्ध व्यर्थ की बात को कभी बीच में नहीं लाते, बस सार्थक को ही दोहराते ताकि सतत चोट पड़ती रहे। और तुम ऐसे हो, तुम्हारी नींद ऐसी है, तुम्हारी तंद्रा ऐसी है कि बहुत बार दोहराने पर भी तुम सुन लो, वो भी आश्चर्य है। बुद्ध से कोई पूछता था तो वो 3 बार दोहरा के जवाब देते थे, उसी वक्त 3 दफा दोहरा के जवाब देते थे। क्यों 3 बार? क्योंकि बुद्ध से कोई पूछने लगा कि क्यों 3 बार, क्या आप सोचते हम बहरे? बुद्ध ने कहा नहीं, अगर तुम बहरे होते तो इतनी अड़चन न थी। तुम बहरे नहीं हो और फिर भी सुनते नहीं हो, तुम सोए नहीं हो, यही तो अड़चन है। सोए होते तो जगाना आसान हो जाता, तुम बन के लेटे हो, तुम सोने का ढोंग कर रहे हो, उठना भी नहीं चाहते, जाग भी गए हो। तुम सुनते हुए मालूम पड़ते हो और सुनते भी नहीं, इसलिए 3 बार दोहरा दो। ये जो बुद्ध का दोहराना है धम्मपद में, इस पूरी चर्चा में बहुत बार आएगा, अलग अलग द्वारों से वो फिर वही लौट आते, कैसे तुम्हारा रूपांतरण हो। बुद्ध की सारी आकांक्षा अभीप्सा मनुष्य केंद्रित है, महावीर मोक्ष केंद्रित है, वो मोक्ष की चर्चा करते। जीसस ईश्वर केंद्रित है, वो ईश्वर की चर्चा करते। बुद्ध मनुष्य केंद्रित है, जैसे मनुष्य से ऊपर कोई सत्य नहीं है बुद्ध के लिए। साधार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नहीं, सबके ऊपर मनुष्य का सत्य है और उसके ऊपर कोई सत्य नहीं। क्योंकि जिसने मनुष्य के सत्य को समझ लिया उसे कुंजी मिल गई, सारे सत्यों के द्वार उसके लिए फिर खुले। बुद्ध को भोजन बनाओ, पियो, पचाओ, तो धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण होने लगा। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर बुद्ध की प्रतिमा उभरने लगी। हर चट्टान छिपाए है बुद्ध की प्रतिमा अपने में, जरा छेनी की जरूरत है, हथौड़ी की जरूरत है, व्यर्थ को छांट के अलग कर देना है। किसी ने माइकलएंजेलो से पूछा, क्योंकि चर्च के बाहर एक पत्थर बहुत दिन से पड़ा था, उसे अस्वीकार कर दिया गया था, चर्च के बनाने वालों ने उपयोग में नहीं लिया था, वो बड़ा अनगढ़ था। माइकलएंजेलो ने उस पर मेहनत की और उससे एक अपूर्व क्राइस्ट की प्रतिमा निर्मित की। किसी ने पूछा कि ये पत्थर तो बिल्कुल व्यर्थ था, इसे तो फेंक दिया गया था, इस तो राह का रोड़ा समझा जाता था, तुमने इसे रूपांतरित कर दिया, तुम अनूठे कलाकार हो। माइकलएंजेलो ने कहा नहीं, तुम गलती कर रहे हो, जो मैंने पत्थर से प्रकट किया है वो पत्थर में छिपा ही था, सिर्फ मैंने पहचाना और जो व्यर्थ टुकड़े पत्थर के आसपास थे उनको छांट के अलग कर दिया। ये प्रतिमा तो मौजूद ही थी, मैंने बनाई नहीं, मैंने सिर्फ सुनी आवाज। मैं गुजरता था यहां से, पत्थर चिल्लाया और उसने कहा कि कब तक मैं ऐसे ही पड़ा रहूं, कोई पहचान ही नहीं रहा है, तुम मुझे उठा लो, जगा दो। बस मैंने छेनी उठा के इस पर मेहनत की, जो सोया था उसे जगाया। बुद्धत्व को कहीं पाने नहीं जाना है, हर एक के भीतर आज जो चट्टान की तरह मालूम हो रहा है अनगढ़, बस जरा से छेनी हथौड़े की जरूरत है। सबके भीतर से पुकार रहा है कि कब तक पड़ा रहूंगा, उघाड़ो मुझे। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो तुम सुनो, जो सुभाषित तुम्हारे कानों में पड़ जाएं, उन्हें तुम स्मृति में संग्रहित मत करते जाना, उन्हें उतारना आचरण में, उन्हें जीवन की शैली बनाना। धीरे धीरे तुम्हारे चारों तरफ उनकी हवा तुम्हें घेरे रहे, उनके मौसम में तुम जीना, जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर का बुद्धत्व उभरना शुरू हो गया, फूल माला बन गए। और तब एक ऐसी घटना घटती है जो संसार के नियमों के पार है। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशा में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, न बेला की, लेकिन जिनके भीतर का बुद्ध पुरुष जाग गया, बुद्ध चैतन्य जाग गया, उनकी सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती है, सभी दिशाओं में उनकी सुगंध फैल जाती है। और जब तक तुम ऐसे अपने

बिल्कुल लुटा ना सकोगे तब तक तुम पीड़ित रहोगे। एक ही नर्क है अपने को प्रकट न कर पाना, और एक ही स्वर्ग है अपनी अभिव्यक्ति खोज लेना। जो गीत तुम्हारे भीतर अनगाया पड़ा है उसे गाओ, जो वीणा तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है उसे छेड़ो उसके तारों को, जो नाच तुम्हारे भीतर तैयार हो रहा है उसे तुम बोझ की तरह मत लो, उसे प्रकट हो जाने दो। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर बुद्धत्व को लेकर चल रहा है, जब तक वो फूल न खिले तब तक बेचैनी रहेगी, अशांति रहेगी, पीला रहेगी, संताप रहेगा। वो फूल खिल जाए, निर्वाण है, सच्चिदानंद है, मोक्ष है। आज इतना।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार? रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
2: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत।
3: पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम ज्योति बिंदु रूप चैतन्य शक्ति आत्मा हैं और हमारे पिता परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा के साथ हमारा सीधा संबंध है और इस दिव्य अविनाशी संबंध की निरंतर स्मृति से हम आत्माओं में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं।
2: तो यहाँ जब मैंने भाषा के परे जाने का भाव अभी सीखा नहीं, या अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो मैं उस पूरे जो रिएक्शन है या जो मुझे मिल रहा है उसे अनुभव कैसे करूँ?
4: उसका सबसे पहला जो फर्स्ट क्या कहें, चेकिंग, मतलब अपना पैरामीटर चेक करना कि जैसे ही मैं परमात्मा को याद करूँ राइट तरह से एंड राइट एंटिटी को,
2: मतलब ओके, पूरी पहचान के साथ
4: कनेक्टिंग टू द राइट एंटिटी इन द राइट वे, आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दोज क्वालिटीज जो हम सिर्फ कह रहे हैं अभी तक, आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग देम इन माई सेल्फ एंड द रिजल्ट ऑफ दैट विल बी कि हमारे जो संस्कार जो आज दिन तक हम कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, मैं से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इतनी पावर भरती जाएगी कि मेरे लिए अपने आप को परिवर्तन करना जो आज दिन तक हम समझ रहे थे बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आप देखो, कोई भी रिश्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उस रिश्ते में अगर हमें एनर्जी मिलती है तो हमें कोई भी रिश्ता एम्पावर कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो ह्यूमन बींग्स के साथ हमारे रिश्ते हैं वो हमें एम्पावर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेजॉरिटी सोल्स थोड़ी सी
2: डिप्लीटेड
4: वीक हो गई हैं, तो इसलिए हमें सोल टू सोल कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है। नहीं तो आज किसी से मुझे इतना प्यार मिले, अनकंडीशनल लव मिले, तो मुझे अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन आज एक पेरेंट एज अ चाइल्ड मुझे बोलता ही रहे, तुम तो हो ही ऐसे, और अगर अच्छा अच्छा बोल भी रहा लेकिन खुद इतने दर्द में है, तो उनकी दर्द की वाइब्रेशन मुझे मिलती है, तो आई कंटिन्यू टू गेट डिप्लीटेड। तो इवन एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड टूडे, द बॉडी फॉर्म parent and a child, parents give a lot of love to children, but parents are in a lot of pain.
2: खुद किस situation में है? तो परमात्मा कभी खुद थोड़ा pain में जाएं?
4: That's the point. तो जैसे ही आपका रिलेशनशिप उसके साथ जुड़ता है जो इतना पावरफुल है, तो उससे आपको वाइब्रेशन कौन सी आएगी? आज एक पेरेंट भी एक बच्चे के साथ ये रिलेशनशिप जोड़ सकता है, नॉट लाइक गॉड, बट इफ अ पेरेंट हैज द पावर कि वो अनकंडीशनल लव दे स्टेबिलिटी के साथ, बच्चा कितना भी दर्द में है पेरेंट दर्द में ना जाए, तो पेरेंट की जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी बच्चे को, वो बच्चे को मदद कर देगी अपने दर्द से बाहर आने की। नाउ दैट बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू गेट हियर, सो व्हाट हैपेंस, रिलेशनशिप इज देयर, लेकिन हम फिर भी हमारी स्थिति कैसे होती जा रही है? वी ऑल लव ईच अदर वी से, बट सो मेनी कंडीशंस वी अप्लाई एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग डिसएम्पावर्ड। लेकिन जैसे ही हमारा कनेक्शन एक ऐसे आत्मा से जुड़ता है, यू नो, जस्ट लुक एट हिम जस्ट एज अनदर सोल, वी आर लुकिंग एट हिम जस्ट एज अनदर सोल, इतनी सारी आत्माओं से रिश्ता जुड़ा है, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है जो कभी दर्द में नहीं जाता,
2: जिसका अपना कोई दर्द नहीं, वंडरफुल,
4: नो पेन, राइट, नो एंगर, नो स्ट्रेस, नन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एवर पावरफुल, एवर प्योर, एवर पीसफुल, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा मेरे ऊपर? That I will start experiencing. कि मुझे जो अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना, वो एक्चुअली हम खुद ही लाते हैं, भगवान हमें चेंज नहीं करता, he doesn't do like this magic. लेकिन भगवान से जो वो unconditional power, love, purity मिलती है, that helps me to overcome my pain and overcome my old संस्कार. And that's why relationship with God का जो सबसे फंडामेंटल रिजल्ट निकलता है, दैट इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। गॉड डज नॉट ट्रांसफॉर्म मी, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम भगवान को अगर ये भी कहते रहे ना, मेरा ये संस्कार ठीक कर दो, मेरा ये संस्कार, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। नहीं तो भगवान ऐसे करे और सबके संस्कार ठीक हो जाए, इट डजंट हैपन। हम खुद ठीक करते हैं, हमें अपने ऊपर मेहनत खुद करनी पड़ेगी। लेकिन यस, बीइंग इन द कंपनी ऑफ दैट एवर प्योर, मुझे वो इतनी वाइब्रेशन, इतनी पावर मिलती है जिससे मैं अपने आप को ठीक करती हूँ,
2: इतनी शक्ति मिलती जा सकती है. वंडरफुल, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वे टू लुक एट द रिलेशनशिप. अगर पूरे दिन में मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो जो भी मेरा कोई रिश्ता है उसका कोई ना कोई रोल होता है. मेरे जैसे आप हैं, आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है या उसका एक रोल है मेरी लाइफ में. कोई भी है, मेरी बेटी है अगर आप देखें तो उसका क्या रोल है. तो सिमिलरली अगर हम गॉड को देखते हैं, उसका मेरे जीवन में, मेरे दिन में जितना भी मैं होती हूँ, क्या होगा रोल.
4: लेट्स टेक एनी रिलेशनशिप, क्योंकि परमात्मा के साथ हम कहते हैं, एक तो हम उसको बाबा कहते हैं प्यार से एज अ फादर, लेकिन वो आत्मा है. एंड वी ऑलरेडी सीन कि रिलेशनशिप्स लेबल्स नहीं है, रिलेशनशिप है आत्मा का, आत्मा से कनेक्शन. हाँ, आज हमने उसको बहुत सारे लेबल्स दे दिए हैं, लेकिन एक हस्बैंड और एक वाइफ है तो रिलेशनशिप किसके बीच है? दो आत्माओं के बीच. एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच. अब एक आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है, तो अगेन रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच है. लेट्स से आई एम इन पेन, मेरे मन में कोई बात है, समथिंग इज बॉदरिंग मी. और कई बार होता कि अनलेस आई शेयर इट, जस्ट गोज ऑन इनसाइड, एंड मुझे चाहिए कि मैं किसी के साथ वो शेयर करूँ. मैं वो बात किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज प्रॉब्ली इट्स जस्ट टू पर्सनल. एंड शेयर करने का भाव भी क्या होता है कि इफ़ आई शेयर इट विद यू, आई वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट पेन. यू नो, हम शेयर भी इसी भाव से करते हैं कि मैं किसी से शेयर करूँ ताकि तो मेरा दर्द ही मुक्त हो जाए. लेकिन आज अगर मेजोरिटी आत्माएं अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस में, अपने इश्यूज में हैं, या खुद उतने एम्पावर्ड नहीं हैं, अगर उनसे हम अपनी कोई बात शेयर भी करते हैं तो डू आई बिकम फ्री ऑफ माई पेन. अगर मुझे कोई राय देता भी है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे आपको क्या पता मेरे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. सो आई कैन शेयर बट आई डोंट गेट द पावर जिससे मैं अपने दर्द से मुक्त हो जाऊँ. अब एक्सपीरियंस करें कि हम बात कर रहे हैं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, एवर पावरफुल आत्मा से, जो अनकंडीशनल लव करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने कितना बड़ा पता नहीं क्या कर दिया है. नाउ आई शेयर कुड बी विद माई थॉट पावर, कि मैं जो भी है मैं बोलती जाती हूँ. रिटर्न में वाइब्रेशंस कैसी आ रही हैं? सपोज मैं आपके साथ शेयर करूँ ना कि मैंने आपको पता है कितनी बड़ी गलती कर दी, या मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, आप ये एक ह्यूमन नेचर जैसे कहें, क्योंकि हम बहुत डिप्लीटेड हैं अभी, आप भले ऊपर से कहेंगे हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, अंदर कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन
2: होना ही था,
4: या आपने ऐसा कर दिया,
2: ये आप इस हद तक,
4: यू नो. सो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है. इवन आज एक बच्चे से भी अगर कोई गलती हो जाए तो पेरेंट बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे से अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो एक पेरेंट के अंदर वो उस चीज़ का एक जो नेगेटिविटी का इम्प्रेशन है वो आ ही जाता है, और तब पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ने ये कर दिया, या यू नो धोखा दे दिया या व्हाटएवर. तो वाइब्रेशन कौन सी पहुँचेगी? तो इसलिए हम शेयर नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो हमें वो एम्पावर रिटर्न में नहीं मिलता. लेकिन जब हम उससे शेयर करते हैं जिसके ऊपर मेरी नेगेटिविटी का कोई ट्रेस नहीं आता, जिसकी वाइब्रेशन मेरी थॉट या बात सुनने के बाद चेंज नहीं होती, जिसका मेरे प्रति जो एनर्जी फ्लो है वो चेंज नहीं होता,
2: कभी भी नेगेटिव नहीं होगा,
4: वो चेंज नहीं होता, भले मैंने कुछ भी किया है या मैंने कितना भी दर्द क्रिएट किया. अब उसके साथ अगर मैं शेयर करूँ अपनी बात तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? एंड जब हम दर्द में होते हैं हमें चाहिए सिर्फ क्या होता है? वी नीड लॉट ऑफ लव. I need a soul who will give me so much love that I will be able to come out of that pain. लेकिन आज हम किसी से भी अपना pain share करें तो हमें return में कोई, you know, we still getting pain. So when I share my problem, my conflict, my pain with him, it is not that, you know, just the sharing does the work. एक तो sharing करते हुए मैं अपने आप को हल्का करते जाती हूँ, लेकिन वो जो in return मुझे फिर भी unconditional acceptance मिलती कि आप जो हो जैसे हो, I still love you. This helps me to build my self-confidence all over again. तो परमात्मा के साथ relationship मतलब एक तो अपनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो हम शेयर कर सकते हैं. तो फिर हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कि मुझे किससे बात शेयर करनी है वो नहीं पढ़नी पड़ती. पालना, मैं अपने जीवन की हर स्टेप पर जो भी कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, हाँ मुझे अब ये ज्ञान है कि मेरा जो भी कर्म हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. माई एवरी कर्म स्टार्ट्स विद माई थॉट. बट वॉट अबाउट वॉट थॉट टू क्रिएट? ये तो मुझे क्रिएट करना है. आई क्रिएट द थॉट. लेकिन अगर मैं एक ऐसी पावर से कनेक्ट हो जाऊँ जिससे मुझे वो शक्ति मिलती रहती है, जिससे मेरा माइंड बिल्कुल साइलेंट और स्टेबल रहता है, तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स खत्म होते जाते हैं.
2: और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विजन भी क्लियर होने शुरू हो जाती है.
4: वो तो क्लियर है, लेकिन यू नो लाइक अभी क्या हो रहा है, हमें ये पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है. लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हमारे पास वो राइट करने नॉलेज होने के बावजूद वो राइट करने की कहीं ना कहीं ताकत नहीं है, क्योंकि माइंड इतना वीक हो गया है कि वो फिर भी एक नेगेटिव या एक वेस्ट थॉट क्रिएट कर देता है. लेकिन अगर ये माइंड उस सोल से कनेक्टेड है जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग पावर है, तो इसके अंदर क्या शक्ति आती है. परमात्मा मुझे थॉट्स नहीं भेजता है, लेकिन परमात्मा मेरे माइंड को, मुझे आत्मा को वो साइलेंस पावर देता है, वो शक्ति देता है जिससे मैं आत्मा फिर राइट थॉट क्रिएट कर सकती हूँ. परमात्मा मुझे वो ज्ञान देता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमें ज्ञान, हम रोज सेंटर पर जाते और परमात्मा के महावाक्य सुनते, तो वो ज्ञान मुझे मिलता है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन राइट मिलती है, जिससे राइट थॉट क्रिएट करने की एक फाउंडेशन मिलती. तो एक नॉलेज मिल गई और साथ साथ एक पावर मिल गई. और सबसे ईजी जो पावर मिलती है गॉड से वो है सोल कॉन्शियस होने की. जब हम जिस कॉन्शियसनेस के संग में बैठेंगे ना, तो उनकी कॉन्शियसनेस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है. तो जब हम एक ऐसे के सामने बैठेंगे जो 100% सोल कॉन्शियस है, तो हमारी कॉन्शियसनेस किस तरफ जाएगी? क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब दो आत्माएं कॉन्टैक्ट में आती तो एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है. तो आज जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो नेगेटिव ऑरा की है, तो उसका नेगेटिव ऑरा हम पे ओवरपावर करता है. अब जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते जो एवर प्योर है, तो उसकी पावर मुझ पर ओवरपावर करती है. एंड फिर सोल कॉन्शियस बनना ये इजी हो जाता है. कितनी बार ऐसा होता कि हम किसी को याद करते हैं,
2: उनका फोन आ जाता,
4: तो वो कब होता है? जब राइट टाइम पर हमने जो थॉट क्रिएट की और वहां से थॉट आई और हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई. अब हम एक ऐसी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके यहाँ क्लटर का तो कोई ट्रेस ही नहीं है. सो बेसिकली ही इज एवर रेडी.
2: अच्छा, ही इज रेडी. आई जस्ट हैव टू गेट कनेक्टेड. यू नो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि इफ इन द होल डे इफ आई वांट टू गेट कनेक्टेड टू you are there personally, but if I want to get connected to my daughter or
4: see,
2: like anyone
4: I may
2: else,
4: not be there personally. Sometimes I could be sitting here but I'm not here if my mind is there. Mera man ho sakta na main aap se baat kar rahi hu lekin man kahin aur hai, to aapko wo exchange ka anubhav nahi hoga, kyunki har atma apne apne bahut sare disturbance se guzar rahi hai. Lekin ab hum kisse connect kar rahe hain?
2: To main hi janna chahti hu, log bhi ye janna chahenge ki when I get connected to him, मतलब जब मैं उनको याद करूं, तो क्या वो कनेक्टेड मुझसे है हमेशा?
4: Actually,
2: this is what I think, some reassurance.
4: हमेशा ही कनेक्टेड है. यू नो इट्स लाइक अ ट्रांसमिटर जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा है. अब सिर्फ रोल किसका बचा है?
2: मेरा,
4: रिसीवर. कि रिसीवर उस ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर जाए. अब जो ट्रांसमिट कर रहा है वो एक आत्मा है, लेकिन मैं जो रिसीवर बैठी हूँ, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठी थी आज तक, तो इसलिए रिसीवर और ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही थी. तो मैंने सोचा कि मैं एक माँ हूँ तो कौन याद आया? बच्चे, क्योंकि कॉन्शियसनेस माँ की थी. मैंने सोचा मैं एक ऑफिसर हूँ तो कौन याद आया? ऑफिस याद आया. अब जैसे ही ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई कि मैं एक आत्मा हूँ, तो तुरंत किससे कनेक्शन जुड़ा?
2: परमात्मा.
4: क्योंकि वो तो रेडी है, लेकिन मैं उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रही थी. आप जिस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे उधर का सिग्नल कैच करेंगे. तो अभी तक हम भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे थे, इवन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या कॉन्शियसनेस, लेकिन खुद अपने को पहले सोल कॉन्शियस नहीं किया
2: तो
4: था.
2: अपनी पहचान बेसिकली वो तो था ही,
4: वो तो है ही है. ही इज नॉट गॉन एनीवेयर. वो तो है ही है, लेकिन आई वॉज नॉट फर्स्ट इन दैट सेम कॉन्शियसनेस, एंड सेकेंड आई डिडंट नो हु आई वॉज कनेक्टिंग टू. अब नॉलेज के आधार पर ये दोनों चीज़ें मिल गई, कि पहले अपनी कॉन्शियसनेस कि ये सब बातों की विस्मृति करके आई एम अ प्योर सोल, तो सोल को याद कौन आएगा? सुप्रीम सोल. फिर वो अनुभव करना, ही इज ऑलरेडी देयर, लेकिन द मिनट आई ट्यून इन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द फ्लो. तो सारा दिन में जैसे सुबह हम मेडिटेशन करने बैठते तो क्योंकि ये शुरू का हमारा नया रिश्ता है, तो सुबह जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं वी आर सिटिंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो डीप रूटेड संस्कार्स हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं. पहले हम याद करते थे कि प्रॉब्लम ठीक कर दो, बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ माई कर्मा. अब हमें ये समझ में आता कि परमात्मा को हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम अब उसकी शक्ति से अपने को ठीक करते हैं, स्व परिवर्तन करते हैं. तो जो मॉर्निंग का टाइम है जो हम खास बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए ताकि हम अपने माइंड को साइलेंट करें, सब कॉन्शियस लेयर पे जाएं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के सारी थॉट्स को पुट असाइड करें, सब कॉन्शियस माइंड में जाएं जहां बहुत सारे पुराने बिलीफ्स, पुराने संस्कार डीप एम्बेडेड हैं, और परमात्मा की पावर हमें वो मदद करती है उस सबकॉन्शियस माइंड पे जाने के लिए. फिर परमात्मा की वो शक्ति, वो एक एक जो पावर है, हम उसको थॉट से अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करते हैं. वी आर चेंजिंग आर बिलीफ सिस्टम. फर्स्ट माई बिलीफ वॉज आई एम अ बॉडी, गुस्सा ये वो तो मेरे संस्कार है. नाउ आई एम चेंजिंग इट, आई एम अ प्योर सोल, चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ प्योरिटी. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ. आई वॉन्ट के ये मेरे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसको एम्बेड कहाँ करना पड़ेगा?
2: सबकॉन्शियस,
4: यहाँ सबकॉन्शियस में. तो मॉर्निंग में साइलेंट में बैठकर कॉन्शियस थॉट्स साइड पे कर सबकॉन्शियस लेयर को, जैसे यू नो ऊपर की सारी चीज़ें को हटाकर नीचे की चीज़ों को लेकर आते, उसमें से पुराने बिलीव्स के बदले ये नया जो सत्यता है, अभी वो बिलीफ ही है, उसको एम्बेड करते हैं और फिर उसको कार्य व्यवहार में लेके जाते हैं. तो सुबह का जो हमारा समय है वो है साइलेंस में बैठकर वो परमात्मा की शक्ति से अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करना, और सारा दिन में हम उसके साथ एक रिलेशनशिप कैसा एक्सपीरियंस कर सकते कि वन आई कैन गो ऑन कम्युनिकेटिंग विद हिम. अपने हर कर्म करने से पहले एक मिनट याद करें, फिर माइंड को साइलेंट करें, उसके साथ कनेक्ट करें, अपना काम करें. कोई मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, कोई डिसीशन आपको लेना है, कुछ भी करना है, कनेक्ट टू हिम. कोई बात बोझ है, शेयर विद हिम. तो जितना उस सुप्रीम पावर के साथ रिलेशनशिप जुड़ता जाएगा, आपका रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी
2: बाकी सब,
4: और फिर जो आपका रिलेशनशिप होगा बाकियों के साथ वो लेने के भाव से नहीं होगा कि मुझे आपसे ये चाहिए, वो होगा कि मेरे पास अब ऑलरेडी स्टॉक भर चुका है, नाउ आई कैन एक्सप्रेस इन माय रिलेशनशिप. फिर जो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ था कि खुश रहना और खुश रहकर सब कुछ करना, तो वो करना
2: आसान
4: हो जाएगा. एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सैटिस्फैक्शन, लव. And because I start experiencing, I will start expressing. Mm. And when I

0: start expressing, I give. And when I give, my relationships become very close. जो हम meditation में बैठते हैं तो तीन आत्मा की जो तीन faculties हैं, mind, intellect and experience, संस्कार, ये तीनों faculties अपना अपना role play करते हैं. Mind creates a thought, intellect उसको तुरंत visualize करता है. जैसे आपने thought create किया बेटी, तुरंत picture आ जाएगी. तो इसी तरह आत्मा ने thought create किया God, परमात्मा, Supreme Soul, तो तुरंत एक form आ जाता है कि जैसे मैं आत्मा, point of light, वैसे वो भी एक point of light. आप अगर अपनी बेटी को भी याद करो तो तुरंत आपका thought आएगा वो भी कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं. तो इसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो कहाँ पर है, तो हमें घर भी ऑटोमेटिकली याद आता. तो घर याद आता कि घर हमारा, द सोल वर्ल्ड इज गोल्डन रेड लाइट, कंप्लीट प्योरिटी, एंड देयर दिस ओशन ऑफ प्योरिटी. तो हम फिर मन और बुद्धि से वहाँ चलते हैं. जैसे हम यहाँ बैठे अपने घर जा सकते हैं, वहाँ के बैठे हुए लोगों को याद कर सकते हैं, वैसे ही अब हम उस घर चलते हैं. तो माइंड और इंटेलेक्ट दोनों साथ साथ चलेगा. मन थॉट क्रिएट करेगा, इंटेलेक्ट उसको हल्के से, डू नॉट अगेन प्रेशराइज योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू सी समथिंग, इट इज़ नॉट सीइंग लाइक दिस विद दीज आइज, इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज इट. किस लिए? क्योंकि अगर वो विजुअलाइज करते तो इंटेलेक्ट कहीं और नहीं चले जाते. क्योंकि अगर इंटेलेक्ट कहीं और चले जाती है तो मन उधर चला जाता है. यू नो, अगर मन ने कहा परमात्मा, अगर इंटेलेक्ट ने वो पिक्चर नहीं लाई तो इंटेलेक्ट किसी और की पिक्चर ले आएगा, फिर वो मन वहाँ चला जाएगा. तो बेसिकली माइंड और इंटेलेक्ट को इकट्ठे चलना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन. बट सम पीपल ट्राई टू बी वेरी यू नो हार्श विद देमसेल्फ, पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा. तो इट्स नॉट अ पिक्चर. एज लॉन्ग एज आपकी इंटेलेक्ट पर कोई और पिक्चर नहीं आ रहा, आपका मन कहीं और नहीं स्वे कर गया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. जस्ट विजुअलाइज इट वेरी लाइटली. मन और बुद्धि के द्वारा हम अपने पिता के पास जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है. ये सारे लेबल्स, नाम, प्रोफेशन, रोल, जो मैंने आज दिन तक समझा मैं हूँ, ये मेरे हैं. यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा है. दिस इज ऑल मैटर. आई एम एनर्जी, कॉन्शियसनेस, शक्ति. ट्राई एंड सी योरसेल्फ शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, प्रकृति के बीच में एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, टाइनी स्टार, कॉन्शियसनेस. यहाँ से बैठकर मैं शरीर को चलाती हूँ. मैं ही हूँ जो हर आत्मा से संबंध अनुभव करती हूँ. ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है संबंध अनुभव करने वाली. मैं शक्ति हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. आई एम अ प्योर सोल, प्योरिटी, डिविनिटी, ये तो मेरी अपनी नेचर है. आई सी माई सेल्फ अपने घर की तरफ चलते हुए. अपने आप को देखें, वो पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर से पार, इस सृष्टि से भी पार अपने घर की तरफ जा रहा है. धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें कि वो पॉइंट चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस कर रहा है, और इस दुनिया को क्रॉस करते करते मैं आत्मा अपने घर में आकर पहुंची हूँ. गोल्डन रेड लाइट, कंप्लीट स्पेस ऑफ प्योरिटी एंड पीस. आज दिन तक मैं इस घर को याद करती थी, अपने पिता को याद करती थी, आज मैं उनके पास आकर पहुंची हूं। अपने आप को देखें, मैं एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा इस आत्माओं की दुनिया में। मेरे सामने एक और बहुत सुंदर पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे ही जैसा, मेरे ही जितना छोटा सा, सूक्ष्म बट पावर वाइब्रेटिंग ऑल ओवर। मैं अपने पिता के पास आकर बैठा हूँ। आज दिन तक तो मैं ढूंढ ही रहा था, गॉड, ईश्वर, अलग अलग नाम से पुकार रहा था। मैं उनके सामने आकर बैठा हूँ। मन पे कोई बात, कोई बोझ, कोई क्वेश्चन, उनसे कर सकते हैं। मैं पवित्रता के सागर के सामने बैठा हूँ। देखने का प्रयास करें पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, एनर्जी है जो मुझ पर फ्लो कर रही है, और मैं आत्मा शक्तियों को अपने अंदर भरती जा रही हूँ। ओम शांति,
1: ओम शांति। सर शिवानी, जिस तरह से परमात्मा का परिचय हमें मिला और जिस तरह से एक रिलेशनशिप, हमारा एक डायनामिक रिलेशनशिप जो मेरा और आपका या हमारा किसी भी और व्यक्ति के साथ है, वो कायम हो सकता है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा खुद को एलिवेट करके अपनी पहचान को करने की ज़रूरत है, बाकी रिश्ता इतना सुंदर, इतना डायनेमिक हो सकता है, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं हम, जिसको हम अभी तक तलाश रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। हर बार की तरह आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका अपना है। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को समझते हुए, खुद को मैनेज करने का ये जो पूरा प्रोसेस हम समझ रहे हैं, इससे जुड़ी कोई आपकी बात है, कोई सवाल है, आपका हम स्वागत करेंगे। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए सर शिवानी, थैंक यू सो मच।
0: शुक्रिया।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.9 वाट पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे ऐसे प्रसंगों, कथाओं की बात करते हैं जो बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हमें देते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, हमने पिछले एपिसोड में शुरुआत कर दी थी एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, और वो है महर्षि व्यास जी द्वारा लिखी गई महाभारत, जिसे उन्होंने गणेश जी को लिखवाया था। और हम पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से बहुत सारी कथाएं प्रसंग जान रहे थे, और हमने जाना था पिछले एपिसोड में कि किस तरह से जो आरुणी की कथा थी, उपमन्यु, वेद, ये जो आचार्य जी के शिष्य थे, इनकी कथा जानी थी। और आस्तिक ऋषि जी की कथा पर हमने शुरुआत की थी, इसकी कथा को आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो रागलेखा दासी जी, इस कथा के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, सतयुग में दक्ष प्रजापति जी की दो कन्याएं थी, कद्रु और वनिता।
0: जी,
1: उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। कश्यप ऋषि अपनी धर्म पत्नियों से बड़े प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हूँ। विनीता बोली, तेज शरीर का बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से शेष केवल दो ही पुत्र मुझे प्राप्त हैं। कश्यप जी ने एवं अस्तु कहा, दोनों प्रसन्न हो गई। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा लेकर कश्यप ऋषि वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। दासी ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनीता के 2 बच्चे नहीं निकले। विनीता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माता तुम्हें लोभवश मुझे अधूरे शरीर को ही निकाल दिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, उसे दाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग ना किया, तो वही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो मेरा दूसरा बालक बलवान हो और धैर्य के साथ 500 वर्ष तक प्रतीक्षा कर। उस प्रकार श्राप देकर बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसकी झलक थी और उसका बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ घूम रही थी, उन्हें पास ही उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। यह घोड़ा अश्वरत्न अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ था। समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य और सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में वर्णन करने लगी, देवताओं के अमृत मंथन ने किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च श्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उच्च श्रवा महर्षि शौनक आदि का प्रश्न सुन के उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवता से कहा, देवता और